إذا استأذنوك لبعض شأنك.

اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره فنسألك

0: इसमें कोई फर्क आया है। सुभान अल्लाह। इसके अलावा अल्लाह ताला को हजरत हाजरा की तलाश का अमल इस कदर पसंद आया कि उसने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को हज और उम्रे का लाजमी हिस्सा बना दिया, जिसको सही कहते हैं। और अल्लाह ने सफा और मरवा को शौर अल्लाह करार दिया, जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है।
1: सूरतुल बकरा की आयत रकम 158 में अल्लाह सुभान व तआला इरशाद फरमाते हैं,

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। समीन, मुसलमान की पूरी जिंदगी विलादत से लेकर वफात तक सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में ढली हुई है। जैसा कि अल्लाह सुबहानहु व ताला का इरशाद है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने दरअसल अल्लाह की इताअत की। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होना ये एक इबादत होने के साथ साथ मुसलमान के लिए मुकम्मल तर्ज हयात भी है। सामिन, जब हमारा छोटा नन्ना मेहमान दुनिया में आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को हिदायत दी कि बच्चे के दाएं कान में अजान दी जाए और ये हिदायत हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मिलती है। तिर्मिज़ी की रिवायत है, हज़रत अबू राफ़े बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा के कान में अजान दी जब वो फातिमा के यहाँ पैदा हुए थे। और बज़ाहिर ये अमल इस बात की अलामत है कि बच्चे की पहली समात तौहीद और अल्लाह की किबरियाई के कलिमात से आबाद हो। ज़रा सोचिए सामीन, एक नन्ना बच्चा जो अभी दुनिया की किसी बात से वाकिफ नहीं, उसके कान में सबसे पहले ये सदा गूंजती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी अजमत किबरियाई और तौहीद का पैगाम। ये मंजर बताता है कि इस्लाम इंसान की तरबियत का आगाज जिंदगी की पहली सांस से ही करता है। इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने फरमाया, अजान का राज ये है कि इंसान के कान में सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई, वहदानियत और कलिमा शहादत की गूंज हो। जैसे जिंदगी के आगाज पर उसे तौहीद सिखाई जाती है, उसी तरह मौत के वक्त उसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की जाती है। यूं समझिए कि जिंदगी के दरवाजे से दाखिला भी तौहीद के साथ है और उसका इख्तिताम भी तौहीद के साथ। सामीन, ये थी आज की रूह परवर सुन्नत। आइए हम भी अपने घरों में इस सुन्नत को जिंदा करें ताकि आने वाली नस्लों के कान भी सबसे पहले अल्लाहु अकबर की सदा से गूंज उठे।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर। बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ। सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर, मनी नेविगेटर एवरी मंडे 10 AM ऑनवर्ड्स, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। Your guide for a smarter, strong financial decision. सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी शुरू कीजिए। सक्सेस की शुरुआत होती है एक छोटी सी सोच के साथ, एक आइडिया से।
4: ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, क्या माइंडसेट्स होते हैं, क्या अप्रोच होती है,
3: ये जानना बहुत जरूरी है। इस शो में बात होगी लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग पर, जो आपको एम्पावर करेगी। हर गेस्ट होगा एक पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन और हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नई इंस्पिरेशन। जरूर सुने शो पावर टॉक्स हर सैटरडे दोपहर 1 बजे से आरजे नाजिया के साथ, ओनली ऑन FM 107। पावर टॉक, हर लफ्ज में ताकत, हर बात में मोटिवेशन। दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत को तरजीह दें। आजकल के वक्त में घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम किसी भी नाकाबिले बर्दाश्त हादसे से बच सकें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बच्चों से दूर रखें, ये उन्हें चोट लगने से बचाता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को सिक्योरली स्टोर करें। छुरियां और काटने वाले औजार बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे कि छोटे टॉयज पार्ट्स भी जो उनके मुंह में जा सकते हों। गैस और कुकिंग अप्लायंसेस के इस्तेमाल से भी बच्चों को दूर रखें, ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल और वाटर सोर्सेस के करीब अकेले ना जाने दें, इससे उन्हें पानी में डूबने का खतरा होता है। मत भूलिए कि हर दिन हमें अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ हो। ऐसे छोटे लेकिन जरूरी कदम हमारे बच्चों को महफूज रखने में मददगार साबित होते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक अमल है। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
5: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
6: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
7: वैल्यूज आर वैल्यूज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आवर वैल्यूज। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल योर फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये भी बड़ा जरूरी है। देखिए, फाइनेंस कैसे मैनेज करें, सेविंग्स क्यों जरूरी है और स्पेंडिंग और सेविंग्स का गुड बैलेंस, ये हम सबके लिए, हम सबको जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, आज के दौर में फाइनेंशियल स्ट्रेस हर दूसरे इंसान का एक बड़ा मसला बन चुका है। महंगाई है, इन्फ्लेशन है, बिल्स है, रेंट है, बच्चों की पढ़ाई है और कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर भी हम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है ही, तो उसकी प्लानिंग भी है। ये सब चीजें दिमाग पर अननेसेसरी का बोझ डालती हैं। जब पैसों का प्रेशर बढ़ता है तो सिर्फ पॉकेट ही नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी अफेक्ट होती है। इसीलिए बड़ा जरूरी होता है कि हम अपने फाइनेंसेस को समझ कर मैनेज करें और स्ट्रेस को कंट्रोल करें। देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस क्या है और ये क्यों होता है? फाइनेंशियल स्ट्रेस तब होता है जब इनकम और एक्सपेंसेस में बैलेंस ना रहे, या फिर जब आदमी बिना प्लानिंग के पैसा खर्च करता है और बाद में रिग्रेट होता है। कब होता है? कभी इमरजेंसी आ गई या इनकम कम हो गई तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस का असर सिर्फ पैसों तक ही नहीं है, इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप इरिटेटेड होते हैं, आपका गुस्सा बढ़ता है, रिश्तों में जो है वो दरार आती है, अननेसेसरी का टेंशन, आपकी भूख मिट जाती है, आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ पूरी तरह से तबाह होती है।

ऑप्ट करने की। देखिए, सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि फाइनेंस कैसे मैनेज करें। फाइनेंस मैनेज करने का पहला कदम है कि अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस का आप क्लियर रिकॉर्ड रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप हर महीने कितने पैसे कमा रहे हैं और कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। जब एक्सपेंसेस लिखे होते हैं ना, आई रिपीट, लिखे होते हैं, तो पता चलता है कि कौन सी चीज जरूरी रही और कौन सी हमने बस यूं ही दिखावे के लिए की। दूसरा बड़ा कदम, बजट बनाना। इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, बजट बनाना चाहिए। देखिए, बजट का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी को एंजॉय ना करें, मैं बजट बना लूं, मैं स्टिक करूं, फिर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी ना करूं, ब्ला ब्ला। बजट बनाना ये है कि हर चीज की एक लिमिट सेट हो जाए। रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, बिल, एजुकेशन, सब के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट हो। जब बजट फ्लो होता है तो पैसों पर कंट्रोल आता है और इससे आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वही तीसरा बड़ा कदम जो है वो है इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना। हम अक्सर इमोशंस में बहकर कुछ चीजें खरीद लेते हैं। इमोशनली अगर हम थोड़ा स्ट्रेस में हैं तो कुछ अननेसेसरी कुछ जाके हमने खरीद लिया। सेल देखी, बिल्कुल बिल्कुल घबरा गए एकदम से। डिस्काउंट्स हैं तो बस एकदम बेचैन हो गए खरीदने के लिए। कई बार हम दूसरे से खुद को कंपेयर करने के चक्कर में भी फालतू के खर्चे करते हैं। तो भैया, बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि कोई चीज लेने से पहले जरा खुद से सवाल कर लो, क्या ये वाकई जरूरी है? आई एम श्योर आप ऐसे 99% लोग ऐसे होंगे जो इसका जवाब देंगे, नहीं ये जरूरी तो नहीं है। हाँ, 1% होगा कोई जो कह दे कि भाई जरूरी है, वो बड़ा मुश्किल ही होता है। देखिए, सेविंग भी लाइफ में बहुत जरूरी है। सेविंग फ्यूचर की सेफ्टी नेट है। जिंदगी बड़ी अनप्रडिक्टेबल है और अब तो बहुत ही ज्यादा अनप्रडिक्टेबल हो ही चुकी है। कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, जॉब इश्यूज आ सकते हैं, कोई और बड़ी नीड फैमिली की वो सामने आ सकती है। अगर सेविंग्स ना हो तो ऐसे वक्त में स्ट्रेस और डबल हो जाता है और डिसीशंस शायद हम ले ही नहीं पाते।

कुछ पैसे आपके पास बैकअप में हैं, तो आप सुकून महसूस करते हैं और शायद कॉन्फिडेंट भी। आप अपनी जिंदगी के गोल्स, घर है, एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, इसकी ठीक तरह से वक्त निकाल के कभी भी प्लानिंग कर लीजिए। और एक अच्छी बात ये कि पहले सेव करें फिर खर्चे करें। जैसे सैलरी आई चाहे थोड़ी सी ही सही, सेविंग के लिए अलग कर दें। ये छोटा सा अमाउंट जो देखने में बड़ा छोटा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप कंसिस्टेंट रहे, मतलब हर बार ऐसा हर महीने करते रहे, तो आखिर में ये एक अमाउंट बड़े अमाउंट में तब्दील हो जाता है और शायद ये बड़ा अमाउंट आपका सुकून भी बन जाता है। वैसे तो पैसों से सुकून नहीं मिलेगा कभी भी, लेकिन हाँ कुछ छोटा मोटा कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है कि चलो कुछ ना कुछ मेरे पास है। वहीं पर स्पेंडिंग और सेविंग में गुड बैलेंस क्रिएट करना। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेव करें और कुछ भी स्पेंड ना करें, या सिर्फ स्पेंड ही कर रहे हैं और फ्यूचर को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए दोनों का हेल्दी मिक्स बड़ा जरूरी है। इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जा सकते हैं, जैसे जरूरी खर्च एक तरफ लिखना, सेविंग्स हर महीने लिख देना, वहीं पे कुछ एंजॉयमेंट के लिए अपने लिए आपने कुछ खर्चे करने हैं तो वो भी आप एक तरफ लिख लें। अगर आप अपनी इनकम का एक हिस्सा एंजॉयमेंट के लिए भी रखना चाहते हैं तो फ्रस्ट्रेशन कम होगा, क्योंकि आपने बजटिंग की है ना और फिर आप उसे फॉलो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग होगी और जो गिल्ट आती है ना हम लोग के अंदर वो नहीं होगी और ये आपकी स्पेंडिंग भी कंट्रोल्ड होगी, तो इससे आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएगा। वहीं पर फाइनेंशियल स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए रेगुलर फाइनेंशियल चेक जरूर करें। लोन्स और क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है बड़ा सोच समझ के किया करें। लाइफस्टाइल कंपैरिजन से नहीं क्वालिटी से, कॉन्फिडेंस से बनता है। किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना करो, वहीं अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उन्हें रियलिस्टिक रखिए जी। फिर जरूरत अगर आपको फिर भी पड़ रही है, मतलब इतना कुछ मेरे बोलने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ और मुझे एडवाइस लेना है कहीं से, तो हाँ यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत ही अच्छे कमाल की एडवाइस दे सकते हैं कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कब आपको जो है सेव करना है, या बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो उनकी भी एडवाइस जरूर ले लीजिए। देखिए फाइनेंशियल स्ट्रेस जिंदगी

0: हिस्सा है, लेकिन इस पर काबू पाया जा सकता है। जब हम पैसों को समझदारी से हैंडल करते हैं, सेविंग्स को प्रायोरिटी देते हैं और स्पेंडिंग्स में गुड बैलेंस रखते हैं, तो स्ट्रेस नेचुरली कम हो जाता है। पैसा हमारी जिंदगी का मास्टर नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट टूल जरूर है। जब कंट्रोल पैसों के हाथ में होता है तो टेंशन ज्यादा होती है, और जब कंट्रोल हमारे हाथों में होता है तो जिंदगी ज्यादा पुरसकून और स्टेबल हो जाती है। तो बस अपनी जिंदगी को ज्यादा पुरसकून स्टेबल बनाइए। फिलहाल मुझे तो इजाजत दीजिए, और इंशाल्लाह आपकी मेरी मुलाकात होगी एक और अमेजिंग से टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से इंसान को झंझोड़ने का अंदाज है ताकि वो गफलत से बाहर आए। मौत को पहले बयान करने से ये भी वाज़े होता है कि दुनिया मुस्तकिल नहीं है। अगर जिंदगी का जिक्र पहले आता तो इंसान शायद इसमें ज्यादा खो जाता, लेकिन अगर मौत पहले आती है तो गोया ये एक वार्निंग दी जा रही है कि जो कुछ तुम देख रहे हो ये हमेशा नहीं रहेगा, तुम्हें एक दिन इस सब को छोड़ के जाना है। ये सोच इंसान को दुनिया के फरेब से बचाती है। इंसान जब जिंदगी में कामयाब होता है तो वो अक्सर गुरूर में उबतला हो जाता है, अपनी ताकत पे फखर, अपनी दौलत पे तकब्बुर, अपनी हैसियत पर घमंड। लेकिन जब उसे याद दिलाया जाए कि तुमने मरना है तो उसका गुरूर टूट जाता है। इसलिए मौत का जिक्र पहले करके इंसान के दिल को नरम किया जाता है ताकि वो आजी इख्तियार करे। ये हमें ये भी सिखाता है असल जो हकीकत है वो आखिरत है, दुनिया नहीं। मौत दरअसल आखिरत का दरवाजा है। जब इसे पहले जिक्र किया जाता है तो गोया इंसान को बताया जा रहा है कि असल मंजिल आगे है, दुनिया सिर्फ एक रास्ता है। ये सोच इंसान की तरजीहात को दुरुस्त करती है। मौत का तसव्वुर इंसान को संजीदा बनाता है। अगर इंसान सिर्फ जिंदगी के बारे में सोचे तो वो खेल कूद में लगा रहता है, वक्त जाया करता है, जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करता है। लेकिन जब मौत को सामने रखा जाए तो वो अपने वक्त की कदर करता है, अपने अमाल पर गौर करता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि इस आयत का अगला हिस्सा इम्तिहान के बारे में है, इसलिए मौत का जिक्र पहले आना उसकी तैयारी है। गोया कहा जा रहा है तुम्हें मरना है और इसके बाद तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने जिंदगी में क्या किया। ये तरतीब इंसान को याद दिलाती है कि इम्तिहान खत्म होगा और उसके बाद नतीजा आएगा। इंसान की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वो गफलत में रहता है और दुनिया के कामों में इतना मसरूफ हो जाता है कि अपने असल मकसद को भूल जाता है। मौत का जिक्र पहले करके उस गफलत को तोड़ा जाता है। एक तरह की वेकअप कॉल है। जब इंसान को मालूम हो कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है तो उसे वक्त की कदर का एहसास होता है। ये तरतीब हमें ये सिखाती है कि तुम्हारे पास वक्त महदूद है, उसे जाया ना करो। यही एहसास कामयाब लोगों को दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है। मौत का जिक्र एक खौफ पैदा करता है, जबकि जिंदगी का जिक्र एक मौका और उम्मीद देता है। यानी मौत अंजाम की याद और जिंदगी अमल का मौका, ये दोनों मिलकर एक तवाजुन पैदा करते हैं जिससे इंसान ना हद से ज्यादा बेखौफ होता है और ना ही मायूस। ये तरतीब हमें ये सिखाती है कि अल्लाह का हर लफ्ज हिकमत से भरा हुआ है। कुरान में कोई चीज इत्तफाक से नहीं आई। हर लफ्ज, हर तरतीब, हर अंदाज एक खास मकसद के तहत है। मौत को पहले और जिंदगी को बाद में जिक्र करना भी इसी हिकमत का हिस्सा है जो इंसान को सोचने, समझने और अपनी जिंदगी को दुरुस्त करने की दावत देता है। मौत को जिंदगी से पहले जिक्र करना एक गहरा पैगाम देता है। इंसान को उसके अंजाम की याद दिलाई जाए, दुनिया की हकीकत को वाजे करना, गुरूर को तोड़ना और उसे जिम्मेदार और संजीदा बनाना। फिर नुक्ता, ताकि वो तुम्हें आजमाए। ये जुमला पूरी आयत का दिल है। यह हमें ये बताता है कि जिंदगी का असल मकसद क्या है। अगर इंसान

0: FM 107 Time Check.
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड भाईसाब 107 पे आ चुका हूँ। 6:01 होने बाय द क्लॉक एंड बाहर जैसा मौसम है मैं कुछ नहीं कह सकता। कभी हम कहते हैं बहुत गर्मी होगी तो हवा चलने लग जाती है, कल रात को तो लग ही नहीं रहा था कि मई जून का महीना है, कुछ अलग ही चल रहा है। तो आप डिसाइड कर लीजिए इस मौसम को कहना क्या है, बिकॉज इट इज़ नॉट स्प्रिंग नॉट ऑटम डोंट सीम लाइक समर, विंटर तो है ही नहीं, तो कुछ अलग ही नाम है। डिसाइड करके मेरे को मैसेज कर देना, बिकॉज इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं मुझे नहीं पता, मगर आप मैसेज कर दीजिए 666-22-107 पर। बाकी बातें आराम से करते रहेंगे और आज बहुत बढ़िया कहानी है। कल वाली जो कहानी थी वो भी आज ही मिलेगी आपको, तो जो लोग मुझे मैसेज करने वाले हैं मैं ऑलरेडी बता दूं, क्योंकि आ चुके हैं मैसेजेस ऑलरेडी ये कहते हुए कल वाली नहीं भेजी आपने, भेजते ही नहीं आप, तो मैं पहले बता दूं मैं कल और आज वाली मैंने कल ही बोल दिया था वादे के साथ कि आज भेजूंगा, तो मिल जाएगी आपको, बेफिक्र हो जाए। सुबह की शुरुआत दुआ के साथ, सुबह के अधिकार 10 मिनट 33 सेकंड, उसके बाद मुलाकात करते हैं, जाना नहीं, स्टे ट्यून्ड और मैसेजेस 666-22-107 पर।
2: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अज़कार FM 107 पर।

नहीं सर पे बर्फ की सिल्ली फोड़ दो प्लीज, मैं अब रह नहीं पाऊंगा बहुत ज्यादा हो गया। एक मैसेज है, बाकी हर जगह वाईफाई, भाई मुझे 15 दिन का रिचार्ज करता हूँ सिर्फ आपको मैसेज करने के लिए लाइव। ना भाई इतने स्वीटी पटूटी लोग हैं ना, इतने क्यूट किस्म के लोग हैं, मैं बताऊँ स्पेशली इस शो में। मैं भाई सॉरी बाकी आर्जेस को बोल देना चाहता हूँ, हमारे शो में सबसे क्यूट लोग हैं। देख रहे हैं मैसेजेस आप, अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे लोग हैं ना। 15 दिन का रिचार्ज करता हूँ सिर्फ आपके शो में मैसेज करने के लिए, वरना तो मुझे नहीं पड़ी भाई इंटरनेट की। कह रहे हैं मैं घर पर वाईफाई है, मिनट तो लेते होंगे आप। सुभाष भाई कह रहे हैं भाई मेरे लिए दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कॉम्बो पैक प्रीफर करता हूँ। लाइक कॉम्बो पैक में भी कंपेयर करते होंगे ना, लाइक कंपेरेटिवली क्या ज़्यादा लेते हैं सुभाष भाई, लाइक यू गो फॉर मिनट्स या आप रिचार्ज की तरफ ज़्यादा जाते हैं, दोनों में से क्या है ये ज़रूर बताइएगा। एंड स्पेशली वो लोग जिन्हें बाहर निकलने के बाद देर रात गली में आके बात करनी होती है, वो हेडफोन पूरा गले में लपेट के पास लाके लो कैसे हो तुमने कॉल नहीं, लोग करीब आके जो बात करते हैं उनको चाहिए इंटरनेट थोड़ा सा ज्यादा। साधन बलोच भाई हाउ आर यू, ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या इंटरनेशनल मिनट चाहिए आपको? अच्छा इंटरनेशनल मिनट चाहिए, ख्वाहिश देखो सबकी ज्यादा चाहिए तो लोकल मिनट्स नहीं लगते साधन भाई आपको ज्यादा? एक वैसे नहीं चाहिए मिनट, फैसल भाई कह रहे मुझे मिनट चाहिए नहीं, किसी से बात ही नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा जो है उनके घर पे वाईफाई उनका काम चल जाता है। फरद भाई ने मैसेज किया है, कह रहे हैं भाई वो ज़माना गया, कौन सा वाला? अभी भी है आई विल टेल यू भाई। फरद भाई जो गली में निकल के बात करने वाला ज़माना ना अभी भी है। हमारे जो पूरा एरिया है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके रूममेट 2-3 साथ में रहते हैं, तो वो लोग बाहर आते हैं अपना प्राइवेट स्पेस बनाने के लिए। फिर कुछ हैं जिनके घर में लोग हैं वो भी बाहर आते हैं, दोनों के साथ सीन है और दोनों को इंटरनेट की बहुत ज़रूरत है। साधन बलोच भाई भी कह रहे हैं मुझे लोकल मिनट नहीं चाहिए, लोकल कौन बात करेगी किसी से। एक मैसेज सुभाष भाई कह रहे हैं भाई मुझे पोस्टपेड सिम से डर लगता है इसलिए मैं प्रीपेड यूज़ करता हूँ। ये सुभाष भाई हम देसियों का यूनिवर्सल डर है, ये हमारा यूनिवर्सल डर है भाई के ना जी पोस्टपेड, अरे मेरी तोबा पता नहीं कहाँ चला गया, बिल कौन भरेगा। सही है भाई मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये पोस्टपेड सॉरी प्रीपेड में भी आप क्या ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इंटरनेट या फिर वो कॉलिंग डेटा? एक मैसेज है सुप्रभात, इंटरनेट ज़्यादा चाहिए, तो इंटरनेट ज़्यादा चाहिए यहाँ पे खत्म लोगों को। ये मिराज अंसारी साहब ने मैसेज किया। एक और मैसेज है अस्सलाम वालेकुम, और ये अस्सलाम वालेकुम लिखते के साथ ही मैसेज किया है अमल भाई ने। अमाल भाई कह रहे हैं कि कबीर भाई मुझे तो मिनट ज़्यादा लगते हैं, इंटरनेट की इतनी लोड शेडिंग नहीं है क्योंकि घर पे वाईफाई होता है, उसके बाहर जाके मेरा फ़ोन यूज़ होता नहीं है और इसलिए मुझे ज़रूरी नहीं है। आपको इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं है? अरे घने गिरे गिरे आए, क्या क्या आदमी हो यार, बहुत बढ़िया। ये आपसे इंस्पिरेशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि आप मुझे ऑलरेडी इंस्पायर कर रहे हैं, सो आई रियली वॉन्टेड टू नो कि ऐसा क्या करना पड़ेगा कि आप जो है इंस्पायर कर सके। एक मैसेज है ऑफर होता है 15 रियाल का, 2 GB मिलता है 30 दिन के लिए। अच्छा नॉट बैड, तो 2 GB में आपका 15 दिन चल जाता है बाहर? भाई क्या बाहर नहीं आते क्या, मतलब फैसल भाई हाउ डज इट वर्क? हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एंड लोकल मिनट ज्यादा लेते हैं ओके। सुभाष भाई कह रहे हैं, फरद भाई कह रहे हैं आप सब अनलिमिटेड यूज़ करते हैं, कितना भी लिमिट रहे ख़त्म हो जाता है भाई, लेकिन उनको नेट ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो उसका यूज़ ज़्यादा है। वो तो मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मेरे गली में मैंने देखे हैं लोग फिर से आए। समी भाई को फिर से पिंक पिकअप ट्रक मिल गया है। देखो ये पिंक रंग जो है गाड़ी में समझ में आ रहा था, ये पिंक कलर, और समी भाई कहाँ से ढूंढ रहे हैं आप, कोई चक्कर ही आपके आगे कैसे है ये तो सड़क भी दूसरी लग रही, सड़क दूसरी है ना मेरे ख्याल में, हाँ यार सड़क भी दूसरी है। ये आपको हर बार कैसे मिल जा रहा है पिंक ट्रक, ये आपका इल्यूजन तो नहीं है जो आप मुझसे शेयर कर रहे हैं? ये क्या चक्कर है भाई? ओके एनीवे, हाँ तो मैं यही पूछ रहा था कि आपका जो पैकेज होगा है ना टेलीकॉम का पैकेज आपका, उसमें आपको इंटरनेट ज्यादा चाहिए या आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा लोकल कॉल ज्यादा चाहिए, इंटरनेट की ज्यादा लोड है नहीं? एंड ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि

0: मैंने कल एक पूरा डेटा देखा, मैं बड़ा शॉक हुआ कि दुबई और कतर में यूसेज का बहुत ज़्यादा फर्क है, दोनों जगह बहुत ज़्यादा फर्क है। पर आप बताइए 666-22107 पर आपका क्या कहना है। एक भाई ने मुझे मैसेज किया है, भाई हमारे विला में क्या कह रहे हैं, हमारे विला में हमें इंटरनेट शेयर करना होता है, दो लोग हैं जो वाईफाई का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं और स्पीड कम हो जाती है, इसलिए इंटरनेट यूज़ करने के लिए मुझे देर रात में जगना पड़ता है। जगना पड़ता है, ऐसा क्या कर रहे हो तुम देर रात में कि तुमको जगना पड़ता है? मुझे पहले ये बताओ। और कितनी स्पीड गिरा देते हैं वो दोनों, क्या इंटरनेट पे क्या 3-3 घंटे की पिक्चरें डाउनलोड कर रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है जी क्या चक्कर है? आप बताइए, फिर मैं आपको एक बहुत फनी इंसिडेंट बताऊंगा, बिल्कुल सत्य घटना से आधारित है, मतलब बिल्कुल रियल लाइफ है। सुनेंगे आप? रेडी है? मेरा किस्सा है, अगर आप तैयार हैं तो मैं सुनाऊंगा, वरना मैं खामा खा आपकी अपनी बात बता के आपको बोर नहीं करना चाहता। एक मैसेज है, नहीं इस रोड पर दिखता रहता है, चाहे तो दोनों इंटरनेट ज़्यादा चाहिए होता, समीर भाई को इंटरनेट ज़्यादा चाहिए होता, कह रहे हैं इस रोड पे ये पिंक पिकअप ट्रक दिखता रहता है। ये तो वो वाली बात हो गई कि वो गाड़ी के साथ साथ भागने वाली जो साड़ी में आंटी हैं वो कहाँ दिखेंगी कह रहे हैं यहाँ इस रोड पर दिखती हैं आमूमन, मुड़ के मत देखना समीर भाई थैंक यू इस इन्फॉर्मेशन के लिए, और मेरी आंखों को ये जो शोएं दी है आपने पिंक ट्रक दिखा के उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास भी क्योंकि एक बहुत कमाल का किस्सा इंटरनेट को लेके, और आप यकीन ही नहीं करेंगे, आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे जब मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा फरद भाई ने जो है, फरद भाई है ना, नहीं हिशाम भाई ने पूरा भेजा है मुझे, अनलिमिटेड 512 kbps, ओके, लोकल डेटा 40 GB लेफ्ट जो कि जून को एक्सपायर हो रहा है इनका, और लोकल मिनट्स 10,000 लेफ्ट है, इंडियन मिनट्स 266 लेफ्ट और लोकल SMS 300 लेफ्ट। ये हिशाम भाई कौन सा पैकेज है ये क्या है भाई के पास? अभी भी 40 GB इंटरनेट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बाद भी अनलिमिटेड ही है इंटरनेट, और फिर जो है 6 महीने का 10 GB कोई बोनस डेटा है, फिर लोकल मिनट्स पड़े 10,000 खतरनाक जा रहे हो आप, क्या अंदर के आदमी तो नहीं हो? मुझे ऐसा लग रहा अंदर के आदमी हो। एक वैसे जो रील देखने वाले लोग हैं उन्हें अनलिमिटेड चाहिए, हाँ समझ पा रहा हूँ मैं कि तेरे लिए मैंने मुक दी जी 2 GB। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग, पराठे दा फोटो भेजा सी। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैं अबू बकर हूँ, जजाकल्ला भाई, वालेकुम अस्सलाम, इतना प्यारा नाम आपका। हाँ तो मैं किस्सा सुनाई देता हूँ आपको, बोर करूँ, सुनो वॉल्यूम बढ़ा के सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको। तो एक बार की बात है भाई, मैं नया नया आया था, यहाँ नहीं मतलब कतर में नहीं, एज कंपनी में नया नया आया था इस वाली में। तो हुआ ये कि उन दिनों कोविड का टाइम हुआ करता था, और हमें जैसे ही मैंने लैंड किया, आपको याद होगा वो ज़माना जब 14 दिन का क्वारंटीन हुआ करता था, तो भेज दिया भाई साहब एकदम कोने में वो लास्ट में बॉर्डर के पास, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने तो रिचार्ज किया नहीं, मेरे पास फ़ोन भाई, हमने कहा चलो वाईफाई तो मिल ही जाएगा। अब इत्तफाक देखिए कि आपके भाई के विला में वाईफाई था नहीं, हैं साथ में बहुत सारे लोग थे उस विला में। बहरहाल अब उन्होंने बोला, कबीर भाई आप जो हैं समझदार लग रहे हैं, पता नहीं क्यों उन्हें लगा समझदार लग रहे हैं, आप एक काम कीजिए साइड वाली बिल्डिंग का वाईफाई पकड़ रहा है, उनसे जाके वाईफाई ले आइए। मैं कहा ठीक है, फिर मैंने विला से बाहर निकला, पहली बार तो निकलना बड़ा मुश्किल था, फिर भी मैं निकल लिया। तो मैं निकल के साइड वाले विला में गया, साइड वाले विला में जो थे वो हमारे ये पठान भाई थे, तो मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब आसान हो जाएगा। तो मैंने पठान भाई से कहा, मैंने भाई आपका वाईफाई मिलेगा, हमारे में वाईफाई लगा हुआ नहीं है। तो बोले अरे ले जाओ। तो भाई पासवर्ड सब दे दिया, पासवर्ड लेके आ गए। आप पासवर्ड लेके तो आ गए, आप सोचिए वाईफाई कहाँ पकड़ रहा है, वाईफाई हमारे पूरे विला में नहीं आ रहा है, वाईफाई आ रहा है दरवाजे के पास, सिर्फ और सिर्फ दरवाजे के पास, और दरवाजे के पास था एक बड़ा सा पत्थर भाई साहब 12 के 12 लोग उस पत्थर पे रात भर टीका लगा लगा के डाउनलोड कर रहे थे, रात भर टीका लगा लगा के इतना दर्द मुझे इंटरनेट ने कभी नहीं दिया है जितना उस टाइम में दिया है। एक मैसेज है सुरजीत भाई का, सर जी मुझे तो इंटरनेट ज़्यादा चाहिए। अभी तक 2 बंदे आए हार्डली जिन्होंने बोला कि मुझे मिनट ज़्यादा चाहिए, और अपना डेटा पूरा जो है भेजा है ये समी भाई ने, समी भाई के पास भी 10,000 मिनट्स बाकी हैं और पाकिस्तान कॉल करने के लिए 136 मिनट बाकी हैं, 40 GB का डेटा इनके पास भी बाकी है, सेम प्लान ले रखा है आप लोगों ने, और इनके पास जो है 5 GB का एक और बोनस डेटा बाकी है और लोकल SMS बाकी हैं। सही जा रहे हो ब्रो, आपको तो कमी ही नहीं है, कोई कमी नहीं है आपको, पर मेरे ख्याल में ये महीने आपका वो है पोस्टपेड प्लान लग गया भाई, पोस्टपेड। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहने है भाई मुझे इंटरनेट ज़्यादा नहीं लगता, मुझे कॉल ज़्यादा लगती है, इनफैक्ट इंटरनेट का रिचार्ज कराए मुझे ज़माने हो चुके हैं, मुझे लोकल कॉल के लिए तकरीबन 10,000 मिनट चाहिए होते हैं। एक तो 10,000 मिनट चलो मैंने मान लिए, ये 10,000 मिनट क्या, आप किससे बात कर रहे हैं 10,000 मिनट, कौन है यहाँ पे 10,000 मिनट। गुड मॉर्निंग कबीर भाई, इट वॉज सनायाज मैसेज एंड फॉर पैकेज। अरे सनाया का मैसेज था बहन, आपने मुझे एकदम से सेट कर दिया, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, प्लीज़ मेरा मेरी तरफ से थोड़ा है सनाया को, जो स्कूल से आ जाए तो थोड़ा से फारिश लगा देना, है ना, इतने बुरे नहीं है कबीर अंकल, प्लीज़ गिव माई लव एंड रिगार्ड्स टू हर। आप क्या कह रही हैं वो भी सुन लेते हैं। कह रही हैं एंड फॉर द पैकेज आई वुड प्रीफर डेटा पैक, वो तो बहन मुझे पता है कि आपको डेटा पैक ही लगेगा, खवातीन नहीं बोलेंगी लोकल मिनट्स क्योंकि ऑब्वियसली रिले भी देखनी है, डालना भी है और बहुत पैकेज का यूसेज होता है, पोस्ट पेड है। अच्छा एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, कह रहे हैं 284 मिनट है इंटरनेशनल, 10,000 मिनट बाकी हैं इनके लोकल और अनलिमिटेड डेटा भाई का। ये रईस लोगों से पाला बड़ा है मेरा तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं ये पूछा था कि कतर में रहते हुए, क्योंकि आपके पैकेजेस चेंज होते रहते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अभी क्या है कुछ लोगों को इंटरनेट ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ लोगों को लोकल कॉल ज़्यादा चाहिए होती हैं और कुछ लोगों को दोनों चाहिए होते हैं, और ये ऐसा खर्चा है जिसे कंट्रोल कुछ लोग कर नहीं सकते हैं और कुछ लोग बड़ा ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे अभी मुझे फैसल भाई ने कहा, फैसल भाई कह रहा है भाई 15 दिन का रिचार्ज कराता हूँ उसमें, मुझे ज़रूरत ही नहीं रिचार्ज कराने की, पर कुछ लोगों को बाकायदा पोस्टपेड लेना पड़ रहा है, तो ऐसा भी है। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक साहब ने मुझे मैसेज किया है, क्या लिखा है उन्होंने, क्या कह रहे हैं भाई, अब मैं पढ़ नहीं पाया कि आप क्या कह गए, पर एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, आई रिक्वायर्ड बोथ। साजन भाई क्या कह रहे हैं, रुको साजन भाई की भी सुन ली जाए। साजन भाई साजन भाई हंस रहे हैं। साजन भाई कौन सी बात पे, मेरी बात पे से वो पुरानी वाली बात पे। तो भाई हमने तो पत्थर पे टेक लगा के इंटरनेट डाउनलोड किया। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, ये कह रहे हैं कि जो फैसल भाई बता रहे हैं वैसे मैं भी सिर्फ 15 रियाल का रिचार्ज होता है मेरा पूरे महीने भर का, और मुझे उससे ज़्यादा रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर पे वाईफाई है, कंपनी में वाईफाई है, तो मैं उसी वाईफाई से कॉलिंग कर लेता हूँ, बाकी मौज है। ये जो 250 रियाल हर महीने दे रहे हैं भाई, इनको बताइए ये फिजूल खर्ची है। अब मैं किसी को क्या बताऊँ कैसे जीना है भाई, मर्जी है इनकी, आप 15 रियाल में पूरा महीना काट दे रहे हैं, ये तो कमाल की बात है, पर ये कुछ ज़्यादा सेविंग नहीं है, ये कुछ ज़्यादा सेविंग नहीं है, 15 रियाल में काम हो जा रहा है भाई का 15 रियाल भी क्यों लग रहे हैं आपके, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मुझे प्लीज़ इसके पीछे साइंस बताइए, ये 15 रियाल भी क्यों लग रहे हैं आपके हैं, क्योंकि 15 रियाल में आपने बताया 2 GB मिल रहे हैं आपको, 2 GB तो मतलब अभी मैं अगले 5 मिनट में उड़ा दूँ, तो बड़ा सस्पिशियस मामला है, मुझे आप पे शक है, कुछ छुपा रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं ये मान नहीं सकता कि कतर में कोई रह रहा है और 15 रियाल के रिचार्ज से पूरा महीना चला रहा है, हजम नहीं हो भाई, प्लीज़ असली आईडी से आइए, आप असली आईडी से आइए, गड़बड़ है गड़बड़ है, मुझे डाउट हो रहा है आप पे। और अरे मेरा भाई निश फायर द ग्रेट भाई ने मैसेज कर दिया है, निसर्ग भाई ने मैसेज किया है, कबीरा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरी जान, कैसे हैं आप। भाई को मैं दिल लगा के भेज दूँ, पहले भाई ने दिल भेजा है, पहले दिल लगाया जाएगा भाई को, ये रहा भाई 2 दिल आपके 1 दिल के बदले देगा सोच समेत। तो मैं निसर्ग भाई से पूछ भी लेते हैं भाई, क्या ज़्यादा लगता है आपको, इंटरनेट या लोकल कॉलिंग ज़्यादा आपकी लगती है ये बताइएगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे लोग 15 रियाल में पूरा महीना काट दे रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं पता नहीं है, तो आपको क्या ज़्यादा लगता है इंटरनेट ब्रो। अच्छा इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल आपको तो है ही ये सोशल मीडिया वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, असली वाले इन्फ्लुएंसर्स को इंटरनेट ज़्यादा लगे तो समझ में आता है, ये सही कंजम्पशन है, ये जो एक और जो कॉम है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, वो बहुत डरावनी है. बहुत डर लगता है मुझे, दिल हौल जाता है मेरा. एनीवे हाँ भाई, जो जो दूसरे वाले हैं उनको मैं क्या बताऊँ, वो तो उनके लिए तो मैं स्पेशल अलग से शो करना चाहता हूँ, मेरा सपना है. क्योंकि वो लोगों को जिस तरीके से बोलते हैं जाके, क्या आप, और मतलब जनरल पब्लिक भी जानती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम पे बोलते हैं पब्लिक से, क्या आप अपना करियर बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, बनाना चाहते हो तुम, आओ मेरे पास, मैं बना के देता हूँ तुम्हें करियर, ऊपर से नीचे तक एकदम माला माल कर दूंगा, माला माल, पैसा ही पैसा होगा. समझ नहीं पाओगे कि 500 का कहाँ रखा है, 200 का कहाँ रखा है. प्लीज़ इन बातों में ना जाए, जिनको कंटेंट बनाना अपने खुद तो कंटेंट बनाए, ठीक है, रिलैक्स करो, चिल करो. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई.
0: अरे नदीम भाई, कैसे नदीम भाई?
1: बस बढ़िया कबीर भाई, कैसे,
0: क्या चल रहा पार्टी?
1: बस ड्राइव कर रहे, बच्चे को छोड़ने जा रहा हूँ.
0: अच्छा, तो नदीम भाई ये बताएं आपका क्या डेटा यूसेज, क्योंकि आपका मेरा वाला मुझे लग रहा पैकेज चल रहा होगा.
1: मेरा तो डेटा यूसेज बहुत ज्यादा है, घर के वाईफाई का तो है ही है, मोबाइल का भी बहुत ज्यादा है.
0: अरे
1: मेरा मोबाइल में 60 GB है.
0: ओरे भाई.
1: और घर में तो अपना अनलिमिटेड वाईफाई है.
0: अच्छा, तो घर में अनलिमिटेड वाईफाई
1: ज्यादा ज्यादा है. अपन मोबाइल में भी बाहर रहते हैं तो गेमिंग करते हैं, वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, तो बहुत चला जाता है डाटा.
0: तो कुछ बचता है महीने के आखिर में, 60 की 60 की बत्ती हो जाती है पूरी की पूरी?
1: कभी ऐसे नोटिस नहीं किया, कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन
0: ये एटीट्यूड चाहिए. नोटिस ही नहीं किया मैंने.
1: नहीं, कभी नोटिस नहीं किया. वो निष्फायर भाई इतने वीडियो डालते हैं कि वो देख देख के साला वो डेटा खत्म होने पे आ जाता है.
0: निष्फायर भाई के वीडियोस होते भी बड़े कमाल के. अभी इन्होंने कुछ पिक्चर विक्चर बनाई है, तो एक शॉर्ट मूवी बनाई है इन्होंने, तो हम वेट कर रहे हैं उस बात का, आए फिर इंशाल्लाह वो भी देखेंगे, क्योंकि कुछ ही जेन्युइन लोग बचे हैं. तो
1: जुनून देखा था अभी रिसेंटली मैंने,
0: देखा ना जुनून? अरे मैंने देख नहीं पाया इनका वो जुनून, इनका वीडियो, मैं वो जुनून वीडियो देखूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑफलाइन हो गया था, बट आज मैं देखूंगा, कल ही इनसे मेरी बात हुई है, तो इंशाल्लाह आज देखा जाएगा.
1: वो ये जो आप इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे थे ना, कुछ कुछ तो एक जगह पे मैंने वीडियो चेक की थी, उसमें आई थी मेरी रील में हाउ टू गेट 1 million व्यूज ऑन YouTube.
0: अच्छा,
1: ऐसी वीडियो YouTube पे डली हुई है जिसके खुद के 110 व्यूज है.
0: नहीं, आपको क्या लगता है यहाँ पे जनता नहीं, यहाँ पे वैसे जनता है. आइए हम आपके सोशल मीडिया को एकदम आसमान पे ले जाएंगे. उनका जमीन पर रेंग नहीं रहा है, आसमान पे ले जा रहे हैं. तो ये तो है. लेकिन नदीम भाई, यूजुअली आपको इंटरनेशनल कॉल्स लगते हैं या फिर आपको चल जाता है लाइक लोकल डेटा? नीचे आपको लोकल डेटा नीचे लगता ना दादा?
1: मेरे को एक्चुअली, मैं मोस्टली मेरा एक्चुअली यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब के मेरे जो फ्रेंड्स है जो स्ट्रीम करते हैं, मेरा सबसे ज्यादा डेटा उसमें जाता है. मैं अगर बाहर भी रह रहा हूँ तो मेरी स्ट्रीम वो लोग की ऑन रहती है. मैं 2-3 चैनल में मॉडरेटर हूँ.
0: अरे रे जे,
1: तो
0: आप भी
1: रहना पड़ता है उसमें.
0: आप भी डाल दीजिए उसमें कि आपको भी मॉडरेटर बनना है, आज ही मेरे पास आइए.
1: मैंने आज तक अपने चैनल पे कोई भी एक्टिविटी नहीं की है. बस होगी तो कुछ लोगों की मेंबरशिप होगी.
0: तो आपने बेसिकली प्लॉट खरीद लिया है, उसमें बिल्डिंग नहीं बनी अभी तक, तो बनाने का मन भी नहीं है.
1: नहीं, कोई मुन्ने बेटा बनाएगा तो थोड़ा समझदार होगा.
0: हाय, हम क्या बात है, क्या बात है, ये यही तो एटीट्यूड है नदीम भाई, तभी तो आपसे पढ़ते हैं हमारे. ठीक है नदीम भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी. ओके भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. तो फरद भाई कह रहे हैं कि रील रील सब कुछ रील खा जाती है. क्यों देखते हो फरद इतनी रील बिठे, क्या दिख रहा है उसमें रील में आपको? एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर जानी, मॉर्निंग. 300 कतरी रियाल का घर पे लगा रखा है, 150 का मोबाइल पैकेज है, मुझे डेटा ज़्यादा लगता है. 15 रियाल में महीना, शेख चिल्ली की कवर में लात मारी है, 15 कतरे रियाल भी क्यों खर्च करते हो? मैं वही तो कह रहा हूँ. ये जो भाई ने मुझे मैसेज किया ना कि 15 रियाल में मैं पूरा महीना निकाल ले रहा हूँ, ये क्या? देखो 15 रियाल में आपको 2 GB मिल रही होगी, कोई अगर ऑफर आ गया तो शायद 3 GB तक घसीट जाता होगा मामला. कैसे कर रहे हो 15 रियाल? और मुझे तो सबसे पहले तो मुझे डाउट ही है आप पे, शक की नज़र से ही और कानों से मैं सुना और देखा है आपका मैसेज मैंने. क्या कमाल की दुनिया है भाई. एक और मैसेज है दिशान भाई का. दिशान भाई क्या कह रहे हैं? दिशान भाई कह रहे हैं भाई, मेरा 65-100 लोग लगा था महीने का लोकल कॉल, और इंटरनेट चाहिए और रूम में वाईफाई, इंटरनेट चाहिए भाई, हर हाल में उसके बिना गुजारा नहीं है. मैं सर समझ रहा हूँ निशान भाई, बहुत इंटरनेट भूख रहे हो। एक मैसेज और है, अमन भाई कह रहे हैं मॉर्निंग ब्रो, टुडे ऑफ टुडे ऑफ टुडे टॉपिक ऑफ टुडे, टॉपिक ऑफ टुडे ये है कि मेरे भाई आपका आपका जो पैकेज है ना, फ़ोन में हम पैकेज लेते हैं ना कुछ, तो उसमें आप मिनट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंटरनेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब इसमें भी दो किस्म की जनता है, जो हमारी देसी जनता भाई पोस्टपेड से डर लगता है भाई, पोस्टपेड से लगता है डर साहब तो प्रीपेड की तरफ चले जाते हैं, प्रीपेड की तरफ चले जाते हैं तो फिर होता है कि रिचार्ज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास फ्लैक्स प्लान है। ओके सो गुलरेज भाई इज फ्लैक्सिंग राइट नाउ, बता रहे हैं कि हर महीने 3,860 फ्लैक्स। अच्छा मैं डर गया, मैंने कहा रियाल लिखा होगा आगे अभी मेरा दिल लेफ्ट से राइट हो जाता है। गुलरेज भाई क्या कर रहे हो, कह रहे हैं कि 3,860 फ्लैक्स क्रेडिट मिलते जो यूज नहीं होते हर मंथ। अभी पूरा मैसेज पढ़ता हूँ, कॉल सर उठा लेता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, आप मेरे पास आइए मैं आपका जिस दिन आप बन जाएंगे उस दिन मैं आप सारा डेटा आप पे फूंक दूंगा, मैं प्रॉमिस।
1: और ये जो लाइन तुमने, ऐसा लग रहा है ये जो टॉपिक तुमने चुना है ना, मुझसे बात करा है, सपने में बात करा है, इमेजिनेशन में बात करा है। कल ही मैंने कुछ ऐसा किया है जो इस टॉपिक से एकदम एकदम रिलेटेबल है।
0: अच्छा क्या क्या किया पहले बताओ, आपने क्या किया?
1: मेरा मेरे पास पोस्टपेड कनेक्शन था एक कंपनी का, दो ही कंपनी उसमें से एक का, और मेरे डाटा खत्म हो जाते, जैसे कल का डेट था ना उससे 7 दिन पहले खत्म हो गया। अब वो उस पे जो रिचार्ज, पोस्टपेड पे रिचार्ज कराने का ऑप्शन होता है ना, बड़ा महंगा होता है,
0: एड
1: ऑन जो होता है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: हाँ तो मेरा टोटल बिल बना था कुछ 3 महीने से मैंने पे ही नहीं किया था, तो काफी पुराना कस्टमर थे इतने पट्टी थी उन्होंने, है ना, 485 रियाल का 485 रियाल का बिल बना था, वो दिया 100 रियाल बंद कराने का दिया मैंने कि नहीं चाहिए तुम्हारा कनेक्शन, दादा पहले हमारा यूज करने से पहले ही खत्म हो जाता, क्या फायदा तुम्हारा पोस्टपेड रख के। तो मुझे पता था कि जैसे ही आप बंद कराते हो ना, ओए हो, इतनी मधुर ध्वनि में उनके तरफ से कॉल आता है, हेलो सर कैसे हैं आप।
0: हाँ फिर तो कहते सर क्या चाहिए आपको, मेरा दिल गुर्दा जिगर चाहिए आपको इंटरनेट के साथ। तो क्या तो, आप क्या फर्क है?
1: तो उन लोगों ने क्या किया ना, मुझे पता था 100 रियाल भी ले लिया कराने के, 100 रियाल मेरा मर्जी है, प्रीपेड में जा रहे, मुझे पता है जो
0: आपकी बात चली गई। हाँ क्या कह रहे हैं लुज भाई?
1: मैंने कहा जिसने पोस्टपेड यूज कर लिया है ना कभी,
0: हाँ,
1: तो प्रीपेड यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि फिर आप रिचार्ज कराओगे खत्म हो जाएगा, फिर कुछ आएगा खत्म हो जाएगा।
0: हाँ, तो ये है,
1: उनकी उनकी मधुर ध्वनि में एकदम इमीडिएटली कॉल आया, इंग्लिश में बात करते सर, अभी भी अभी वांट टू नो अबाउट योर फीडबैक। हमने फीडबैक कैसा फीडबैक तुम्हें भाई,
0: कैसा
1: हमने बहुत बढ़िया लगा तुम्हारे स्टोर में आकर, 100 रियाल भी काट दिए तुमने, बहुत अच्छा। दोनों ने रिप्लाई किया कि देखिए ऐसा है, हम आपको 100 रियाल भी वापस कर देंगे, ऐसा मैं टावर तोड़ जो है 45 GB का आपको ऑफर देते हैं, अनलिमिटेड लोकल कॉल देते हैं और 500 मिनट इंडिया कॉलिंग देते हैं।
0: ये जो आपने,
1: मैं नहा दिया
0: आपको, हाँ। पता है आपने आपने ट्रिक बता दी है, बहुत सारे लोग ये करने वाले हैं कि पहले जाएंगे सब कनेक्शन तोड़वा लेंगे, वापस कॉल आएगी वापस नहीं
1: पे। एकदम एकदम सत्य वचन है, तुम बंद करवाओ ठीक है,
0: हाँ।
1: पैसे काटेंगे और तुमको पैसे वापस करेंगे और ऐसा ऑफर देंगे, और पहले 6 महीने का देते थे, अब 1 साल का दे रहे हैं।
0: हाँ तो वही ना, वो अब अभी अभी करंटली क्या आपको लगता है ज्यादा डेटा फूकते हैं आप या लोकल कॉल ज्यादा?
1: डेटा बहुत फूक देता हूँ भाई, मैं फूक क्या देता हूँ, जला के राख कर
0: समझ में आ रहा है मेरे। नहीं आपने मेरे को सिमुलेज भाई, वो जो ये जो सीन है ना कॉल करने का, वो ऐसा ही है, और वो मना लेते हैं यार, पता नहीं कौन सी कन्विंसिंग पावर है इन लोगों में, ऐसा लालच फेंक के मारते हैं कि आदमी मना नहीं कर सकता जो दूसरी कॉल आती है।
1: 10 रियाल एक्स्ट्रा लगा है मेरा ठीक है,
0: हाँ
1: पुराने वाला बिजनेस, मुझे बहुत सुकून है क्योंकि यार इंटरनेट चाहिए, आप जब बोर हो रहे होते हैं ना तो मतलब इंटरनेट चाहिए आपके जमाने में, एकदम
0: नहीं हो पा रहा है ना विमलेश भाई, कंट्रोल नहीं हो पा रहा।
1: पता नहीं कैसे तुम पोस्टपेड यूज नहीं कर रहे हो, प्रीपेड यूजर हो, मतलब भाई तुम बहुत अच्छे आदमी हो, सच में ऐसे कंटिन्यू रखो।
0: मेरे जैसा पूरे मंसूरा में एक ही है भाई, क्या बात कर रहे हैं आप विमलेश भाई, जैसे आपके जैसा एक ही है वो कैर में।
1: हाँ, ये बात
0: तो मैंने मान लिया, चलो ये कॉम्प्लीमेंट मैंने ले लिया आपने ऊपर, देखा मैंने कन्विंस कैसे किया, आपने देखी मेरी कन्विंसिंग पावर, मेरे अंदर है मार्केटिंग सेल्स वाला। आप बनिए भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इंटरनेट कहीं और भी फूकिए और हमें इंतजार रहेगा विमलेश भाई,
1: तुम्हारी कंपनी में नौकरी का इंतजार रहेगा।
0: यार आप तो कंधे पे चढ़ गए यार, हद हो गई।
1: हम जाएंगे तुम्हारी कंपनी के गेट के सामने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
0: है
1: और हम जो है बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंस कर लेते हैं लोगों को, हमको दो नौकरी
0: के। सर मैं लोगों को बहका लेता हूँ, आप मुझे नौकरी दें।
1: ये जो आपके सारे आर्टिक कर रहे हैं ना, बहका बहका के बातें कर रहे हैं, मैं कर लेता हूँ, आप दोस्तों को बहका।
0: आप मुझसे दो मिनट बात कीजिए, आप बहक जाएंगे।
1: और एक एक एक अच्छी बात मैं बोल के कर रहा हूँ, ये जो इन्फ्लुएंसर वर्ड है ना, इसका लोग डिक्शनरी में पहले पढ़ेंगे उसका मतलब क्या है ना।
0: बिल्कुल,
1: ये कोई भी मुंह उठा के अपने आप को जो इन्फ्लुएंसर कह रहा है ना भाई, आप इन्फ्लुएंसर नहीं, सॉरी टू से, अगर कोई ऐसा सुन रहा है जो अपने आप को फेसबुक इंस्टाग्राम या अलग अलग पेजेस पे इन्फ्लुएंसर लिख रहा है, तो आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो, आप काइंड ऑफ सेल्समैन हो या सेल्स गर्ल हो,
0: सेल्समैन मार्केटिंग वाले हो, मार्केटिंग वाले हो, तो मैं कह रहा हूँ।
1: वो भी ढंग से नहीं हो, उन्होंने एमबीए की डिग्री करके करा है और आपने रील और टिकटॉक की डिग्री करके करा है। तो आप जो है इन्फ्लुएंसर नहीं हो।
0: ये जो गीला करके रुमाल मारने की आवाज आती है, बिल्कुल वैसी ही आवाज आई उल्लेश भाई में भी। बहुत
1: सच, हम क्या है कभी कभी सच बोलना पसंद करते हैं, और ये ट्रुथ है भाई, मतलब मैंने रियलिटी मजाक नहीं, मैं डिक्शनरी में जाके मैंने देखा है उसका पूरा मीनिंग, आप देखो देन यू विल अंडरस्टैंड कि इन्फ्लुएंसर कहना अपने आप को मतलब इन्फ्लुएंसर वर्ड गलत।
0: हाँ वही ना, बस अब क्या क्या बोलें भाई, मैं तो मतलब
1: नहीं बोल रहा, बस इतना मैसेज पहुंच गया।
0: ठीक है डन है, फिर मैं गॉसिपिंग आपसे ही कर लूंगा, थैंक यू सो मच।
1: चलिए ये टॉपिक बाद में, बाय बाय,
0: डन मेरा भाई, अल्लाह हाफिज। तो विमलेश भाई ने तो बता दिया आपको, बाकी मैं कुछ मैसेज बता देता हूँ। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैसे हो, मेरा चैनल पर रन करा है अल्हम्दुलिल्लाह, उन चैनल से मुझे 40-50,000 रुपये अर्न हो रहे हैं, इस्लामिक कॉन्टेंट अपलोड करता हूँ, मज़र खान महाराष्ट्र से हूँ। भाई प्राउड ऑफ यू भाई, गुड फॉर यू, अच्छी बात है, कमाई है भाई, साइड इनकम क्या टेंशन है। गुरलेस भाई कह रहे हैं एंड में लेफ्ट ओवर वेस्ट हो जाते हैं ऑफिस में, घर में वाईफाई है, इंटरनेट कम यूज़ होता है। गुरलेस भाई आज के ज़माने में इंटरनेट कम यूज़ हो रहा है भाई, बहुत शरीफों से दोस्ती करनी चाहिए हमें। तब से मैं लिखती हूँ उठा के, हाँ इन्फ्लुएंसर बहन, ये देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप आटा चीनी दाल ये सब मत बेचो, ऑफर मत बताओ, पर ये कह देना कि हम इन्फ्लुएंसर हैं। पता है कतर में इन्फ्लुएंसर की किट क्या है, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या चाहिए आपको, बालों का आपको कलर कराना पड़ेगा, स्ट्रीक चाहिए, बालों का कलर होना चाहिए, एक चश्मा होना चाहिए, ठीक है, बस बाकी आप जो है लग जाएं काम पे। ये अगर दो आपने ये सिस्टम पकड़ लिया है, आग लगा देंगे आप मार्केट में, आग, मैं आपको बता रहा हूँ, ये किट है। फैजान भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम फैजान भाई, कह रहे हैं मेरा मंथली 5 GB डेटा प्लस हज़ार, अच्छा मतलब 10,000 पड़ लिया, 1,000 मिनट्स लोकल यूज़ होता है, वो भी बच जाता है जो कि कंपनी की तरफ से, ओके पर रूम में वाईफाई है, वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मैं मूवीज देखता हूँ इंस्टेड ऑफ वॉचिंग रील्स। फैजान भाई क्या देखा लेटेस्ट आपने, एक ज़रा मैं कॉल कर लूँ, क्योंकि अमन भाई जो है, अमन भाई क्या कहते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं अपना मैसेज, इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बताइए अपने आप को ही, दुनिया को कहाँ से करूँगा इन्फ्लुएंस। एक मैसेज है, उठा लो, फ़ोन तो चक्को भाजी, अस्सलामुअलैकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, कैसे हैं?
0: बस कॉल पे, ये कौन आया दिल में हुई हलचल, अमन भाई क्या हाल है?
2: बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया किया आपने कॉल कर ली, क्योंकि मैं पढ़ाई था इसलिए मैं कॉल नहीं कर पा रहा था आपको।
0: जी जी बिल्कुल, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं अमन भाई
2: जी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बाय द वे, मेरे साथ भी बहुत बढ़िया सिस्टम हुआ, जो अभी रिसेंटली ब्रदर ने आपको बताया ना कि ये पोस्ट पेड का जो ड्रामा है, मैं आराम से अपने घर को जा रहा था, तो बोले सर हमारे पास बहुत बढ़िया ऑफर है, आपका जो मेन नंबर है उसको प्रीपेड कर देंगे, एक साल के लिए ऑफर है, 88 रियाल में आपको ये 12 GB मिलेगा, प्लस आपको फ्लेक्सेस मिलेंगे 1000 फ्लेक्सेस मंथली।
0: अच्छा
2: 88 रियाल में, मैंने कहा वाह क्या बात है। वो बोले आप कितने का रिचार्ज कराते हो, मैंने कहा मैं तो 65 का करवाता हूँ, लाइक मंथली लाइक 45 डेज में 2 times हो जाता है, यानी 2 months नहीं होते। कहते ठीक है, इससे बढ़िया हमारे पास ऑफर है, आप 130 रियाल खर्च करते हो तो हम आपको 88 में देते हैं। अच्छा। चलिए करवा लिया।
0: हाँ।
2: तो जिस दिन ऑफर खत्म हो गया 6 months के बाद हुआ, और सडनली 110 बिल आया, 1000 फ्लेक्सेस उड़ गया।
0: अरे फिर
2: इनका ये क्या हो गया? 1000 वो बोले थे कि 88 की बजाय 110 हो जाएगा, 1000 फ्लेक्स एंड 12 GB साथ में रहेगा आपको,
0: ठीक है।
2: और इंडिया इंडियन कॉल्स लाइक 1000 मिनट्स, 1000 फ्लेक्स लोकल और 12 GB आपको मिलेगा 88 में।
0: 1000 इंटरनेशनल दे रहे थे आपको कॉल्स? हो
2: नो, इंडिया के लिए इंटरनेशनल आपको हमें मिल रहे थे 200 मिनट।
0: अच्छा, अरे बहुत है भाई। अच्छा ठीक है,
2: इंडिया के लिए 1000 मिनट था,
0: बहुत दे दिए फिर
2: जी। एशिया के लिए 1000 मिनट था और बाकी यूरोप को और अमेरिका को आउट ऑफ एशिया इट वाज 200 मिनट।
0: ओके,
2: इंटरनेशनल
0: फिर
2: सो दे काउंट एशिया एज अ लोकल मिनट।
0: ओके, तुम्हारे लिए कंट्री होगी, हमारे लिए मोहल्ला है।
2: दे कॉल इंटरनेशनल टू यूरोप और अमेरिका।
0: हाँ नहीं सही है, मतलब ठीक है, एटीट्यूड भी समझ में आता है। तो अभी अभी आपका क्या रहता है, ज्यादा कंजम्पशन आपको क्या है?
2: बाद में मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने हाँ। अपना मेन नंबर लेना है, तो वही ब्लैकमेलिंग। अगर आपको लेना है तो आपको 100 रियाल और जो आपको पेंडिंग बिल है वो पे करना पड़ेगा।
0: हाँ वो तो है, वो तो भाई सबसे पहले ये सबसे बड़ी शर्त ही यही है। तो आपने बिल खत्म किया कनेक्शन पे तो एक्स्ट्रा देके? सॉरी
2: मैंने कहा नहीं, मैंने बिल नहीं पे करना है,
0: ठीक है।
2: अगर आप मुझे प्रीपेड, मेरा 10 साल पुराना नंबर है, मुझे प्रीपेड चाहिए, बिना 100 रियाल दिए बिल मैं पे कर दूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा।
0: ओके,
2: तो मैं रेज करूंगा कंप्लेंट, क्योंकि मुझे कॉल आई थी कि 110 में आपको ये पूरा डेटा मिलेगा, मुझसे झूठ बोल के पोस्टपेड में करवाया गया, मेरा मेन नंबर जो था प्रीपेड का,
0: मुझे बहकाया गया है, मुझे बहकाया गया है।
2: वो बहकाया गया, वो बंदे ने, उसका नाम भी मुझे याद है लेकिन बोलूंगा नहीं। तो वोडाफोन में काम करता था, उसकी रिकॉर्डिंग नेचुरली मेरे पास थी।
0: अरे यार बहुत खतरनाक डिटेक्टिव, वो जग्गा जासूस। फिर क्या किया आप?
2: मैंने रेज कर दिया टिकट वोडाफोन एप्लीकेशन में जाके, टिकट रेज कर दिया कंप्लेन का,
0: ठीक है।
2: मैंने ये मेंशन किया कि इफ माय कंप्लेन विल नॉट बी हर्ड आई विल मेक कंप्लेन इन कंज्यूमर कोर्ट।
0: अरे अरे अरे अरे अरे यार बहुत डेंजर आदमी हो भाई। अच्छा फिर
2: नेक्स्ट डे कॉल आई, सर नो नीड टू गिव 100 रियाल, We are doing your postpaid card to prepaid card. No need. We will do it now. Are you okay with this? Yes, I will. I am okay with this. Just change it now. I need my data back.
0: ये मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि पता है हर कोई आपकी तरह वो नहीं कर पाएगा। Sort of bargaining ही है, पर मुश्किल काम है, आसान नहीं है।
2: जी उन्होंने 2-3 बार कॉल किया, उसको इग्नोर कर दिया। जब मैंने टिकट रेज किया, इग्नोर कर दिया। लास्ट में मैंने किया, मैं कंज्यूमर कोर्ट में आपका 2 दिन वेट करूंगा, मैं कंज्यूमर कोर्ट में ये कंप्लेंट रेज कर दूंगा विद योर ऑडियो रिकॉर्डिंग फ्रॉम वोडाफोन।
0: बाप रे बाप।
2: फिर वो जगह सब लोग आए एकदम से, सर उठिए सर, एक कस्टमर आ रहा है हमारे पीछे। उठिए उठिए सर, वो हमें हमें टांग देगा, आप भी टांगे जाओगे? अच्छा मैं भी टांगूंगा, ओके मैं करता हूँ अभी।
0: सर अपने पीछे तो देखो, वो अमन आ रहा है पीछे तो देखो।
2: जब तक छोटी मछलियां मर रही हैं तब तक मगरमच्छ नहीं उठता ना, जब मगरमच्छ पकड़े जाएगा फिर सब कुछ होता है।
0: वाह आज तो यार आप मतलब कतई खतरनाक फ्लेक्स करके जा रहे हैं, बहुत बढ़िया अमन भाई, सो प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है,
2: मैंने मोबाइल भी अच्छे से पकड़ा हुआ है, आवाज आपको जा रही है।
0: रख दीजिए आराम से, रहिए कोई दिक्कत नहीं है।
2: बेल्ट में फंसाया हुआ है, बेल्ट में फंसाया हुआ, पकड़ना हाथ में इधर से।
0: अरे नहीं भाई, नहीं नहीं स्टंट मत करो मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात करी हमसे, जजाक अल्लाह मेरे भाई।
2: जी कबीर भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच
0: मेरे भाई, बहुत प्यार मेरे भाई, थैंक यू टू मेरे भाई,
2: थैंक यू कबीर भाई।
0: ओके, तो जैसे भाई ने बताया ना, इसमें क्या कन्विंसिंग पावर चाहिए, मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या सीन हुआ था। मैं, मेरे अंदर नहीं है भाई कन्विंसिंग पावर, है ही नहीं, मैं बहुत लेजी किस्म का आदमी मान जाता हूँ। तो मैंने कहा मैं भी लड़ूंगा, मैंने भी ये सोचा था, मैंने कहा मैं भाई कॉल आएगी मना लूंगा उन्हें, मैंने कैंसिल कर दिया अपना प्लान चेंज करने के लिए। फिर मुझे कॉल आई, कॉल करके उसने बोला गुड इवनिंग सर, और मैंने भी, मैंने कहा भाई आरजे होने का कुछ तो फायदा उठाऊं, अपनी बेस आवाज में चला गया मैं यस टेल मी। बोला कि सर आपका जो प्लान है वो इतने का होगा? मैं कहा नहीं, मैं इतना तो बहुत ज्यादा है। तो बोले नहीं सर इतने तो वो, अच्छा मैं आपको ऑफर देता हूँ। मैंने कहा दीजिए। तो उसने 10 रियाल कम किए उसमें से। मैं कहा नहीं अभी भी जम नहीं रहा है, जाने दो मुझे नहीं चाहिए। तो उसने मुझे कन्विंस कैसे किया, मुझे बोला सर देखिए मैंने आपकी एक्टिविटीज देखी हैं, आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंटरनेट, आपको लगेगा सर, मानिए आप ज़रा सोचिए बीच में आप काम कर रही हैं, आपका इंटरनेट ख़त्म हो गया तो। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो बोला फिर रखो फोन। तो ऐसे मुझे कन्विंस करके चला गया वो। ये है असली इन्फ्लुएंसर भाई, इन्हें कहता हूं मैं असली इन्फ्लुएंसर। एक मैसेज आया, इनफैक्ट कॉल भी आ रही है, एक कॉल उठा लेते पहले तो। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम कबीर भाई, कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आप कैसे हैं? जी भाई बताइए, क्या कह, आपका क्या कहना है इस पे, क्या कहना चाहते हैं?
3: मेरा एक्सपीरियंस तो इतना, जब मैं नया नया कतर आया था 2021 में,
0: जी जी जी,
3: तो मैं प्रीपेड था, मैं प्रीपेड यूजर हूँ। तो मैंने 2 मंथ यूज किया, उस टाइम जारी बात है जॉबलेस थे, के वो थे जॉब हंटिंग चल रही थी, ये वो 20 रियाल 30 रियाल वाला पैकेज कर लेते थे, पूरा महीना से गुजार देते थे।
0: तो अरे बहुत भाई, अभी अभी कितना हाल चलता है आपका? 20-30 में तो नहीं चल रहा होगा आपका?
3: अभी मेरा तकरीबन 100 वाला होता है, फिर 1 मंथ में ऑलमोस्ट 150 का चलता है मेरा।
0: हाँ तो ठीक है, कि
3: लास्ट के 100 चलता है।
0: अच्छा,
3: लेकिन मंथ के जब 4-5 डेज रह जाते हैं ना, तो वो खत्म हो जाता है, फिर लास्ट मुझे 40-50 का दोबारा से करना पड़ता है।
0: तो मुझे लगता है इतनी कोई लोड है नहीं, मतलब इंटरनेट ज्यादा फूक देते हो आप या कैपेसिटी?
3: हाँ, डेटा खत्म हो जाता है, नहीं समटाइम्स मिनट्स खत्म हो जाते हैं।
0: अरे मिनट्स भी खत्म कर रहे हैं आप, डेटा भी खत्म कर रहे
3: हैं? 100 पे 3 मिनट को मिलते हैं।
0: आ जाओ आ जाओ, वैसा है। हाँ ओके, फिर ठीक है। मैंने कहा भाई को मिल रहे हैं 1000-1000 मिनट, भाई भूख दे रहे हैं।
3: हैं नहीं, एवरी मंथ नहीं होता, हाँ हाँ कभी कभी होता है।
0: अच्छा फिर ठीक है, मुझे
3: कभी कभी खत्म होते हैं। जी
0: जी, मैं डर गया, मैंने कहा आपको 1000-1000 मिनट मिल रहे हैं लोकल और आप 1000 के 1000 उड़ा दे रहे हैं।
3: 1000 मिनट का नहीं, 1000 मिनट का 300 मिनट होते हैं। तो मुझे कॉल आई कि सर, एक दफा मेरी जब नई जॉब हुई ना 2022 में जनवरी में, तो मैंने 1 महीना पैकेज किया, बड़ा पैकेज कर लिया, वो भी हो गया भाई, कस्टमर ने बड़ा पैकेज 30-30 से ऊपर चला गया।
0: फिर
3: उन्होंने मुझे 65 वाला पैकेज बोला कि आपका तकरीबन ऑलमोस्ट 40 वाले या 50 वाले दो यूज होते हैं, उन्होंने मुझे 65 का पैकेज दे दिया।
0: ठीक है,
3: के पोस्टपेड,
0: हां हां हां
3: पोस्टपेड पे वो 65 में मुझे ज्यादा वो मिल रहे थे, डेटा भी ज्यादा मिलता था, कॉल्स भी ज्यादा मिलती थी, वो एक किस्म की मेरी पोस्ट सेल सर्विसेज की जॉब थी।
0: हां,
3: मुझे कॉल ज्यादा करनी होती थी, मैंने कहा चले अच्छा अच्छा 65 में मुझे मिल रहा है, मैंने ले ली। आफ्टर 3 मंथ, वो ये 6 मंथ कह रहे हैं ना, मुझे तो आफ्टर 3 मंथ ही वो पैकेज चेंज हो गया, 110 का बिल आ गया मुझे, वही वाला हिसाब, वो जो भी
0: भाई बता रहे थे। हां हां
3: मुझे 110 का बिल आ गया।
0: अच्छा,
3: तो मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कहा जी आपको तो, क्योंकि मेरा मेरी जॉब भी टेम्परेरी थी 3 मंथ के बाद, वैसे 6 मंथ के बाद खत्म हो गई। वो 110 का बिल 1 टाइम दिया, सेकंड टाइम देते हुए तकलीफ हुई, गरीब बात है जॉब नहीं है। तो वो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे प्रीपेड में करना है, उन्होंने सेम जी आपके 100 रियाल और समथिंग ये लगेंगे बिल भी मेरा, और बिल भी इनका ऐसे होता है कि 10 को 12 लास्ट डेट होती है, और आपको पता है हम तो लास्ट में जमा करते हैं बिल।
0: हाँ, वो तो भाई ये तो हमारा फर्ज है भाई, टाइम पे कौन बिल जमा कर रहा है, इतने अच्छे तो नहीं।
3: लास्ट डे में या 12 को है तो 10 को या 11 को बिल जमा, अब 4 तारीख को बिल जनरेट हो जाना नेक्स्ट। अब वो आपका 110 के बजाय 240 हो जाएगा, सॉरी 220
0: हो जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा ऑब्वियसली।
3: अब मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये तो मेरा अभी मैंने पुराना नहीं जमा किया, उन्होंने कहा ये आपका 4 को जनरेट हो जाता है, आपको अगर खत्म करना है तो 5 या 6 या 7 को आपने 1 महीना पहले ही बता देना कि नेक्स्ट मंथ मेरा बिल नहीं करें, तो आपकी सिम टेम्परेरीली यानी कि नंबर पार्क हो जाएगा एक किस्म का,
0: अभी
3: 50 रियाल अलग से चार्ज होंगे।
0: ओके,
3: मैंने कहा क्या बात हुई, मैंने कहा चलो ये महीना तो यूज करूँ ना, मैंने बिल पे किया वो महीने के लास्ट पे 4 से पहले 3 को, मैंने कहा 100 रियाल तो मैं नहीं देने वाला
0: भाई, मैथ्स है भाई, पूरी की पूरी मैथ्स है, पर अभी अभी गणित में कहाँ, अभी क्या हिसाब किताब है आपका, क्या चल रहा है अभी?
3: अभी कितना? मैंने क्या किया, मैंने उरीदो में शिफ्ट कर दिया बिल पूरा करके ना।
0: हाँ,
3: फ्री ऑफ कॉस्ट था वो।
0: वेरी नाइस, ऐसे हर कोई लकी हो, मैं यही दुआ करता हूँ। लेकिन मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल करी, अच्छा लगा मेरे भाई।
3: नहीं, वो मैं उरीदो में शिफ्ट किया, उनसे बात की, मैंने कहा पूछा, मैंने कहा, उन्होंने कहा आपका बिल बस वोडाफोन का क्लियर होना चाहिए, कोई माइग्रेशन चार्जेस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आप वोडाफोन से उरीदो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं।
0: लोगों को पता है, लोगों को बहुत जानकारी मिल रही है आप लोगों के कॉल की वजह से, उसके लिए बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच मेरे भाई, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वुड नो।
3: जब भी मुझे कॉल आती है ना, अलग से मेरी स्टेबल जॉब है, स्टेबल सब कुछ है, लेकिन अब मैं दोबारा फिर भी पोस्टपेड पे शिफ्ट नहीं होता, अभी जो एक बार पोस्टपेड पे शिफ्ट हो जाता है ना, आपका पूरा बजट, आपने जो अपना पर्सनल बजट रखा होता है ना, एक तो घर का होता है, एक आपने पर्सनल बजट भी रखा होता है।
0: नहीं, पोस्टपेड प्लान के साथ ये है, बट अब बट ठीक है, वो यूसेज पर है, वो आदमी अगर इन्फ्लुएंसर है तो बिल तो ज्यादा लगेगा। पर ठीक है, ओके ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल करने के लिए। मैं अभी चलाता हूँ, जिंगल का टाइम हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपसे बात होती है। ठीक है, ख्याल रखिए अपना। ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो भाई ने इसे बताया, कुछ देर पहले भी कॉल्स आए, कुछ मैसेजेस भी हैं, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। एक तो ये समझ में आ गया है कि कन्विंसिंग पावर आपकी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर एक

0: FM 107. Time check. Time
1: check. 7-2 होने वाले हैं घड़ी में, लेकिन आप तो मेरा साथ देते ही रहिए, तो 7-2 के हिसाब से, और ये मॉर्निंग में जब भी 7-2 बजेंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, पक्का मेरी याद आएगी, पक्का याद आएगी, मेरी चाल ही यही है, क्योंकि एक जून से जब इवनिंग शो शुरू हो जाएगा, जब भी सवेरे सवेरे आप 7-2 आएगी तो आपकी तो हिचकी आएगी। मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे, अस्सलाम वालेकुम। तो एक कॉल आ गई है, आते के साथ ही उठा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई।
1: अरे कैसे बात भाई?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे क्या फजूल की बातें कर रहे हैं, शाम को जाने वाली, शाम को पता है टाइम एक नहीं होता।
1: अरे भाई साहब, तो आप हमें अलग से मैसेज कर सकते हैं, मोहब्बत की बात होती है रेखा जी।
2: तो ये तो हो सकता है
1: अगर आप
2: सुबह लोगों को कंपनियों से क्यों लड़ा रहे हैं।
1: देखिए ये तो मैं, मेरा फर्ज है, ये मेरी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन।
2: क्या आप बीवियों से लड़ाते हैं, कभी मियाओं को लड़ाते हैं, कभी दोस्तों को लड़ाते हैं, कभी आप कंपनियों से लड़ाते हैं, आपका फर्ज क्या है? ये वर्ल्ड वॉर 5 करानी है आपने।
1: बहुत बहुत धन्यवाद फौज जी आपका, आपने मेरा दिल जीत लिया। बताइए आपका क्या प्लान है, क्या प्लान है आपका?
2: मेरा प्लान तो सारे ही पोस्ट पेड है,
1: सारे पोस्ट पेड है, बहुत बढ़िया जा रहा है आपका।
2: क्योंकि एक ही दफा हमने किसी कस्टमर कॉल को सुन के उसे पैकेज अपग्रेड कराया था, उसके बाद वो कंपनी ही छोड़ दी।
1: अरे अरे बड़ा फास्ट एस्केलेशन हुआ है। अच्छा ठीक है, तो आपका
2: एक पैकेज 225 से लेके सीधा 365 पे चला गया था। उसके बाद हमने कहा नहीं भाई
1: ये नहीं हो पाएगा।
2: फिर आप बिल्कुल नहीं हो पाएगा,
1: बच्चन साहब की तरह खीर खीर खीर खीर की उल्टी कर दी।
2: आप सोचते कि अब जब भी कॉल करते हैं, मैंने कहा भाई मेरा पैकेज तो बेयर मिनिमम पे है, दो पैकेजेस हैं, दोनों बेयर मिनिमम पे हैं, इससे कम दे सकते हो? नहीं सर, लेकिन सर इस पे ये मिलेगा। मैंने कहा नहीं चाहिए भाई, कॉल तो मैं करता ही नहीं हूँ, 400 मिनट ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं तकरीबन, सिवाय इंटरनेट के अलावा कुछ यूज ही नहीं करता। फिर भाई इंटरनेट दे दो सारा।
1: तो अभी अभी अभी तो सारा का सारा इंटरनेट ही है, तो कॉल वॉल लगती नहीं आपको? ज्यादा कॉल नहीं करते लोग आपको भी?
2: बहुत कम करता हूँ, ज्यादा आती हैं, और ज्यादातर काम व्हाट्सएप और मीडिया भी चलता है।
1: ओफो, ज्यादा काम मेरा व्हाट्सएप और मीडिया भी चल जाता है। माय गॉड, सो फैंसी, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती।
2: आपको पता ही है कि लोग बहुत ज्यादा
1: एब्सोल्युटली फॉर लाइक आई कांट टेल यू,
2: दिस इज अ वेरी गुड पावर ऑफ
1: माय फोन, माय वर्क आर डन ऑन माय व्हाट्सएप ओनली।
2: लेकिन कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपको होना चाहिए, किस रेस्टोरेंट में जाके आपने फड्डा किया, फिर मैं आपको बताऊंगा कहां काम किया मैंने।
1: अच्छा ऐसा क्या?
2: ओहो,
1: अच्छा ओहो, ये तो अच्छा टॉपिक है, ये मैं लेके आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं ऐसे। ये तो कंटेंट दे रहे हैं आप मुझे, वेरी गुड।
2: ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट का बताऊंगा कि आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे, ये क्या इधर ही पटक लिया इसने,
1: एक तंदूरी की
2: खाना खा लिया।
1: ये तंदूरी रोटी की दुकान पे जो पोस्टर लगा था कहीं आपका तो नहीं था? वहां पे क्या झगड़ा करके आए आप?
2: ये बंदा यहाँ ना खाए, ये आए तो ध्यान से रखिए।
1: उन्हें बता रहे रोटी तुम्हारी गोल नहीं है। कहे सर वो तो फूल रही है ना। नहीं गोल नहीं है ये, दिस इज नॉट द शेप।
2: इसमें ये दाग क्यों है?
1: इसमें ये दाग क्यों है?
2: पिछली बार 10 बोटियां आई थी, इस बार 8 क्यों आई है?
1: मेरी रोटी चांद थोड़ी, इस पे दाग है, इसको बिल्कुल सफेद चाहिए मुझे। मैं तंदूरी रोटी
2: पिछली बार 800 ग्राम थी कढ़ाई, इस बार 600 ग्राम है भाई ना? ना?
1: अरे भाई ऐसे सच में कोई नाप रहा होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, और लोग ऐसे करते भी हैं जिनको
2: मैं ना नापूंगा।
1: आप वैसे कभी इतना तो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं किया होगा, किया है क्या आपने रेस्टोरेंट में जाके इतना माइक्रो मैनेजमेंट?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैं सफाई के ऊपर बहुत ज्यादा फड्डा कर लेता हूँ।
1: अच्छा वो ठीक है, वो लेजिट है, उतना तो बनता है।
2: सफाई के ऊपर या क्वालिटी के ऊपर फड्डा कर लेता हूँ। ये नहीं है कि एक बोटी गिर गई तो खराब हो गई या कम है तो कोई मसला नहीं।
1: अच्छे इंसान है आप कुल मिला के, मैं तो आपको गलत समझ रहा था फवाद भाई।
2: नहीं, और मैं किसी बेचारे सर्वर या किसी जो हमारी तरह मजदूर लोग हैं उन पे नहीं चलाते।
1: आप बेचारे मजदूर हैं?
2: हम खुद मजदूर हैं सर।
1: तो मैं तो फिर
2: गाड़ी को धक्का देते हैं, गाड़ी का नीचे सफाई सफाई करते हैं।
1: अगर आप मजदूर है ना तो मैं अमिताभ बच्चन हुआ, ये तो पक्का है।
2: अभी बेगम की गाड़ी लेके जा रही है उसको सही करवाने के लिए, पहले देंगे।
1: अरे रे बेचारा बेचारा, मैं रो दूंगा, आगे मत बताना, आगे मत बताना, मैं रो नहीं पाएगा।
2: आपने तो तोहफे से उठना नहीं होता है, ठीक है फिर आप मुझे बताएंगे सर।
1: अरे सर क्या करे सर, मोर के पंख से लिखवा के ले गया।
2: इस बार आपको उठाना ही पड़ेगा।
1: ये कौन सी मोहब्बत वाली धमकी, इस बार तुमको उठाना ही पड़ेगा। बहुत दिनों से किडनैप नहीं किया मैंने किसी को। नहीं आप जाइए गाड़ी लेके, और भाभी की गाड़ी उन्होंने खराब करी कि आपने खराब करी, क्या हुआ क्या है?
2: नहीं उसे रिफर्बिश कराने जा रहा हूँ।
1: रिफर्बिश हो रहा है भाई।
2: yes.
1: एक लाइन आप बिल्कुल वैसी वाली बोलते हैं देसी, फिर एकदम से फैंसी हो जाते हैं। आदमी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कौन सी क्लास में आदमी, मिडिल क्लास है कौन सी क्लास है।
2: सर हम नीचे से लेके ऊपर तक की क्लास में बात कर लेते हैं, कोई मतलब।
1: वेरी गुड, दिस इज हाउ इट्स डन फॉर भाई, दिस इज हाउ इट्स डन।
2: आपको पता है मैं थड़े बिठा लो थड़े बैठ जाएंगे, सारे बिठा लो सारे बैठ जाएंगे, लेकिन प्यार से बैठेंगे।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम सो इंस्पायर्ड, वेरी इंस्पायरिंग फिगर।
2: थैंक यू सर,
1: थैंक यू सो मच।
2: बहुत शुक्रिया सर आपका। सर
1: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद फवाद भाई, आपको बहुत सारा प्यार।
2: बस कल आप खाने पे लड़वाएं बस।
1: बिल्कुल आप खाने पे होगी एक चंक। डन,
2: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया। रह गया फोन।
2: थैंक यू।
1: ओके मेरा भाई बहुत प्यार। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो फवाद भाई के बाद एक और कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, कैसी हैं आप बहन बताइए। देखिए दो तीन बार जब बात हो जाए तो फिर आसानी हो जाती है ना, इसलिए अभी तो अभी आसानी हो गई जी। बताइए।
3: हाँ पैकेज तो जो है यूज ऐसे ही होता है कि पोस्टपेड होता है, लेकिन लोकल नेट थोड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसलिए कि जो फ्रेंड है उनके घरेलू प्रॉब्लम बहुत सुनने को मिलते हैं, उनकी काउंसलिंग करनी होती है।
1: तो वो क्यों नहीं कर रहे आपको कॉल, उनके लोकल नेट फुकवाइए, आप क्यों कर रही हैं कॉल?
3: आई एम यूज होता
1: है
3: होता।
1: मुझे बताइए लोकल मिनट्स आपके क्यों खर्च हो रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम है, उन्हें कॉल करनी चाहिए ना आपको, उनके लोकल मिनट्स फूकिए, आपके क्यों फूक रहे हैं?
3: इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि फोन जो है ना आसपास कम ही होता है, बस वो बच्चों को पढ़ाने और अपने पढ़ने पढ़ाने और अपने कामों में ध्यान होता है, बस होने से पहले न्यूज और इम्पोर्टेंट मैसेजेस देखती है।
1: अच्छा,
3: अक्सर पता भी बाद में ही चलता है कि अरे इसकी मैसेज आया हुआ था, इसकी कॉल है।
1: तो हर महीने आप मतलब लोकल मिनट्स कितने फूक देती हैं, लगभग कितने कितने उड़ जाते होंगे?
3: ये मेरी फ्रेंड्स की प्रॉब्लम से डिपेंड करता है।
1: अच्छा, ये उनकी प्रॉब्लम से डिपेंड करता है। तो पिछले महीने ज्यादा प्रॉब्लम थी, इस महीने ज्यादा प्रॉब्लम थी, ये तो बता दीजिए।
3: वैसे आमतौर पर मैं दुआ करती हूँ अल्लाह रहम उनके उनके घरों में सब अच्छा चले।
1: आमीन आमीन। अल्लाह मियां बहुत पैसे देने पड़ जाते हैं जी ये लोकल मिनट्स के चक्कर में, पर ऐसी प्रॉब्लम में करती
3: नहीं, ऐसे पैसे चुपते नहीं, तो लोकल फ्री मिनट्स होते हैं। और दूसरा ये, अगर आप किसी के काम आ सके, आप किसी को कंट्रोल कर सके और कोई आपको इस काबिल समझे कि वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताए और उसका सोल्यूशन चाहे, तो ये बात है। और इसके लिए आपको
1: ये आपका सक्सेस रेट कितना है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, अगर आप बताना चाहें ईमानदारी से?
3: प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है कि बीइंग देखिए ना, एक तो एक्सपेक्टेड जो होती है ना लेडीज, हाउसवाइफ हो चाहे वो वर्किंग हो, उनको जो है ना वो बच्चों को घर को इन लॉज को खुद ही सब हैंडल करना पड़ रहा होता है, क्योंकि भाई मेके वाले हैं या फिर फैमिली और पुराने फ्रेंड्स वो पीछे रह गए ना,
1: ठीक है,
3: फिर उनको यहाँ पे अपना सर्कल बना के उनके साथ अपने जो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, खुद को कूल रखने के लिए, खुद को एट पीस रखने के लिए फ्रेंड की भी जरूरत होती है। और बस फ्रेंड होती है वो लगाई बुझाई करके ना अड्डे डलवाती
1: है। अच्छा वैसा वाला, अच्छा ऐसा बोलिए ना, मैं
3: आप सुन लें, आप लिसनिंग हियर दें, और उसके बाद फिर आप उनको आहिस्ता आहिस्ता अपना एतमाद करके उसके बाद फिर आप उनको पॉजिटिव समझ में डालें और आप उनको जो है ना काउंसलिंग करें पॉजिटिव।
1: अरे बाप रे बाप, हाँ। बहुत लंबा प्रोसेस है, मुझे लगा ये सिंपल ऐसा है कि आओ बहन चुगली करें तो माइंड वैसा नहीं है। अरे ये तो
3: होगा
1: ऐसा भी होगा, क्योंकि मुझे गॉसिप चाहिए थी, आपने मामला काउंसलिंग
3: नहीं, नहीं, मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ। देखे हम सब जो है ना, हम एक चीज पे बिलीव करते हैं, जो अल्लाह ताला के जो नबी है ना, उनके जो सहाबी है ना, वो एक दूसरे को ना सूरत अल-अज़हर सुनाते थे, एक दूसरे को हक की और सबर की तलकीन करो, इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो एक दूसरे को हक की और सबर की तलकीन करते हैं।
1: बहुत ज्यादा मामला सीरियस हो गया
3: ये हमारा, ये मेरा ख्याल है कि ह्यूमन रिलेशनशिप में ये मेरा मोटो है।
4: ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड. तो देन आपका बेसिकली लोकल कॉल्स का ज्यादा रहता है, कुल मिला के बात ये है.
3: ज्यादा रहता है. और दूसरा कबीर भाई, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की आपके प्रोग्राम में भाईचारा इतना है, ज्यादातर भाई लोग ही कॉल कर रहे होते हैं. बात भाई तो बिल्कुल संजय दत्त की तरह बात करते हैं.
4: कौन संजय दत्त? कौन है
3: संजय दत्त? बने होते
4: संजय दत्त कौन
3: है? आप आए ना 107 पे, आपने जो टाइम स्टार्ट कर दिया ना, ये इंटरएक्टिव चैनल बन गया होगा.
4: थैंक यू सो मच.
3: आपकी स्टोरी के बाद सब लोग स्टोरी सुनाने लग गए हैं, और आपकी कॉल और लाइव कॉल के बाद आपका कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस
4: सही
3: में सबके काम आ रहा है. और वालों का बिल्कुल इंटरेक्टिव हो गया है सर. कोई जो है ना वो अच्छे रखाने वाले प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन सारे प्रोग्राम जो है व्यूअर्स के साथ इंटरेक्टिव हो गया है. और ट्रेंड को सर्च करने पर क्योंकि हम लोगों को भी जाहिर है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का इससे बार बार मौका मिलता है, और ये ट्रेंड सर्च करने पर मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ. लेकिन आपसे मुझे ये शिकवा है कि आप खवातीन को कम चार्ज देते हैं और भाई लोगों की पसंद के टॉपिक ऐसा नहीं है.
4: झूठ है ये जज साहब, झूठ है ये. अरे तू मैं क्या करूँ इसमें, मतलब मैं पकड़ के नहीं ला सकता ना बहन की, प्लीज मुझे कॉल कीजिए. वो भी तो मसला है ना.
3: ज्यादा बात स्टोरी की है उस सिलसिले में तो क्या ही कहने. कहानी सुनो, कबीर की जुबानी सुनो, और बस सुनते ही जाओ.
4: हाय हाय हाय, ये बम्पर बनाऊंगा मैं. थैंक यू सो मच बहन, बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने. थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया.
3: ओके ओके,
4: अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. तो पैसा वसूल हो गया है. मैं अब मुझे क्या कहना है, हो गया मेरा काम, गाने वाने चलाया तो हो गया सारा कुछ, अब क्या करना है. वैसे अभी जो इतने सारे मैसेज मेरे पास आ चुके हैं इस बात को लेके, मैं ऑफिस की भी डिटेल आपको दूंगा. ऐसी बात थोड़ी है, अगर किसी ने मुझे गॉसिप नहीं दी मैं अंदर ही गॉसिप दूंगा. हमारे जो सर्वर भाई अभी सामने बैठे थे, पता नहीं चले गए शायद, तो उनकी भी गॉसिप दूंगा. आप टेंशन मत लीजिए, सबकी गॉसिप मिलेगी. फिलहाल तो कुछ मैसेजेस हैं, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ. कबीर भाई प्लीज़ कॉल मी. भाई मैं एक गाने के बाद कॉल करूँ चलेगा? नौ अरसलान भाई, वालेकुम अस्सलाम. इनका अरे यार आजकल क्या वही वही वही वही जैस भाई, और लिखते हैं भाई देख लो कहीं आज नहीं कोई मैसेज पढ़ने वाला हूँ, इतने खतरनाक मैसेज किए मेरे लोगों ने. एक्टिविटी देख ली, हमारे सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ होता है. हमारे भाई तो सोशल मीडिया की दुनिया से लाखों किलोमीटर्स दूर है. भाई मैं थोड़ा सा शांति पसंद हूँ, आप सिर्फ सुने जी. मैं गलती हो गई मेरी, वालेकुम अस्सलाम. ये मैसेज किया है मोहम्मद राणा जी ने. और जितनी बहनें सुन रही हैं प्लीज़ कॉल कर लीजिए. बहन कह रही सिर्फ भाईचारा चल रहा है. कंक्लूजन इज़ दैट पोस्टपेड की लास्ट में एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, वो कभी स्टार्ट में नहीं बताते. कल मियां मोहतम मुताशी की स्टोरी चाहिए. फराज भाई मिलेगी. गुड मॉर्निंग, कह रहे हैं मिसिंग योर शो, इवनिंग में जल्दी आई, इंशाल्लाह आएंगे. वालेकुम अस्सलाम मुशीर आलम साहब, कबीर भाई जी, अमीश यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया. देन मैसेज आया सीधा भाई साहब, हमें बारेन से मैसेज आ रहे हैं. नादिर जी ने मैसेज किया है, और जीबीज और मिनट्स दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं. कभी कभी मिनट्स की ज़रूरत पढ़ी जाती है. मुझे जीरो नहीं, मुझे जीरो, मुझे मिनट जीरो चाहिए, जीरो. एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम अबू आकिब भाई का लिखते हैं, भाई मंथली 10 GB डेटा है, 1200 लोकल और 600 इंडिया कॉल, सब खत्म हो जाता है 20 दिन में. सब खत्म हो जाता है 20 दिन में? बहुत पब्लिक है भाई. जकी भाई वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड जकी भाई, हाउ आर यू. देन अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, 50 GB डेटा मंथली विद वाईफाई एट होम प्लस पोस्ट पेड पर लिमिट लग जाती है, लेकिन मेरा प्लान 180 रियाल का है और मेरा और नंबर 180 एक पे बंद हो जाता है, ओवर यूसेज नहीं होती.

नूमी भाई ने मैसेज किया, वेरी नाइस स्मार्ट बॉय भाई, बॉलीवुड को मेरा लेट्स वॉच ओके। तब से मैंने लिखा है आई नो वट यू वो हु वेयर आर यू गोइंग स्ट्रीक एंड चश्मा। मैन आप समझदार हैं माशाल्लाह। कुछ वॉइस नोट्स हैं यार, देख लो भाई आपको बोलने का मौका नहीं मिलता मुझे, मैं मासूम आदमी हूँ भाई, मैं मासूम आदमी है भाई, महंगाई में कितना बचा रहे हैं लोग। या भाई कह रहे भाई फॉर ऑल पीपल दिस इज द फैक्ट विद टेलीकॉम कंपनीज, द चेंज क्या द चेंज फ्रॉम वन सर्विस प्रोवाइडेड टू अनदर इज फ्री एंड दे हैव अ पैटर्न वेयर दे सेल यू पैकेजेस once you have been using it for more than a year, they will call you for selling up higher packages cause internally they have to retire the specific package and cannot retire until there are no subscribers. वैसे भाई कहानी नहीं मिली, कल वाली आज वाली एक साथ मिलेगी मेरी जान, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे भाई मुझे सिर्फ आपको मैसेज करना होता है, मेरा बैकग्राउंड में सब को डिसेबल रखता हूँ, व्हाट्सएप को छोड़ के, कुछ ऐप को छोड़ के जैसे बैंकिंग और बाकी पेइंग ऐप और ऑफिस में वाईफाई रहता है, 2 GB बहुत है आपको मैसेज करने के लिए। ये आपकी मोहब्बत है फैसल भाई, दिल से भाई को प्यार। फरद भाई क्या कह रहे हैं, खुद कॉल करते हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब आप लोगों की शिकायत है कि बहनें कॉल नहीं करती, मैसेजेस करती हैं बहनें, कॉल नहीं करती हैं, तो दोनों ही तरफ से मैं फंस रहा हूँ। 666-221-07 नंबर है, आप ज़रा इस पर आ जाइए एंड मैं अभी दो कॉल्स करता हूँ क्योंकि कहा गया सॉरी। तो मैं कहता हूँ आपके पैकेजेस में क्या मतलब, मिनट ज़्यादा फूके जा रहे हैं या फिर

0: राणा जी माफ करीना। इरफान भाई क्या कह रहे हैं, इन माय पैकेज, अच्छा सबसे पहले वालेकुम सलाम, इन माय पैकेज 2 GB 40 GB 300 इंटरनेशनल मिनट्स हैं। मैं पिछले 6 महीने से सोच रहा हूँ प्रीपेड पर ट्रांसफ़र हो जाऊँ लेकिन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, ये कृपा कहाँ रुकी हुई है इरफान भाई, मुझे पहले ये बताएं। एक भाई कह रहे हैं बस टॉप सॉन्ग ब्रो, हमने तो टॉपिक भी नहीं पता आज का। कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या टॉपिक है क्या करना है। तब उसमें बहन जजाकल्ला बहुत बहुत शुक्रिया बहन को, गाना अच्छा लगा, थैंक यू। कबीर भाई क्या आसिफ भाई, एकदम बढ़िया चल रहा है भाई। और एक मैसेज है, ये कॉल मी, एक सेकंड रुको कॉल कर लेते हैं। एक सेकंड, आजकल मैं सोचता हूँ मुझसे कॉल पे झगड़ने वाले बहुत हैं, आ नहीं रहे। हर 10-15 दिन में एक मरतबा तो कोई ना कोई आता ही आता है। अच्छा एक कॉल आ रही, उठा लेता हूँ मैं, नहीं मतलब कॉल करी है मैंने, अब अगर उन्होंने उठा ली तो बात हो जाएगी, नहीं तो जी कोई गाल नहीं, मुझे लगता नहीं उठाएंगे। ओके मैं ही उठा लेता हूँ। अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जी मेरा भाई
1: कबीर भाई,
0: अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड भाई, कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे ख्याल में, 2-2 कॉल एक साथ लग गई हैं। आप बताइए, एक सेकंड। अरे
1: क्या हो गया?
0: वालेकुम अस्सलाम भाई, अब बताइए
1: कैसे हैं कबीर भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई।
1: ओहो टॉपिक तो दिल किया मिला ही ले फोन, वो जो आपका वोडाफोन वाला जो सिस्टम है ना।
0: नहीं नहीं कंपनी कंपनी नहीं, कंपनी को नाम नहीं लेना है, कंपनी का कोई मतलब नहीं है इससे। मैं कह रहा हूँ कि मिनट्स और इंटरनेट पे आपका क्या ज्यादा खर्च होता है, मतलब कहाँ ज्यादा आपका रुझान है?
1: ये वैसे सर मिनट तो ज्यादा खत्म हो जाता है, बट और नेट तो मतलब उतना काम, ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलता है तो नेट कहाँ उतना चलेगा,
0: नेट वगैरह खर्चा नहीं है तो ये कॉल के लिए फुर्सत, कॉल के लिए फुर्सत कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? बताइए।
1: बैठे हुए हैं सर, कर लेते हैं, कभी मौका मिल जाता है।
0: वाह वाह वाह, कितने
1: मिनट के लिए? FM 107 के लिए टाइम निकाल लिया जाता है।
0: और कितने मिनट वैसे जाते हैं आपके टोटल, मतलब कितने मिनट उड़ा देते हैं?
1: 300 मिनट इंडिया का मिलता है और 500 लोकल मिलता है।
0: तो 500 लोकल उड़ जाते हैं आपके सारे के सारे?
1: नहीं बच जाता है, कम से कम मेरे ख्याल से 300 मिनट के करीब बच जाता है, 300-200 फोन ही नहीं उतना। यहाँ पे फोन बहुत, कुछ लोगों को बात कब, किसी के पास टाइम ही नहीं है बात करने का, ऐसे टाइम पे छुट्टी होता है तो लोग खाने बनाने में भिड़ जाते हैं, फिर रात में सोते हैं तो फिर सब बात हो गए।
0: हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। तो इंटरनेट का भी आपके ज्यादा यूसेज नहीं है मतलब?
1: नहीं इंटरनेट का यूज उतना नहीं है, फिर भी बच जाता है उसमें।
0: आपका तो सारा मामला ही सॉर्टेड है, आपको प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह।
1: 65 का और 35 का वाईफाई दोनों डालते थे, लेकिन ऑफर आया तो 100 रियाल में 20 GB डेटा, 300 लोकल मिनट, 500 लोकल, 300 इंडिया, एक्टिवेट कर लो। आज हमारा पुराना सीन था, एक ये जो भाई साहब इसके पहले बता रहे थे ना, सेम पोजीशन वही हुआ था, कोई 100 रियाल दे तो चालू करेंगे, नहीं तो नहीं, बड़ा भाई बंद।
0: तो आप लड़ पाए नहीं लड़ पाए? ये तो लड़ लिए, आप नहीं लड़ पाए?
1: लड़ा, गाली गलौज तक हो गया पूरा।
0: फिर कोई रिजल्ट नहीं आया?
1: कुछ रिजल्ट नहीं आया, सिम को तोड़ के वही ऑफिस में फेंक दिया, मैंने कहा ये पकड़ तेरा सिम, तू पकड़ दे।
0: क्या ये एटीट्यूड है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा ठीक है,
1: नहीं लिया फिर?
0: हाँ, नहीं लिया फिर?
1: अभी फिर जो सर, अभी जो ये फिर एक्टिवेट कराया वोडाफोन का, सॉरी नाम ले लिया,
0: कोई नहीं
1: तो एक्टिवेट कराया तो उनसे बात हुई भाई साहब से, तो बातें बता रहे थे ना, तो मैं भी रिकॉर्ड करके ही रखा हूँ सब चीज उनका।
0: भाई रखिए ये सारी चीजें काम आती है, वेरी नाइस।
1: तो 100 रियाल में बोले, मैंने कहा कि ठीक है 6 महीने के लिए वैलिड है। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि अगर सिम हम दोबारा इसको अगर लेना चाहें तो हमारा मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर बेफिक्र रहे। तो मुझे तो पता था कि ये तो लास्ट में जिस दिन बंद होगा, बंद कराएंगे उस दिन ये तो बोलेंगे भैया इसका 400 रियाल दे दो, उसके बाद हम चालू कर देंगे नंबर, ये तो कन्फर्म बोलेंगे। लेकिन इस सिम को मैं सिर्फ यूज के लिए ही रखा हूँ, और जिस दिन ये बोलेंगे इसको भी निकाल के तोड़ के फेंक दूंगा, ये लो ये इसको ही पकड़ो।
0: क्या बात, तोड़ के फेंक दूंगा ये, इतना गुस्सा। सब सैटेलाइट फोन यूज करो भाई, और फिर वो रेडियो चेक चेक चेक। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हाँ अरे माफ कर दो मेरे भाई, कंपनियों का नाम मत लो भाई प्लीज, मालिक मालिक, चलो अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। तो भाई के बाद कुछ मैसेज पढ़ दो मैं, अस्सलाम वालेकुम, लोकल मिनट्स टू अनलिमिटेड है लेकिन MB मंथली पैकेज 60 GB मिलता है, 15 बड़ा किफायती से चलता है, वेरी गुड। ये मैसेज किया है किफायती तरीके से मोहम्मद भाई ने। एक और कॉल आ रही है, उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।

0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। भाई क्या हाल है आपके?
1: कैसे हैं आप तला भाई? क्या हाल है आपके?
0: अल्हम्दुलिल्लाह हम सही हैं, बताओ क्या हाल
1: अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम नून गुन्ना लगा, एकदम आयन आयन मिले
0: है ना।
1: आयन मिला है
0: निकली
1: आराम
0: थी,
1: से
0: निकली थी कोशिश, निकली थी।
1: तो तला भाई जरा बता दें जल्दी से, आपका क्या मतलब, डेटा का मामला ज्यादा है या फिर मिनट्स का ज्यादा रहता है आपका?
0: भाई डेटा लाजमी सी बात है, डेटा।
1: डेटा इज माई लाइक माई बेटा, आई हैव टू यूज इट ओनली। अच्छा, कितना जीबी
0: डेटा इज
1: फूक
0: लाइक
1: देते हैं आप एक महीने में? कितना फूक दे रहे हैं आप?
0: भाई, अभी मेरे पास डेटा का पैकेज चल रहा है, कितना, 1 GB वाला।
1: 80 GB वाला? ओके, फिर क्या हो रहा है 80 GB
0: बस
1: का?
0: ये सर्फिंग कर रहे होते हैं और बस इधर उधर
1: सर्फिंग?
0: देख रहे
1: इतनी
0: होते
1: इतनी सर्फिंग, समंदर की लहरें मुंह पे नहीं आती, इतनी सर्फिंग कर रहे
0: हैं।
1: हो?
0: हम गोते मारना जानते हैं।
1: अच्छा, गोचे मारना जाती है। 80 GB तो बहुत ज्यादा है, अच्छी बात है। अच्छी, तो सारा फूक दे रहे हैं अभी से,
0: बहुत ज्यादा।
1: नथिंग इज लेफ्ट।
0: हाँ, तकरीबन तकरीबन
1: तो
0: ऑलमोस्ट।
1: ओके, इसमें तो सवाल ही फिर, लोकल मिनट्स आपके कुछ खर्चे नहीं होते हैं? आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको, आप किसी को कॉल कर रहे हैं, ऐसा है क्या?
0: अब ये क्या कर रहा है मैंने, ये अभी क्यों कर रहा है भाई, क्या है ये?
1: मेरी बातों में फंसे नहीं यार, अब मैं फंसाना चाह रहा था
0: नहीं,
1: तो
0: ये क्या है?
1: नहीं, मैं लोकल मिनट्स पता ही नहीं आपको है, इतना इतना इजी मामला है।
0: नहीं, पता नहीं, पता लोकल मिनट्स कम ही कमी यूज होता, ज्यादा नहीं होता।
1: अच्छा, ये ठीक है, आपका सॉर्टेड है मामला। आपको, आपने सुनी कुछ देर पहले एक भाई ने बोला कि वो 15 रियाल का रिचार्ज मारते हैं 2 GB, और उसमें वो महीना खींच लेते हैं। वो कह रहे हैं मेरे ऑफिस में वाईफाई है, घर पे वाईफाई है, बीच में मेरा यूज ही नहीं होता। देख रहे हैं आप, ऐसी कला है, आप कर पाएंगे?
0: मेमन भाई, मेमन है बदनाम।
1: नहीं, वो मेमन नहीं
0: ठीक है
1: थे,
0: ना,
1: वो मेमन नहीं थे।
0: वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, मेमन बदनाम है भाई। इन जैसे लोग कहाँ से आते हैं ये लोग?
1: अब वही तो, आप समझ रहे हैं, आप कैसे किया है भाई ने, 15 रियाल में महीना निकाल पा रहे हैं और आप 80 80 GB डेटा फूक दे रहे हैं, बताइए।
0: एक बात बताओ, फुप्पो के लड़के, अपना तो बताना जरा।
1: मौसम बहुत अच्छा है, मौसम तो बहुत अच्छा है मौसम बहुत अच्छा है। नहीं, मेरा भी ऐसी कुछ हिसाब किताब है, पर मेरा खर्चा एक्चुअली में ज्यादा नहीं है, मैं इंटरनेट पे ज्यादा जाता नहीं हूँ, ठीक है? कहानी ढूंढने मुझे टाइम लगता, तो उसमें मेरी जीबी मुक जाती है, बाकी तो ठीक है। समझ में?
0: तुम्हारे यकीन नहीं है तुम्हारी बात पे, कहता ही नहीं।
1: स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मिल गया तो जवाब नहीं दे पा रहे
0: नहीं, कहता ही तुम पे यकीन 1 रुपए का नहीं है।
1: अरे
0: तुम आखिरी इंसान भी रहोगे ना, तुम उस बात पे भी यकीन नहीं होगा मुझे। नहीं, ये सच नहीं बोलते,
1: ये कोई
0: ये
1: बात,
0: कुछ ना कुछ तो बाबू राव, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
1: मिलोट, आपको एविडेंस चाहिए मिलोट, तो एविडेंस कोर्ट में पेश किए जाएंगे।
0: हाँ, फिर तुम्हारी किस हर बात के पीछे ना एक गाना चल रहा था, गोलमाल है भाई, गोलमाल।
1: ये अच्छा, आपने आइडिया बहुत बढ़िया दिया है, ये मैं निकाल के रखूंगा, कुछ लोगों के बैकग्राउंड में ये गाना चलाऊंगा मैं। वेरी गुड, थैंक यू।
0: मुझे लग रहा मेरे पे बजाया सबसे पहले।
1: अब एक्सपेरिमेंट के लिए तो अपने ही होते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम।
0: तलाक, आज तो तुम्हें तलाक दे दी है।
1: नहीं, मैं ये जरूर ट्राई करूंगा, अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया है। ठीक है तला भाई, पॉइंट टू बी नोटेड, जजाकल्ला मेरे भाई, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और तला भाई की बात जो है, ये भाई बेचारे जो थे, मैं इनको इन्होंने कॉल करी थी और मैं इनकी कॉल नहीं कर पाया, एक और कॉल आ गई थी, मुझे आज डांट पड़ने वाली है। अस्सलाम वालेकुम।
2: अरे वालेकुम सलाम मारा भाई, कैसा है?
1: मेरा भाई एकदम बढ़िया। पार्टी, क्या हाल है?
2: बस भाई जी रे।
1: और क्या भाई, कितना जीबी फूक रहे भाई?
2: भाई मन्ने यो बता भाई, तू कैसा है?
1: अरे मन्ने, अरे क्या बात है, मुंबई वाले हरियाणवी बोले, क्या बात है?
2: मन्ने मन्ने यो सवाल थारा, मैं छक्का लागे से।
1: बड़ा क्यूट लग रहा है भाई, हरियाणवी बोलते हैं सही में भाई,
2: क्या
1: एकदम
2: करेंगे
1: बढ़िया जा रहा है।
2: संगत का असर बोलते हैं भाई इसको, क्या बोलते हैं, संगत का असर
1: है। सही है, ट्रेनिंग सही जा रही है, ट्रेनिंग सही जा रही है। अच्छा, तो फिर एकदम बढ़िया भाई,
2: सही जा रही है भाई वो। एक तरफ भाई तू है और एक तरफ हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे रविन कुंडू है भाई, वो तो अलग ही लेवल के आदमी है भाई।
1: तो कितना भूख दे रहे हो जी भी?
2: अरे उनकी चक्कर में, तुम लोग की चक्कर में तो भाई समझ रहे, रोज हर महीने का 100 रियाल तो आराम से जा रहा है भाई, खेलते कूदते जा रहा है,
1: खेलते कूदते 100 रियाल जा रहा है। और ये मिनट्स वगैरह यूज कर रहे हो नहीं, मतलब मिनट्स कॉल ही नहीं करनी किसी?
2: सच्ची बताओ भाई, रूम के अंदर रहो तो वाईफाई यूज करो, फ्री का वाईफाई, कोई टेंशन नहीं।
1: हाँ।
2: रूम के बाहर जाओ तो MB फूको फुल दबा के, मैच देखो, ये देखो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब में पूरी MB गुजारी।
1: हाँ।
2: और लोकल मिनट की बात करेंगे तो भाई हमारे समझ रहे, कभी SM पे फोन लगा दिए
1: सुबह
2: में, आफ्टरनून में, इवनिंग में।

0: फालतू में खोटा, बस खर्चा करने से मतलब है, खर्चा करो कैसा भी उसको, 100 रियाल पूरा अपना खर्चा करो कैसा भी।
1: अच्छा तो
0: अब बच्चा इंटरनेशनल कॉल, मेरे घर वाले क्या बोलते मालूम मेरे को,
1: क्या
0: रे मेरा बेटा हमारा क्या अमीर हो गया, बोले बहुत बोले पहले बोले पहले ये हम लोग को वीडियो कॉल करने का, डेली वीडियो कॉल करने का, हम लोग पूछने का भाई कभी कभी नेटवर्क खराब होता है इसलिए फोन नहीं करता, और अभी ये डायरेक्टली फोन लगाता, बोलते हैं अम्मी कैसे क्या हाल चाल है।
1: मैं तो साहब बन गया,
0: बोलते इंटरनेशनल कॉल आ रहा है मेरे बेटे का, बोले इंटरनेशनल कॉल।
1: वाह भाई, हमारे साथ भी ये घर वाले उठाते नहीं इंटरनेशनल कॉल, बोलते अरे बेचारा गलती से लग गया होगा।
0: नहीं नहीं, मेरे घर वाले तो बिंदास उठाते, बोलते नहीं इसका तो इंटरनेशनल कॉल है, उठाना पड़ेगा भाई।
1: अरे क्या बात है, क्या बात है, नहीं बहुत बढ़िया मेरा भाई। आसिफ भाई, लेकिन आज जो है ना आपको कहानी सुन के मजा आने वाला है, तो कल की भी नहीं सुनी है कि बहुत लोगों ने कल
0: भाई, मैंने कल की सुनी थी भाई, वो जापान वाली भाई की, मैं तुमको बोला
1: था। हाँ, कल तो आपने बोली, मैं कह रहा हूँ मैं भेजूंगा आज दोनों एक साथ ही, जरूर सुनिएगा मेरा भाई। तो कहानी का वक्त हो रहा है, आराम सेटल डाउन, आराम से सुनो आज की कहानी, ठीक है?
0: बस सुना दो भाई, जल्दी जल्दी क्या है, रूम में बैठा हो भाई, रूम में बैठ के अपने तुमको सुन रहा हूँ, और कुछ नहीं।
1: डन है मेरा भाई, बहुत प्यार भाई को, और हरियाणवी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको बढ़िया।
0: अरे भाई दे दो भाई, मक्का दे दो
1: फिर दिल्ली में घूमना बढ़िया, जाट भोजी लिखा के गाड़ी पे
0: अरे कोई बात नहीं भाई, दिल्ली को अपन बुलवा लेंगे इधर।
1: ठीक है आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बहुत प्यार, थैंक यू,
0: ओके भाई,
1: ओके भाई, अल्लाह हाफिज भाई। तो मैं बस देखो क्या है, एक भाई है वो नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत पहले मुझे मैसेज किया था, एंड आई एम ट्राइंग टू कॉल हिम फॉर अ वाइल नाउ, सो मैं सबसे पहले उन्हें कॉल कर लेता हूँ, और आज मुझसे बहुत सारी कॉल मिस हुई हैं, तो प्लीज़ माजरा था, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कभी आप सोचे मेरी कॉल नहीं उठाते हो स्पेसिफिकली, तो मुझे नाम नहीं पता है आपका ना, मैं सिर्फ नंबर देख के मिला रहा हूँ, सॉरी नंबर देख के उठा रहा हूँ, नाम देख के नहीं उठा सकता ना मैं, बाकी इन्होंने नहीं उठाई तो बात दूसरी है। बाकी मैं से इस्लाम कबीर भाई, वालेकुम सलाम, आतिफ हूँ मैं, एक अच्छा एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम,
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू,
1: वालेकुम अस्सलाम पार्टी, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको बहुत तंग किया है आई नो, बट फाइनली हमारी बात हो रही है, कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, आप कैसे हैं भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई एकदम भला चंगा है मेरे भाई।
2: मैं वो परेशान हो गया कि मैं कॉल आया भी कट भी हो गया, फिर
1: कंफ्यूजन दो तार आपस में टकरा गए मेरे भाई, दो कॉल लग गया।
2: अच्छा दो तार आपस में टकरा गए तो कंफ्यूजन होगी, दो तार आपस में टकरा गए तो कहीं कहीं तो मोहब्बत हो जाती है।
1: आए हे हे हे हे हे, क्या बताए, क्या बताना चाह रहे थे मेरे भाई, क्या सीन है आपका इंटरनेट फूकने का?
2: ये बोलना चाह रहा था कि हमारे खतर में एक मरतबा इतना लेजेंडरी बंदा आया था ना, जबरदस्त, उसने 2 साल काम किया और इतना इंटरनेट यूज किया कि आप बता नहीं सकते
1: क्यों, क्या हो गया?
2: तो मुझे उसने हैबत में डाल दिया था, क्योंकि मैंने उसे लेकर आया था मजलिस में काम करने के लिए, उस बंदे ने 2 साल में 1 रियाल का भी रिचार्ज नहीं किया।
1: कैसे कैसे?
2: यही तो है।
1: अरे क्या फाइबर ऑप्टिक के तार खा रहा था, क्या कर रहा था वो, इंटरनेट कैसे ये कहां से भाई?
2: हमारा 65 का रिचार्ज महीने में खत्म हो जाता था, क्योंकि हम तो ड्राइवर है ना, वो तो मजलिस में काम करता था, लेकिन 2 साल में 1 रियाल का उसने ना रिचार्ज खरीदी किया, 2 साल में ना कभी उसने क्या बोलते वो वॉशिंग पाउडर कभी उसने खरीदी नहीं किया।
1: अच्छा,
2: 2 साल में कभी उसने एक साबुन खरीदी नहीं किया। जाते वक्त उसने मुझे मेरा हिसाब बताया, आपके पाउडर के इतने रुपए लग गए, आपके साबुन के इतने रुपए लग गए, आपके जो बाहर चाय वो पीते आपने इतना खर्चा कर दिया। मतलब भाई हार्ट अटैक आ जाएगा, हिसाब मत बता मुझे यहाँ का।
1: तो वो आदमी था क्या, वो मतलब इसी धरती से था, कैसे किया उसने, कुछ राज नहीं पता लगा?
2: हम आज भी उस सोच से नहीं निकल सके भाई, बर्तन धोने की फेरी से वो कपड़े धो देता था अपने।
1: कहाँ कहाँ का था वो आदमी, किधर गया?
2: हैंड वॉश से नहा लेता था, बोलता था बस पैसे खर्चा नहीं करने का इधर।
1: कहाँ गया उसे ढूंढो, किधर है वो, किधर है वो आदमी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह है, नाम नहीं बोलूंगा,
1: नाम मत बोलो।
2: आज इंडिया में एक ने बेहतरीन अपनी दुकान डाल के वो कमा रहा है
1: यार। ठीक है, सलाम है मेरे पास, और कुछ तो कहने के लिए नहीं, तो वो बहने बनना मुश्किल है, किस तो वो के सलाम भी देता तो कमाल का आदमी था वो दुकान चला जो चलाने गया है ना इंडिया में, कामयाब है वो उसको कोई फेल नहीं करता।
2: हम साथ थे रूम में, मैं बोला भाई अगर तेरे साथ रहूंगा मैं तो इतना बखील हो जाऊंगा, मैं 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं, साथ में लेकर जाओ चाय पीने के लिए, वो भाई 20 रुपए की चाय हो गई वो 1 रियाल की।
1: सही खोली उसने दुकान, सही खोली है वो दुकान का, सही सिस्टम है उसका
2: भाई इंडिया का।

0: हिसाब इधर मत लगाओ वरना एक नहीं भूखे मर जाएंगे यार, कहीं कुछ खा नहीं सकते पी नहीं सकते।
1: करेक्ट, ये कभी नहीं करना वरना फिर ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जजाकल्ला,
0: बहुत शुक्रिया,
1: ख्याल रखिए भाई। तो शॉकिंग चीजें पता लग रही हैं आप तो, मैं निशब्द हूँ। वालेकुम अस्सलाम फरद भाई, अरे भाई इतना ही बखील नहीं बनना भाई, ज्यादा हो गया ना। अच्छा एक मैसेज आया, प्लीज इसको ध्यान सुनिएगा। मुझे लिखा है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैसे हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, प्लीज इनके लिए दुआ कीजिए। उन्होंने लिखा है, मेरा नाम आतिफ है और मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ, आपका रेडियो सुनता हूँ तो खुशी मिलती है और अच्छा लगता है, प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे किडनी मिल जाए ताकि मैं डायलिसिस छोड़ सकूँ। मेरे भाई सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा भाई के लिए, प्लीज दुआ करें, बहुत दिल से उन्होंने मैसेज किया और पहला मैसेज उनका आतिफ भाई का। आतिफ भाई इफ यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, दिल से दुआ मेरे भाई, सेहतमंद हो जाए और इन्हीं चंद महीनों में बिल्कुल आपको खुशखबरी मिले और सब बढ़िया हो जाए। बहुत सारा प्यार आपको एंड हम सब दुआ करें आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे मेरे भाई। एंड एक सलाम दुआ करने के लिए वैसे नसीम साहब, वालेकुम अस्सलाम। देन कबीर भाई क्या मच्छर का नाम और रिजवान का नाम ले देना, सलाम बोल अली मच्छर, ये सरनेम आपने दिया समझा नहीं। एनीवे हम लेट हो चुके हैं कहानी के लिए, सो मैं कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ एक गाने के बाद। तो आज की स्टोरी ऑफ कोर्स आज की और कल की दोनों की मिला के दूंगा मैं 666-22107 पर। एक मैसेज है आसिफ भाई, भाई भाई भाई भाई भाई तैला भाई थैंक यू, गुड मॉर्निंग। अब जरा मैं गाना चला दूँ, इसके बाद सीधा कहानी है। तो अगर आप मुझे लाइव सुन रहे हैं तो आ जाइएगा 666-22107 पर, 666-22107 पर, जस्ट लेट मी नो के यू आर लिसनिंग टू मी लाइव। एंड एक दो और मैसेजेस हैं मुझसे छूटे हैं, मैं उसके लिए पहले ही माजरत चाहता हूँ, प्लीज़ गुस्सा नहीं करने का। चलो एक पढ़ देता हूँ, आप देखेंगे अक्सर कंपनीज टर्म्स एंड कंडीशंस कॉर्नर पे छोटा से लिखती हैं, कंपनी से छोटा लिखती हैं, आँखें बड़ी करनी पड़ेंगी हमें। एंड कल की आनी फिक्र ना करें, कल की आज की एक साथ मिल जाएगी। बंटाएगी पब्लिक, मचाएंगे 737 बाय द क्लॉक में दो हवाला कबीर FM 107 पे। हाँ भाई,
2: व्हाट इज अप
1: पब्लिक,
2: सब लोग क्या चालू,
1: क्या बोलती पब्लिक, कहानी सुनेंगे क्या, सुना दूं
2: मचाएंगे
1: दोनों मिला दिया मैंने टपोरे हरियाणा
2: में, अभी कुछ नहीं है फ्री क्या
1: मचाएंगे क्या
2: मचाओ
1: 3 मिनट क्या
2: तैयारी की नहीं बबले।

जाएंगे। 7:40 हो चुके हैं, आप जरा कहानी सुनाएंगे क्योंकि आज कहानी के लिए लेट हो गए, बट डोंट वरी, कहानी तो फिर भी आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड बिफोर आई इवन बिगिन टेलिंग यू द स्टोरी, कुछ मैसेजेस जो थे उन सबको मैंने रिप्लाई कर दिया, नहीं कर पाया तो प्लीज़ माजरत, गुस्सा नहीं कीजिएगा, भड़किएगा नहीं, ठीक है, ये इंटरनल गुस्सा बचा के रखिए, का तारीफों में लगाइए। मैंने भी सोचा थोड़ा ज्ञान दे दूँ। वेल एनीवे, 666-22-107 नंबर है, 666-22-107, एंड अब ज़रा आज का किस्सा, बिकॉज टुडे स्टोरी इज़ लिटिल डिफरेंट। ये आपको एक ऐसा केस में सुनाने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी मशहूर भी है, मतलब ऑब्वियसली हमारे सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, लेकिन बाहर ये बहुत मशहूर है। सो लेट्स बिगिन, एंड मैं वो एक सेकेंड वो रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों स्टोरी आज आपको मिल जाएंगी एक साथ, ठीक है, रेडी। सो सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस गाने का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, गाने किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, इनफैक्ट आज की कहानी जो है किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देती है ना ही कभी FM 107 देगा, लेकिन आज का किस्सा इट्स अ रियल केस, सो लेट्स बिगिन। तो देखिए आज का जो किस्सा है इसे सुनाने के लिए मैं कुछ साल आपको पीछे ले चलता हूं। साल 2011 में चलते हैं, मार्च का महीना था, 15 मार्च 2011, और दोपहर के तकरीबन 1 बज रहे थे। इस वक्त एक 16 साल का लड़का जिसका नाम था मार्कस फ्रीमन, वो अपने फादर के अपने वालिद साहब के पिकअप ट्रक में था, ड्राइव करता हुआ जा रहा था ये 16 साल का लड़का, और साथ में रेडियो पर उसके फेवरेट गाने चल रहे थे, तो वो उन गानों को गुनगुनाता हुआ साथ में लिरिक्स गाता हुआ जा रहा था। उसके साइड में पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी उसकी बड़ी खास दोस्त जिसका नाम था कार्ली। कार्ली जो थी पैसेंजर सीट पर थी, और दोनों मिलके गाने गुनगुना रहे थे। ये दोनों एक हाईवे से गुजर रहे थे, और ये जो हाईवे था ये था नॉर्थ पोर्ट फ्लोरिडा में। ये दोनों जो थे लौट रहे थे डेंटिस्ट के यहां से, तो डेंटिस्ट के यहां गए थे, बेसिकली मार्कस जो था उसके दांत में बहुत प्रॉब्लम थी बहुत वक्त से, और इसी वजह से उसे वहां जाना पड़ा। अभी उसका जबड़ा सूजा हुआ था, दर्द में था वो, मगर दोनों के दोनों फिर भी गा रहे थे, और पूरे दर्द को इग्नोर कर चुका था मार्कस, ही वाज एंजॉयिंग, और ये एक तरीके से तरीका काम भी आ रहा था। लेकिन जैसे ही गाना खत्म होता उसका दर्द वापस लौट आता। He was like, गाना चला। और वो गाने चेंज करता, गाने के साथ गुनगुनाता, उसके साथ में कार्ली गाती तो दर्द थोड़ा कम लगता था, लेकिन जैसे ही गाना खत्म होता वो दर्द लौट आता। मगर मार्कस के लिए दर्द कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। मार्कस हालांकि था 16 साल का लड़का ही, मगर फिजिकली डिसकंफर्ट की उसे आदत थी, फिजिकली और इनफैक्ट मेंटली भी, क्योंकि वो अपनी वेरेसिटी फुटबॉल टीम का क्वार्टरबैक था, हाई स्कूल में खेलता था, और नॉर्थ पोर्ट हाई उसके स्कूल का नाम था, अच्छी खासी पोजीशन पे और स्टार प्लेयर, पिछले साल से फिजिकल फिटनेस पे अपने काम कर रहा था लगातार, तो ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग ले रहा था वो, और खुद को इतना क्रश कर रहा था मेंटली और फिजिकली कि उसके लिए ये नॉर्मल दर्द तो कुछ भी नहीं थे, वो एडजस्ट कर लेता था। पर ऑब्वियसली है तो 16 साल का ही, तो 16 साल का होने की वजह से उसका जो दिमाग था थोड़ा सा नर्व्स रहती थी, थोड़ा सा जल्दी नर्वस हो जाता था, एंग्जाइटी हो ही जाती थी बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में जाते हुए, इसलिए स्कूल के जो काउंसलर्स होते हैं उनके पास बैठा करता था, वो बात किया करता था, अपनी एंग्जाइटी को डिस्कस किया करता था, और बाकी बच्चे भी ये करते थे, तो स्कूल का फंक्शनिंग बेसिकली बाहर ऐसा ही, नॉर्थ पोर्ट हाई का इन अमेरिका दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा ही था। अब वो चाहता था अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना कैसे ना कैसे, एंड मार्क

वॉज अ वेरी फॉरवर्ड लीनिंग बच्चा, कहने का मतलब ये कि वो हर काम में आगे रहने वाला, कोई किसी किस्म का आलस नहीं, लाइक वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, जो काम उसे दिया जाए वो पहली फुर्सत में कंप्लीट करने में लग जाता था, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्जन विजन वाला बच्चा, फुटबॉल टीम में लीडरशिप, और इनफैक्ट फुटबॉल टीम जो इतने सालों से हार रही थी नॉर्थपोर्ट हाई की इस स्कूल की, वो इसकी लीडरशिप में उसका बेस्ट सीजन जा रहा था, बेस्ट सीजन। मगर आ जाते हैं जरा उस स्कूल में जिसमें मार्कस पढ़ता था, स्कूल का नाम था नॉर्थपोर्ट हाई। इसके हालात कुछ खास नहीं थे, लो ग्रेजुएशन रेट्स, बहुत ही बुरे टेस्ट रिजल्ट्स, और स्पोर्ट्स में बहुत बहुत पीछे था ये स्कूल, तो बेसिकली नॉट अ वेरी गुड स्कूल अगर आप एक्सटीरियर से देखें। लेकिन सब कुछ इंप्रूव होता नजर आने लगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि टेस्ट रिजल्ट्स भी सुधर गए, ग्रेजुएशन रिजल्ट्स में भी सुधार आया, और स्टूडेंट्स थोड़े से खुश लगने लगे थे। इसके पीछे वजह थी एक शख्स का विजन। नॉर्थपोर्ट हाई के प्रिंसिपल, जिनका नाम था जॉर्ज केनी, 10 साल से वो प्रिंसिपल रहे इस स्कूल के, मगर पिछले कुछ सालों में उन्होंने कुछ बदलाव किए। उन्होंने कहा कि मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम लेकर आ रहा हूं। इंडिविजुअल सपोर्ट सिस्टम ये था कि वो हर स्टूडेंट को अलग अलग उसकी स्किल के हिसाब से उसको चीजें देंगे और बढ़ावा देंगे, और रिजल्ट बहुत बहुत शानदार था। हर स्टूडेंट अपनी स्किल को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर आगे आ रहा था और चीजें सुधर रही थी। बट राइट नाउ लेट्स गो बैक इन द कार, जहां पे मार्कस और कार्ली गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाने चला रहे हैं। जबड़े में उसके बहुत तेज दर्द था और गाड़ी में ना वो थोड़ा डिजी फील कर रहा था, अजीब से चक्कर से आ रहे थे उसको। उसने बोला कार्ली से, कार्ली आई डोंट नो यार, मेरे पास दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। और फिर कार्ली ने बोला, अरे तुम कुछ करते हो ना, मेडिटेशन करते हो ना तुम, यू वॉन्ट मी टू ड्राइव? तो बोला, नहीं नहीं मैं ड्राइव कर लूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। और फिर एक कहने के बाद एकदम चुप हो गया मार्कस, और वो एक मेंटल फिजिकल पेन को रोकने के लिए एक एक्सरसाइज करने लगा, और एकदम चुप होकर एक्सरसाइज कर रहा था। ड्राइव करते करते कार्ली, जो कि उसके साइड में बैठी हुई थी, कार्ली गाने गा रही थी, रेडियो को चेंज कर रही थी, गाने ढूंढ रही थी, लेकिन फिर उसने अपने साइड में देखा and she was like confused for a while. पहले उसे याद आया कि हाँ, उसे मार्कस ने बताया था कि वो एक किस्म का मेडिटेटिव एक्सरसाइज करता है, जहाँ पे वो पेन को अपनी बॉडी से अलग करता है, और वो जॉ पेन से थोड़ा परेशान भी है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा फोकस रहना चाहता हो, अपने माइंड को सेपरेट करना चाहता हो। उसने देखा कि एकदम से वो दर्द से जो करहा रहा था कुछ देर पहले मार्कस, अभी चुप हो गया है। रेडियो बदलना बंद कर दिया कार्ली ने, और रेडियो कुछ देर के लिए बंद करके, और फिर उसने आवाज देना शुरू करी मार्कस को, जो कि ड्राइव कर रहा है, भाई तुम्हें ड्राइव कर रहा है, मेरे को कुछ बोल नहीं रहा है। कार्ली ने बोला, मार्कस यू ओके मार्कस? और मार्कस रिप्लाई नहीं दे रहा। जस्ट इमेजिन कार्ली की क्या हालत होगी कि वो ड्राइव भी नहीं कर रही है, गाड़ी उसके कंट्रोल में भी नहीं है, और मार्कस जो कि बैठा हुआ है साइड में, वो एकदम चुप है। मगर सिर्फ चुप होना ही ज्यादा अलार्मिंग नहीं था, मार्कस जो गाड़ी चला रहा था उसने इतनी ज्यादा जोर से स्टीयरिंग पकड़ी हुई थी, इतनी स्टिफनेस उसके हाथों में नजर आ रही थी, जैसे वो अकड़ गया हो। स्टीयरिंग पकड़ने के बाद वो थोड़ा सा और पीछे हुआ हुआ था, उसकी आंखें जैसे धीरे धीरे पीछे चढ़ रही थी, हाथ पीछे हो रहे थे, वो खुद पीछे हो रहा था। और कार्ली ये देखकर, अब जो धीरे धीरे बोल रही थी मार्कस, वो चिल्लाने लगी, मार्कस उठो, व्हाट हैपेंड मार्कस? और वो चिल्लाए जा रही है, एंड ये गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, और बोल रही है, मार्कस तुम क्या कर रहे हो, मार्कस ब्रेक लगाओ मार्कस। एंड मार्कस वॉज नॉट लिसनिंग, जवाब ही नहीं दे रहा था। गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली गई 80 से 100, 120, 150, और ये बहुत वेयर्ड तरीके से गाड़ी चल रही थी। कार्ली अब रोने लगी, पैनिकिंग मोड में आ गई, और उसे झंझोड़ रही थी पकड़ के, उसे कह रही थी, उठो मार्कस कुछ बोलो, लेकिन मार्कस वॉज नॉट रिप्लाइंग। उसने सब करके देख लिया, इतनी देर में वो कुछ

और कर पाती। उसने बाहर विंडो के देखा गाड़ी के तो बहुत देर हो चुकी थी। इनका जो ये पिकअप ट्रक था ये रोड से उतरा, ऑफ रोड हुआ और जाके पेड़ से टकराया और चंद सेकंड्स में इट वाज अ कंप्लीट ब्लैकआउट काली के लिए। चंद घंटों के बाद कार्ली की आंखें खुली, उसका पूरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा था, सर एकदम भारी हो रहा था। आंख धीरे से खोल के वो सोच रही थी कि वो आखिर कहां पर है, पर उसने देखा सफेद दीवारें और मशीन की बीपिंग साउंड। उसे अंदाजा हुआ कि ओके आई एम इन द हॉस्पिटल राइट नाउ। और फिर वो सारी मेमोरीज वापस आने लगी, सब कुछ याद आने लगा कि क्या क्या हुआ था। उसे याद आया कि लास्ट जो उसकी मेमोरी है वो ये है कि गाड़ी टकरा गई थी। वो अपना सर पकड़े उठने की कोशिश कर रही थी, इतने में एक नर्स आती नजर आई उसे, और कार्ली ने जैसे ही नर्स को आते हुए देखा उन्होंने बात करना शुरू करी। कार्ली ने बोला, नर्स मेरे साथ एक लड़का था मार्कस, मार्कस वो कहां पर है, मुझे उससे बात करनी है। एंड नर्स ने ऑब्वियसली बहुत सीरियसली कार्ली को बोला, यू नीड टू रेस्ट, आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मैम जो आपके साथ थे ही इज डेड, हम उन्हें नहीं बचा पाए। एंड कार्ली पूरी तरह से बिखर गई बिकॉज उसे मार्कस सच में बहुत अच्छा लगता था, उसे हंसाता था, वाइब मिलती थी और उसे लगता था कि बहुत बढ़िया रिश्ता हो सकता है आगे जाके, बट फिर ये हो गया बीच में। एक महीना बीत गया इस बात को, 8 अप्रैल आ चुकी थी, कार्ली जो थी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी, और इस वक्त ऑन द 8th ऑफ अप्रैल वो अपनी स्पेनिश क्लास में थी नॉर्थ पोर्ट हाई स्कूल में। टीचर सामने थी और जो वो पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, कार्ली का कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं था, वो ध्यान नहीं दे पा रही थी क्लास में। उसे पूरा समझने की उसने लाख कोशिश करी बट शी कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड बिकॉज वो फिजिकली भले ही हील हो चुकी थी, ठीक हो गई थी, लेकिन इमोशनली बहुत ज्यादा टूटी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मार्कस को अचानक क्या हुआ, और उसे कुछ पता भी नहीं चला कि मार्कस अचानक से ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था। ये एक ऐसी मिस्ट्री बन चुकी थी जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रही थी, और वो उस वक्त अकेली थी, आसपास कोई भी नहीं था वो चीज देखने के लिए जो उसने देखी। मार्कस का वो हाल जिस हाल में उसने देखा, नोबडी नोज। तो ये मिस्ट्री उसी से जुड़ी रही। मीडिया में जब ये खबर फैली, क्योंकि एक स्कूल की बहुत बड़ी बात थी, तो मीडिया ने तो क्या क्या नहीं छापा। मीडिया ने बोला, एक नौजवान लड़का पिकअप ट्रक चलाते हुए अपना कंट्रोल खो बैठा और पेड़ से टकरा गया ट्रक, जो खबरें छापते हैं लोग। सो दे वर टाइपिंग ऑल दीज हेडलाइंस। मगर कार्ली जानती थी कि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं था जो छापा जा रहा है कि लूज कंट्रोल, नौजवान लड़का पिकअप ट्रक चलाते हुए ऑफ रोड हुआ और टकरा गया, ऐसा नहीं था। कुछ था, उस वक्त मार्कस एक ट्रांस में चला गया था, एक अजीब से जोन में चला गया था, उसे कुछ तो हुआ था पर वो समझा नहीं पा रही थी किसी को भी। स्पीड नहीं बढ़ाई उसने एकदम से, वो बाद में जब वो ट्रांस हुआ तब उसकी स्पीड बढ़ी। कोई मौसम खराब नहीं था, किसी किस्म की रोड़ा नहीं था सड़क पे, बस वो अचानक से फ्रीज हो गया, एकदम से जैसे अकड़ गया। कुछ तो हुआ, किसी चीज ने ट्रिगर किया, पर नोबडी नोज। अब स्कूल के अंदर जो बातचीत चल रही थी वो ये थी कि हो सकता है कि जब मार्कस कार्ली के साथ डेंटिस्ट के यहाँ गया तो वहां पे जो वो करता है ना, सुन कर देते हैं दांत को ठीक करने के लिए, कुछ ना कुछ उसने कराया होगा, तो हो सकता है कि सेडेशन की दवाइयों की वजह से कोई रिएक्शन हो गया, या तो कोई बहुत ही रैंडम सा मेडिकल इवेंट हुआ और उस वजह से ही हुआ, मगर हुआ दवाइयों की वजह से ही होगा ऐसा लोग स्कूल में मान रहे थे। मगर फिर उनको गलत साबित करने के लिए सामने आ गई ऑटोप्सी रिपोर्ट। मार्कस की जो ऑटोप्सी रिपोर्ट थी उसमें किसी भी किस्म की दवाइयों का ट्रेस नहीं था, नो ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, कुछ नहीं, और उसे सीजर भी नहीं हुआ था, कोई ब्रेन एन्यूरिज्म भी नहीं हुआ था, कोई स्ट्रोक भी नहीं आया था। तो सारी की सारी थ्योरीज जितनी भी लोगों ने बनाई वो सारी गलत निकली। जब उसे स्ट्रोक नहीं आया, ब्रेन एन्यूरिज्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो आखिर हुआ क्या? और ये जो इंसिडेंट था, इट बिकेम अ मिस्ट्री, और ये मिस्ट्री बहुत बहुत गहरी होती गई। मगर इस इंसिडेंट में, ये जो एक्सीडेंट हुआ,
इस

में कोई भी आगे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी क्योंकि डिपार्टमेंट ने मान लिया था कि ये एक महज एक्सीडेंट है जिसमें कोई गहरी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। और कार्ली ऑब्वियसली एक 16 साल की लड़की, वो क्या ही कर ली थी, कौन उसकी सुनने वाला था। कार्ली ने भी ये मान लिया था कि कभी इस बात का जवाब नहीं मिलेगा कि आखिर गाड़ी में मार्कस को क्या हुआ था। इट विल रिमेन अ मिस्ट्री। कार्ली के लिए बहुत मुश्किल था नॉर्मल लाइफ में एकदम से वापस जाना। हो सकता है कि अगर उसे पता होता कि मार्कस के साथ क्या हुआ था तो शायद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जा पाती, मूव कर पाती, लेकिन उसे खुद नहीं पता क्या हुआ एंड दैट वॉज बॉदरिंग हर। और सिर्फ कार्ली की लाइफ में नहीं, मार्कस एक बहुत पॉपुलर बच्चा था, बहुत पॉपुलर बच्चा था, सब उससे मोहब्बत करते थे, बड़े बड़े मेमोरियल्स होते थे उसके लिए, स्टूडेंट्स गैदर होते थे, चांसलर्स आते थे, प्रिंसिपल्स रखते थे, बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट उसके लिए। बहरहाल जब ये स्पेनिश क्लास में बैठी हुई थी अभी कार्ली और कोशिश कर रही थी फोकस करने की, तो इतने में कार्ली ने क्लास अटेंड करते करते सुना, स्कूल में एक अनाउंसमेंट सिस्टम होता है, एक तो घंटी होती है और नॉर्थ पोर्ट हाई में एक अनाउंसमेंट सिस्टम था जहां से जो टीचर्स हैं या प्रिंसिपल हैं वो कुछ अनाउंस कर सके। एंड उसे एक आवाज सुनाई दी कि आवाज आने वाली है, और जैसे ही माइक ऑन हुआ कार्ली का ध्यान और पूरी क्लास का ध्यान उस तरफ चला गया। माइक पर अनाउंसमेंट करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल थे मिस्टर जॉर्ज केनी। अमूमन बड़े पॉजिटिव रहते हैं, उनकी टोन भी हमेशा पैपी रहती है, लेकिन जब वो माइक पे बोलना चाह रहे थे तो उनकी आवाज ऐसे टूटी हुई थी, एक किस्म का डर उनकी आवाज में था। उन्होंने अपना गला साफ किया और फिर बोले, वेरी सैड टू अनाउंस

हम सब प्लीज असेंबली की तरफ आ जाएं। उन्होंने इतना सा अनाउंस किया एंड सब हक्के बक्के रह गए। कार्ली सोच रही थी ये कैसे हो सकता है, दो महीने में दो लोगों की जाने गई और दोनों की दोनों बड़ी अजीब तरीके से। एक तो मार्कस जो समझ नहीं पाई वो अभी तक, और जो दूसरी दूसरी जान गई वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी, तो उसने खुद के साथ कुछ किया। सो ये इसलिए भी वेर्ड थी क्योंकि नॉर्थ पोर्ट हाई ऐसी जगह थी जहां ये हो नहीं सकता है, मगर ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ हफ्ते और बीते और मई का महीना आया। कार्ली के लिए और सबके लिए ये केस ऑलरेडी बड़ा अनबिलीवेबल था, लेकिन अब ये केस अनथिंकेबल भी हो गया था, अब सोचना ही मुश्किल हो गया था। और अब शक की सुइयां जा रही थी क्योंकि एक और स्टूडेंट की जान जा चुकी थी। अब सब जाग रहे थे क्योंकि सबको अब शॉक लग गया था, दो का लगा था कि इत्तफाक हो सकता है मगर तीन का ना, देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग। और अभी स्कूल में ऐसा माहौल हो गया था कि वो इंतजार कर रहे थे चौथी बुरी खबर का, यू नो समटाइम्स ज्यादा हो जाता तो यू ब्रेस योरसेल्फ कि अब भी कुछ हो सकता है। मगर फिर एक बहुत ही अजीब ट्विस्ट आया इस केस में। कार्ली जो थी वो अपने कंप्यूटर पे थी और सोशल मीडिया पे घूम रही थी। सोशल मीडिया पे जाते जाते उसने एक पोस्ट देखा और वो उसके स्कूल का ही पोस्ट था। वहां पे स्टूडेंट ने, उसके फेलो स्टूडेंट ने एक चीज पोस्ट करी थी और उसने लिखा कि तीनों स्टूडेंट के बीच में एक चीज कॉमन है, और वो चीज जो कॉमन है वो छोटा सा मैसेज जो उसने लिखा उस पोस्ट ने पूरे के पूरे केस को बदल कर रख दिया। दरअसल सब लोगों के पेरेंट्स को लगता था कि वो अपने बच्चे के इंप्रूवमेंट के लिए एक ही शख्स को जिम्मेदार ठहराएं और वो है प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल मिस्टर जॉर्ज केनी। मगर मिस्टर जॉर्ज केनी का एक बहुत बड़ा राज भी था। बहुत दिनों से वो पेरेंट्स और स्टाफ मेंबर्स से मिलकर बहुत सारे पर्सनल इश्यूज रिजॉल्व करते थे और उन्होंने एक प्लान शुरू किया था, एंग्जाइटी मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ इश्यूज। वो चाहते थे कि बच्चों का जो कंसंट्रेशन है, माँ बाप का कंसंट्रेशन है, टीचर्स का जो फोकस है वो बढ़ता चला जाए। नन दिस इज वेयर मामला और बिगड़ा। उन्होंने स्टूडेंट और स्टाफ मेंबर्स के लिए एक खास सेशन रखा और ये सेशन था हिप्नोसिस का, मतलब किसी को हिप्नोटाइज करना। वो बुलाते थे दो स्टूडेंट्स को हर दिन दो स्टूडेंट्स को बुलाते थे और एक प्राइवेटली रिकॉर्डेड सेशन होता था और उन्हें हिप्नोटाइज करते थे और वो सेम चीज टीचर्स पर भी करते थे। कभी कभी पूरी की पूरी स्पोर्ट्स टीम को बुला लेते थे और हिप्नोटाइज करते थे गेम से पहले ताकि वो गेम्स बहुत अच्छे खेल सके। उन्होंने ये चीज खुद तो करी ही करी मगर उन्होंने ये हिप्नोटिज्म की चीजें, किताबें बच्चों को दी ताकि वो खुद पे हिप्नोटिज्म कर सके। खुद मिस्टर जॉर्ज केनी ने एक ब्रीफ कोर्स लिया था हिप्नोसिस पे, पर कोई ऐसा लाइसेंस नहीं मिला था उन्हें कि वो इसे प्रैक्टिस कर सकें लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बट वो ऐसा लगातार कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि स्कोर सुधरेगा, बच्चों के स्कोर सुधरेंगे और स्पोर्ट्स में सुधार आएगा। ये सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी भी ये पकड़े नहीं जाते, लेकिन एक साइड इफेक्ट था। माँ बाप ने नोटिस किया कि उनके बच्चे जो हैं वो अब अलग सा बिहेव कर रहे हैं, जैसे उनकी पर्सनैलिटी नहीं है वो वैसा बिहेव करने लगे, बहुत ही अजीब से हो गए हैं, जैसे खुद के घर में अजनबी हो, एकदम दीवार घूरते रहते हैं, कुछ बात नहीं करते हैं और अपने आप को हार्म भी करते हैं। जब तीसरे स्टूडेंट के बारे में बताया कि वो भी नहीं बच पाया और सोशल मीडिया पोस्ट पे वो पहुंची तो पता लगा कि तीनों के तीनों ने सेशन ज्वाइन किया था मिस्टर जॉर्ज केनी का। ये एक स्टूडेंट की वजह से जब केस में ब्रेक आया, ये केस बहुत बड़ा हो गया और अब भागने का कोई रास्ता नहीं था जॉर्ज केनी के पास, एंड पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। उन्हें उन पे चार्ज लगाया गया फॉर प्रैक्टिसिंग थियोरोपेटिक हिप्नोसिस बिना किसी लाइसेंस के और उन्हें एक साल का प्रोबेशन मिला। इसके साथ साथ स्कूल वालों ने इन तीनों बच्चों के घर वालों को $6,00,000

डॉलर ईच दिए अलग अलग ईच बेसिकली. और डॉक्टर सॉरी द प्रिंसिपल जॉर्ज कैनी वापस तो बाहर आए लेकिन कभी उन्हें टीचिंग करने का मौका नहीं मिला बिकॉज ऑब्वियसली. ये केस के पूरे हो जाने के बाद जब ये खबर बहुत ज़्यादा फैल गई थी सो अमेरिकन स्कूल्स में उस दौर में विद इन लाइक कितने साल हो चुके 2011 तो अभी ज़्यादा साल नहीं है, पर उस टाइम में जो स्कूल के अंदर प्रोग्राम्स लाए गए उनको बहुत ईजी बनाने की कोशिश की जाने लगी बिकॉज कुछ स्कूलों में हिप्नोटिज्म और ये सब प्रैक्टिस हो रहा था. एंड देन दे फिगर आउट कि कौन कौन से स्कूल में हो रहा है और इस केस की वजह से देर वर लाइक रेडी आप नंबर सुनने के लिए देर वर मोर देन 27 स्कूल्स जहां पे ये सेम प्रैक्टिस की जा रही थी. एंड 27 तो नहीं पर एटलीस्ट 10-12 स्कूल्स में ये बात फैलाने वाले खुद जॉर्ज कैनी थे क्योंकि वो ये मानते थे कि इससे स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी में सुधार आता है. सो या दिस वॉज द केस. एंड अब आपके हवाले 666-22107 नंबर है 666-22107 आपके मैसेजेस के इंतजार में. मैं दोहा वाला कबीर 666-22107.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: So 8:05 by the clock में दोहा वाला कबीर FM 107 में प्लीज बताइएगा आपको किस्सा कैसा लगा। आई नो आज छोटी कहानी थी बट ये अवेयरनेस के लिए थी और ये इसकी बताने के लिए थी कि जो बच्चों की मेंटल हेल्थ है वो बड़ों की मेंटल हेल्थ से बहुत अलग फंक्शन करती है। सो प्लीज़ उनका अलग तरीके से ख्याल रखें। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं मेरे से, मेरा तो काम है कहानी सुनाना। जो छोटा बहुत मैं थोड़ा बहुत सीख पाया हुआ आपको मैंने इस कहानी के जरिए बता दिया। बट या दिस स्टोरी वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज भाई मैं तो डर गया मैं सच में डर गया। ये कैनी अंकल बहुत डेंजर निकले। 666-22107 नंबर है, 666-22107। प्लीज़ बताइएगा। जैसे भर कहानी को प्यार देते हैं इसको भी दीजिएगा। मुझे कहानी को नहीं, मुझे मी इंसान प्यार का भूखा होता है। स्लोली स्लोली

0: ¿Qué hale, hombre? मैसेज आ गया मेरे पास तला भाई, कह रहे हैं कॉल करो, मैं बस दो मिनट में कॉल कर रहा हूँ, मैसेज पढ़ दूँ मैं सबके। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, एक भाई ने मैसेज किया है, देन कमाल की स्टोरी कबीर भाई, और ये मैसेज किया है सलमान भाई ने, सलमान भाई के बाद मैसेज आया है फराज भाई का, कह रहे हैं मिस्ड हो गई स्टोरी, गलत बात है फराज भाई। तो बस मैंने मैसेज किया है, दिस इज़ सो अनयूजुअल एंड रॉन्ग बट नाइस स्टोरी कबीर भाई, थैंक यू सो मच बहन। एक मैसेज आया आसिफ भाई का, लिखते हैं भाई आज क्या है, बच्चों पे अत्याचार करता है, इसको मुंबई भेजो, दिल्ली चाहिए, मुंबई नहीं चाहिए उसको। और कह रहे हैं कि भाई आज बहुत छोटी नहीं हो गई कहानी, एम भी ख़त्म हो गई। नहीं नहीं, आज आज थोड़ी छोटी कहानी, कभी कभी चलती है ना छोटी छोटी कहानी, आज निक्की निक्की कहानी। और मैसेज किया असलान भाई ने, कहते हैं लाइफ इंप्रिजमेंट होनी चाहिए थी, और क्या लिखा है ब्रो उस इंसान को, हाँ बिल्कुल अग्री, आई एम विद यू ऑन दिस। एक मैसेज आया है भाई, कहाँ से लाते हो ये कहानियाँ, बस मत पूछो, अगर जानोगे तो बहुत रो ना दो, मुझे डर लगता है क्योंकि बहुत गहराई में जाना पड़ता है भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच। ये मैसेज है हुस्नुद्दीन साहब का, एंड देन मैसेज आया है अमन भाई का, लिखते हैं नाइस स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी बट फॉर अवेयरनेस गुड टू हियर, कई मरतबा अवेयरनेस वाली भी सुन लिया करो। यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, देन गुड स्टोरी। एक मैसेज आया, एक भाई ने मुझे मैसेज किया है, आपको मैंने AI पे ढूंढा एंड मुझे काफ़ी कुछ आपके बारे में मालूम पड़ा है, आई एम सो इम्प्रेस्ड भाई, आप कभी बताते नहीं हैं अपने बारे में बट AI ने सब कुछ बता दिया आपके बारे में, अच्छी बात है ये तो, राजे और पढ़ो मेरे बारे में पिक्चर बननी चाहिए। एक मैसेज है भाई, जैपनीज स्टोरी का मूवी का क्या बजट होगा, मूवी बना लें भाई, सारा जो जो मुझे लगता है मेरा भाई, जैपनीज स्टोरी के लिए अगर मूवी बनाने का बजट होगा तो सारा कॉस्ट्यूम पर लगेगा, आधा तो कॉस्ट्यूम पर लगेगा, तलवारें तो नकली उठा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। नदीमा कहते हैं स्टोरी सुन के दिल में डर बैठ गया, ये क्या क्या करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन योर चाइल्ड एक्टिविटीज, हिप्नोटिज्म इज, बहुत सी कहानियां सुनी है लोग गलत इस्तेमाल करते हैं बट ये तो बिल्कुल अलग थी। जी भाई, दिस वन रियली मेड मी लाइक अवेयर, बड़ी अलार्मिंग टाइप की कहानी थी ये। एक जो है कॉल उठा लूँ, फिर मैं कॉल कर रहा हूँ तला भाई को। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए मेरे भाई क्या हाल है?
1: भाई आपकी कहानी में तो वैसा लगने लगा कि इंसान बचेगा तो कैसे बचेगा, कहाँ से बच के निकलेगा
0: आज कितने लोग बचेंगे, वैसा वाला सीन है
1: वही बात है ना भाई, कोई हिप्नोटाइजिंग से कर दे रहा तो कोई जो है टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे जो है एक ही शक्ल के हो रहे हैं, कहाँ से जाए साइंस, क्या करना चाहता है भाई?
0: और ये सारे के सारे
1: इंसानों के साथ में
0: ये किससे खुद चल के मेरे पास आते हैं, कहते हैं आप हमें ढूंढ रहे थे, हम आपको ढूंढ रहे थे
1: जबरदस्त कहानी भाई,
0: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये
1: डर लगने लगा है भाई अभी साइंस से,
0: नहीं पता ये
1: लोग करना क्या चाहते हैं,
0: अरे बहुत एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं लोग, लोगों के दिल में कहां कहां से क्या क्या एक्सपेरिमेंट है लोग सोच नहीं सकते, इट्स टू मच,
1: खुराफाती दिमाग।
0: हाँ हाँ वो तो है, और आप एक को रोकेंगे दस पैदा होंगे, दुनिया का ये सीन है। तो ये थी कमाल भाई आज की कहानी, आई नो छोटी थी बट जैसी थी
1: नहीं, छोटी थी, सबकदार थी, सबक क्या मतलब डर से जो है आज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी

0: भी हो सकता है, जैसे एआई से है ना, बोलते हैं कि कुछ भी हो सकता है एआई से, तो कुछ भी हो सकता है वाला हिसाब है।
1: बेशक बेशक नहीं आया।
0: और जो आप बता रहे थे उसका भाई, हाँ, कितना डेटा का, एक बार मैं फंसा था, उसके बाद से जो है ना पोस्टपेड बंद कर दिया। हमेशा पोस्टपेड ही चला था, जब से मैं कतर आया था पोस्टपेड ही चला रहा था।
1: अच्छा,
0: तो पहले कैसा था कि मैं जब छुट्टी जाता था 3 महीने की तो होल्ड करके जाता था, तो उस टाइम पे 30,000 लगता था। तो अभी जब लास्ट टाइम पे जाने का था तो उसको मैं बोला भाई होल्ड कर दो, बोले होल्ड वाला सिस्टम बंद हो गया, बोला भाई कैंसिल कर दे। तो बोले भाई कैंसिल करोगे अगर यही नंबर चाहिए रहेगा तो आपको 100 रियाल भरना पड़ेगा, पुराना है और सारा कुछ उसी पे है। मैं बोला भाई ठीक है, 100 रियाल भर के तो कैंसिल करा दिया।
1: अच्छा,
0: लेकिन उसके बाद अभी फोन आता है, भाई बाद में करो, अभी गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में करो गाड़ी चला रहा हूँ। किसी का फोन नहीं होता है क्योंकि भाई इतना इमोशनल लोग कर देते हैं कि भाई इतनी ये स्कीम दे देते हैं, वो दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, उसी में जो घुमा देते हैं।
1: तो आपका डेटा, तो आप मूवीज वगैरह काफी देखते हैं, तो आपका तो ज्यादातर इंटरनेट का ही लगता होगा ना?
0: नहीं तो मूवी देखता हूँ, तो रूम में वाईफाई है,
1: तो फिर तो
0: बाहर निकलता हूँ 65 का डेटे में महीना निकलता हूँ।
1: 65 में महीना निकल रहा है ना? अरे बहुत सही, एक चिकन 65 और 65, बहुत बुरा जोक था मेरा, सॉरी।
0: 450 लोकल कॉल मिल जाती है।
1: अच्छा,
0: जिसमें से 300 तक यूज हो जाती है।
1: अरे बड़ा सॉर्टेड मामला है आपका, बड़ा सॉर्टेड मामला है आपका, वेरी नाइस कमाल भाई, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, और कल तो और भी छोटी कहानी, कल तो लोग मुझे दौड़ाएंगे पर मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है,
0: हाँ भाई छोटी लेके आइए, बस सबकदार होती है,
1: नहीं
0: इंसान को समझने के लिए काफी है।
1: मजा आएगा, कल की कहानी बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत
0: ओके, कभी भाई, अल्लाह हाफिज़।
1: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और कमाल भाई के बाद जो है मैं कॉल करने जा रहा हूँ, एक सेकंड, बस लग गई कॉल, ये हमने मिला दी कॉल। एक मैसेज है, क्या करें? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बताइए। हाँ जी भैया,
2: भाई कबीर भाई,
1: जी भाई,
2: आप मेरे बड़े करीबी भाई है ना, आप मुझे बड़ा भाई बोलते हैं।
1: जी जी जी भाई,
2: आपसे मुझे एक बहुत फेवर चाहिए बड़ा ना, मैं देखो खाली हाथ नहीं लौटाना।
1: बताइए बताइए
2: यार, मैं चाह रहा हूँ कि कैनी अंकल का ना एक सेक्शन आपको दिलवा दूँ।
1: क्या दिलवा दूँ?
2: कैनी अंकल का ना एक सेक्शन मैं आपको दिलवा दूँ।
1: अच्छा, उससे क्या होगा
2: यार? $6,00,000 मिलेंगे भाई को तेरे।
1: अरे क्या बात है।
2: प्लीज यार, देख भाई दी है मेरा।
1: Let me think about it. Let me make a plan.
2: आज मैंने ना देख बड़ी आस लेकर आया हूँ मैं तेरे पास, पता नहीं करना। बड़ी उम्मीदों के साथ आया हूँ।
1: ये सुन के ना, ये सुन के ऐसे माइंड जाग जाते हैं, मैं जानता हूँ। मैं ये कहानी प्रिपेयर कर रहा था, मैं कहा यार ये तो बहुत कमाल की बात है।
2: मैंने कहानी सुनी, मैंने उसी पर मैसेज टाइप में मैंने मार दिया मार्कस को, इसने मेरा मार्कस मर गया।
1: शुरुआत में लग गया होगा ना मार्कस के लक्षण ठीक नहीं लग रहे, ये जाएगा।
2: मैंने कहा ये बार बार मार्कस मार्कस कर रहा है, मैंने कहा इसी मारे, मतलब इसी को मारेगा ये,
1: यही जाएगा।
2: मैंने कहा यही हुआ, मैंने कहा मार्कस भाई वो तो मरा वाकई में, जो बराबर में बैठी हुई थी ना वो तो बेचारी जिंदा हो गई, मर गई।
1: वो तो बच गई ना, कार्ली तो बची रही,
2: हाथ बच गई, उसकी आधी रो तो वही निकल गई होगी, गाड़ी कौन चला रहा है? ये तो मर गया।
1: बात तो सही है, मैं सोच रहा हूँ कितना कितना खतरनाक मंजर होगा उसके लिए, बेचारी के लिए, कि कुछ कर भी नहीं सकती है कैसे?
2: यार भाई नहीं है, एक टेंशन ना, एक टेंशन का सवाल है, वो ले ले भाई प्लीज।
1: ठीक है, मैं हिप्नोटाइज करने का मैसेज करता हूँ आपको, बहुत लंबा चौड़ा होगा, आपको पढ़ते रहना है कोने में बैठ के।
2: अबे मैंने नहीं ले रहा भाई, तू और भाई देखो सब काम होने से पहले ना फैमिली मुझे डिक्लेयर करनी है, भाभी का नाम तो नाम देना है, मेरा नाम देना है, ये ना गेम सारा मैं पहनूं, भाभी को फायदा हो जाए।
1: ये इसके बारे में सोच सकता हूँ मैं, दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन दिला भाई।
2: हाँ देख भाई प्लीज, भाई बोलता ना देख यार, आज देख खाली हाथ नहीं जाना देख भाई को ना।
1: ठीक है, मैं बोलूंगा सरवर भाई से अपने शो तक आपको जो है, या फिर मुझे सरवर भाई हिप्नोटाइज करेगा। अच्छा,
2: सरवर भाई पे काम करवा देते हैं वाला, क्या सब छोड़ भाई,
1: क्या
2: सरवर भाई पे करवा देते हैं, खाने की भी बचत होगी कतर में और अपना 6,00,000 का फायदा भी हो जाएगा।
1: ठीक है, सरवर भाई को बोलता हूँ कि आपको हिप्नोटाइज करने की बात करें तला भाई, और फिर देखते हैं शो में क्या बोलते हैं। ठीक है मेरा भाई, ओके मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और तला भाई के बाद जो है दो तीन और मैसेजेस हैं, जजाकल्ला आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप गाने का टाइम है, क्योंकि मैं इसके बाद बताऊँगा क्या क्या चल रहा है कदर में, डोंट गो। मैंने घड़ा का सुत्ता लागे सब भाई, रफ्तार अश्मित कुर।

आठ बज के 17 मिनट हो रहा है भाई, बढ़िया करके गाना सुनो। घना कसूता लागे से नंबर है जी 666-2107 मैसेज।

घना कसूता लागे से भाई, जब मैसेज करो करो ना आप, मौज आ जाए भाई, मौसम बदल देते हो आप मैसेज करके। मैसेज आया फैसल भाई, लिखते हैं भाई मैं वेट कर रहा हूँ, कर रहा था कि आज कितनों को निपटा हो गया, अल्लाह का शुक्र है तीन ही निपटे। लिखते भाई कहानी अच्छी थी और इससे सीख मिली है, बच्चों पे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा स्कूल एक्टिविटी पे ऑफकोर्स। मैसेज आगे लिखते हैं भाई, $600,000 $1,00,000 कबीर भाई का, $1,00,000 भाई बाकी हम लिसनर्स का। अरे ऐसी बात छोड़िए भाई, आप सारे रख लीजिए फैसल भाई, इतनी प्यारी बात करेंगे तो। लिखते हैं पता चला कैनी अंकल हिप्नोटाइज खुद

मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो, ऐसा जो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, प्लीज लेट मी नो, मैं बता देता हूं। AI पे रिसर्च कर रहे लोग मेरे पे, सब्जेक्ट बन गया हूं मैं। ये आनंद भाई है, सब्जेक्ट सोचने सुनने की ताकत खो चुका है। अच्छा मैं अब जरा खबर बता दूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी है कतर से जुड़ी हुई, बट मीनवाइल आप मैसेज करते रहिए, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप खबर अलग है, आपकी मेरी बातें अलग हैं, तो वो अलग ही रखें। तो सबसे पहले जो खबर है वो है मिनिस्ट्री की तरफ से, जिन्होंने बताया कि जो स्मोकिंग को लेकर इस सीजन में भी और जनरली भी लंग कैंसर की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, एंड लंग कैंसर की बहुत सारी रिपोर्ट्स आए हैं अहमद मेडिकल कॉरपोरेशन के पास भी, और मिनिस्ट्री ने इस बारे में खास करके जोर दिया है कि आगे कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। एंड इसमें लंग कैंसर इसको लेके बात की गई है, एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, हार्मफुल मेटल्स, आर्सेनिक, क्रोमियम, कैडमियम, इन सब चीज़ों के बारे में, और साथ में रेडिएशन के बारे में भी, और इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन नॉर्मली होता है, धूल मिट्टी ये सब डस्ट, अगर आपके घर में कोई भी है, बार बार ये कहा जाता है कि अगर किसी को भी सांस से जुड़ी बीमारी है किसी भी किस्म की, जैसे मुझे भी साइनस है, सो प्लीज़ प्लीज़ इस मौसम में ज़रा मास्क मुस्क लगा के चलो। इसके अलावा कहनामा की तरफ से संडे को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी अफेयर्स इन कतर एक अनाउंसमेंट हुई, उन्होंने बताया कि 2026 का जो मकसद है, इट इज़ एम्ड एट रेगुलेटिंग डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सर्विसेज, जो कि एक क्लियर फ्रेमवर्क बताता है कि आने वाले वक्त में एफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा गब गब स्टूडियोज़ लेकर आए हैं पहला एडिशन ऑफ न्यू इनिशिएटिव, जिसका नाम है 13, वेरी यूनिक इनिशिएटिव 13, और ये मई की 13 तारीख से शुरू हो चुका है। अभी आपको पता ही चल ही रहा है काफ़ी कुछ, जो फेयर है उसके बारे में अमिता आपको शाम में रिपोर्ट दे ही देगी। तो लॉट ऑफ इवेंट्स आर एक्चुअली हैपनिंग। एक और मैसेज है कतर टूरिज्म की तरफ से, बिकॉज दे आर कोलेबरेटिंग फोर्ब्स ट्रेवल गाइड के साथ, उन्होंने अनाउंस किया है कुछ जगहों को सेलेक्ट किया है हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स के लिए, और कतर इसमें हिस्सा लेने वाला है। बेसिकली एक बहुत बड़ी अकेडमी है जिसका नाम है प्रेस्टिजियस राइजिंग स्टार अकेडमी, और ये फ्रांस में है, तो कतर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड टूरिज्म सेक्टर किस तरीके से बढ़ाया जाए, ग्लोबल पार्टनरशिप किस तरीके से बड़ी की जाए, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात होगी। और इसी के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी है एक तरीके की कि जो कतर टूरिज्म अवार्ड्स हैं वहाँ पर भी ग्लोबल जो ब्रांड्स हैं टूर करवाने वाले वो पार्टिसिपेट करें, एंड इस तरीके से मामला खुलेगा, एयर स्पेस थोड़ा और फैलेगा। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल जवाद, आई एम फ्रॉम तेलंगाना, नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच। वैसे सब्जेक्ट को हिप्नो करना है, सब्जेक्ट खुद हिप हो रहा है, उसे हिप्नो करना है। फरद भाई कह रहे हैं बैन कर दो, मत कराओ बैन प्लीज। बात तो सही है मगर क्या करें। एक मैसेज है, आप कि हर स्टोरी में कुछ ना कुछ तो नया होता है जिसको सुन के सोच में आ जाते हैं, ऐसा ही होता रहेगा। कल तो मेरे पास बहुत छोटी सी कहानी है भाई, दो बालिश की कहानी है कल मेरे पास, सिर्फ दो बालिश की कहानी, उसमें भी आपको मज़ा आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, मैं मात्र दो बालिश की, बट इट इज़ अ वेरी फन स्टोरी, पर वो कल आएगी, आज नहीं आएगी। अच्छा एक गाना उसके बाद मिलते, जाना नहीं है आपने, ये गाना तमाम अगर कोई उर्वशी हैं, जितनी भी उर्वशियां सुन रही हैं, आई डाउट मैंने कतर में किसी का नाम उर्वशी सुना नहीं वैसे, अगर आप हैं कहीं पे तो आई एम रियली सॉरी। अस्सलाम वालेकुम उर्वशी बहन,

देखो प्रोमोज में तो आपको रैप सुनने को मिल जाएगा, ये तो वादा है हमारा कि उसमें आपको जरूर सुनने को मिलेगा, बिकॉज दैट इज द होल प्लान इंशाल्लाह 666-22-107 पे। अभी कुछ मैसेज मेरे पास आए हैं और एक भाई और भी हैं, उन्होंने

मैसेज किया है और वो ये कौन मैसेज कर रहा है भाई, इनका जो है चले जा रहा है। हाँ ओके, ये कहाँ चल रहा है? ओके, तो 666-22-107 इज द नंबर इफ इन केस आपको लगता है कि कहानी मेरी कहानी कौन चला रहा है, ये मेरी फोन में चल रही मेरी कहानी। अच्छा ओके, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज जो हमने डिस्कशन किया, जो कहानी मैंने भेजी आपको, मैं भेजना शुरू कर चुका हूँ, सो प्लीज़ एक एक करके सबको मिल जाएगी। एंड प्लीज़ नाराज़ नहीं होगा, कल वाली कहानी मैं आज भेज रहा हूँ बिकॉज आई नो कि थोड़ा जगल करना पड़ा है मुझको, बट कल वाली कहानी में पूरा म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर आपको लगा के दिया है, बाकायदा बाकायदा, समझ रहे हैं आप। तो आइए ज़रा आज कौन कौन से दिन है जरा देखूं मैं। आज है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, कदर में रह के म्यूजियम नहीं देखी आपने तो ये फैंसी चीज आपको पहली करनी चाहिए, पहली फुर्सत में करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के म्यूजियम एक्चुअली बड़े इंटरेक्टिव है, आप बोर नहीं होंगे। इसके अलावा विजिट योर रिलेटिव्स डे, रिश्तेदारों के घर जाने के लिए दिन है आज का, तो जिनके रिश्तेदार यहां रहते हैं तो अगर आपको बहुत टाइम से किसी ने डंक नहीं मारा है तो आप जा सकते हैं, प्लीज़ जाइए, किसने रोका है। तीसरी चीज़ है सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स डे, जो सप्लाई चेन में काम करने वाले लोग हैं आज उनका दिन है, सो इट इज़ योर डे, किसी तरीके से सेलिब्रेट कर लीजिएगा, कैसे न कैसे करके प्लीज़ कर लीजिएगा, मैंने बोल दिया है तो आपको करना तो पड़ेगा प्लीज़। एंड उसके बाद है नो डर्टी डिशेज डे, याद है बर्तन धोने और कपड़े तय करने के बारे में हमने बात करी थी, प्रेस करने के बारे में, तो नो डर्टी डिशेस डे भी आज ही है। देख लो भाई ये बर्तनों पर नजर डाल लो, अगर आपकी ड्यूटी है आज के बर्तन मांजने की तो ये आपने छोड़नी नहीं है, प्लीज टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। बाकी एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आप शाम में कब से आ रहे हैं? भाई थोड़ा सा टाइम बाकी है, आ जाएंगे इंशाल्लाह, शाम में भी आ जाएंगे, 1 जून से आएंगे और तब आपको प्रोमो में जो भी हिप हॉप सुनना चाहते हैं उसमें मिल जाएगा इंशाल्लाह, बना रहे हैं हम भाई, तैयार कर रहे हैं उसको भी इंशाल्लाह तैयार कर दिया ही जाएगा। बाकी यहीं पर ट्रैफिक लगाओ, 666-22-107 पे मुझे ज़रूर बताइएगा, 666-22-107 पे मुझे इंतजार रहेगा। एंड ऑफकोर्स एक गाना जो पहचान रही है शो की फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसको चलाते हैं, वो चाणामित 8:33। गुड मॉर्निंग, अरे कोई ना

0: दिल से देसी
1: मॉडर्न लाइफ फास्ट है लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
4: सुनिए द बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड हर फ्राइडे की दोपहर 12 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। अल्फाज जो तारीख लिखते हैं।
5: हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने टुगेदर वी थ्राइव एवरी ट्यूजडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स आरजे नाजिया के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
6: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: रैंडम और रे। एक बार मैं मैसेज आया बहुत ही रैंडम और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपने मुझे इन्फॉर्मेशन जो दी है इसके पीछे आगे क्या है वजह। उन्होंने लिखा मुझे कि मैं डी रिंग रोड के पास सिग्नल पे हूँ और मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई है कि ट्रैफिक है कि क्या है। भाई क्यों मतलब ये इन्फॉर्मेशन, रोड दिखा के जाना जो भी है वहाँ पे है ही, यहाँ तो फिर रुक के चाहिए आराम से, जल्दी क्या है। मैं ज़रा ट्रैफिक हाल बताता हूँ जल्दी से क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं, इतना रैंडमली लोग लिख देते ना। एक तो भाई एक जो ये जामिया स्ट्रीट की तरफ अगर आप जा रहे हैं, अल जामिया स्ट्रीट से होते हुए खलीफा स्ट्रीट की तरफ आएंगे तो इंटरसेक्शन पर आपको ट्रैफिक मिलेगा। अल जामिया स्ट्रीट से ही अगर आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं ये उमर अल मुख्तार स्ट्रीट की तरफ तो एकदम क्लीन है, कोई मसला नहीं है। वेस्ट बे की तरफ हालांकि जो इंटरसेक्शन हैं वो थोड़े बिजी चल रहे हैं। बाकी जो मेन ट्रैफिक है ये कॉर्निश की तरफ मिलेगा आपको, मस्जिद सुल्तान स्ट्रीट से अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा जाम लगना शुरू हो चुका है। इनफैक्ट कतर पोस्ट के सामने भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, बट दैट इज टुवर्ड्स द इंटरसेक्शन, मूविंग ट्रैफिक है तो ज्यादा मसला नहीं आएगा। और किथे वादी अल मुशारिफ स्ट्रीट की तरफ ट्रैफिक है, अल दीवान स्ट्रीट से अगर आप जाएंगे वादी अल मुशारिफ की तरफ तो ट्रैफिक मिलेगा। एयरपोर्ट स्ट्रीट की तरफ ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बीरिंग रोड पे है बस जाम थोड़ा बहुत है, बीरिंग रोड पे हौली हौली जाना पाओगे लेकिन बाकी सब ठीक है। इनके बाद अलमताल सर्विस स्ट्रीट की तरफ और ये अपना क्या एरिया है ये, अरे ओहो डीरिंग रोड से अगर आप एयरपोर्ट स्ट्रीट की तरफ आ रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल सकता है। इसके अलावा सलवा रोड की तरफ तो ट्रैफिक है ही, फिर भी कल के मुकाबले तो कमी नज़र आ रहा है मुझे, अगर वहाँ पे है और मुझे नहीं नज़र आया तो प्लीज़ मुझे ज्ञान दे देगा इस बारे में। जवान स्ट्रीट अल रयान रोड से अगर आप आ रहे हैं तो ट्रैफिक मिलेगा बेसिकली टुवर्ड्स इंटरसेक्शंस। अगेन एक कॉल जरा उठा लेता हूँ उसके बाद फिर आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी मेरा भाई।
1: भाई माफी चाहता हूँ भाई तकलीफ के लिए।
0: भाई ऐसी भी कोई तकलीफ नहीं है कि मुझे इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, रिलैक्स करो सब ठीक है। बताओ
1: भाई ट्रॉफी का जानना चाहते हो क्या मेरे से?
0: बता दो भाई यार, डरो नहीं, बताओ, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो हाँ मोड़ पर ट्रैफिक लगा हुआ है समझ। अच्छा। पट्टे
0: हाँ।
1: सिग्नल की वजह से।
0: अच्छा सिग्नल की वजह से ना, बाकी तो क्लियर है बीच रास्ते में, बाकी तो क्लियर है।
1: और बाकी तो फिर अपना दफना में पहुंचते ही पब्लिक जो टैक्सी वाले लोग हैं भाई वो यमी निसार में ट्रैफिक कर दे रहे।
0: अच्छा भाई हाँ, तो इतने टाइम रह के अरबी सीख ली, इतनी तो आ गई होगी, लेफ्ट राइट सीख लिया है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: वेरी नाइस। अरे क्या बात भाई, लग रही ना कि मुंबई के हो, सही में थोड़ा भी एक्सेंट नहीं आ रहा इतना। वाह वाह,
1: एक बात शेयर करने का।
0: हाँ बोलो ना बोलो ना बोलो
1: भाई। अपन वो क्या बोलते उसका नाम, एक स्टोरी जो तुम सुनाए ना मेरे को, अभी जो स्टोरी जो सुनाए, मैं तुम्हारे को बोला भाई लगता भाई की एमडी खत्म हो गई है। इतनी छोटी कहानी सुनाए।
0: वो पता है वो क्या होता है ना कि जब रोड 120 का हो और बहुत देर तक 120 तक गाड़ी चले और एकदम से 80 पे तो लगता है स्लो चल रही है लेकिन होती फास्ट है। तो ये थी 21 मिनट की कहानी लेकिन फिर भी छोटी लगी लोगों को
1: भाई, बहुत छोटी लगी। और बाकी भाई वो तो बच्चे लोग पे अत्याचार कर रहा था भाई, उसको बम्बई भेजो भाई उसको निकालते।
0: क्या बनता है, क्या कर रहा था ये? नहीं
1: मतलब बच्चों लोग पे अत्याचार कर रहा है वो।
0: हाँ ये भाई बाहर बहुत आड़ी तेड़ी चीजें होती है इसलिए तो मैं ये बाहर की कहानी उठाता हूँ, थोड़ी मसालेदार होती है कहानियाँ बाहर की।
1: कहानी मैं तुम्हारे बता रहा हूँ, मेरे साथ में एक शॉट हो गया था तो कल रात में हो गया।
0: अच्छा क्या हो गया?
1: कभी गलत जगह मुंगी घुसी क्या भाई? मतलब
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: कल रात में ना भाई मालूम नहीं क्या सीन हो गया मेरे कान में भाई, गलत जगह में तो मेरे कान में मुंगी घुस गई थी भाई।
0: तो भाई क्या अंदर तक काट लिया गया?
1: अरे बहुत डेंजर सीन कर दी भाई उसने मेरे साथ में। रात में मेरे को 2 बजे तक उसने परेशान रखी, फिर मैं रात में उसको

0: मेरी मम्मी को फोन लगाया डायरेक्टली, बोला अम्मी मेरे को कान ने ना मूंगी काट ली, क्या करने का।
1: हाँ।
0: तो बोले नींद निकलती, बोला बहुत तकलीफ दे रही है। फिर अम्मी क्या बोलती मालूम, बोले बेटा गरम ऑयल करो और कान में डाल दे।
1: ये एंड में मूंगी का क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मूंगी मतलब चीटी कह रहे हैं भाई, चीटी। तो ये जो चीटी का क्लाइमेक्स क्या हुआ उसके साथ, क्या हुआ?
0: फिर बाद में क्या है, फिर निकल गरम पानी, गरम ऑयल डाला हल्का सा, मतलब ज्यादा नहीं पाए करने का पब्लिक, मतलब गरम ऑयल पूरा डाल दे कान के अंदर, कान के पर्दे ही फट जावे, ऐसा नहीं करने का वो। मतलब मेरी मम्मी ने बोली गरम तेल डाल, मम्मी मेरे को मालूम है क्या सीन है। गरम तेल को हल्का सा एकदम माइनर एकदम गरम करके ना कान में डालने का, बाद में वो मुंगा फड़फड़ाते हुए बाहर निकल जाती है ऑटोमेटिक।
1: क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते रहते हो यार, जग जग के 2-2 बजे तक।
0: अरे भाई ये मुंबई वाले लोग ना भाई कुछ भी करते भाई, समझ रहे
1: और मुझे रिसेंटली पता लगा है कि चींटी को मुंगी कहते हैं, पता है मुझे बाद में पता लगा। मैंने फिर मैंने ध्यान से सुना, मैंने कहा मुझे नहीं पता था क्योंकि हमारे यहाँ नहीं कहते ना। फिर वो गाना जो था ना, वो मुंगिया मुंगिया में गिड़की डली, मैंने कहा अच्छा अब समझ में आया गुड़की डली क्यों बोल रही। अब मुझे क्लियर हुआ है।
0: ये नमला इधर बोलते लोग अरबी लोग नमला, मैं बोला एक दिन मेरा मैडम मेरे को बोली आसिफ रोह दुकान जीप नमला पाउडर, बोला ये कौन सा पाउडर निकल गया भाई नमला पाउडर। मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल पे नमला पाउडर, नमला पाउडर वो अलग अलग ये दुकान में पहुंचा रहा है भाई मेरे को, बोलता ये। बाद में मैडम को पूछा मैडम व्हाट इज दिस नमला, बोलते यू नो नमला
1: महाराष्ट्र में इतने क्यूट क्यूट नाम दे रखे ना जरा जरा सी चीजों को, मुंगी मतलब कितना प्यारा सा नाम है चींटी को। वाह वाह वाह भाई ठीक है भाई। अब
0: गाना मेरे हिसाब से भाई प्लीज आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं गाना सुन के बगैर सुने बगैर भाई।
1: कौन सा गाना सुनोगे?
0: अरे देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, देसी की फैन ये दुनिया और इससे बजा दो भाई।
1: कौन सा गाना है ये
0: भाई? देसी देसी, अरे भाई हरियाणा का बहुत फेमस गाना है भाई
1: वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा किसका है मुझे, क्योंकि मैंने पता नहीं सुना है नहीं सुना है याद नहीं, मुझे तो हरियाणा में सुननी चाहिए, मैंने कैसे नहीं सुना। किसका है, कोई गाने के सिंगर का नाम पता है?
0: वो पंजाबी सिंगर है भाई, नाम तो याद नहीं आ रहा भाई, पंजाबी लोग का नाम तो मालूम नहीं।
1: वाह वाह वाह, अम्मा अंधे में तेरी चलवा रहे हो, कहाँ से ढूंढूं मैं गाना।
0: नहीं भाई तुम गाना प्लीज सर्च करो, देसी देसी ना बोला कल छोरी रे,
1: देसी देसी यार ये ऐसा तो कोई गाना नहीं मिल रहा भाई। भाई नाम तो बताओ गाने का, जब तो ढूंढूंगा मैं।
0: वही नाम है भाई।
1: अरे नहीं मिल रहा मुझे लाइब्रेरी में यार।
0: अरे भाई बहुत डेंजर है भाई, तुम ऐसा हो सकता है हरियाणा का आदमी हरियाणा का गाना नहीं
1: यार। ये मैंने सच में नहीं सुना, ये तो टेंशन वाली बात दे दी आपने यार।
0: अच्छा तुम आज सर्च करो कल बजा दो, बाकी तुम बजाओ भाई।
1: मुझे मुझे भेज दो, अच्छा मुझे एक बार ना लिंक भेज दो, ऑनलाइन जाके एक बार ढूंढ के मुझे दे दो लिंक, ठीक है?
0: तुम्हारा पर्सनल नंबर दे दो भाई मेरे को,
1: ठीक है? अभी तो फिर सोशल मीडिया में दे दो, वहां पे सब दे देता हूँ। पहले मुझे भेजो जरा लिंक भेजो, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन से गाने की बात कर रहे हो, ठीक है?
0: ओके मेरा भाई,
1: ओके मेरा भाई,
0: बाकी अपना ख्याल रखो भाई।
1: आप भी ख्याल रखे मेरा भाई, बेहद बेहद जरूरी है।
0: दूसरे लोग परेशान हो रहे होंगे, बोले क्या है पकड़ के चिपक जाता है, छोड़ता ही नहीं बंदा।
1: नहीं नहीं नहीं मुंगी है मुंगी।
0: सबको सलाम भाई मेरा।
1: वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मेरे भाई। तो आसिफ भाई तो चलिए, ये कौन से गाने की बात कर रहे हैं, एक सेकंड, मुझे किसी ने भेजा है गाना, ये है राजू पंजाबी का गाना है, देसी देसी ना बोलिया कर। तो ये तो पंजाबी गाना होगा ना, हरियाणवी गाना है ये? आई डोंट नो, बिकॉज अगर ये अपेरेंटली ऐसा गाना है राजू पंजाबी, लेट मी टाइप इफ दिस सॉन्ग एग्जिस्ट इन आर प्लेलिस्ट, राजू पंजाबी ना जी, यह गाना एग्जिस्ट नहीं करता। मैं एक काम करूँगा, ढूंढ के रखूंगा, अंदर भी गाना मिल जाएगा तो इंशाल्लाह प्ले करता हूँ। मुझे मिल नहीं रहा भाई ऑनेस्टली, मैं क्यों झूठ बोलूँ, सच में आज मैं सच में इस नियत से था कि चलो प्ले कर देते हैं, भाई बहुत दिनों से कह रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, जहाँ पे हम हर जगह मौजूद हैं एज यू नो, एंड आने वाले वक्त में वीडियोज भी आपको मिलते रहेंगे। अभी कवरेज चल रही है बुक फेयर की, सो इफ़ यू हैवंट बीन देयर, अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो प्लीज़ प्लीज़ जाइए। सिर्फ फोटो के जाने मत जाना कि मैं तो वहाँ पे था बुक फेयर में, ओ माय गॉड सच अ ग्रेट बुक, द ऑथर वाज अमेजिंग। सच में आप चाहिएगा एंड इस इवेंट का फ़ायदा उठाइए, एंड बाकी कवरेज शाम में फजील के साथ आपको मिल जाएगी। बट फॉर नाउ 9 बजे न्यूज़ बुलेटिन, एंड दिस इज दोहा वाला कभी साइनिंग ऑफ, आपसे कहते हुए कि अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मां सलामा।

0: स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में बार्सिलोना ने रियल बेटिस को एक मुकाबले में 3 गोल से हराया। नॉर्थ कोरिया की विमेंस फुटबॉल क्लब नेगुहांग एफसी एशियन विमेंस चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के लिए साउथ कोरिया पहुंच गई। ये 8 साल बाद पहली मर्तबा है कि नॉर्थ कोरिया की एथलीट्स साउथ कोरिया है। इंडिया में जारी आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ्स में जगह बनाने वाली दिफाई चैंपियन बैंगलोर पहली टीम बनी। आईपीएल क्रिकेट में बैंगलोर ने इतवार को पंजाब को 23 रन से शिकस्त दी। दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे रोज पाकिस्तान के खिलाफ मेजबान बांग्लादेश ने लंच तक 4 विकेट के नुकसान पर 203 रन बना चुके हैं। और इंडिया की अंडर 18 मेंस और वीमेंस की कौमी बास्केटबॉल टीमें कोलंबो में होने वाले फीबा अंडर 18 एशिया कप और फीबा अंडर 18 वीमेंस एशिया कप 2026 के क्वालिफायर्स में हिस्सा लेंगी। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस सवाल फरमाइए।
1: न्यूज हेडलाइंस विद इस्माइल खान।
2: वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, इस्लामी जम्हूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा, मुतहदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा, जम्हूरिया पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के साथ अलहदा अलहदा टेलीफोन कॉल्स पर बातचीत की है। रियासत कतर ने बरादर मुल्क मुतहदा अरब इमारात पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत की है, जिसमें एक ड्रोन ने अलजफरा के इलाके में वाके बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। रियासत कतर 18 से 23 मई 2026 तक स्विट्जरलैंड के शहर जनीवा में मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड हेल्थ असम्बली के 79वें इजलास में शिरकत करेगी, जिसके साथ मुतअद्दिद इजलास और मुतालिका सरगर्मियां भी मुनक्किद होंगी। और पाकिस्तानी फ़ौज ने ख़बरदार किया है कि पाकिस्तान को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश के संगीन नतायज हो सकते हैं, जो जुग्राफियाई हदूद से भी आगे फैल सकते हैं। उर्दू रेडियो एफएम 107 से आज का पहला मुफसल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी मावन नूर और न्यूज़ स्टूडियो से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्ज़ा, यूसरा महमूद और इस्माइल खान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने किराम, आज हम एक ऐसी दुआ पर बात करेंगे जो हर मुसलमान की दिल की गहराइयों से निकलती है। वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है इस दुआ में, और इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में आया है। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत व शफ़क़त से पाला है। अमीन कराम, इस दुआ के दो पहलू हैं। एक तो हमें अपने माँ बाप और वालिदैन के लिए भी इस तरह की दुआएं ज़रूर करनी चाहिए, साथ साथ हमें अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से भी वो ख्याल रखना है कि ये बड़े होकर मुझे यही दुआ करेंगे मेरे लिए, तो मुझे भी रहमत के साथ, शफ़क़त के साथ, सब्र के साथ इनकी तरबियत करनी है, इनके साथ रहम व करम का मामला करना है। वैसे अमूमी तौर पर, फितरी तौर पर माँ बाप हर कोई अपने बच्चों के साथ शफ़क़त और नरमी का ही मामला करता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम भी कुछ ज़्यादती कर लेते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस दुआ को याद रखें कि भाई हम जैसे ही मामला कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए यही दुआ करेंगे। रब्बी, ए रब, ए मेरे रब, यानी वो ज़ात जिसने मुझे पैदा किया, पाला और नेमतें अता फरमाईं, इरहमहुमा, वालिदैन पर अपनी ख़ास रहमत फरमा दुनिया में भी और आखिरत में भी, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मेरी ज़रूरियात पूरी की, मेरी तकलीफ़ें बर्दाश्त की और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके मेरी परवरिश की। तो यहाँ वालिदैन के एहसानात का बदला देना तो मुमकिन नहीं, तो सामने किराम, वालिदैन के एहसानात का बदला देना तो मुमकिन नहीं, तो उनके लिए हर वक्त हमारी तरफ से सबसे बड़ी खिदमत यही हो सकती है कि उनके लिए हम रहमत व मगफरत की दुआ करते रहें, सेहत व आफियत की दुआ करें, और मगफरत के हवाले से वालिदैन के लिए काफ़ी सारी ऐसी दुआएं आई हैं कुरान में, जहां मुख्तलिफ क़िस्सों में मुख्तलिफ तरीक़े से वालिदैन के लिए बिलखसूस दुआओं का, वालिदैन के लिए बिलखसूस दुआ का ज़िक्र है। तो सामने किराम, इस दुआ का जो तरबियती पहलू है, इस पर मैंने पहले भी कहा कि यहाँ कुरान ने इंसान को उसकी तफूलियत याद दिलाई कि जब वो बिल्कुल बेबस था, वालिदैन ने उसकी हर ज़रूरत पूरी की, तो यहाँ हर एक के लिए बचपन की याद दहानी है ताकि हम अपने बड़ों के साथ सही मामला करें। जब वालिदैन ज़ईफ़ हो जाए, उनकी तबीयत में कमज़ोरी या चिड़चिड़ापन आ जाए, तो भी उनके साथ शफ़क़त, एहतराम और सब्र का मामला करना ज़रूरी है, खुसूसन उनके बुढ़ापे के ज़माने में इसकी अहमियत तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वालिदैन की खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना, हुस्न सलूक करना, तो ये दुआ हमें कई कीमती सबक देते हैं। इसमें वालिदैन की खिदमत की बात आई है, कुरान ने बराह रास्त दुआ के ज़रिए उनकी अजमत को उजागर किया। इसी तरह औलाद के फ़र्ज के हवाले से भी यहाँ बताया गया कि वालिदैन ने जैसे बचपन में कुर्बानियाँ दी, ऐसे ही बुढ़ापे में औलाद को उनकी खिदमत और दिलजोई करनी चाहिए। इसी तरह रहमत की दुआ, ये सबसे बड़ी खिदमत है। वालिदैन के हुकूक सिर्फ दुनिया में नहीं, मरने के बाद भी उनके लिए दुआ करना, और ये उनका हक है, लाजमी तौर पर हम उनके लिए दुआ करें, اور رحمت کی دعا یہ تو سب سے بڑی خدمت ہم اسے کہہ سکتے ہیں مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے اللہ سے سوال کریں گے اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارہ ملے گا اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر دل سے دیسی
3: اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خواب حقیقت کا روپ لے سکتے ہیں تو تیار ہو جائیے ایک زبردست سفر کے لیے جہاں آئیڈیا صرف سوچ تک محدود نہیں رہتے بلکہ انوویشن بن جاتے ہیں تو والیوم تھوڑا بڑھائیے ویروسٹی کو فل موڈ پر لگائیے اور کنیکٹ ہو جائیے قطر انوویٹس کے ساتھ جہاں سوچ بدلتی ہے آئیڈیاز گرو کرتے ہیں اور فیوچر شروع ہوتا ہے اب قطر انوویٹس With RJ Safar every Monday 7:15 p.m. onwards only on FM 107 stay tuned and stay inspired

0: 7 पर वेक अप
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: FM 107 प्रेजेंट योर हेल्थ मैटर विद RJ श्रुति।
2: कभी ऐसा होता है ना कि आप पूरी रात सो ले

0: माइंड ब्लैंक हो जाता है और पेशेंस बिल्कुल कम. आज हम बात करेंगे साइंस योर बॉडी नीड्स रेस्ट के बारे में. बॉडी ब्रेकडाउन से पहले हमेशा वार्निंग देती है, बस हम उन वार्निंग्स को इग्नोर करते चले जाते हैं. कांस्टेंट थकान, छोटी बातों पर इरिटेशन, फोकस का बार बार टूटना, ये सब लेजीनेस नहीं होती, ये बॉडी का तरीका होता है कहने का प्लीज थोड़ा रुक जाओ. कभी कभी रेस्ट की बहुत जरूरत होती है, सिर्फ बॉडी को ही नहीं बल्कि माइंड को भी. अगर आप बिना वजह एंशियस फील कर रहे हो, चीजों में इंटरेस्ट कम हो गया है या हर चीज में ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो, तो हो सकता है आपका सिस्टम ओवरलोड हो चुका है. रेस्ट का मतलब अगेन सिर्फ सोना नहीं होता, कभी कभी रेस्ट होता है स्क्रीन से दूर रहना, स्क्रीन टाइम कम कर देना, शोर से ब्रेक लेना, किसी पार्क में चले जाना और खुद के साथ थोड़ा सा शांति वाला समय बिताना. हमने रेस्ट को लग्जरी बना दिया है, ये मैं हर बार कहती हूँ, जबकि रेस्ट एक बेसिक नीड है. बॉडी को भी चार्ज चाहिए होता है, बिल्कुल अपने फोन की तरह. डिफरेंस बस इतना है कि फोन लो बैटरी पर अलर्ट देता है और बॉडी सिग्नल्स धीरे धीरे भेजती है, और अगर हम उन्हें इग्नोर करते हैं तो एक दिन बॉडी फोर्सफुली हमारा सिस्टम ही रुकवा देती है. इसलिए आज का एक सिंपल सा मशवरा, जब बॉडी बोले स्लो तो थोड़ा स्लो हो जाइए, जब बॉडी कहे स्टॉप तो बिना गिल्ट के रुक जाइए. रेस्ट लेने से आप पीछे नहीं हो जाते, रेस्ट लेने से आप स्ट्रॉन्गर कमबैक ले रेडी होते हो. क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट देते हो ना, तो वो एक स्पेस मिलती है उसे, जो उसकी एनर्जी, क्लैरिटी और सुकून बरकरार रखती है. इसलिए याद रखिए, रेस्ट वीकनेस नहीं है, विजडम है. एंड योर हेल्थ मैटर.
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti. आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी.

जमीन और आज हम बात करेंगे अर्जुन तेंदुलकर के बारे में। जी हाँ, नाम ही काफी है अर्जुन तेंदुलकर, बिकॉज वो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं और उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, बड़े बाप का कोई बेटा हमेशा देखा गया है कि स्ट्रगल ही करता है। जहां सचिन तेंदुलकर को आज भी लोग रिलेट करते हैं क्रिकेट डिस्कशंस में, वहीं अर्जुन तेंदुलकर आज भी आईपीएल में एक मैच के लिए इंतजार कर रहे हैं। इनफैक्ट प्लेइंग 11 में उनको जगह ही नहीं दी जा रही है, एंड दैट इज व्हाट। और आज सभी लोग यही बात कर रहे हैं, क्या अर्जुन इतना बुरा क्रिकेटर है? नहीं, बुरा क्रिकेटर नहीं हो सकता, लेकिन वो बॉलिंग करता है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, अनलाइक हिज फादर सचिन तेंदुलकर। अर्जुन एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और लोअर ऑर्डर बैट्समैन है जो अपनी स्विंग और पेस की वजह से पहचाने जाते हैं। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में गोवा की तरफ से खेलते हुए कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं, लेकिन अभी भी कंसिस्टेंसी हासिल करना उनके लिए चैलेंज है। अर्जुन को आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने साइन किया था, जो उनके लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी लीग का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें अब तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, और ये बात अक्सर फैंस और एक्सपर्ट्स के दरमियान डिस्कशन का टॉपिक बनी रहती है। लोगों के एक्सपेक्टेशंस उनसे ज्यादा हैं क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, लेकिन अर्जुन अपनी मेहनत से अपना अलग नाम बनाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि फ्यूचर में क्या उन्हें आईपीएल में डेब्यू का चांस मिलता है या नहीं, और क्या वो अपनी पोटेंशियल को पूरा कर पाते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स टॉक के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस।
3: अभी थोड़ी देर पहले आप फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद नेटवर्क नहीं आ रहा है, कोई सर्विस नहीं है। व्हाई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है फ्रॉड अवेयरनेस। ऐसी सिचुएशन में स्कैमर आपकी सिम डुप्लीकेट करवा लेता है, फिर ओटीपी, बैंक अलर्ट्स, ईमेल्स सब उसके पास आते हैं और आपका फोन नेटवर्क दिखाता ही नहीं है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? वो आपके अकाउंट को टेक ओवर कर लेता है, आपका यूपीआई ड्रेन कर देता है और सोशल मीडिया हैक कर लेता है। तो अगर आपके मोबाइल में भी ऐसा कोई सडन नेटवर्क लॉस हो रहा है तो ये एक अलर्ट है। तुरंत टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करिए, बैंक को इन्फॉर्म कीजिए और अकाउंट को फ्रीज करवा दीजिए पहली फुर्सत में, वरना आपकी इतने सालों की जमा की हुई पूंजी सेकंड्स में आपके हाथ से निकल जाएगी। तो दोस्तों याद रखिए, फोन बंद हो सकता है पर सावधानी बंद नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज अलर्ट।
2: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर। बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ। योर गाइड फॉर ए स्मार्टर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन। सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी शुरू कीजिए।
3: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं शो जिसका नाम है मनी नेविगेटर। ये वो शो है जहां हम पैसों को सिर्फ कमाने की बात नहीं करते, बल्कि समझने की भी कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसे ग्रो करने के बारे में बात करते हैं। और आज का ये एपिसोड सिर्फ इंफॉर्मेशन का नहीं बल्कि डीपली प्रैक्टिकल भी है, और हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल सोच को एक नया डायरेक्शन में ये ले जाए। आज मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहती हूँ साथियों, बिल्कुल सीधा सीधा। क्या आप वाकई में वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं या सिर्फ इनकम अर्न कर रहे हैं? जरा सोचिए, फिर से सोचिए। कतर जैसे मुल्क में जहां अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, जहां लोग अच्छी सैलरीज ले रहे हैं, जहां करियर ग्रोथ भी रिलेटिवली फास्ट होती है, जहां अक्सर लोगों की लाइफ एक पैटर्न फॉलो करती है, सैलरी आती है, फिर इंक्रीमेंट मिलता है, फिर लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है, नई गाड़ी, बेटर अपार्टमेंट, ब्रांडेड चीजें भाई, वीकेंड ब्रंचेस, वेकेशंस, और आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी लाइफ क्रिएट हो जाती है जो दिखने में तो बहुत सक्सेसफुल लगती है, लेकिन फिर वक्त गुजरता है, 5 साल, 8 साल, 10 साल या उससे ज्यादा, और एक दिन आप खुद से पूछते हैं कि भाई मैंने इतना सारा पैसा कमाया था लेकिन मैंने बनाया क्या, कहां गया सारा पैसा? यहां पर आती है वो रियलिटी जो बहुत कम लोग ओपनली डिस्कस करते हैं, यानी कि इनकम और वेल्थ एक जैसी चीज नहीं होती। इनकम का मतलब है पैसा आपके पास आ रहा है भाई, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन वेल्थ का मतलब है पैसा आपके लिए काम कर रहा है। बहुत से लोग हाई सैलरी अर्न करते हैं लेकिन उनका पैसा सिर्फ एक्सपेंसेस में चला जाता है, कोई स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होती उनके पास, कोई एसेट बिल नहीं होता, कोई पैसिव इनकम क्रिएट ही नहीं होती, और फिर किसी वजह से अगर इनकम रुक जाए तो भाई पूरा का पूरा सिस्टम या हिल जाता है या कोलैप्स कर जाता है। लाइफस्टाइल जो इतनी कंफर्टेबल होती है ना, वो सडनली प्रेशर बन जाती है भाई। इसीलिए तो आज का एपिसोड इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस फाउंडेशन की जो असल में वेल्थ क्रिएट करती है, और वो है एसेट्स भाई। लेकिन सिर्फ कोई भी एसेट नहीं बल्कि रियल एसेट्स भाई, ऐसे एसेट्स जो वक्त के साथ ग्रो करते हैं, जो आपके लिए इनकम जनरेट करते हैं, जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, जो आपको फ्रीडम देते हैं। अच्छा, फ्रीडम सिर्फ पैसों का नहीं होता, मैं आपको बता दूं, फ्रीडम डिसीजंस की भी होते हैं, फ्रीडम टाइम का भी होता है, फ्रीडम स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीने का भी होता है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट एंगल समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे एक और एंगल समझना जरूरी है, और वो है कतर का कॉन्टेक्स्ट। यहाँ बहुत से लोग एक्सपर्ट्स हैं, परमानेंट सेटलमेंट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होती, और फ्यूचर प्लानिंग अक्सर किसी और कंट्री के लिए होती है। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ अर्न नहीं करना होता बल्कि स्मार्ट अर्न करना होता है। आपको ऐसे एसेट्स बिल्ड करने होते हैं जो आपके साथ मूव कर सके, जो आपकी लोकेशन पर डिपेंड ना करें, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करें, चाहे आप दोहा में हो या अपने होम कंट्री में या किसी एक्सवाइजेड कंट्री में। तो साथियों, आज के एपिसोड में हम 15 पावरफुल एसेट्स के बारे में बात करेंगे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब एसेट्स वो नहीं होते जो आप देख सकते हैं या टेंजिबल नहीं होते। कुछ फाइनेंशियल होते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट्स, कुछ पर्सनल होते हैं जैसे आपकी स्किल्स और आपके एक्सपीरियंसेस, और कुछ इनविजिबल होते हैं जैसे आपका नेटवर्क।

आपका डिसिप्लिन और आपकी रेपुटेशन, ये वो चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती हैं और लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती हैं। देखिए, और मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि अगर आपने आज का ये शो एंड तक सुन लिया ना, तो आप सिर्फ नए आइडियाज लेकर नहीं जाएंगे बल्कि आपकी डेफिनेशन ऑफ वेल्थ ही चेंज हो जाएगी, आपकी थिंकिंग ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप शायद पहली बार समझ पाएंगे कि असली प्रोग्रेस क्या होती है और कौन सी चीजें सिर्फ इल्यूजन होती हैं और कौन सी चीजें हकीकत। अब चलिए आपके लिए एक पावरफुल थॉट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? अगर आपको आज 100,000 कतरी रियाल मिल जाए, ओ भाई मुझे तो सोच कर इतना अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे? क्या आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे? क्या आप स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे? क्या आप अपनी स्किल्स अपग्रेड करेंगे या आप एक नई इनकम सोर्स क्रिएट करने पर फोकस करेंगे? अच्छा, इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ ना क्या क्या करेंगे, हर किसी के पास अपने आइडिया होंगे। इन सवालों का कोई सही जवाब नहीं होता, लेकिन आपका जवाब आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। और अब मैं चाहती हूँ कि आप इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बने। कैसे? 666-22107 पे हमें मैसेज करके बताइए कि आपके लिए वेल्थ का मतलब क्या है। क्या वेल्थ सिर्फ पैसा है, या फ्रीडम है, या सिक्योरिटी है, या फिर ज्यादा वक्त अपनों के साथ है? आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं और बता सकते हैं। आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, जो कि हमारा हैंडल है @FM107 Qatar, जहां हम आपके थॉट्स और आइडियाज को शेयर करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड साथियों, क्योंकि मनी नेविगेटर में हम सिर्फ पैसों के बारे में बात नहीं करते बाबू, हम बेटर, स्मार्टर और सिक्योर फ्यूचर बिल्ड करने के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो सिंपल सा लगता है, लेकिन अगर समझ आ जाए ना, सिंपल बातें अक्सर औकात लोगों को समझ में नहीं आती, बहुत ही हल्का ले लेते हैं लोग इन्हें, लेकिन अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर रख सकती है। सवाल सिंपल है, मैं कमा तो रहा हूं, लेकिन क्या मैं वेल्थ बिल्ड कर रहा हूं कि नहीं? ये सवाल इतना पावरफुल पता है क्यों है? इसलिए है क्योंकि अक्सर लोग इसका जवाब ऑनेस्टली देने से बचने की कोशिश करते हैं, भागते हैं। कतर में रहकर लोग बहुत मेहनत करते हैं साथ, मैं मानती हूँ आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, हम सब हैं यहाँ पे मेहनत करने के लिए। लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, बिजी रूटीन्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम सबकी हैं, कोई भी एक भी नहीं बचा हुआ, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और फिर जब सैलरी अकाउंट में आती है ना, वो जो टिंग करके महीने के एंड में एक मैसेज आता है, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है। ओए होए होए भाई, हम सब उस मैसेज का इंतजार करते हैं कि नहीं? लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त स्टार्ट होती है जब हम अपनी इनकम को प्लानिंग के बगैर स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, वैसे ही एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं। लाइफस्टाइल आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होता जाता है और इंसान को लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ अपग्रेड कर रहा होता है, बिल्ड नहीं कर रहा होता। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरी बात है। रिच दिखना और रिच होना दोनों चीजें बहुत अलग होती हैं। दिखने में और होने में बहुत फर्क होता है। आपके पास महंगी गाड़ी हो सकती है, ब्रांडेड चीजें हो सकती हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट नहीं है जो आपके लिए पैसा जनरेट कर रहा है, तो आप फाइनेंशियली सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है। आपको हाईलाइटर से मार्क करके देती हूँ कि आप अगर जनरेट नहीं कर रहे ऐसा पैसा, तो आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। ये बात थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जरूर है, लेकिन रियलिटी है। देखिए, एसेट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। एसेट वो चीज होती है जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले, और लाइबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाल ले। बहुत सी चीजें जो हम एसेट समझकर खरीदते हैं ना, असल में वो लाइबिलिटीज होती हैं। जैसे गाड़ी, जो टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू लूज कर देती है और मेंटेनेंस कॉस्ट आपको साथ साथ देती रहती है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप होता है ये समझना कि आप किस चीज को एसेट समझ रहे हैं और वो असल में क्या है। देखिए, कतर के कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ टैक्स फ्री इनकम एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, लेकिन लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी का अनसर्टेनिटी का जो फैक्टर है ना, वो भी ध्यान में रखें। इसीलिए यहाँ रहकर जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, वो शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक

करने चाहिए। आपको ऐसे एसेट्स बिल्ड करने हैं जो पोर्टेबल हो, जो आपके साथ मूव कर सके, जैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, डिजिटल बिजनेसेस या हाई इनकम स्किल्स। ये वो चीजें हैं जो आपको किसी एक लोकेशन तक लिमिटेड नहीं रखती। साथियों, वेल्थ बिल्ड करने के लिए ना कैसे बताऊं मैं आपको, वेल्थ बिल्ड करने के लिए ना सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, आप यूं कह लें कि आपके पर्सनल एसेट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये पर्सनल एसेट में आप कहेंगे सफा क्या चीज़ आ जाती है, भाई देखिए सीधी सी बात है, पर्सनल एसेट में ना आ जाती हैं आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, ये सब आपकी अर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, फिर आते हैं इनविजिबल एसेट्स जो सबसे अंडररेटेड होते हैं, क्योंकि दिखते नहीं है तो कोई ध्यान नहीं देता। आपके नेटवर्क, आपका डिसिप्लिन, आपकी रेपुटेशन, अरे भाई ये वो चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए डोर ओपन करती हैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। एक और रियलिटी चेक जो एक्सेप्ट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है वो है कि अगर आप सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंड करते हैं ना, तो भाई आप रिस्क में, मान लें ना ना ना, मान लें आप रिस्क में, चाहे सैलरी कितनी भी हाई हो, क्योंकि भाई एक इनकम सोर्स हमेशा अनसर्टन होता है। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब होता है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करना। देखिए भाई, कॉन्सेप्ट सिंपल है, जब आपके पास एक से ज्यादा सोर्सेज होती है ना, तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अच्छा, सबसे बड़ा शिफ्ट जो है ना वो आपको लाना है किस चीज में, भाई माइंडसेट में लेकर आ जाओ शिफ्ट, जिंदगी बदल जाएगी, बता रही हूँ। देखिए, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, मैं हर दफ़ा ये बात कहती हूँ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, पैसा ज़रूरत है ज़िंदगी की, लेकिन पैसा समझना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप पैसा समझ जाते हैं ना कि पैसा क्या है, ये कैसे चलता है, तो आप बेटर डिसीजंस लेते हैं, आप इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बच जाते हैं, आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग डिवेलप करते हैं और आप ग्रेजुअली अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करने लगते हैं। देखिए, आज का एक सिंपल एक्शन स्टेप ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस को देखें, जानें और ख़ुद से पूछें ना कि क्या ये एक्सपेंसेस मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे रहे हैं या सिर्फ टेम्प्ररी हैप्पीनेस है। अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं ना, तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, और एंड में ना, एंड में फिर से आपसे वही सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, अभी जो मैंने इतनी बड़ी थीसिस की है उसके एंड में मैं एक सवाल आपसे फिर से पूछना चाहती हूँ, दोहरा रही हूँ फिर से, सोचें, देयर इज अ रीजन फॉर इट। अगर आपको भाई लॉटरी निकल गई, कुछ हो गया, एक्सपायर्ड एनीथिंग, अगर आपको 100,000 कतरी रियाल मिल जाए, तो आप कौन से 3 एसेट्स बिल्ड करेंगे? इस सवाल का जवाब हमें आप मैसेज कर सकते हैं 666-221-07 पर, और बताइए कि आपके लिए वेल्थ का असल मतलब है क्या। भाई, क्या वेल्थ पैसा है, क्या वेल्थ फ्रीडम है, सिक्योरिटी है या टाइम है, ये है क्या चीज? तो भाई हमें फॉलो करना मत भूलें, हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107Qatar, और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मनी नेविगेटर में हम सिर्फ पैसा नहीं समझते, हम अपना फ्यूचर डिजाइन कर रहे होते हैं। तो भाई साथियों, आगे चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ बेसिक लेकिन बहुत पावरफुल फाइनेंशियल आइडियाज को क्विकली रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर ये समझ आ जाए, ये सारी बातें जो मैं रिफ्रेश करने वाली हूँ, तो भाई पूरा एपिसोड आपके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। देखिए, एक एसेट वो चीज़ होता है जो या तो अपनी वैल्यू वक्त के साथ बढ़ाता है, या आपके लिए इनकम जनरेट करता है, या आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, या फिर आपकी फ्यूचर अर्निंग पावर को इंक्रीज करता है। सिंपल अल्फाज में, एसेट वो है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ग्रो करता है, ना कि सिर्फ एग्जिस्ट करता है, पड़ा रहता है, ऐसा नहीं है। इसके बरक्स ना, लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपसे रेगुलरली पैसा लेती रहती है, अक्सर अपनी वैल्यू भी लूज कर जाती है, जैसे एक लग्जरियस कार जो फाइनेंस पर ली गई हो, वो अक्सर लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वो इनकम नहीं बनाती बल्कि एक्सपेंस क्रिएट कर रही होती है। लेकिन अगर कोई रेंटल प्रॉपर्टी आपको मंथली इनकम दे रही हो, तो वो एसेट बन जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई?
सेट, जो जेब में पैसा लेकर आए वो चीज वेल्थ है, जो जेब से पैसा निकाल ले वो लायबिलिटी है। क्लियर भाई? अब सवाल ये है कि कतर में ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, कतर एक ऐसा मुल्क है जहां लोगों को स्ट्रॉन्ग इनकम्स मिलती हैं, टैक्स एडवांटेजेस भी हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी उसी स्पीड से बढ़ता चला जाता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और ये वो जगह है जहां लोग एक डेंजरस ट्रैप में फंस जाते हैं, ज्यादा अर्निंग के बावजूद भी वेल्थ नहीं बना रहे होते। तो भाई आगे बढ़ते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं। अक्सर लोग इस एसेट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो साथियों, इसलिए कतर में सिर्फ कमाना गोल नहीं होना चाहिए, गोल ये होना चाहिए कि कतर में रहने वाले साल आपके लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएं। यानी आप यहाँ सिर्फ सैलरी एक्यूमुलेट नहीं कर रहे बल्कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रक्चर में बिल्ड कर रहे हैं। तो साथियों, आज हम एक पावरफुल लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं 15 एसेट्स की जो रियल वेल्थ क्रिएट करते हैं, और हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, ये याद रखिए, ताकि आप ग्रेजुअली माइंडसेट बिल्ड कर सकें। 1, 2, 3 से नहीं चलूंगी, 15, 14, 13 से चलूंगी, ठीक है? अच्छा भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एसेट नंबर 15 से। पता है क्या है? चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड फैमिली लेगेसी। अक्सर लोग इस एसेट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन असल में ये सबसे पावरफुल लॉन्ग टर्म एसेट है। आपके बच्चों की फाइनेंशियल एजुकेशन, उनका माइंडसेट और उनकी मनी अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी एसेट है जो जनरेशन तक इम्पैक्ट करता है। कतर में बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल, बेस्ट लाइफस्टाइल और कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन एक सवाल यहाँ ज़रूर पूछना चाहिए मुझे, क्या हम उनको सिर्फ पैसा दे रहे हैं या पैसा समझना भी सिखा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ इनहेरिटेंस देना काफी नहीं होता ना, अगर माइंडसेट ही स्ट्रांग ना हो तो वेल्थ अक्सर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर एक बच्चे को सेविंग, इन्वेस्टिंग, डिसिप्लिन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाई जाए तो वो सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं होता बल्कि एक ग्रोइंग फाइनेंशियल एसेट बन जाता है। सोचिए, दो फैमिलीज हैं, एक फैमिली सिर्फ पैसा देती है और दूसरी फैमिली पैसा प्लस फाइनेंशियल विजडम भी देती है। कुछ सालों बाद जो डिफरेंस आता है ना भाई, वही रियल जेनरेशनल वेल्थ होता है। इसी के साथ हम आ जाते हैं एसेट नंबर 14 पर, जो कि है AI टूल्स एंड ऑटोमेशन। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक पावरफुल फाइनेंशियल एसेट बन चुकी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि AI किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा, लेकिन AI यूज करने वाले लोग जो है ना, उन लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं जो एडॉप्ट नहीं कर रहे। कतर में हर फील्ड, यानी कि HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स, मीडिया या बिजनेस, सब जगह AI ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर रहा है। एक मार्केटर अगर AI यूज करता है, वो कैंपेन्स सेकेंड्स में डिजाइन करता है। एक अकाउंटेंट AI से एनालिसिस तेज कर सकता है। एक स्टूडेंट रिसर्च को फास्टर और स्मार्टर बना सकता है। एक बिजनेस ओनर अपने कस्टमर रिस्पॉन्सेज ऑटोमेट कर सकता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? कि AI खुद एसिस्ट है, कि AI खुद एसेट नहीं, एसेट आपकी लाइबिलिटी है, एसेट आपकी एबिलिटी है AI को यूज करने की। अगर AI आपके 2 घंटे डेली सेव करता है तो वो महीने के 60 घंटे बन जाते हैं, और ये 60 यानी 60 आवर्स आप किसी और स्किल, बिजनेस आइडिया या इनकम स्ट्रीम पर लगा सकते हैं। यही रियल लेवरेज है। अच्छा भाई, एसेट नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मॉल बिजनेस एक्विजिशंस की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना मतलब जीरो से शुरू करना, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक और रूट चूज करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को बाय करना। देखिए, कतर में बहुत से स्मॉल बिजनेसेस ऐसे ओनर्स के पास होते हैं जो रिलोकेट, रिटायरमेंट या करियर शिफ्ट की वजह से एग्जिट करना चाहते हैं। ये बिजनेसेस हो सकता है क्लीनिंग कंपनीज हो, कार डिटेलिंग सर्विस हो, कैफेज हो, लॉन्ड्री सर्विसेज हो, या सोशल मीडिया एजेंसीज या ई कॉमर्स स्टोर्स हो। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है कि आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, आपको मिलता है एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस, एग्जिस्टिंग रेवेन्यू, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स और एग्जिस्टिंग ब्रांड वैल्यू। अगर आप इस बिजनेस को बेटर मैनेज करें, ऑप्टिमाइज करें, तो ग्रोथ फास्टर हो सकती है। लेकिन यहाँ ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी होता है। लीगल चेक्स,
फाइनेंशियल

silver, certain commodities, carefully planned crypto exposures or collectibles shamil ho sakte hain jinki real market demand hoti hai. Acha, iska simple concept ye hai ki cash waqt ke sath inflation ki wajah se apni value lose kar deta hai. Aaj ka 1000 Qatari rial future mein utna power nahi rakhega jitni aaj rakhta hai. देखिए कतर में ट्रेडिशनली भी गोल्ड को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और ये सिर्फ कल्चरल चीज़ नहीं है बल्कि फाइनेंशियल विजडम भी है. गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो किसी एक कंपनी या सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता. इसने सेंचुरीज तक अपनी वैल्यू प्रिजर्व की है. लेकिन यहाँ भी डिसिप्लिन ज़रूरी है. ये गैम्बलिंग नहीं है, ये प्रोटेक्शन है. आइडिया ये है कि आप अपने सारे पैसे कैश या सैलरी में ना रखें बल्कि

रिस्क बैलेंस हो। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं तो एसेट नंबर 11 पे बात कर लेते हैं, लैंड एंड प्रोडक्टिव रियल एस्टेट की। देखिए, लैंड जो है ना, जमीन एक ऐसा एसेट है जो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में एक टाइमलेस रियलिटी रखता है। इसकी सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल ट्रुथ ये है कि जमीन कभी इंक्रीज होना बंद नहीं होती। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया में जमीन मजीद बनाई नहीं जा रही, और ये स्कैसिटी इसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक स्ट्रॉन्ग

0: लोगों के पास अपने होम कंट्रीज में लैंड ओनरशिप का चांस होता है। आपके लिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, सूडान, जॉर्डन, नेपाल, श्रीलंका और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, मैं नाम लेती चली जाऊं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें से बहुत से लैंड्स या तो अनयूज होते हैं या तो उनका कोई प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान ही नहीं होता। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेड लैंड और प्रोडक्टिव लैंड में। देखिए, डेड लैंड वो होता है जो सिर्फ एग्जिस्ट करता है लेकिन कोई इनकम जनरेट नहीं करके दे रहा होता, कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं होता और सिर्फ फ्यूचर होप पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन प्रोडक्टिव लैंड वो होता है जो एक्टिवली वैल्यू क्रिएट करता है, जैसे रेंटल पर्पसेस, एग्रीकल्चर, कमर्शियल लीजिंग या फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। देखें, अगर किसी लैंड को स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाए तो वो सिर्फ एसेट नहीं रहता बल्कि एक इनकम जनरेटिंग मशीन बन जाता है। लेकिन अगर प्लानिंग ना हो तो वो सिर्फ एक स्टेग्नेंट वेल्थ बन जाता है जो टाइम के साथ अपॉर्चुनिटी लॉस क्रिएट करता है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ लैंड नहीं खरीदते, जमीन दे दो, नो, बल्कि जमीन का यूज केस प्लान करते हैं।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर।
0: अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं तो एसेट नंबर 10 के बारे में बात की जाए तो वो हो जाएगा प्राइवेट बिजनेस इन्वेस्टिंग। अब हम एक और एडवांस एसेट कैटेगरी की तरफ आते हैं जो कि है प्राइवेट बिजनेस इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये वो एरिया है जहां रियल वेल्थ बहुत तेज स्पीड से क्रिएट होती है और सिर्फ क्रिएट नहीं होती, लूज भी हो सकती है। देखिए, सिंपल अल्फाज में समझने की अगर कोशिश की जाए तो जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप पब्लिक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जब आप प्राइवेट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप डायरेक्टली किसी रियल ऑपरेशन का हिस्सा बन जाते हैं। अब एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल किसकी दी जाए, हाँ, अगर कोई ट्रस्टेड फ्रेंड या प्रोफेशनल अपनी लॉजिस्टिक कंपनी एक्सपेंड करना चाहता है और आप उसे कैपिटल की जरूरत होती है, उसे आप दे देते हैं, आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करके इक्विटी स्टेक ले सकते हैं या कुछ प्रोफेशनल्स मिलकर एक मैनेज वेंचर में कैपिटल पूल करते हैं जहां रिटर्न शेयर्ड होता है। देखिए, कतर जैसे एनवायरनमेंट में प्राइवेट पार्टनरशिप कॉमन है लेकिन ये एरिया हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और हाई रिस्क दोनों रखता है। यहाँ इमोशनल डिसीजन सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं भाई, इसलिए एक फाइनेंशियल कोच के तौर पर मैं ये हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि प्राइवेट इन्वेस्टिंग सिर्फ ट्रस्ट पर नहीं होनी चाहिए, ना, हर इन्वेस्टमेंट के पीछे प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, रेवेन्यू मॉडल क्लियर होना चाहिए, एक एग्जिट स्ट्रेटेजी डिफाइन होनी चाहिए और गवर्नेंस स्ट्रक्चर्ड समझना जरूरी है। साथियों, प्राइवेट बिजनेस इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए पावरफुल होता है जो सिर्फ सैलरी माइंडसेट से आगे निकल चुके होते हैं और रिस्क को कैलकुलेटेड फॉर्म में समझते हैं। ये वो एसेट क्लास है जो अगर सही जगह लग जाए तो भाई एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दे सकती है। और इसी के साथ आते हैं अपने एसेट नंबर 9 पर। अरे भाई, एसेट नंबर 9 क्या है, ये है रेपुटेशन एंड नेटवर्क। देखिए, अगर हम कतर के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को समझें तो एक चीज़ बहुत क्लियर समझ में आ जाती है, यहाँ ट्रस्ट करेंसी की तरह काम करता है और यही वजह है कि रेपुटेशन और नेटवर्क एक इनविजिबल लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल एसेट बन जाता है। ज़रा सोचिए, अगर किसी रूम में आपका नाम लिया जाए तो आपको क्या समझा जाता है? क्या आपको रिलायबल समझा जाता है? क्या आपको प्रोफेशनल माना जाता है या फिर आपकी इमेज अनक्लियर है भाई? देखिए, यहाँ पर एक सिंपल ट्रुथ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है वो? वो है रेपुटेशन स्लो बिल्ड होती है लेकिन फास्टली बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकती है, और जो लोग अपनी रेपुटेशन को सीरियसली नहीं लेते ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो पाती, और जो लोग अपनी रेपुटेशन को सीरियसली लेते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज

ऑटोमेटिकली क्रिएट होती चली जाती हैं। देखिए कतर में बहुत सी जॉब्स, पार्टनरशिप्स और डील्स सीवी से नहीं बल्कि रिकमेंडेशन से मूव करती हैं। यहाँ अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है तो आपको हर अपॉर्चुनिटी के लिए डायरेक्ट अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। देखिए नेटवर्क जो होता है ना वो सिर्फ लिस्ट ऑफ नेम्स नहीं होती, नेटवर्क ट्रस्ट का सिस्टम होता है। अगर आप जेन्युइनली लोगों की हेल्प करते हैं, अपनी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हैं, अपने कमिटमेंट्स को टाइम पर कंप्लीट करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपका नेटवर्क ऑर्गेनिकली ग्रो होता है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्ट्रांग नेटवर्क आपको सिर्फ जॉब नहीं देता बल्कि इंफॉर्मेशन, टाइमिंग और बेटर डिसीजंस का एक्सेस भी देता है। बहुत से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज सिर्फ इसलिए मिस हो जाते हैं क्योंकि लोग राइट सर्कल में नहीं बैठते। इसीलिए एक सक्सेसफुल इंसान को सिर्फ पैसा नहीं बनाना बल्कि अपनी आइडेंटिटी और रिलेशनशिप्स को भी केयरफुली बिल्ड करना होता है। तो भाई लैंड आपको स्टेबिलिटी देता है, प्राइवेट इन्वेस्टिंग आपको ग्रोथ देती है और रेपुटेशन आपको अपॉर्चुनिटी देती है। तो भाई घूमते घुमाते अब हम आ गए हैं एसेट नंबर 8 पर जो कि है डिजिटल एसेट एंड ऑडियंस। देखिए आज के ज़माने में ना जब हम वेल्थ की बात करते हैं ना तो एक नया और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है और वो है डिजिटल एसेट और ऑडियंस ओनरशिप। अगर सिंपल अल्फाज में समझाया जाए तो कैसे समझाया जाए, हाँ आज का सबसे वैल्यूएबल एसेट सिर्फ पैसा या प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि अटेंशन है। जिसके पास लोगों की अटेंशन है ना उसके पास फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आ जाती हैं क्योंकि बिजनेस, मार्केट और इन्फ्लुएंस सब अटेंशन पर डिपेंड करता है भाई। और यही जगह है कि सोशल मीडिया चैनल्स, पॉडकास्ट, एजुकेशनल पेजेस, नीचे न्यूज़लेटर्स, ई-कॉमर्स ऑडियंसेस और ऑनलाइन कम्युनिटीज आज के टाइम में रियल फाइनेंशियल एसेट बन चुकी हैं। अच्छा जरा सोचिए एक इंसान कतर में रहता है और वो अपनी एक डिजिटल आइडेंटिटी बिल्ड करता है, वो कंटेंट बनाता है एक्सपेक्ट फाइनेंस टिप्स पर या फिर अरेबिक कुकिंग शेयर करता है, खाना याद आ गया, या ऑफिस वर्कर्स के लिए फिटनेस हैक्स देता है या कतर की लाइफस्टाइल को सिंप्लीफाई करता है या करियर कोचिंग प्रोवाइड करता है। शुरू में शायद ये सिर्फ पैशन लगता है लेकिन वक्त के साथ ये एक पावरफुल ऑडियंस एसेट बन जाता है और फिर यहाँ से गेम चेंज होता है। क्या होता है गेम चेंज? जब ट्रस्ट बिल हो जाता है ना तो ऑडियंस सिर्फ फॉलो नहीं करती बल्कि एक कम्युनिटी बन जाती है और जब कम्युनिटी बन जाती है तो मोनेटाइजेशन नेचुरली स्टार्ट हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कोर्सेज सेल होते हैं, प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं और पार्टनरशिप्स ऑर्गेनिकली डिवेलप होती हैं। देखिए डिजिटल एसेट्स का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ये है कि इनमें ज्यादा पैसा नहीं लगता लेकिन सबसे ज्यादा चीज जो लगती है ना वो है कंसिस्टेंसी और टाइम। और अगर कंसिस्टेंसी सही डायरेक्शन में हो तो ये एसेट ग्लोबली स्केल कर सकता है, यानी आप सिर्फ कतर तक लिमिटेड नहीं रहते बल्कि दुनिया तक आपकी रीच हो सकती है। तो भाई इसी के साथ आ गए हम नंबर 7 पर, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और अब हम और एडवांस और आप कह लें कि ऑफन इग्नोर्ड एसेट की तरफ आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये वो कॉन्सेप्ट है जहां आप एक बार काम करते हैं और उसका रिवॉर्ड आपको बार बार मिलता रहता है। मतलब क्या बता देती हूँ, कोई बात नहीं। सिंपल अल्फाज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसा कॉन्टेंट, सिस्टम या प्रोडक्ट क्रिएट करना जो रिपीट सेल्स जनरेट करे, जैसे कि बुक, ऑनलाइन कोर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐप, सॉफ्टवेयर टूल, म्यूजिक राइट्स या डिजाइन सिस्टम। जरा सोचिए एक टीचर दोहा में रहता है और वो कौन सा कोर्स ले लूँ, IELTS, IELTS भी कहते हैं लोग उसे, हाँ IELTS प्रिपरेशन का एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन करता है। वो कोर्स एक दफा क्रिएट होता है लेकिन उसके बाद हजारों स्टूडेंट्स उसे परचेज कर सकते हैं। टीचर को हर दफा सेम मेहनत रिपीट नहीं करनी पड़ती। इसी तरह अगर एक फिटनेस कोच रमजान वेलनेस प्रोग्राम डिजाइन करता है तो वो एक बार बनाने के बाद उस कोर्स को हर रमजान सीजन में सेल वो कर सकता है। यानी आप एक दफा वैल्यू क्रिएट करते हैं लेकिन अर्निंग मल्टीपल टाइम्स होती है, यही असल लेवरेज होता है। टाइम को डिटैच करना इनकम से, जब आपका इनकम आपके एक्टिव टाइम पर डिपेंड नहीं करता तब आप फाइनेंशियली फ्री होने की तरफ मूव करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट

ये है कि ये आपकी नॉलेज को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और नॉलेज जब प्रोडक्ट में बन जाती है ना तो वो स्केलेबल बन जाती है। तो भाई इसी के साथ जल्दी से भागते दौड़ते हम पहुंच गए हैं एसेट नंबर 6 पर, जो कि है डिविडेंड स्टॉक्स। देखिए अब हम एक ट्रेडिशनल लेकिन बहुत ही पावरफुल एसेट की बात करने जा रहे हैं, जो कि है डिविडेंड स्टॉक्स। ये वो कंपनीज होती हैं जो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती हैं। इस पेमेंट को हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया भर में ऐसी कंपनीज अक्सर स्टेबल और स्टैब्लिश सेक्टर में होती हैं, जैसे यूटिलिटीज, टेलीकॉम, और कौन है दिमाग मेरे कौन आ रहा है, कंज्यूमर गुड्स, बैंक्स और मैच्योर ब्लू चिप कंपनीज। ये वो बिजनेसेस होते हैं जो ऑलरेडी ग्रोथ फेज से निकलकर स्टेबिलिटी फेज में आ चुके होते हैं ऑलरेडी। डिविडेंड इन्वेस्टिंग का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ये सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपको रेगुलर पैसिव इनकम देता है। और जब ये डिविडेंड्स रीइन्वेस्ट किए जाते हैं ना, तो यहाँ से एक पावरफुल कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। जरा सोचिए, आपको डिविडेंड मिलता है और आप उससे और शेयर्स खरीद लेते हैं। अब आपके पास ज्यादा शेयर्स हैं जो और ज्यादा डिविडेंड जनरेट कर सकते हैं, और ये साइकिल टाइम के साथ अपने आप को स्नोबॉल इफेक्ट की तरह ग्रो करता चला जाता है। ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए बहुत पावरफुल होती है जो एग्रेसिव स्पेकुलेशन नहीं करते, बल्कि स्टडी और डिसिप्लिन वेल्थ क्रिएशन प्रेफर करते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्साइटमेंट नहीं होती, बल्कि पेशेंस होता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग का रियल पावर टाइम के साथ अनलॉक होता है। ये एक स्लो सिस्टम है, लेकिन एक्सट्रीमली रिलायबल है अगर इसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए तो। अच्छा साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ें तो एसेट नंबर 5 है इंडेक्स फंड्स एंड ETFs। आज के मॉडर्न इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है इंडेक्स फंड्स और ETFs। ये वो अप्रोच है जहां आप मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि मार्केट को ही ओन कर लेते हैं। सिंपल अल्फाज में, इंस्टेड ऑफ एक या दो कंपनीज को पिक करने के, आप एक पूरे बास्केट में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें मल्टीपल कंपनीज होती हैं। इस तरह आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और आप किसी एक कंपनी के डाउनफॉल से ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते। एग्जाम्पल अगर इसकी दी जाए तो एग्जाम्पल्स में आप US मार्केट एक्सपोजर ले सकते हैं, ग्लोबल इक्विटी एक्सपोजर, शरिया कॉम्प्लाइंट इंडिसीज, सेक्टर बेस्ड ETFs या रीजनल फंड्स। हर ऑप्शन का अपना स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कोर आइडिया ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ पार्टिसिपेट कर रहे हो विदाउट डेली स्ट्रेस। कतर जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में ना, जो रहने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें ना तो डेली मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, ना इमोशनल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये एक लो मेंटेनेंस और डिसिप्लिन अप्रोच है। तो भाई इसी के साथ आ जाते हैं एसेट नंबर 4 पर, जो कि है इनकम प्रोड्यूसिंग रियल स्टेट। रियल स्टेट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टी लेना ही एसेट है, लेकिन असल में हर प्रॉपर्टी एसेट नहीं होती। एसेट सिर्फ वो होता है जो आपके लिए कैश फ्लो क्रिएट करे। इनकम प्रोड्यूसिंग रियल स्टेट का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको रेगुलरली इनकम दे, जैसे रेंटल अपार्टमेंट्स, स्टाफ अकोमोडेशन यूनिट्स, कमर्शियल शॉप्स या अप्रूव्ड मार्केट्स में हॉलीडे रेंटल्स। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमोशनल डिसीजंस नहीं होते, बल्कि न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ की फैक्टर्स देखते हैं, यानी कि रेंटल यील्ड, वेकेंसी रिस्क, मेंटेनेंस कॉस्ट, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर और लीगल फ्रेमवर्क। बहुत से लोग प्रॉपर्टी इमोशनल डिसीजन से ले लेते हैं, यानी कि लोकेशन पसंद आई तो ले ली, डिजाइन अच्छा लगा तो ले लिया, या फ्यूचर ड्रीम अपना बनाना होता है तो ले लिया। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ एक चीज देखते हैं, कैश फ्लो बाबू, कैश फ्लो। अगर प्रॉपर्टी आपकी पॉकेट में पैसा डाल रही है तो वो एसेट है, अगर वो सिर्फ एक्सपेंसेस क्रिएट कर रही है तो वो क्या है? एग्जैक्टली, वो है लाइबिलिटी। चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव या ब्यूटीफुल क्यों ना हो, तो सोच समझ के खरीदिएगा। अच्छा आगे बढ़ें तो हम बात करते हैं एसेट नंबर 3 की, योर ओन बिजनेस। देखिए सैलरी एक नेचुरल लिमिटेशन होती ही होती है, वो टाइम और आवर्स से बाउंड होती है, लेकिन ओनरशिप का पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है। इसीलिए अपना बिजनेस एक बहुत पावरफुल वेल्थ एसेट बन जाता है इंसानों के लिए।
कतर में मल्टीपल

बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि कंसल्टिंग फर्म्स, डिलीवरी सर्विसेज, क्लीनिंग ब्रांड्स, डिजाइनिंग एजेंसीज, स्पेशलिटी फूड बिजनेसेस, ई कॉमर्स इम्पोर्ट्स और ट्रेनिंग अकेडमीज, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से लोग स्केलेबल इनकम क्रिएट करते हैं. लेकिन यहाँ पर ना सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत जरूरी होता है. जॉब और बिजनेस में फर्क सिस्टम का होता है. अगर आपका बिजनेस सिर्फ आपके प्रेजेंस पर चल रहा है ना, तो वो असल में आपकी एक जॉब है. लेकिन अगर उसमें सिस्टम्स, प्रोसेसेस और डेलीगेशंस हैं, तो वो एक रियल एसेट बन जाता है. देखिए, बिजनेस का रियल पावर तब अनलॉक होता है जब वो आपके बगैर भी चल सकता हो, जब सेल्स, ऑपरेशंस और डिलीवरी सिस्टम इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तभी स्केलेबिलिटी स्टार्ट होती है. और अब भाई आ जाते हैं एसेट नंबर टू पर. ये वो एसेट है जो अक्सर लोग सबसे ज्यादा इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसी का होता है. क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ कोई मीनिंग नहीं रखती. योर हेल्थ इज एन एसेट. पुअर हेल्थ डायरेक्टली आपकी फाइनेंशियल लाइफ को अफेक्ट करती है. मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है, स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं और बर्न आउट का रिस्क बढ़ जाता है. कतर में लाइफस्टाइल का पैटर्न भी इस एसेट को और इम्पॉर्टेंट बनाता है. लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ज्यादा सिटिंग जॉब्स, ड्राइविंग डिपेंडेंसी, इरेगुलर स्लीप साइकिल्स और सोशल ईटिंग हैबिट्स, ये सब मिलकर हेल्थ को साइलेंटली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. इसीलिए हेल्थ एक डिसिप्लिन एसेट की तरह ट्रीट करना जरूरी है. रेगुलर वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिकल चेकअप्स, ये सब सिंपल चीजें लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रोटेक्शन का फाउंडेशन बन जाती हैं. भाई देखिए ना, हेल्दी इंसान सिर्फ ज्यादा नहीं जीता बल्कि बेटर डिसीजंस लेता है ना, ज्यादा अर्न करता है और अपनी वेल्थ को ज्यादा एंजॉय करता है. और फिर वह बारी आ जाती है अपने चमकते हुए सितारे की, नंबर वन की, एसेट नंबर वन, हाई इनकम स्किल्स. और अब आते हैं सबसे पावरफुल एसेट पर, हाई इनकम स्किल्स. ये वो फाउंडेशन है जहां से सब कुछ स्टार्ट होता है. स्किल्स ही इनकम क्रिएट करती हैं और इनकम ही बाद में इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स बन जाती हैं. इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो पहला सवाल ये होना चाहिए, मैं अपनी अर्निंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ. पैसा होगा तो इन्वेस्ट करोगे ना भाई. देखिए, हाई वैल्यू स्किल्स में सेल्स, निगोसिएशन, कोडिंग, फाइनेंस, लीडरशिप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, AI इम्प्लीमेंटेशन, डिजिटल मार्केटिंग, लैंग्वेज फ्लुएंसी और पब्लिक स्पीकिंग शामिल होती हैं. कतर जैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वही प्रोफेशनल्स फास्ट ग्रो करते हैं जिनके पास रेयर और वैल्यूबल स्किल्स होती हैं, क्योंकि मार्केट सिर्फ प्रेजेंस को रिवॉर्ड नहीं करती बल्कि वैल्यू क्रिएशन को रिवॉर्ड करती है. अच्छा भाई, अब अगर आगे बढ़ें तो अब आते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट स्टेप पर, जो कि एक इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट बिल्ड करना. लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, सिर्फ एक चूज करें, ओवरथिंक या मल्टीपल चीज़ों में जंप नहीं करें. ये ना कीजिएगा, ये अक्सर फेलियर का रीज़न होता है. आप एक सिस्टमेटिक मंथली ETF इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आप डिसिप्लिन वे में वेल्थ बिल्ड करें. या फिर आप एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जहां आप अपनी स्किल्स मोनेटाइज कर सकते हैं. या रेंटल स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं आप, जहां आप लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं. या कंटेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहां आप अपनी नॉलेज को ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स डिजाइन कर सकते हैं जो रिपीट इनकम जनरेट करे. इंपॉर्टेंट ये है कि आप सिर्फ सोचे नहीं बल्कि स्टार्ट करें, क्योंकि एक छोटा सा स्ट्रक्चर्ड स्टेप भी 12 महीने के बाद एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन बन जाता है. अच्छा भाई, आगे बढ़े तो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट मूव ये है कि आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जो सिर्फ देखने में एसेट लगती हैं लेकिन असल में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को स्लो करती हैं. लग्जरी फाइनेंस कार्स जो सिर्फ स्टेटस शो ऑफ करती हैं लेकिन लाइबिलिटी बन जाती हैं, ये याद रखें. अननेसेसरी गैजेट्स जो रियल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करते, ये याद रखें. स्टेटस बेस्ड स्पेंडिंग जो सिर्फ सोशल वैलिडेशन के लिए होती है, नॉट अलाउड. और एक्सपेंसिव हैबिट्स जो साइलेंटली आपकी सेविंग्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, इनके ऊपर ध्यान दें. अगर कोई चीज़ आपको रिच दिखाती है लेकिन फाइनेंशियली वीक बनाती है, तो उस पर सवाल उठाना ज़रूरी है. वेल्थ बिल्डिंग का पहला रूल ये है कि आप अपने इमोशन से ज़्यादा अपने नंबर्स को ट्रस्ट करें. अच्छा, इसी के साथ

0: लेकिन पावरफुल रिमाइंडर्स भी दे देती हूँ फाइनेंशियल माइंडसेट को डेली गाइड आपके कर सके जो ठीक है. सैलरी हमेशा टेम्प्रेरी होती है साथियों, लेकिन स्किल्स पोर्टेबल होती हैं, याद रखो. वो आपके साथ हर कंट्री हर अपॉर्चुनिटी में चलती हैं. अगर कोई एक्सपेंस आपसे हर महीने पैसा ले रहा है और रिटर्न नहीं दे रहा तो उसको रिव्यू करना जरूरी है. इन्वेस्टिंग इमोशनल नहीं होनी चाहिए बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट होनी चाहिए. आपका सोशल सर्कल भी आपके फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को इन्फ्लुएंस करता है. जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं ना वो इनडायरेक्टली आपकी थिंकिंग को शेप कर रहे होते हैं. इसीलिए अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली चूज करें और याद रखें एसेट्स क्वाइटली बिल्ड करें, शो ऑफ नहीं करें मेहरबानी करके, स्ट्रक्चर बनाएं. क्योंकि रियल रिजल्ट्स हमेशा लाउड नहीं होते लेकिन पावरफुल जरूर होते हैं. एक स्ट्रॉन्ग डेकेड किसी भी फैमिली की फाइनेंशियल स्टोरी को कंप्लीटली चेंज कर कर रख सकता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विजिबिलिटी और वेल्थ को कभी कंफ्यूज मत करें. तो डियर लिसनर्स, वेल्थ कभी एक ड्रामेटिक मोमेंट में नहीं आती, ना ही ये एक ड्रामेटिक मोमेंट में बनती है. ये एक प्रोसेस है जो हर रोज छोटे छोटे वाइज डिसीजन से बनता है. एक स्किल जो आपने सीखी, एक मंथली इन्वेस्टमेंट जो आपने स्टार्ट किया, एक बैड हैबिट जो आपने स्टॉप की, एक साइड बिजनेस जो आपने बिल्ड किया, एक रेपुटेशन जो आपने प्रोटेक्ट की और एक हेल्दी बॉडी जो आपने मेंटेन की, ये सब मिलकर वेल्थ क्रिएट करते हैं. बहुत से लोग 10 साल सिर्फ बिजी रहते हैं लेकिन बहुत से लोग 10 साल इंटेंशनली बिल्ड करते हैं. आप कौन से ग्रुप में आते हैं, कभी सोचा है? तो भाई साथियों, ये था आज का मनी नेविगेटर का एपिसोड. मैं हूँ सफा. तो भाई आज के इस एपिसोड से मुझे दीजिए इजाजत. अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं 666-22107 पर, या हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं जो कि @FM107Qatar. और याद रखें, कतर में सिर्फ अर्न मत कीजिए, ऐसा कुछ बिल्ड कीजिए जो आपकी सैलरी से ज्यादा लंबी लाइफ रखता हो. अपना ढेर सारा ख्याल रखें. मेरी तरफ से आई एम साइनिंग आउट और नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं. याद रखिए कि जो अपना ख्याल नहीं रख सकता ना वो दूसरों का भी क्या ही ख्याल रखेगा. इसी नोट के साथ सुनते रहें FM 107, दिल से देसी.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। भाई स्टूडियो की घड़ी में 11 बज के सही 2 मिनट।
1: यू आर लिसनिंग टू आफ्टरनून एक्सप्रेस। आफ्टरनून एक्सप्रेस तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
3: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। Right guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very very good wali Monday morning. Kya haal chaal hai? Umeed kar rahe hain aap log khairiyat se honge. Sarwar aur Nazia hum dono aa chuke hain show mein aur pure 2 ghante aapke saath rahenge. Bahut sari baatein aaj bhi hum karne wale hain aur 2 ghante aapke hamare kahan nikal jate hain hame seriously pata nahi chalta. To bas is tarah se aaj bhi apne din ko mujhe umeed hai ki aapne super high note pe start kiya hoga and of course matlab jo end towards the end of the day aap kuch bahut अमेजिंग सा जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये पॉजिटिव से नोट और पॉजिटिव सी दुआ और इसके साथ हम अपने शो का आगाज करेंगे।
2: भाई बहुत बहुत शुक्रिया इतनी पॉजिटिव आगाज के लिए मिस नाजिया। ये बताइए कैसी हैं आप, खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: अब मेरी खैरियत पूछिए मैं कैसा हूँ।
1: सरवर मिर्जा आप अच्छे तो लगते नहीं है लेकिन चलिए बताइए।
2: भाई देखिए अल्लाह का शुक्र है कि आपको तो पता है इन बातों पे कभी ना गुरूर किया
1: और कीजिए। सरवर मिर्जा बताते बताते मुझे लगता है एंड हो गया इस शो का लेकिन आपने गौर नहीं किया इस
2: नाजी जी। दूसरा दिन है हफ्ते का और बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें अगर होती रहेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारी जो फैमिली है यहाँ पे ये कतर में जो हमारे साथ जुड़ते हैं, इनका इंशाल्लाह हफ्ता भी अच्छा जाने वाला है। और जैसा कि नाजिया जी ने बताई दिया है कि भाई आफ्टरनून एक्सप्रेस इस वक्त चल पड़ी है जहाँ पर खूब सारी बातें भी होंगी और आफ्टरनून तक लेकर जाएगी ये ट्रेन।

0: विजिट करवाते हैं उन लोगों को ले जाते
1: करवाते
0: हैं।
1: ही है
0: क्योंकि बड़ा कुछ सीखने के लिए मिलता है,
1: बिल्कुल
0: देखने के लिए मिलता है।
1: बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगी कि जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है इसको सेलिब्रेट करना, इसको ऑब्जर्व करना, इसकी शुरुआत बेसिकली 1977 में हुई थी और इसकी शुरुआत जो थी वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स ने की थी। जैसे दुनिया भर में जितने भी म्यूजियम्स हैं एक टाइम में बहुत ही डिमिनिश से हो गए थे, बहुत ही ज्यादा हाशिए पे पहुंच गए थे, लोग उस तरह से जो है म्यूजियम्स विजिट करना पसंद नहीं करते जैसे मॉल्स वगैरह पसंद करते हैं। तो जस्ट टू प्रिजर्व दैट या फिर म्यूजियम की जो इम्पोर्टेंस है उसे हाईलाइट करने के लिए 18 मई को 1977 में डिसाइड किया गया था कि बाकायदा इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और जैसे यहाँ पे सर्वर ने भी बताया आपको और हम और आप जानते हैं कि म्यूजियम इज सच अ सोर्स ऑफ लर्निंग, मतलब यहाँ पर आप अपनी हिस्ट्री के साथ कनेक्ट होते हैं, आपको रूट्स के बारे में पता चलता है, उस कंट्री के कल्चर के बारे में पता चलता है और किस तरह से प्रिजर्व करना इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को, इस अहमियत को भी हम जो है वो बखूबी समझ पाते हैं।
0: कुछ मूवीज भी इस मुतालिक आई हैं, जैसा कि मैंने बताया कि नाइट एट द म्यूजियम है बड़ी मशहूर मूवी रही और वहीं कुछ मूवीज जैसे द मम्मी वगैरह है या उनसे रिलेटेड मूवीज हैं तो उसमें काफी कुछ हमें सीखने समझने के लिए मिलता है पुरानी चीजों से मुतालिक। और उतना ही ज्यादा अगर आप मिस नाजिया को जानना चाहते हैं जितना करीब से तो ये फिल्में देखें आप सबसे पहले तो, और इनसे मुतालिक आपको काफी चीजें वहां रखी हुई दिख जाएंगी, इनके टाइम की दिख जाएंगी काफी चीजें जो 1000-2000 साल पुरानी
1: है आपको मिलेंगे। जैसे आप लोग बहुत ज्यादा कहते हैं, मैंने सोचा था ये लाइन में रखूंगी अभी निकल गई कि जो आप लोग पूछते हैं ना कैसे मुलाकात हो सकती है, मैं आपको बताती हूँ कब कभी किस किस म्यूजियम में बैठे पाए जाते हैं।
0: हमारे
1: ये
0: तो
1: एंटीक है,
0: हमारे अलीगढ़ में जो म्यूजियम है छोटा सा, कम लोगों को मालूम है एक्चुअली, वो जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है जूलॉजी डिपार्टमेंट में एक जगह पे उन्होंने सजाया हुआ है, उसमें नाजिया मेहमत भी रखा हुआ है उन्होंने, जिसको देख के मुझे आपकी इतनी याद आई है, यकीन जानिए इतनी याद आई है कि मैं बता नहीं सकता। कुछ कछुए वगैरह भी हैं वहाँ पुराने पुराने जो बताया गया जिनकी उम्र काफ़ी थी 1000-1200 साल वगैरह, और फिर काफ़ी करीबी ताल्लुक रखने वाले आपसे कुछ सांप भी मैंने देखे वहाँ पे नादिया जी, जो काफ़ी अच्छा, मतलब
1: वो आपसे ही जहर भरवा के वहाँ रखा
0: है। उन्होंने तो पूछा भी आपके बारे में कि भाई करता हुआ, उनसे कहो कि अब कितना टहलेंगी घूमेंगी, जरा सा आके हमसे भी मिल लिया करें,
1: कब तक हम इनसे भरवाते रहेंगे।
2: हमारे
0: साथ
2: हाँ जी हाँ जी परवर जी, की हाल चाल जी?
0: ओ बिल्कुल ठीक शाहजी, कौन है हमारे साथ, नाम तो बताओ अपना।
1: जसविंदर जी।
2: बस जी आप आज समझ लो जी ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया जी।
0: जसविंदर सिंह हमारे साथ हैं
1: जी, ऐसा लग रहा है, I don't know.
0: मिस्टर काला, इज दिस यू?
1: बताइए।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो नाजिया ने पहचान लिया जी।
0: क्या कहीं खड़े हुए ट्रैफिक खुलवा रहे हैं, आने दो एकदम से, कहीं और जहन तो है चाची आपका है?
2: नहीं आप मेरे आपके साथ बात पहली बार ही हो रही है जी।
0: यार पहली बार बात हो रही है, आप
2: जानेंगे ना
0: आप थे कहाँ, ये बताइए म्यूजियम के नाम पे कैसे निकल के आए आप, क्या खास ताल्लुक है आपका और म्यूजियम का?
1: आपकी वजह से आए, आपको पाया इन्होंने म्यूजियम में बहुत बार।
0: शाहजी आज म्यूजियम डे है, हम इसके हवाले से बात कर रहे थे, तो मेरा कहना यह है, मैंने अर्ज किया कि आप म्यूजियम के नाम पे एकदम हमसे कनेक्ट हुए, आके इतने दिनों से कनेक्ट नहीं हो रहे थे, क्या वजह थी?
2: ना अपने जो कतर के तीन म्यूजियम थे मैंने कतर के देखे हुए हैं।
0: अच्छा देखे में?
2: तीन देखे, एक तो तीन चार जी।
0: Okay.
2: एक तो अपना ये जो इस्लामिक म्यूजियम है ना, जो मियां पार्क है, एक वो वाला हो गया, एक अपना ये जो कमल के फूल का जैसा बना हुआ ना,
1: अच्छा।
2: एयरपोर्ट के सामने ओपोजिट में एक वो वाला देखा, एक वहाँ पहले भी एक म्यूजियम था, वो तोड़ के बाद में ये वाला बनाया, और एक जो शाहनिया में फैसल म्यूजियम जिसका भी पहले आपने बात की ना, फैसल म्यूजियम उसका नाम है, वो शाहनिया में है।
0: बिल्कुल
2: वो भी देखा हुआ है सर, अपना जो ज्वारा किला उसके अंदर भी छोटा सा म्यूजियम भी, वो भी मैंने देखा हुआ है ज्वारा किला, उसके अंदर भी छोटा सा म्यूजियम है, वो भी देखने वाली जगह है। उसके आगे जाओ ना तो एक वहाँ की एक बस्ती होती है, वो बस आगे जाती है उधर का पुराना दोहा था, जाने वो खाली ज्यादा रहेगी जाने, वो भी दिखने लिए
0: सही,
2: जितना है
0: सही।
2: और जवारा से आगे है 2-3 किलोमीटर कच्चा रोड जाता है वो।
0: बिल्कुल सही। एक्चुअली है क्या कि म्यूजियम और हेरिटेज म्यूजियम मिलाकर तकरीबन 15-16 तकरीबन 14 जगहें हैं कतर के अंदर छोटी।

0: छुट्टी काफी जगह ऐसी हैं। अब जैसे अल-दुसैरी पार्क है तो उसके अंदर भी एक छोटा सा म्यूजियम बना हुआ है, बाकी बड़े बड़े में तो नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर है, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट है, मसाफ है जिसको
1: बिल्कुल
0: 321 है, मुशैरब है,
1: स्पोर्ट्स पे है,
0: शेख फैसल बिन कासिम अल थानी है,
1: कतर
0: बिल्कुल बिल्कुल पुरानी चीज है, ओहो एक से कपड़े पुराने, कतर ऑटो म्यूजियम है, इसके बारे में भी हमने कभी पहले बताया है।
1: और वो दादू म्यूजियम वाज लाइक
0: दादू इज फॉर द किड्स,
1: बच्चों के लिए
0: दादू गार्डन,
1: वो अभी चल ही रहा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल आप वहां पर जाके भी मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। और प्लस हमारा फायर स्टेशन भाई, उसके अंदर भी बहुत कुछ समझने और देखने के लिए, बहरहाल ये बातें हम करेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: फिलहाल हम काला जी से जरा।
1: और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताऊँ, जो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट है वो दुनिया के, मतलब ये कतर में जो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट है वो दुनिया के बेस्ट इस्लामिक आर्ट कलेक्शन म्यूजियम में से एक माना जाता है, इसकी रैंकिंग भी है। तो देखिए कितनी कमाल की बात है कि यहाँ पर आपको इस्लामिक दुनिया की पुरानी आर्ट है, यहाँ पे हिस्टोरिकल चीजें सब कुछ एक जगह मिलती है।
0: शाह जी कितना टाइम हो गया कतर में?
2: मेरे को
0: जी
2: ना पूछो जी, सवाल अच्छी बात है जी।
0: मैं बताऊंगा
2: ऐसी बात नहीं है, मैं 92 में आया था, 92 में आया था, आप हिसाब लगा लो, हिसाब तो अभी नहीं लगा था, हिसाब आप लगा लो।
0: क्या बात है भाई, कितने
2: 92 में आया था,
1: 35
0: माशाल्लाह
2: 35 92 में आया था। और जो अपना जो उर्दू अपनी जो आपकी फैमिली के साथ में जुड़ा हूँ मैं,
0: अच्छा
2: ये मैं 2011 में मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, मैं
0: 2011 में जुड़े
2: 11 से मैं आपके साथ जुड़ा। अभी देखो जे भी तकरीबन 16 साल तो 15 साल तो जे भी बन गए,
1: 16 साल ये भी हो गए,
2: 15 साल से मैं आप लोगों के साथ हूँ।
1: आप काफी अर्ली आए कतर और आपने तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस देखे होंगे इस कंट्री के, यू नो
2: तब और अब में। जिससे मैं आया तो उस समय को होटल था, शेराटन होटल था बड़ा वाला, तो एक जिम को बिल्डिंग थी, तो बाद में सब कुछ बाद में बना ना, सिर्फ एक शेराटन होटल था, बाकी तो कुछ नहीं था, पर बाद में अभी तो बात जी बहुत खूबसूरती बहुत हो गया, पूछो मत जी क्या
0: माशाल्लाह। बिल्कुल सही। तो शाह जी अब इसके साथ साथ ये भी बताइए मुझे कि आप अभी तक, हम तकरीबन मैं और नाजिया 9 महीने से तकरीबन एक साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर देखा जाए पिछले पुराने मिला के, तो आप अभी तक कहाँ थे ये बताइए।
2: अब पिछले 2 महीने पहले आप नहीं थे, नाजिया के साथ एक दूसरी मैडम थी जो सुबह सुबह आती है।
0: अच्छा नहीं वो तो बीच में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ खास होता है, ईद होती
2: नहीं,
0: है
2: नहीं, आप,
0: या कोई छुट्टी गया होता है। इससे पहले मैंने और नाजिया ने एनर्जी आर किया 3-4 महीने, फिर अभी ये पूरे जनवरी से मई तक हम एक साथ थे, तो आप क्यों नहीं आए सवाल ये है।
2: मैं आपको बताता हूँ साजिद, मैं आपको वही तो बताना चाहता, आप थोड़ा बोलने का मौका दो ना। आज मालूम मैं कैसे आ गया, आज मेरे को खबर मिली भी ये जो आपका ये जो प्रोग्राम खत्म होने वाला है।
1: हाँ खत्म होने वाला है।
2: खत्म चेंज

0: काम है, और बहुत बहुत शुक्रिया यार इतनी मोहब्बत का। मैं और नाजिया बड़े खुश हुए।
1: हम लोग डिजर्व नहीं करते हैं सर, और... तो बिल्कुल ही नहीं
2: और नाजिया के साथ तो मेरे बहुत बार कम से कम 25 बार बात हो चुकी है नाजिया।
0: क्या बात
2: है, आपसे बात मेरी पहली बार बात हुई है।
0: पहली बार बात, बिल्कुल
2: ऐसा ना हो भी कभी बाद में वो प्रोग्राम चेंज हो जाए सर्वर जी ना।
0: अरे नहीं,
1: अभी बात कर रहे हैं। अच्छी बात बताएं क्या है जसविंदर जी, आपको सर्वर इसी टाइम पे मिलेंगे जो टाइम है इनका 11, ये इसी टाइम पर है।
2: अभी मुद्दे वाली बात आएगी सर्वर जी। मैं ना आपको एक मैसेज करता था, मैं रोज ही आपको होता था सर्वर जी, मैं आपको रोज ही मैसेज करता था, आप मेरा पढ़ते है ना,
0: लेकिन
2: मैसेज मैं रोज आपको करता। मैंने आपको मैसेज किया था पहले कर नाजिया जी, वो काकी थी जो भाग गई सर्वर जी नहीं भागे।
0: ये तो मैनेजमेंट ने मिल के सोचा कि भाई आप इनकी जान बचानी है एक दूसरे की, तो लिहाजा इनको अलग बिठा दिया जाए थोड़े दिन तक।
1: नहीं, आपने जसविंदर जी सही कहा, ये काकी पे भारी है, ये इस तरह के काका है ये बहुत भारी।
2: ये जो भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले ही कर दी थी, जन्मे को बाद
1: मुझे ही भागना पड़ा है मैदान छोड़
2: के, पहले भविष्यवाणी कर रही। और सर्वजी जी हम आपसे यार बहुत मोहब्बत करते हैं यार, हमारे पास लफ्ज नहीं जा रहा, हम कुछ बोलते यार।
0: अरे सर ये तो आपका
2: बहुत मोहब्बत करते यार,
0: हम
2: बहुत मोहब्बत करते हैं,
0: छोटे हैं।
2: और मैं उन खुश नसीबों में मैं आपसे एक बार मिल भी चुका हूँ।
0: अरे तो खुश नसीबी तो मेरी हुई सर, फिर तो मेरी खुश नसीबी हुई। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत मेहरबानी कि आपने आज कॉल करी जरूरी वक्त में, काम के बीच में रुक के आपने मुझे और नाजिया को वक्त दिया। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया। हम जितना भी कहें
2: और आपसे तो बात सर्वर जी करने का नहीं थी यार, जो दिल के करीब होते उनसे बात की जाती है।
0: अरे
2: और मैं बताता ना जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं ना 2011 से सुनना चालू किया, दूसरा रमजान था
0: ओके,
2: जो है ना अपना है ना रुमादा सिग्नल, वहाँ पर ना मेरी गाड़ी की टेवर कट खराब हो गई।
1: अच्छा
2: सुन रहे मेरी बात, टेवर कट खराब, मैं चलो रेडवा ट्राई करता हूँ, रेडवा लगाया तो वहाँ पर अपने प्रोग्राम चल रहा था सैफुर रहमान का।
0: ओके
2: मैं कहा ये उर्दू में प्रोग्राम कैसे चल रहा है यार,
0: क्या बात।
2: मैं तो वहाँ पे गया और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, सवालों जवाब का प्रोग्राम था, बहुत अच्छा जवाब था। तो मैंने वो प्रोग्राम सुना, ईद तक सुनता रहा, डेली शाम को अपना प्रोग्राम उस टाइम पूरा 24 घंटे नहीं चलता जानी। तो फिर मैंने मालूम किया जब ईद का छुट्टियां आई ना ईद जुड़े, तो मैंने फिर कॉल लगाई ईद का दिनों में, मैंने दूसरी ईद को मैंने कॉल लगाई।
0: क्या बात है,
2: अपने 107 में। तो उस टाइम जिस टाइम मैं कॉल गई उस टाइम अपने थे ना उबैद ताहर,
0: जी जी जी उबैद साहब थे हमारे,
2: और साथ में थे आशा मुजाहिद। दूसरा रमजान था, दूसरा दिन था नहीं, उबैद ताहर बोला सर उबैद ताहर साहब जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: पुलिस वाले जी सर बोलना पड़े, सर उबैद ताहर जी को थे और साथ में आशा मुजाहिद भी थी। तो दूसरे रमजान को मैंने फोन किया ना, मेरी पहली कॉल थी और मेरे को ना पहली कॉल में मेरे को 400 का प्राइज निकला है।
0: आए, आए, आए, आए,
1: क्या बात है।
0: ये हुई साहब म्यूजियम वाली बात, देखिए इतनी पुरानी पुरानी बात और साथ में यादगार भी, इसीलिए याद भी है। महाराज शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, और बड़ी मोहब्बत सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बस जी अभी मैं तब से आपके साथ जुड़ा हूँ, तो अभी लगभग मैंने जी 14 मैंने प्राइज जीत लिए है, और 15वां नाजिया के पास पड़ा हुआ आपके पास है जी, वो भी इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा।
0: 15वां भी आप
2: मिल के बहुत सब लोगों को मिलेंगे। और सर्वर जी बस आपसे बात करनी थी, कब से जानिए आपका टाइम चेंज हो रहा है, जल्द हमको बता दो।
0: बस हम लोग पहली जून से इंशाल्लाह ताला, अभी ये अभी हम लोग साथ में, जी जी जी
2: नहीं तो आपके साथ कौन आ रहे हैं,
0: मैं और सफा होंगे इंशाल्लाह ताला। नाजिया के साथ महविश होंगी मॉर्निंग में इंशाल्लाह ताला।
2: कितना बजे हो जाएंगे मॉर्निंग
0: 6 बजे से सुबह।
2: चलो वो तो हम सुन सकते, लेकिन ये जो 11 बजे का टाइम हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, इस टाइम में काम का बहुत जोर होता है, तो हम सुन सकते, मुश्किल नहीं है, नाजिया को सुन सकते हैं।
0: चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया।
2: नहीं हम आपको भी है, लेकिन कॉल नहीं कर सकते,
0: कॉल नहीं, हाँ बिल्कुल सुनते रहिए,
1: हमें कम से कम मैसेज किया कीजिए कि हमें पता चले आप हमें सुन रहे हैं, है ना।
2: जरूर बहुत
0: बहुत शुक्रिया।
2: और ऐसा ना जी, हमारा तो जिक्र होता रहता है कभी।

0: जिक्र कवाल जिक्र करके कभी गाबा जी बात करके तो जिक्र होता रहता है तकरीबन हफ्ते में पांच दिन तो मेरा जिक्र हो जाता है जी।
1: ईद मुबारक शाहजी, ईद मुबारक। क्या बात है यार, इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी हसीन यादें और उनका जिक्र। आज खासम खास दिन भी, आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जा रहा है और हमारा कदर इसमें बहुत ज्यादा आगे भी है। फिलहाल आफ्टरनून एक्सप्रेस पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सरवर नाजिया आपके साथ जुड़े हुए हैं, कहीं भी मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं वापस आए। सुनते रहिए FM 107,
2: दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ جب اچھے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو دنیا جان جاتی ہے کہ آپ کیسے ہیں، اور آپ جب برے وقت سے دوچار ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کیسی ہے. دنیا میں سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ آپ جب کسی کو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں تو اصل میں آپ اسے اپنی زندگی کا وہ لمحہ دیتے ہیں جو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. وقت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے. زندگی میں کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ کرنے ہی پڑتے ہیں. ایسے حالات میں خود کو ایک دفعہ توڑ کر پھر سے جوڑ لیجیے تو پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا. آپ خود میں سکون محسوس کریں گے اور زندگی پھر سے معمول پر آ جائے گی.
1: پیغام on FM 107
3: Qatar's third radio station FM 107 FM 107 Dil se Desi.
4: Hello bachon, taiyar rahiye ek super fun hour ke liye. Har Monday 3 baje se hum lekar aate hain songs, kahaniyan aur surprises jo aapko hasayenge aur sikhayenge. अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए. सब कुछ एक ही शो में, तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से. हर मंडे 3 बजे से विद आरजे फजील, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी.
5: घर में खाना अगर बच्चों की पसंद का हो तो घर में सुकून बना रहता है. अब आप सोचिए अगर आपके घर में ही एक नन्ना शेफ छुपा हो तो प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म है ना. इसलिए हम आपके लिए लाए हैं खास शो जिसमें आपके घर के उस नन्ने शेफ को मिलेगी इंस्पिरेशन और रेसिपीज का खजाना. आरजे सर्वर के साथ सुनिए जूनियर शेफ. जूनियर शेफ हर जुम्मे की दोपहर 2:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
6: एक्सक्यूज मी, अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
5: हाँ उसके लिए तो
6: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
5: वैसे वो तो देखो,
6: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है.
5: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे.
7: प्रोग्राम कतर 101 आरजे फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
4: साथियों जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है. सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर. बिल्कुल प्रैक्टिकल,

0: बिल्कुल रियल लाइफ। सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर, मनी नेविगेटर एवरी मंडे 10 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी, योर गाइड फॉर ए स्मार्टर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन। सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी शुरू कीजिए।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुल जमान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में, हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: यू आर लिसनिंग टू
3: आफ्टरनून एक्सप्रेस।
2: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
3: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक,
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: हाँ जी, वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद। और बिल्कुल आफ्टरनून एक्सप्रेस इस वक्त तेजी से चल रही है, जहाँ सरवर और नाजिया आपके साथ हैं। और यहाँ पर अब आप लोगों के कुछ मैसेजेस, आज खासम खास दिन जिसके ऊपर बात हो रही है, और वो है साहब म्यूजियम डे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। अभी तक हमने बहुत कुछ जाना समझा भी और इसके हवाले से बातचीत भी करी। यहाँ पर तौफीक भाई हमारे साथ जुड़ गए, नाजिया और सरवर अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद तौफीक अल बाकरा से कहते हैं वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह और अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई और नाजिया सिस्टर। सरवर भाई अकेले क्यों जाएंगे, मैं भी जाऊंगा उनके साथ, नहा धोके म्यूजियम जाएंगे मेरे साथ, कह रहे हैं बिल्कुल तैयार होके गुलफाम खान साहब, मैं लेके चलूंगा भाई को, स्पेशली क्यों छोड़ दूंगा।
4: अरे तो आप भी एंटी होंगे इंशाल्लाह, आप भी बैठेगा, इनका तो एक है अपना एक एरिया सेट है।
0: नाजिया जी और सरवर जी गुड मॉर्निंग कहते
4: very,
0: हैं
4: very good morning।
0: और किस तरीके के पेड़ देखिए भेजे हैं, कलरफुल, जो पीले सफेद नीले। रमेश भाई है क्या?
4: थैंक यू जी रमेश जी।
0: रमेश भाई हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो रमेश भाई। भाई गुड मॉर्निंग कहो या गुड आफ्टरनून कहूं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं अभी तो मॉर्निंग के लिए। आसिफ भाई है, अच्छा, और यहाँ पे फोटो भेजा है कि हमारे साथ जुड़े हुए। ओके यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं हेलो, तो हाय कह देते हैं इनको हम। अबू बकर साहब हैं हमारे साथ, अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ गए, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नाजिया बहन और सरबर भाई, क्या हाल है आप दोनों के? नाजिया क्या हाल है बताइए।
4: अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खैरियत।
0: मेरे हाल बताइए कैसे हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह
0: ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग नाजिया जी और सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल। आफ्टरनून एक्सप्रेस पे वेलकम करते हैं। यूसुफ भाई जुड़ गए, कहते हैं मुझे भी अच्छा लगता है म्यूजियम विजिट करना, हमने जो नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर है और MOI देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब दोनों जगह जाते हैं। कहते हैं या अल्लाह सरवर भाई ये क्या लाइन थी म्यूजियम के नाम से। ये उनके लिए खातों खास थी। ओके कहते हैं फजील भाई के साथ ज्यादा उठना बैठना हो रहा है क्या, वो भी ऐसे ही बातें करते हैं। सर काम बोलते हैं। नहीं भाई वो तो मुझसे बहुत दूर रह रहे हैं, अब मैं और उनसे तो मुलाकात ही नहीं हो पा रही। कहते हैं मियां पार का जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या हाल है जनाब? नसीम भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम बिल्कुल खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सोच रहे होंगे मैं क्यों हंस रहा हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत अजीब अजीब सी शक्ल देखने के लिए मिल रही है नाजिया जी की। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं।
4: फराज
0: भाई हमारे साथ,
4: तो भाई आज एक कॉलर भी हमारे साथ,
0: अच्छा कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, बिल्कुल उनसे पहले बात करेंगे। नाजिया जी क्या कह दिया आपने, हेलो अस्सलाम वालेकुम?
5: वालेकुम सलाम जनाब।
0: भाई साहब आज तो पंजाबियों ने मिलके पकड़ लिया हमें सबने। आज गावा है मालूम है क्या हुआ हमारे साथ, बड़ी ही प्यारी बात हुई है।
4: हाँ
0: पूछिए क्या
5: जी? मैंने सुन लिया।
0: अच्छा सुन लिया, आज हमारे बड़े और हम सबके चाहने वाले जसविंदर साहब हमारे साथ जुड़े और वो भी बड़े ही मशगूल थे, उसके बावजूद भी उन्होंने वक्त दिया, उनको सलाम है भाई। और अब गाबर भाई का अहलन व सहलन करते हैं हम लोग।
4: अब एक दिन और में सो जाएंगे, अगले दिन गब्बर भाई
0: गबरू
5: मैडम
0: एक्चुअली गबरू कहना चाह रहा था यार, आप
5: गबरू पंजाबी में बोलते हैं मैडम,
0: वही कहना चाह रहा था यार, वही कहना चाह,
4: बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा,
0: आर और यू इधर उधर हो गया थोड़ा सा, तो वो अपने हिसाब से हमने सेट कर लिया, कोई ऐसी बात नहीं। गबरू भाई, गाबा भाई, कितने म्यूजियम देखे हैं कतर के?
4: कौन कौन से
5: म्यूजियम? से पहले सरवर भाई बात ऐसे है, थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ अहलन
0: और सहलन
5: के हवाले से।
0: अहलन और सहलन,
5: क्या हुआ सर, 2024 में ईद का शो चल रहा था, ठीक है, वो आप दोनों ही शो कर रहे थे वो।
0: अच्छा, तो कब
5: मेरे को ये नहीं पता, पहले
0: 22 में
5: 24
0: में, अच्छा 2 साल पहले, ओके।
5: पता नहीं पहले वाली थी या सेकंड वाली। तो मेरी बात हुई आप दोनों के साथ में उस शो में,
0: ओके।
4: अच्छा,
5: तो मुझे अब भी याद है नाजिया जी ने मुझसे सवाल पूछा था भी ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल क्या है।
0: अच्छा
4: अच्छा,
0: मैं 2 साल बाद भी नहीं याद रही कौन सी है, खैर
5: कैनबरा।
0: अच्छा ठीक है, मैं तो सिडनी बताने वाला था, अच्छा हुआ नहीं बोला, किसी ने सुना नहीं
5: सिडनी पहले थी सर, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, वो भी ठीक है।
0: हाँ, तो उस टाइम
5: अच्छा तो बात है।
0: अच्छा हाँ जी, जी
5: तो okay, बात ऐसे हुई सरवर भाई आप लोगों से, वो मेरी फर्स्ट डे बात थी,
0: ओके
5: आप दोनों के साथ पहली बार ही थी और आपके शो में भी पहली
0: याद
5: बार
0: है यार, आपको कितनी बड़ी बात है मोहब्बत भाई की यार,
4: वाकई
0: एलन व फैलन।
5: तो उसके बाद में जो आपका आफ्टरनून में शो शुरू हुआ, क्या नाम था सर उसका? एनर्जी आवर। इससे पहले सरवर भाई आपकी मेरे साथ बहुत बार बात हो चुकी है सामिया जी के शो में।
0: हाँ बिल्कुल, हम वीकेंड पे एक साथ होते थे जब, बिल्कुल मैं और सामिया एक साथ वीकेंड पे होते थे। हाँ। वीकेंड गपशप नाम था शायद, अगर मुझे सही याद है तो।
5: हाँ। जी, और आपसे और नाजिया जी से वो ईद के दिनों में ऐसी बात हुई ना सर मेरी,
0: ओके ओके,
5: तो मुझे लगा भी मेरी राशि भी अभी इन बंदों के साथ मिल चुकी है सर।
0: वाह वाह,
4: क्या बात है भाई,
0: वाकई मिल गई।
5: तो उस दिन के बाद सर ऐसी राशि मिली ना भी, आपका कोई भी शो हो सर रेगुलर, उसके बाद में बिल्कुल सर मैं टच में रहा हूँ और बिल्कुल पार्टिसिपेट भी किया है आपके हर किसी शो में सर।
0: है भाई,
5: ये तो किया है, खुशी के साथ किया है सर,
0: मोहब्बत है यार आपकी, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं, यकीन जानिए मैं और नाविया दोनों ही, बड़ी मोहब्बत दी आप लोगों ने, और यहाँ तक कि कतर का बड़ा ही जबरदस्त प्रोग्राम भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी FM 107 की जानिब से इसी तरीके के सारे प्रोग्राम जाते रहेंगे और कोशिश यही रहेगी। गाबा भाई, आपकी मोहब्बत का कोई बदल नहीं है, मैं ये खुद बता रहा हूँ।
5: एक्चुअली चक्कर पता क्या है, नाजिया जी ने ना मोस्टली जो प्रोग्राम किए हैं, जहाँ तक मैंने इनको सुना है, इन्होंने किसी के साथ में किए हैं कोऑर्डिनेशन में, ठीक है सर। तो मेरे को लगता था भी ये सिंगल प्रोग्राम कर सकती हैं या नहीं कर सकती, फिर मैंने देखा सर नाजिया जी को जो प्रोग्राम मिले FIFA Under-17 अरब कप में,
0: याद
5: तो मैंने देखा भी जी, नाजिया जी का जोश देखा, मैंने इनको पहले भी बोला था,
0: अरे वो तो बहुत भगवान के अंदर अल्लाह ताला सही जगह बस उसका जो कहना चाहिए निकलना हो, अगर खैर भारत। हाँ, आगे
5: सरवर भाई यकीन मानिए सरवर भाई, रेगुलर किसी भी शो में 10 कॉल्स अटेंड करना इज नॉट एन इजी टास्क,
0: सही
5: बिल्कुल। तो मैंने वो नाजिया जी के 2 शोज थे ना, उसमें इनका असली एनर्जी वाला रूप देखा था भी, हाँ यार मैडम में है जबरदस्त एनर्जी।
0: अरे अनेक रूप हैं भाई, एक ही रूप नहीं है, अनेक रूप आप कह सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से दर्शाती भी रहती हैं और सामने आते भी रहते हैं
4: सारे के सारे।
0: अरे यार हम भी, अरे साहब हर तरीके से 20-20 साल में पहली बार कुछ चीजें मैडम दर्शा देती हैं, हिला के रख देती हैं सर से लेके पांव तक, तो बड़ा माशाल्लाह भाई। नाजिया जी से मैंने, आप अपनी बात कर रहे हैं, मैंने कितना सीखा है आज जिंदगी में, मैं क्या बताऊं।
4: आपने सीखा होता तो आप सुधर चुके होते सर मिर्जा, अभी भी बहुत ज्यादा एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट
0: सीखना बाकी है।
5: जी सरवर जी, नाजिया जी के बात में बारे में एक खास बात हो रहा है जो मैंने खुद
0: बिल्कुल कही है, बिल्कुल कही है, मैं भी सुनना चाहता हूँ।
5: इन्होंने सर बहुत सारे डिप्लोमेट्स का इंटरव्यू लिया है,
0: बिल्कुल किया है, कर भी नहीं है,
5: और इन्होंने हाँ, और इन्होंने आज तक कोई भी डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दिया सर।
0: वाह,
5: इनका आंसर होता है
4: क्या लाइन है, वाह
0: क्या बात,
4: वेरी इंप्रेसिव भाई। ये तो बहुत ही अच्छी लाइन है, ये तो मैं कभी कभी यूज करूंगी अपने लिए।
0: वाह, आगे से याद
4: याद रखो।
0: इधर डिप्लोमेट का इंटरव्यू किया मगर कभी मैंने डिप्लोमेटिक बात नहीं करी।
4: आंसर नहीं है।
0: चलिए ये भी अच्छा रहा।
5: सर्वर भाई ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, आज तक मैंने जो भी नाजिया जी का शो सुना है स्पेशली वो दो शो सच शुरू होता था।

0: थिंक 6:30 मेरे को टाइम नहीं याद अभी, ढाई तीन घंटे प्रोग्राम चलता था, सेम एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट मिनट टू लेके लास्ट मिनट तक. सर 10 कॉल्स अटेंड करना इज नॉट एन इजी टास्क रेगुलर.
1: बिल्कुल सही भाई, ये
0: हम लोगों का भी एक्सपीरियंस है.
1: और
0: सर यकीन मानिए सरवर भाई
1: जी,
0: फिर मैं दूसरी बात करता हूँ. यकीन मानिए सर, जब से आप दोनों का साथ हमारे साथ हुआ है ना सर, हमारा विकास ऑटोमेटिकली हो गया सर.
1: बलप्पन है आपका यार, ये तो
2: अच्छा, मैं समझी कह रहे हमारा विनाश ऑटोमेटिकली.
1: के है वहाँ पे, के है, एंड नहीं लगाया उन्होंने, के लगाया है. यार ये तो मोहब्बत है काबा भाई आप सभी लोगों की, और बहुत बहुत शुक्रिया. अब इससे ज्यादा हम क्या कहें, हमारे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए. आपकी मोहब्बतों का कोई बदल नहीं, और इसी तरह अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खुश खुर्रम रखे. बहुत बहुत शुक्रिया काबा भाई. म्यूजियम के हवाले से भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, आज म्यूजियम डे है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, कतर के म्यूजियम वगैरह आप घूमे हैं गए हैं?
0: मैं सर स्पेशली बस वही म्यूजियम में गया हूँ जो कॉर्निश पे है, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट है ना वो?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही है वही.
0: तो सर बहुत टाइम पहले गया था मैं वहाँ पे सर, यकीन मानिए इतनी खुशी हुई ना उस म्यूजियम में जाके. सबसे पहले तो खास क्या लगता है, जब आप एंटर करते हो ना जो फाउंटेन्स चलते हैं बाहर, फाउंटेन
2: सही
0: तो जब आप उसमें एंटर करते हो तो सर एक रॉयल फीलिंग आती है. आसपास के खजूर के पेड़, जब आप ऊपर चढ़ के स्पेशली चढ़ाई चढ़ के गाड़ी ऊपर जाती है तो बहुत अच्छा लगता है सर. उसकी सफाई, अंदर में एक कैफे भी बना हुआ है, और आपने कॉर्निश देखना है तो वो भी दिखता है साइड से, बोट्स वगैरह ये.
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल
2: बहुत
1: सही,
2: सही का.
0: और जहाँ पे मैडम जब अंदर गए वहाँ पे बहुत खुशी हुई देख के कि बहुत सारे होली रिलीजियस बुक्स वहाँ पे पड़े थे जो कि अरेबिक में लिखे हुए हैं.
1: सही,
0: बहुत सारे सिक्के, बहुत सारी पुरानी चीजें. और इस मैडम म्यूजियम में विराट कोहली जी ने भी विजिट किया हुआ है.
1: बिल्कुल सही,
2: इसमें बहुत सारे जो स्लेब्स हैं जब भी विजिट करते पर्टिकुलरली म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट जरूर जाते हैं, या नेशनल म्यूजियम, अब तो खैर यहाँ भी जरूर जाते हैं, बट यार दोनों ही बहुत ही अच्छे म्यूजियम्स.
0: स्पेशली नाजिया जी उस जगह में फोटो क्लिक करने का मजा आता है जो एक विंडो से बनी हुई है ना
2: जी,
1: बिल्कुल वो एक फ्रेम की तरह काम करता है. बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने.
2: आपकी बहुत अच्छी माशाल्लाह मेमोरी है, बहुत जबरदस्त.
1: बहुत बहुत शुक्रिया गाबा भाई, इतनी सारी मोहब्बतों से.
0: जी जी जी जी सरवर भाई, अगर आपकी निगाह में कोई वो म्यूजियम हो ना मुझे जरूर बताना. इंडिया में जो एक बंदूक होती थी ना पुराने टाइम में, जो दूसरे के कंधे पे रख के चलाते थे, कौन से
1: वो मैं आपको मैं अभी बताता हूँ कहाँ पे मिलेगी. भाई बहुत शुक्रिया गाबा साहब आपकी मोहब्बत का, और सभी की मोहब्बत का मैं तो कहूंगा, और बड़ी अच्छी प्यारी बातें. बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और वक्त देने का इतना बहुत बहुत शुक्रिया गाबा भाई. थैंक यू,
0: टेक केयर,
1: टेक केयर सर, थैंक यू सो मच.
2: ऑलराइट,
1: गाबा भाई हमारे साथ,
2: वन मोर कॉलर, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं.
1: ओके तो जुड़ गए हैं, बिल्कुल. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम,
1: अहलन व सहलन. कौन है हमारे साथ?
3: भाई आपका छोटा भाई आसिफ.
1: आसिफ भाई अहलन वसहलन, कैसे हैं आसिफ भाई, खैरियत से?
3: भाई मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ, बस मेरे को आज ना थोड़ा मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि जलन महसूस हो रही है किसी को.
1: किसी को जलन महसूस हो रही है?
3: बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं बताता हूँ. गावा भाई जो इतनी बातें करके गए ना कसम से, मगर सिर्फ उनकी बातों में नाजिया बा नाजिया नाजिया नाजिया में बैठे कोई तो जल रहा है नाजिया सबसे.
1: यार नाजिया इशारा मेरी तरफ है, उनका पूरा का पूरा इशारा मेरी तरफ है.
2: ये बहुत जलते हैं, बहुत ज्यादा इनको बुरा लगते है.
1: एक माशाल्लाह,
2: और आपने बिल्कुल सही पहचाना, सरवर मिर्जा का एकदम दिल नहीं लग रहा था, और एकदम ये उजाड़ थे, बहुत जलन हो रही थी कि जल्दी से कह रहे कॉल फिनिश हो, कब फिनिश होगी, कब फिनिश होगी.
3: नहीं मैं तो एकदम गौर से सुन रहा, एकदम गौर से. मैं
1: आपने उनकी बातों से इत्तेफाक किया?
3: 100% किया मैं. अभी तो मैं कॉल पे कॉल किया जा रहा था आपको, मैं बोला भाई लगता है, बता दू मैं ही कॉल करके कि भाई लगता है कहीं से कोई जल रहा कोई इंसान. नहीं वैसे सरवर भाई बहुत अच्छे हैं यार, सरवर भाई
2: जलते वलते तो है लेकिन वैसे बहुत
1: जलने के बाद ज्यादा अच्छे लगते हैं. कुछ चीजों का टेस्ट जल के आता है, सरवर उसी में सही है, जब जल जाते हैं
2: तो बहुत सही लगते हैं.
1: गर्मी है, हजरते नाकाम से जल जाते हैं, हमारे साथ तो यही वाला मसला रहा है भाई. बहरहाल आसिफ भाई ये बताइए कि कोई म्यूजियम वगैरह देखा है कतर का?
3: म्यूजियम वगैरह तो नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा है,
1: मतलब देखने की जरूरत
3: नहीं. मालूम है सूख वाकिफ देखा हो, बाकी हर जगह गया हो, बाकी मालूम नहीं किधर क्या है.
1: चलिए हम आपको

0: बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं इंशाल्लाह, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इसके हवाले से हम जरूर बातचीत करेंगे। और खैरियत से हैं सब इंशाल्लाह।
1: एक और आपसे दरख्वास्त है, मतलब मैं सुनने में आया, मेरे उठते उठते खबर आई कि आप और टाइम चेंज हो रहा आप लोगों का।
2: हाँ देखिए, मेरा टाइम चेंज, मेरा वक्त तो बदल रहा है, बदल गया है।
1: वो तो आपका वक्त तो माशाल्लाह बदला हुआ ही है, बिल्कुल बदला हुआ, बाकी किसी और का वक्त बदल रहा है।
0: नहीं,
2: सर्वर भाई
0: मैं मही के मही हूँ,
2: सर्वर भाई का वक्त नहीं बदल रहा है दोस्तों, इसी टाइम में
0: हमारा वक्त बदल रहा है ना, हम बदल रहे हैं भाई, मही के मही है, नादी जी का वक्त बदल रहा है।
1: नादिया बहन तो बोल रही है वक्त हमारा है,
0: बिल्कुल अपने हिसाब से बदल लेती, अपने हिसाब से बदल लेती है।
2: देखिए मेरा जो है ना मॉर्निंग में होगा, हालांकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मॉर्निंग मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि 6 बजे आई हैव टू बी हियर इन स्टूडियो, लाइक 5:30 तक आ जाना है, तो वो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग है। बट यस, सब मैं मॉर्निंग्स में
1: जी बिल्कुल। नादिया बहन, मगर मैंने एक आपका एक और शो सुना है जिसमें आप मतलब कंटिन्यू सिर्फ बोलते रहते हो, वो कौन सा कौन सी टाइम में शो आता है आपका? मैं सुनता हूँ उसको गौर से, कंटिन्यू बोलते रहते, उसमें किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाजत ही नहीं देते आप।
2: भाई मेरे तो सारे इंटरव्यू बेस्ड शोज हैं, बाकी मुझे नहीं पता कौन सा आप सुन रहे हैं मेरा।
1: मैं सुन रहा हूँ मतलब इवनिंग
2: किसी और का तो नहीं है।
1: नहीं नहीं, किसी और का एक ही टाइम है।
0: मैं बताता हूँ आसिफ भाई कि हमारे कुछ रिकॉर्डेड शोज भी होते हैं, तो उसमें होते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ, तो शायद उसमें उनको एहसास होता हो कि कॉल नहीं ले रहे या किसी और से बात नहीं कर रही है या कुछ।
2: अच्छा, नहीं वो कह रही आप ही बोल रही है, मेरे ख्याल से कोई और है, क्योंकि मेरा सिंगल कोई शो है ही नहीं जिसमें मैं अकेली बोल रही हूँ।
0: नहीं मेरा मतलब, उनके कहने का मतलब यही है कल, मैंने आसिफ भाई कि कोई कॉल नहीं है, कुछ नहीं
2: बेस्ड है। ये आप कह रहे हैं
1: जी, मैं एक बात और, हमारे इंडिया में कहावत है हमारी चोरी चोरों से कम है क्या?
2: बाबा यही कह रहे हैं कि मैं कम नहीं हूँ किसी से,
0: वाह वाह वाह राधे जी, आज
2: आज मेरा दिन
0: बिल्कुल आप रख दिया जाएगा, क्योंकि म्यूजियम में रखा जाएगा ना इंशाल्लाह ताला, एक दिन आएगा तभी तो पता।
1: सरवर भाई, आज तो हमारे जितने भी लिसनर सबसे एक ही गुजारिश करूंगा, आज सिर्फ नाजिया आपा को चने के झाड़ पे चढ़ाइए,
2: चने के झाड़ पे चढ़ाइए
1: और कुछ नहीं,
2: झाड़ू खा रही
1: हूं, क्योंकि नाजिया आपा की तारीफ मैंने औरों से भी सुना हो, यानी के फजील भाई से भी सुना हो, कबीर भाई से भी।
0: अच्छा, ये मेरी तारीफ नहीं कर रहे इनमें से, एक भी मेरी तारीफ नहीं कर रहा? चलो यार,
2: पैसे काटो,
0: ये भी टूटना पड़ेगा, ये अच्छा बयान,
2: मुझे लगता है पैसे बढ़ाने पड़ेंगे जा रही है।
0: ये देखिए आप मेरी तारीफ कोई करी नहीं रहा इसमें से,
2: तो आप टाइम पे लोगों को पैसे कहाँ दे
0: इस लाइफ तो बने कम से कम।
2: सर मतलब टाइम पे पैसे तो दीजिए,
0: सही है,
1: यही बात के ऊपर मैं आ रहा था अभी आपके ऊपर, यही बात के ऊपर आ रहा था मैं। नादिया आपा ने हर किसी की मदद की है स्टार्टिंग से लेके एंड तक,
2: हर किसी देखा लाइफ में सबकी,
1: इसलिए बोल रहा हूँ नाजिया आपा को चले गए झाड़ पे चढ़ाई है सरवर भाई, कुछ और भी हो सकता है आपको।
0: ये भी एक किस्से मशहूर हो रहे हैं कि मदद के हवाले से,
2: क्या बात है
0: यार, ये पता भी चल रहा है यार, बताया भी जा रहा है माशाल्लाह, क्या कह रहे भाई, क्या कह रहे।
2: मुझे तो ये पता था कि सिर्फ और सिर्फ महविश ने ये वाली तारीफ की थी, जो उसने मुझे बताया भी था।
0: अच्छा,
2: कि मैंने आज शो में तुम्हारी तारीफ की, किस तरह से तुमने हेल्प की, बट मुझे नहीं पता बाकी लोग भी माशाल्लाह, मुझे लगता है सबके पैसे मुझे बढ़ाने पड़ेंगे तारीफ वाले।
0: अच्छा, तारीफ वाले।
1: नादिया आपा, हम लोग ना शो सुनते हैं माशाल्लाह, और हम लोग को ना मतलब आदत सी हो गई 107 पे आके, मतलब टाइम पास करने का, सुनने का तो सुनने का ही है बस, और कुछ नहीं करने का।
0: एलन वसेलन भाई,
1: और माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे लिसनर आते हैं ना आपके शो पे, इतने अच्छे अच्छे लिसनर आते हैं कि उन लोग की बात को सुन के ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग इंडिया में ही बैठे, हम लोग कतर में नहीं है,
0: बस कोशिश यही रहती है, और बाकी तो आप लोग हैं ही प्यारे और अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बड़ी प्यारी बातें करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, इसी तरह दुआओं से नवाजते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।
1: हमारी नाजिया आपा आगे रहो, हम तुम्हारे हमेशा पीछे।
2: क्या बात है भाई,
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आसिफ भाई, अपना ख्याल रखिए, अहलन
2: वसहलन। आज तो सरवर का सही कह रहे हैं, आज तो मेरा ही दिन निकल गया,
0: रख दिया जाएगा लग रहा है म्यूजियम में उठा के। नादी कुछ मैसेजेस, उसके बाद हम कॉल की तरफ बढ़ेंगे, हमें ब्रेक भी लेना है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों की चिटचैट को बहुत मिस करूंगा अगले महीने से। कौन है हमारे साथ? मोहम्मद है हमारे साथ, और बड़े प्यारे यार मोहम्मद भाई है, मैंने तो आज फोटो तो डीपी बदली है आपने मुझे लग रहा है। खैर मैं भी आपको मिस करूंगा, मैं यहीं पे मिलूंगा। नादिया जी के दिन भी बदल गए हैं और
2: ये जसविंदर जी की
0: वक्त भी बदल गया।
2: सरवर ये कितनी क्लासिक लाइन थी कि काकी

0: तो मेरे डर से भाग गई, लेकिन सर मेरे साथ कोई हिला नहीं सका। ये बात सच है, मुझे खुद ही भागना पड़ा।
1: आपका डर कहाँ, आपकी तो भाई मोहब्बत है जो हम लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। इतना आपसे सीखा है हम सभी ने भाई, हम जो भी हैं आप तो हमारी सीनियर हैं मिस नादिया, कैसे बातें करती हैं आप।
0: कब तक आप खुद को जूनियर की कैटेगरी रखते रहेंगे।
1: कहते हैं बहुत दूर है लेकिन भरपूर असर हो रहा है माशाल्लाह। यूसुफ भाई कहते हैं क्या बात है नाजिया बहन, भाई बहुत फनी, 2 साल बाद भी याद है, क्या बात है। कहते हैं यार ये तो मोहब्बत है, ओके
0: बड़ी बात है।
1: ओहो बहुत लंबा मैसेज आया भाई, इसको मैं अभी ले लूं।
0: ले लीजिए।
1: कहते हैं हेलो गुड आफ्टरनून, और अपने जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ, उसके हवाले से जिक्र कर रहे हैं जो प्राइज जीता था इन्होंने।
0: डोंट वरी, सबको कॉल जा रही है।
1: ओके सबको कॉल जा रही है और इंशाल्लाह ताला आपको सही और जल्दी जवाब आ जाएगा। शोपोन है हमारे साथ तो बिल्कुल मत परेशान होइए, इंशाल्लाह जल्दी ही आपको जवाब और प्राइज भी मिल जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दिल दिया है जहाँ भी देंगे, और नाजिया और सरवर का प्रोग्राम 11 से 1 सुनते रहेंगे
0: इंशाल्लाह।
1: नूर मोहम्मद भाई,
0: थैंक यू जी नूर जी,
1: मोहब्बत है आपकी। ओके तो अब हम एक कॉल और उसके बाद ब्रेक की तरफ चलते हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा जिक्र भी कर देते हैं, क्योंकि कॉल फिर हम बाद में ले लेंगे। तो भाई आज म्यूजियम के हवाले से बातचीत चल रही है, नाजिया कहती है कि नहीं कॉल ले लो, मैंने कहा ठीक है भाई कॉल ही ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तौफीक भाई हमारे साथ, अहलन व सहलन तौफीक भाई, कैसे हैं, खैरियत से?
2: हाँ ठीक है नाजिया बहन, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल, आप बताइए कैसे हैं?
0: नहीं मुझसे मुखातिब थे,
1: खैरियत मैंने पूछी, कह रहे नाजिया बहन कैसी हैं?
0: हाँ हाँ तो मेरा भी हाल चाल ले रहे हैं, ये क्या बात हुई?
2: नहीं ये मिर्जा जी बोल रहे हैं ना।
1: अरे तौफीक भाई है नहीं, ये तो उमर भाई हैं।
0: उमर भाई है? अरे नाम बदल दिया।
1: उवैस भाई हैं यार, मैं ज्यादा सता नहीं सकता क्योंकि ब्रेक, मुझे ब्रेक लेना है इसलिए मैं ज्यादा सता नहीं सकता। कहते
2: हैं अच्छा ये मतलब पहचान जाते हैं फिर आप बताते हैं,
1: हरकतें ऐसी हैं हमारी, क्या करें अब तो हम खुद बाज नहीं आ रहे।
0: चलिए थैंक गॉड आज आपने इस चीज को एक्सेप्ट तो किया, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं,
2: अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हरकतें ऐसी हैं, सही बात है
1: अल्हम्दुलिल्लाह। तो उवैस भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? इंटरनेशनल म्यूजियम डे के हवाले से बातचीत चल रही है। कतर में कितना टाइम हो गया आपको?
2: हमको समथिंग 1 साल 20 महीने हो गए।
1: अच्छा अभी तो बिल्कुल ताजे ताजे हैं माशाल्लाह से। तो फिर कोई म्यूजियम वगैरह गए हैं आप अभी तक कतर के?
2: नहीं अभी तक के तब नहीं गए, अभी तक के नहीं गए।
1: ओके तो फिर जरूर जाइए इंशाल्लाह ताला, बड़े ही प्यारे और बड़े ही कहना चाहिए।
2: नेक्स्ट टाइम आएंगे जी, तब आएंगे, जाएंगे जरूर,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल जरूर
1: जाएंगे बिल्कुल। और कुछ कहना
2: मतलब कैसा है, मतलब म्यूजियम में मतलब क्या
1: भाई? म्यूजियम यहाँ पर मुख्तलिफ म्यूजियम है जिसमें कुछ मशहूर है, तो उनके हवाले से अगर आप कहें तो थोड़ा थोड़ा बता दो। अभी मैं आगे जिक्र करूंगा, हम ब्रेक पे जाने वाले हैं, वापस आने के बाद मैं जरूर बताऊंगा, तो आप जरूर कनेक्टेड रहिएगा। हर म्यूजियम के बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र आज हम जरूर करेंगे, क्योंकि खासम खास दिन है और हमारे कतर के म्यूजियम बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली मशहूर भी है माशाल्लाह और वैसे लायक भी है। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया उवैस भाई, गेम खेलेंगे तो जब भी तशरीफ लाइएगा अगर वक्त मिलता है आपको। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक
2: मिलेगा
1: जरूर जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया उवैस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हेलो

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हला हला लीजिए साहब, बज गए 12 और 12 बजने के बाद आपको तो पता ही है कि खैर नहीं होती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि हम नादिया के साथ हैं और 12 बज जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। फिलहाल एंजॉय कीजिए ओ सनम, केके और श्रिया खुशहाल की आवाज में आफ्टरनून एक्सप्रेस पे सर्वर और नादिया आपके साथ दिल से।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Excuse me. अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
2: हाँ उसके लिए तो
1: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
2: वैसे वो तो देखो
1: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
2: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे। प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं। सुनिए द बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड हर फ्राइडे की दोपहर 12 बजे से RJ सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी, अल्फाज जो तारीख लिखते हैं।
4: It's the afternoon express.
1: Right guys, welcome back. A very good afternoon. आप सुन रहे हैं शो Afternoon Express. सरवर उनासिया हम दोनों आपके साथ हैं 12:09 on the clock and yes, आज हम celebrate कर रहे हैं International Museum Day. तो कोई म्यूजियम से related आपकी कोई experience है, कोई memory है तो definitely आज हमारे साथ जरूर share कीजिए। Numbers हैं 666-22-107, यहाँ पर हम आपके messages लेते हैं। अगर आप हमें call करना चाहते हैं तो number है 443-443-77।
5: बिल्कुल भाई, तो खासम खास हमारे कतर के म्यूजियम भी, तो आइए थोड़ा सा उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। और जैसा कि हमने शुरू में भी अर्ज किया कि 6-7 म्यूजियम तो हमारे बड़े ही प्यारे, बड़े ही मशहूर, और बाकी जितने भी म्यूजियम कहना चाहिए, हेरिटेज म्यूजियम जितने हैं या ऐसी जो साइट्स हैं, ऐसी जो जगह हैं, वो भी अपने आप में मशहूर हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर है ये म्यूजियम, कतर की हिस्ट्री को, कल्चर को और हेरिटेज को मॉडर्न स्टाइल में दिखाता है। और इसकी बिल्डिंग जो है वो डेजर्ट रोज से इंस्पायर्ड है और बहुत ही फेमस है। हमारे कतर का नाम जहां भी आता है या जहां भी आप फोटो वगैरह देखते हैं तो ये आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। वहीं म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे इस्लामिक दुनिया की पुरानी और कीमती आर्ट वर्क रखी गई हैं। म्यूजियम जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे कॉर्निच के समंदर के किनारे पर है, बना हुआ है, तो और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। और जैसा कि अंदर अभी हम बात कर रहे थे तो गाबा साहब ने भी जिक्र किया था कि उसके अंदर एक ऐसा फ्रेम है जिसको आप देखते हैं, फ्रेम से मेरा मतलब अब ये जिसने नहीं देखा ना वो देख के ही इस बात का अंदाजा कर सकता है कि एक ओपन जगह है फर्स्ट फ्लोर पे ही और वहां पर कुछ फाउंटेन्स वगैरह हैं और फिर उसमें एक जगह खुली हुई है थोड़ी सी दीवार में, तो जो आपको कॉर्निश दिखाती है या कॉर्निश की जितनी बिल्डिंग्स है वो दिखाती है, तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है। बात करें मसाफ की, अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट की, तो ये म्यूजियम मॉडर्न अरब आर्ट को प्रमोट करता है और यहाँ पेंटिंग्स हैं, क्रिएटिव आर्ट वर्क्स हैं और दूसरी भी चीजें दिखाई गई हैं इसी से मुतालिक। वहीं अगर हम 3-2-1 कतर ओलंपिक्स एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम की बात करें तो ये म्यूजियम स्पोर्ट्स की हिस्ट्री और ओलंपिक अचीवमेंट्स को दिखाता है और स्पोर्ट्स लवर्स के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यकीन जानिए यहाँ पर जाकर आपको वो चीजें देखने और समझने के लिए मिलेंगी अगर आप स्पोर्ट्स से मुतालिक हैं या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो बड़ी ही खूबसूरत जगह है। फिर आता है साहब नंबर मुशरब म्यूजियम का। ये वो म्यूजियम जो कतर की पुरानी जिंदगी, कल्चर और सोशल हिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। ये पुरानी हेरिटेज हाउसेज में बने हुए

0: हैं और बड़े ही खूबसूरत चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। और वहीं जैसे कि हमने इससे पहले भी जिक्र किया था कि शेख फैसल बिन कासिम अल थानी म्यूजियम जो है, इस म्यूजियम में पुरानी कार्स हैं, कॉइन्स कलेक्शन हैं, कारपेट्स वगैरह हैं और कुछ हिस्टोरिकल चीजें भी रखी गई हैं। और ये कतर के सबसे बड़े प्राइवेट म्यूजियम्स में से एक है और बहुत इसके अलावा भी बड़ी खूबसूरत चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, जो आंखों को भी आराम देती हैं, अकल को भी बहुत कुछ सुनाती हैं, दिखाती हैं, समझाती हैं और आपकी नॉलेज में इजाफा जो है वो होता चला जाता है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी छोटी चीजें हमने एक्सप्लेन करी हैं।
1: म्यूजियम ऑफ इल्यूजन, वो भी कितना इंटरेस्टिंग है, एक फन और बहुत ही इंटरैक्टिव म्यूजियम है जहाँ पर आपके पास ना मौका है कि आप इल्यूजन्स या फिर माइंड गेम्स या और भी तरह के जो गेम्स हैं उन्हें एंजॉय करें। और ये पर्टिकुलरली बच्चों में बड़ा ही पॉपुलर है, बच्चे और फैमिलीज यहाँ जाकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं और इसे एंजॉय भी करते हैं बहुत ज्यादा। सो फॉर दैट आई से कि ये बहुत ही अच्छा। एक और भी बहुत अच्छा म्यूजियम है, साइंस के ऊपर था, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट म्यूजियम, आई जस्ट मिस्ड। वहाँ पे साइंस और स्पेस के ऊपर बहुत ही अच्छा डिस्प्ले किया गया है, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट,
0: मुझे भी इत्तेफाक से याद नहीं आ रहा है। बच्चों के हवाले से बात हो रही है नादिया जी, तो दादू गार्डन भी अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत जगह है और ये कतर के कहना चाहिए चिल्ड्रंस म्यूजियम और क्रिएटिव लर्निंग स्पेस देता है बच्चों को और फन और इंटरेक्टिव एक्टिविटीज के जरिए सीखने का यहाँ पे बच्चों को मौका भी मिलता है। यहाँ पर साइंस, क्रिएटिविटी, गेम्स और एजुकेशनल एग्जीबिशन होती रहती हैं जहाँ बच्चे खेलते हुए कहना चाहिए सीखते हैं। ये एक बेसिक इसके पीछे जो बात है वो ये है कि खेलते हुए, इंटरेक्ट करते हुए, तफरी करते हुए बच्चे कब सीखना शुरू कर देते हैं ये पता भी नहीं चलता। दादू का मकसद बच्चों की इमेजिनेशन और स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो भाई बड़ी एक जगह नहीं है हमारे कतर में, जितनी जगहें हैं उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ
1: म्यूजियम्स हैं, जैसे यहाँ पे काम चल रहा है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ लुसेल म्यूजियम जहाँ अभी भी काम चल रहा है, उसको भी तैयार किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में आप और भी ज्यादा जो है नंबर ऑफ म्यूजियम्स यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो जरूर, अब छुट्टियां आ रही है, अगर आपको कहीं नहीं जाना है, सच आप प्लान नहीं कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री जाने का, तो अगर आप यहाँ रहते हैं तो बच्चों को डेफिनेटली म्यूजियम जरूर लेकर जाइए। यहाँ बच्चों की नॉलेज भी बढ़ती है, अवेयरनेस भी उनमें आती है, अपनी हिस्ट्री और कल्चर को भी उन्हें जानने का एक बहुत ही खूबसूरत मौका मिलता है और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग जो है उसे भी बढ़ावा मिलता है। मतलब सोसाइटीज के बीच जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो बच्चे समझते हैं, यूनिटी बढ़ती है। तो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को सिर्फ बताया ना जाए, उन्हें दिखाया जाए, एंड दैट्स हाउ दे लर्न और उसका इम्पैक्ट भी लॉन्ग लास्टिंग होता है।
0: बिल्कुल सही। तो भाई इसी के साथ अब बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं एक गाना, अनुराग, रोमी, वरुण जैन एक दूसरे का साथ निभाते हुए, एंजॉय कीजिए ट्रैक इश्क है। आफ्टरनून एक्सप्रेस पे सरवर और नाजिया आपके साथ, दिल से
1: देसी।

0: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, हर संडे दोपहर 3 से 4 बजे सिर्फ FM 107 पर। दिल से देखिए।
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
2: कस के जूता, कस के बेल्ट, खौस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
1: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ, द स्टूडेंट्स गाइड, एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स, हमारे साथ दोपहर 3:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।

0: अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए क्यूरियोसिटी को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ जहां सोच बदलती है आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अब कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107 स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड
1: सक्सेस की शुरुआत होती है एक छोटी सी सोच के साथ एक आइडिया से
2: ये आइडियाज कहां से आते हैं क्या माइंडसेट्स होते हैं क्या अप्रोच होती है
1: ये जानना बहुत जरूरी है इस शो में बात होगी लीडरशिप सेल्फ डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग पर जो आपको एम्पावर करेगी हर गेस्ट होगा एक पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन और हर एपिसोड एक नई कहानी एक नई इंस्पिरेशन जरूर सुने शो पावर टॉक्स हर सैटरडे दोपहर 1 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107 पावर टॉक्स हर लफ्ज में ताकत हर बात में मोटिवेशन
3: यू आर लिसनिंग टू आफ्टरनून एक्सप्रेस आफ्टरनून एक्सप्रेस तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
4: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
3: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
2: Right guys, welcome back. You are tuned into FM 107. आप सुन रहे हैं Show Afternoon Express. सर्वर और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं 12:27 on the clock और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे और जैसे सर्वर ने आपको बताया कि इतने सारे म्यूजियम्स यहाँ हैं और भी बहुत सारे म्यूजियम्स पर काम चल रहा है तो आने वाले टाइम में हर एक शख्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप म्यूजियम्स जाएं और विजिट करें लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि इस साल जो म्यूजियम है उसकी जो थीम रखी गई है वो बहुत ही मैं कह सकती हूँ इट्स क्वाइट अलाइंड विद द करंट सिचुएशन शायद ऐसे कहना चाहिए इस साल की जो थीम है वो है म्यूजियम्स यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड जो मुझे अपने आप पे बहुत ही अच्छी और कंप्लीट मैसेज देती हुई थीम लगी मतलब कहने का इस थीम के जरिए लोगों को बताना और समझाना ये है कि म्यूजियम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज को ही इन्हांस नहीं कर रहे हैं बल्कि वो आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ यूनाइट हो सकते हैं कम्युनिटी सोसाइटीज कैसे यूनाइट हो सकती हैं इस बात को भी हाईलाइट करते हैं कि मुख्तलिफ कल्चर्स हैं लोगों को की जो प्रैक्टिस

0: है या कम्युनिटीज के बीच एक अंडरस्टैंडिंग को, पीस को, रिस्पेक्ट को, इन सब को भी बढ़ावा देता है. और ये बात बिल्कुल सच है, जब आप किसी भी म्यूजियम में जाते हैं, क्योंकि हर कोई हर नेशनलिटी का जाता है, देखता है, तो उन्हें एक डाइवर्स कल्चर के बारे में पता चलता है, उन्हें लोग किस तरह से दूसरों के कल्चर को रिस्पेक्ट देनी है ये समझ में आता है. फिर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. एक तो आप हिस्ट्री के साथ जुड़ते ही जुड़ते हो, फिर कई बार जो लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो भी कम हो जाती हैं और अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं डेफिनेटली बढ़ती हैं, जैसे मैंने कहा. वहीं म्यूजियम्स में आपने देखा एग्जीबिशंस भी होती हैं, इवेंट्स भी हो रहे होते हैं, ऑन एंड ऑफ कई बार डिस्कशंस भी हो रहे होते हैं, जहां लोग अपने आइडियाज शेयर करते हैं. और इससे क्या है, इससे आपस में बातचीत और इंटरेक्शन से किसी कॉमन सोल्यूशन की तरफ भी हम जो हैं वो पहुँचते हैं, तो कहीं ना कहीं डायलॉग का भी मौका मिलता है. फिर हर एज और हर बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो आते हैं, हिस्सा बनते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे फैमिलीज हो, चाहे टूरिस्ट हो. तो इस तरह से सब म्यूजियम विजिट करते ही करते हो, करना चाहिए, अगर नहीं करते तो करना चाहिए. इस तरह मौका भी मिलता है कि अलग अलग एज ग्रुप के पर्सपेक्टिव्स जो हैं उन्हें जानने का, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. और जैसे मैंने कहा कि इस साल का थीम भी रखा गया है कि किस तरह से म्यूजियम्स जो हैं वो हम सबको यूनाइट करने का काम कर रहे हैं इनटू दिस डिवाइडेड वर्ल्ड. तो बिल्कुल सच बात है, म्यूजियम्स लोगों को सिखाते हैं कि हम और आप जो हैं वो कल्चर और कहानियाँ कैसे एक दूसरे के साथ ब्यूटीफुली ब्लेंड होती हैं, इसे समझें, इसकी रिस्पेक्ट करें और पीस का जो मैसेज है उसे आगे प्रमोट करें. तो
1: क्या बात है भाई,
0: बहुत ही अच्छा थीम.
1: बिल्कुल, काफी कुछ हमें सीखने और समझने के लिए मिलता भी है. और ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं कि इंसानियत को सबसे पहले इंसान पहचाने. और जो भी मुल्क की सकाफत है, कल्चर है, जितनी भी चीजें उनकी रूट से जुड़ी हुई हैं, वो चीजें भी दिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है दुनिया भर को कि किस तरीके से कंट्री ने आगे भी बढ़ा और मजीद तरक्की हासिल करते चले गए. कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पर. अस्सलाम वालेकुम सरोज भाई, कैसे हैं आप? मुझे अपने छोटपने में म्यूजियम का विजिट याद है. जब मैं छोटा था वहां पर मैंने मगरमच्छ देखा था. क्या बात है, कौन है हमारे साथ मगरमच्छ देखने वाले?
0: यूजुअली लोग ज़ू में देखते हैं.
1: यूसुफ भाई हैं हमारे साथ.
0: यूसुफ जगह
1: थे? नहीं नहीं, ये वो यूसुफ नहीं है.
0: अच्छा.
1: और यहाँ पर खादर भाई का भी मैसेज है. बड़ा लंबा खादर भाई पूरा चिट्ठा लिखकर भेजा है, कॉल पे आ जाते. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
0: हेलो.
2: हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम.
1: आइए, अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
2: कैसे हैं सरोज जी, नाजिया जी?
0: हम दोनों बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं?
1: आज क्योंकि बात बड़ी पढ़ाई लिखाई के हवाले से हो रही है तो ज्यादा छेड़ूंगा नहीं, मैंने सोचा.
2: नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, छेड़िए. आप तो छेड़ते हैं तो थोड़ा एनर्जी मिलती है.
1: अरे रमेश भाई, कैसे हैं रमेश भाई, खैरियत से हैं?
0: आज ये खुद छिड़े हुए बैठे हैं.
2: अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है सर, हुआ है हम
1: तो. रमेश भाई, कितना टाइम हो गया कतर में?
2: सर हो गया करीब मेरे ख्याल से 10-15 साल हो गया.
1: यार 10-15 साल में 5 साल का फर्क है. 10 के 15 कितने मालूम, कितने लॉक करूं?
2: 2011 से.
1: हाँ तो फिर तो हो गए. तो भाई कौन कौन से म्यूजियम गए कतर के?
2: सर यही इसीलिए तो मैं फोन किया कि मैं आज तक किसी म्यूजियम में नहीं जा पाया. मैं
1: बहुत जरूरी है यार, बड़ी ही प्यारी जगहें हैं.
0: अच्छा ये बताइए, जब कोई आपकी फैमिली या कोई ऐसे बाहर से आपका गेस्ट आता है तो उसे आप घुमाने भी नहीं ले गए? क्योंकि यूजुअली होता है कि जब कोई घूमने आता है कतर तो हम म्यूजियम जरूर लेके जाते हैं. एक बार आप नहीं गए?
2: दरअसल क्या है कि नहीं मैडम, जैसे वहाँ पे वकरा में है लोग तो अब वो लोग इतना टाइम ही नहीं मिलता हम लोगों को वहाँ जा पाए उन लोगों के साथ वगैरह. तो हम लोगों को टाइम मिलता ही नहीं है.
1: बकरा में है लोग, टाइम नहीं मिलता जाने का, मैं समझा नहीं.
2: नहीं हमारे मतलब रिलेटिव वाले हैं
1: तो आप बकरा जाने का टाइम नहीं मिलता. आपके पास गाड़ी है रमेश भाई?
2: जी जी.
1: यार मैं बकरा के 4 चक्कर लगाता हूँ डेली अपनों से मिलने के लिए. हंस रहे हो यार? मतलब थक हार के रात के 10 बजे जाके और फिर 12 बजे तक मिलके आता हूँ उनसे.
0: मिर्जा उसे कहते हैं एडिक्शन, कोई बड़ी चीज है.
2: आप सही बात लग रखे. लेकिन ये है कि सर आपकी इस ईद में छुट्टी में जरूर जाऊंगा देखने के लिए.
1: नहीं तो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं ना एक साथ मिलके. एक काम ये करिए, गाड़ी उठाइए, मेरे पास आ जाइए साथ में. यार फिर रमेश भाई, एक तो मैं दावत दे रहा हूँ, मतलब थोड़ा पहले डिनर वगैरह करेंगे, घर से निकलेंगे, लंच के वक्त आए आप तो लंच कर लेंगे और लंच हो गया तो उसके बाद चलेंगे थोड़ा सा.
0: चल ही पाएंगे कि स्नैकिंग टाइम
1: थोड़ा सा चलेंगे कि फिर

0: स्नैक बिल्कुल नादिया ने सही कहा,
1: नींद आने लगेगा।
0: अरे सुनो तो सही, स्नैक करेंगे फिर इतनी देर में डिनर का टाइम आ जाएगा, डिनर करेंगे इतनी देर में आप मुझे घर वापस उतारेंगे, उसके बाद आप सीधे म्यूजियम जाइए
2: और वहीं बैठ जाइए।
0: यार अभी हमने 6-7-8 म्यूजियम बताए, सर में खुजली होने लगी
1: सोच के। हाँ नहीं सर, मैं गाड़ी में नहीं बैठा था, मैं बाहर निकल गया।
0: अच्छा मैं बताता हूँ मेरे भाई को कहाँ कहाँ घूमने जाना है और मुझे कहाँ लेके जाना है। देखिए भाई, सबसे पहले तो आप नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं मेरे साथ रिपीट करिए,
1: नेशनल म्यूजियम कतर।
0: क्या बात है। दूसरे नंबर पे म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट,
1: म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट।
0: तीसरा है मसाफ या मसाफ कह लीजिए, ठीक है
1: मसाफ।
0: हाँ, अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट।
1: अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट,
0: हाँ बिल्कुल सही। चौथा है 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम,
1: कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम।
0: पांचवा है मुशायरी म्यूजियम,
1: पांचवा है मुशायरी म्यूजियम।
0: छठा है शेख फैसल बिन कासिम अल सानी म्यूजियम, ठीक है सारी चीजें ये 6 याद हो गए, इनको घूम के आइए फिर अगले 6 बताऊंगा।
1: अच्छा ये तो ठीक है सर, बिल्कुल नहीं है माली, इतना बता दिया आप। इसमें से बेस्ट कौन सा है?
2: हाँ
0: मतलब जाहिर बात है, देखिए यहाँ पे नादिया ने सही कहा, जो मशहूर ज्यादा है वो ठीक है, बट एक मामला यहाँ पर ये भी हो जाता है कि अपनी चॉइस, अपनी पसंद,
2: इंटरेस्ट,
0: आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। अब मसलन आप अगर गाड़ियां देखना चाहते हैं एंटीक, कुछ कॉइन कलेक्शन वगैरह में आपको शौक है, कुछ कारपेट रंग बिरंगे बड़े खूबसूरत ऐसे कुछ देखना चाहते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, हमारे शेख फैसल बिन कासिम में। आपको कुछ कल्चर से रिलेटेड चीजें देखनी है तो वो आप नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर जा सकते हैं। अगर आपको कुछ इस्लामिक रिलेटेड चीजें देखनी है, जो बड़ी बड़ी खूबसूरत तलवारें हैं, घोड़े हैं, उन पे कुछ लिखा हुआ है, इन सारी चीजों को देखना है तो आप हमारे मियां म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट जा सकते हैं। तो ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है, सबसे पहले आपकी पसंद को है चुनना।
2: बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी, अगर आप जा रहे हैं यू आर गोइंग लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट जरूर जाइए, नेशनल म्यूजियम जरूर विजिट कीजिए, एंड देन लेटर ऑन आपको अगर बाद में कुछ अच्छा लगे तो और।
0: चलिए ये तो ठीक है, नाजिया ने बता दिया। हम क्या करते हैं रमेश भाई, देखो शुरुआत करेंगे कि पहले आपकी पसंद चुनी जाए, तो उसके लिए 4 बैठक लगेंगी, ठीक है। तो कहाँ मिले
2: दिन में आइडिया ना ड्रॉप कर दे।
1: हम तो सर बैठ उठ लेंगे, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन साथ में आपको भी बैठना उठना पड़ेगा।
0: हाँ हाँ ठीक है, कुर्सी
2: सिर्फ बैठेंगे, उठाना पड़ेगा नहीं है।
0: अरे जमीन पे थोड़ी बैठ जाएंगे यार, जहाँ पे पहुँचेंगे हम, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में, किसी होटल वगैरह में
2: अपना लेके चलते।
0: हाँ कहीं ना कहीं
1: एक चीज है वहाँ पे सरोज जी, क्या नाम है, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल गए हैं आप?
1: हाँ गए हूँ सर वहाँ पे।
0: क्या क्या देखा आपने वहाँ?
1: बहुत पुराने पुराने सामान, इतनी मतलब बहुत जमाने की सामान वगैरह अभी भी रखी हुई है वहाँ पे।
2: सर्वर मिले आपको वहाँ पे?
0: यार बड़ी खूबसूरत जगहें हैं हमारे इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, जैसे लाहौर म्यूजियम में बड़ा मशहूर है, इंडिया में मुख्तलिफ म्यूजियम, हमारे हैदराबाद में इतने सारे म्यूजियम हैं, दिल्ली में हैं इतने सारे म्यूजियम, बड़ी खूबसूरत। मैं अपनी पर्सनल अगर बात करूं तो फिर जब मैं इजिप्ट गया था, अब्बा हमें लेके गए थे नाजिया, तो वहां पर हमने जो म्यूजियम देखा, जो इजिप्ट का म्यूजियम है, मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं याद रहा, वो कुछ कॉलेज से मुतालिक नाम उसका निकलता है कुछ, बहरहाल तो वहां पे हमने काफी कुछ देखा। उसके अंदर सलाहुद्दीन अयूबी की जो ड्रेस है वो रखी भी है, जो वो चोगा था वार का, जो वॉर का जो वो पहन के लड़ते थे, उनकी तलवार है, मुख्तलिफ इस तरीके की चीजें तो मुझे याद रह गई हैं एक्चुअली। तो जब छोटे होते हैं और ऐसी जगहों पे जाते हैं तो बहुत कुछ देखने और समझने के लिए मिलता है।
1: जी जी सही बात है जी, वहाँ पे भी है ना इसी तरह, जहाँ जैसे जो जो पहले थे, जो लड़ाई में जैसे शेरशाह हो गए, टीपू सुल्तान हो गए, और कितने पुराने लोग हैं, वो सभी लोगों का वहाँ पे नाम लिख करके उनका जो पहनावा था वो सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ है।
0: बिल्कुल
1: पूरा
0: सही, बिल्कुल सही, ताकि लोग याद रखें, देखें, समझें, सीखें।
1: जी
2: बिल्कुल।
0: बहरहाल,
2: और मुझे अगर अभी रिसेंटली याद आता है तो लास्ट ईयर हम लोग जब जॉर्जिया गए थे तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें जबरदस्ती, क्योंकि हम उस पैकेज में नहीं, अब वो सुबह तय हो जाता था
0: कि यहाँ जाना है दिखाने,
2: तो देयर आई रिमेम्बर जॉर्जियन नेशनल म्यूजियम है, तो वहाँ जाके, लेकिन अच्छा लगा, इट वॉज उतना ह्यूज तो नहीं था, बट यहाँ वहाँ जॉर्जियन कल्चर को, हिस्ट्री को, सब चीजों को जानने का एक अच्छा
0: मेरी तो आपको वहाँ पे भी आई होगी जाके, खैर इसमें तो कोई दो
2: राय नहीं। मुझे सबसे ज्यादा चीज जो अच्छी लगी थी वो थी वो गोल्ड ज्वेलरीज जो रखी हुई थी।
0: अच्छा,
2: वो मुझे बहुत ही
0: बहुत दिल करा नादिया का कि किसी तरीके से यहाँ से निकाल ली जाए। एक दो बार उन्होंने कोशिश करी, मजीद एक हफ्ता ज्यादा लगा टूर में।
2: ह्यूमन फॉसिल्स भी वहाँ पे थे जो कि काफी इंटरेस्टिंग था उन्हें देखना।
0: नहीं तो ये भी तो बता देना कि जो ट्रिप था इनका एक 11 दिन का था, मगर मजीद एक हफ्ता ज्यादा लगा क्योंकि कुछ हरकतें ऐसी हुई कि कानूनन
2: जॉर्जिया बैठा लिया,
0: हाँ बैठा लिया गया, तो अब वही है कि क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी आदत होती है। चलिए भाई रमेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का भी मौजू ऐसा था कि हमने कोई गेम नहीं रखा, अब चलते चलते ज्यादा से ज्यादा बातें भी हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना ख्याल रखिए,
2: थैंक यू सो मच।
0: तो भाई रमेश भाई के बाद यहाँ पर एक मैसेज खादिर अब्दुल हादी जो है, एक चिट्ठी भेजी है मुझे, वो पढ़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई या नादिया जी, आई हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल म्यूजियम ऑफ कतर, आई गॉट नॉलेज ऑफ एक्सप्लोरिंग द हिस्ट्री ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ अरबिक Bedouin tribe and their role in day-to-day life. Hard to find out everywhere, but Qatar consolidate in museums with the display to explore and think of those days, how were spent, especially the tropical heat of the desert. Journey continues. Also, I have seen a watch in Hyderabad, which is unique with a display of war field in the dial of the watch.
2: Nice.
0: Early alarm. Tipu Sultan sword in Mysore and cannons used in warfield, many more. I am a lover of historical exploration and learn lessons of the legends who created history, their costumes, weapons and behaviors and social life they spend. Sarwar bhai, horses that are available in the museum are allowed to ride? If yes, I will ride with Sarwar bhai. It will be a pleasure. Badi khoobsurat cheeze hain aur jis tarike se khadir ne bataya, waqai wahi hum bhi zikr kar rahe the aur ye Hyderabad ka jo aapne bataya plus jo Tipu
2: नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली का,
0: हाँ
2: यही नाम है कि हाँ। और उसका नाम है
0: नहीं, आपके स्कूल वाले तो अच्छी जगह ले जा रहे हैं, हमारे तो चौराहे तक ले जाते थे, अमरूद खिलाया, मसाला लगा और वापस, क्या बात है भाई, हो गई ट्रिप, हो गई, चली चली। तो अपना अपना एक्सपीरियंस है, अच्छा जुड़ गए हैं भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
3: मैं मोहम्मद मजहर खान।
0: ओ मोहम्मद मजहर खान साहब, अहलन व सहलन। मजहर भाई कैसे, खैरियत से?
3: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है माशाल्लाह। म्यूजियम की जो बात हो रही है, अजायब घरों की
0: बड़ा अच्छा नाम लिया, बड़ा अच्छा नाम लिया, बिल्कुल
3: अजायब घर ही कहेंगे,
0: बिल्कुल सही
3: चल रही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम जो हिस्ट्री देख रहे हैं पुरानी, जिसमें कहीं जंगी लिबास है, कहीं तलवारें हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो मैं ये सोचता हूँ जब फ्यूचर में जो अजायब घर बनेंगे वो कैसे बनेंगे,
0: फ्यूचर में जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, भाई हमारे अंदर रुई ठूसी जाएगी मेरे ख्याल में और लगा दिया जाएगा डिस्प्ले।
2: सरवर मिर्जा से भी आप बोलेंगे,
3: कहीं ये दिखाया जाएगा ये है सरवर मिर्जा साहब का
2: ये है इनका लंच,
0: नीचे दिया जल रहा है,
3: कहीं बताया जाएगा ये है उस बंदे की प्रोफाइल जो 8 घंटे तक फोन पे लगा रहता था।
0: ये मेरी बात हो रही
2: है?
3: नहीं आपकी बात नहीं हो रही है, मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारी जो आने वाली
0: मजबूर कर दिया,
3: पहले जो सकाफतें नजर आती थी कि जिन्हें देखकर ये लगता था कि भाई हाँ ये इस तरीके से लड़ते थे, इन्होंने हिस्ट्री को इस तरीके से लिखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौर्रिख भी आगे चल के फ्यूचर में या हमारी कुछ चीजें ऐसी रखी जाएगी।
0: अच्छी फिक्र जाहिर करिए,
3: अगर हम
0: बिल्कुल सही सही मदर भाई सही, ये भी एक सवाल है और वाकई इसका जवाब हमारे पास नहीं, मगर आपने सोचने पर मजबूर किया, बड़े बहुत अच्छे, एक मुख्तलिफ तरीका। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि अभी जो हमारे पास हासिल उसूल है उसको हम कम से कम देख के और अपने आगे वाली जनरेशन को कम से कम हाथ पकड़ के ले जाकर कि भाई चलो मेरे साथ, जो वीकेंड पे हम लोग जाते हैं डिनर करके वापस आ जाते हैं प्ले एरिया या पार्क में घुमा के, जरूर जाएं, मगर एक विजिट, बिल्कुल बिल्कुल एक विजिट ऐसी रखें। और ये भी गुजारिश कि जब आपके पास

0: मेहमान आए तो उनको भी आप ऐसी जगहों पे लेकर जाएं, कतर हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, आप जहां भी हो, ताकि वो और उनके बच्चे भी कुछ देखें और नई चीजें मालूम
1: करें। और जो मुझे लगता है एक वर्ड जुड़ गया है कि अरे इट्स क्वाइट अ बोरिंग प्लेस, ये नहीं है, बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस है, बहुत ही नॉलेजेबल प्लेस है।
0: मुझे तो भाई
1: कितना घंटे आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, और इतना कुछ लर्निंग, इतनी नॉलेज आपकी इनहांस होती है, आप सोच ही नहीं सकते। शायद आप पढ़े तो उतना इंटरेस्ट ना आए।
0: ये किसकी आवाज आ रही है मदर भाई पीछे से?
1: बच्चे
0: मदर भाई निकल
1: मत बोलिएगा, मत बोलिएगा,
0: भाग गए, चिल्लर पार्टी ने इतना शोर मचाया, निकल लो।
1: वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आने वाले टाइम में जब म्यूजियम्स होंगे और आगे के दौर में किस तरह के म्यूजियम्स होंगे,
0: ये बाकी इन्होंने सही बात बताई।
1: मुझे लगता है ऐसे वॉल्स नहीं होंगी कुछ खास करके, इस तरह की टच वॉल्स होंगी।
0: भाई नाजिया आप you know, आप देख लेंगी, आप देख लेंगी, पूछिए कैसे
1: आप हयात नहीं भी
0: नहीं, आप तो वहीं पर कहीं एक शीशे में खड़ी हुई होंगी ना कोने पे।
1: आपको ना मुझे यहाँ पे अभी आप देखते हैं डायनो का बड़ा सा

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Are you ready? फ्राइडे शाम 8 बजे लेकर आ रहे हैं आरजे फजील, वो शो जिसका इंतजार होता है सबको।

Man Countdown. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स।

हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए, फ्राइडे 8 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद RJ फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: अलग अलग तरीके हैं, ये अपनी बात किसी और तरीके से मनवाना चाहते हैं। बड़ी प्यारी फिल्म थी असर, और बड़ी प्यारी और खूबसूरती से किरदार को निभाया भी था इमरान हाशमी ने। अजहर साहब खुद ताज्जुब में थे उनको देख के।
1: यू आर लिसनिंग टू आफ्टरनून एक्सप्रेस। तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
2: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। राइट गाइस, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो आफ्टरनून एक्सप्रेस, सर्वर और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं, और हमारे साथ एक कॉलर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
3: वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंशु है हमारे साथ, राइट?
3: नहीं, मैं मोहम्मद रफीक बात कर रहा हूं, ताल्लुक बांग्लादेश का।
1: अच्छा अच्छा, ओके। मोहम्मद तौफीक जी
3: बांग्लादेश।
1: फर्स्ट टाइम आप कॉल कर रहे हैं।
0: बहुत देर की मेहरबान आते आते। रफीक भाई
1: कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सलोर भाई कैसे हैं?
0: हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। उर्दू समझ में आती है आपको? उर्दू हिंदी समझ पाते हैं?
1: बोल तो रहे हैं,
0: हमें सुनते हैं।
3: ये सुनते हैं, मैं तो इधर 12 साल से हैं।
1: अच्छा,
3: लेकिन कभी कॉल नहीं किया। ये एफएम ये बहुत देर से सुन रहा है।
1: अच्छा, ओके, बट कॉल करने का आपको कभी मौका नहीं मिला?
3: नहीं, कॉल करने का मैं जैसा होता है ना, किसी का कॉल करने का ओ, कोई आदमी से ऐसा हिम्मत नहीं मिलता है ना, कोई ऐसा ही आदमी है मैं। मेरा ये ट्रैफिक के ऊपर एक दिन प्रोग्राम भी किया इधर एफएम 107 पे।
0: अच्छा
1: अच्छा,
0: चलिए तो बड़ी अच्छी बात है। तो आज आपकी हिम्मत हो गई हमसे बात करने की,
1: माशाल्लाह। चलिए, डर तो लगता है लेकिन ठीक है।
3: नहीं, ताज़े है ना, जो एक शेख अली ना क्या नाम था, वो अरबी कॉल किया।
1: अली वज्दाद।
0: अच्छा,
1: अली वज्दाद।
3: मैं प्यार गया, वो बात सुन के ये अरबी बात कर क्यों बात नहीं कर सकते।
0: ये बात। सभी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और रफीक भाई हम लोग आप ही के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं डेली।
1: बिल्कुल,
3: मैं तो सुबह शुरुआत है वो दोहा वाला कबीर प्रोग्राम से। वो सुबह मैं गाड़ी मैं इधर ड्राइविंग करता है, गाड़ी चलाता है।
0: ओके,
1: अच्छा,
0: चलिए भाई।
3: अल्हम्दुलिल्लाह, FM 107 है ना, हम लोग को जितना एंटरटेनमेंट करता है ना।
0: अच्छा,
3: अल्हम्दुलिल्लाह। ये
0: चलिए यार, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई कि बांग्लादेश से भी सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए
1: माशाल्लाह,
0: अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हमारे साथ शिरकत भी कर रहे हैं प्रोग्राम में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर रफीक भाई, और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, दुआ करते रहिए।
3: मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं ये FM 107 है ना, जो उबज पैर का एक पुलिस और आवाम प्रोग्राम होता था, उससे मैं यह हुआ, मैं पहले यही सुनता था।
0: क्या बात है, अभी भी प्रोग्राम होता है और आप बिल्कुल हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं इंशाल्लाह ताला, और जरूर हमें सुनते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो भाई नाजिया, वक्त हुआ कि अब इजाजत लें और कंक्लूड भी करें आज की बातचीत को।
1: बस अब हम जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, म्यूजियम जरूर विजिट करें। ये सिर्फ हमें और आपको हिस्ट्री ही नहीं दिखाते, बल्कि कहीं ना कहीं सीखने समझने और यूनाइट होने का भी एक मौका देते हैं। ये हमें दूसरों के कल्चर से इंट्रोड्यूस करने का भी एक मौका मिलता है हमें। और आज जैसे इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, और ये दिन हमें याद दिलाता है कि म्यूजियम जो है वो लोगों की बीच रिस्पेक्ट और पीस को भी बढ़ाता है, जैसे हमने बात भी की और जैसे आज इस साल का थीम भी रखा गया है। इसलिए जरूरी है कि हम म्यूजियम्स विजिट करें, उनसे सीखें और अपनी हिस्ट्री और अपने कल्चर को जिंदा रखें, क्योंकि म्यूजियम हम सबको एक दूसरे के करीब लेकर आता है। तो ये यूनिटी इस तरह से और रिस्पेक्ट और पीस इस तरह से हमें आगे बढ़ानी है। बच्चों को जरूर लेके जाना है, खुद भी जाना है
0: भाई। बहुत बढ़िया, और उम्मीद करते हैं।

0: बिल्कुल, हमें भी अब टाइम हो गया कि इजाजत ले लें। रिफत भाई थे हमारे साथ, उनका मैसेज था, सलाम किया, दोनों की खैरियत तो पूछी। अहमद भाई हैं, वो भी खैरियत पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग की कॉल का, मैसेजेस का, और इंशाल्लाह ताला कल बखैर आफियत बाइज्जत आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, देखते और सुनते रहिए FM 107
1: दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने किराम, आज हम एक ऐसी दुआ पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के दिल की गहराइयों से निकलती है। वालिदैन के हक और उनके अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है इस दुआ में, और इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल में आया है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत व शफ़क़त से पाला है। हमने कराम, इस दुआ के दो पहलू हैं। एक तो हमें अपने माँ बाप और वालिदैन के लिए भी इस तरह की दुआएं ज़रूर करनी चाहिए, साथ साथ हमें अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से भी वो ख्याल रखना है कि ये बड़े होकर

0: एक्सटिंग्विशर की वैलिडिटी, ब्रेक्स और टायर्स की सेफ्टी, टोइंग व्हीकल के रियर लाइटिंग का काम करना, रियर रिफ्लेक्टर्स यानी रेड और साइड रिफ्लेक्टर्स यानी येलो की क्वालिटी, मैक्सिमम विड्थ 2.60 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड, मैक्सिमम लेंथ सिंगल एक्सल के लिए 3.5 मीटर्स है और डबल एक्सल के लिए मैक्सिमम लेंथ 4.20 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड। इसके अलावा कुछ और इकदामात का ख्याल करें, जैसे टोइंग करते वक्त अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। कैरवेंस या ट्रेलर्स के साथ सफर करते वक्त अपने रास्ते और स्पीड पर भी नजर रखें। अगर कैरवेंस का लोड ज्यादा है तो उसे ठीक तरीके से बैलेंस करना जरूरी है। टोइंग के दौरान अपने ब्रेक सिस्टम को चेक करते रहें और टायर्स की कंडीशंस भी बराबर देखते रहें। टोइंग व्हीकल और कैरवेंस की लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और इंडिकेटर्स का सही काम करना बेहद जरूरी है ताकि रात के वक्त या धीरे चलने पर किसी को कोई मुश्किल ना हो। वेदर कंडीशंस का भी ख्याल रखें। अगर मौसम खराब हो जैसे बरसात, धुंध या तेज हवाएं तो टोइंग करना मना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 प्रेजेंट योर हेल्थ मैटर विद RJ श्रुति।
3: कभी किसी फोटो में खुद को देखकर ये लगा मैं इतना झुका हुआ क्यों लग रहा हूँ, या फिर थोड़ी देर बैठने के बाद बैक ने क्वाइटली कंप्लेन किया हो कि भाई अब उड़ जाओ, अपना पोस्चर ठीक कर लो। एग्जैक्टली आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पोस्चर और स्पाइन हेल्थ की। पोस्चर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम तब सोचते हैं जब दर्द ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले हमारा इग्नोरेंस मोड ऑन रहता है। पर स्पाइन हमारी बॉडी का मेन सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे बिल्डिंग क्लिप पिलर्स होते हैं वैसे ही बॉडी के लिए स्पाइन होती है। और जब पोस्चर गलत होता है तो प्रेशर स्पाइन के गलत पार्ट्स पर पड़ता है। फोन देखते वक्त नेक झुकी होती है, लैपटॉप पे काम करते वक्त शोल्डर्स राउंडेड होते हैं, और खड़े होते वक्त वेट एक ही पैर पर पड़ता है। ये सब स्मॉल हैबिट्स जो है इनका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है। गलत पोस्चर सिर्फ बैक पेन नहीं देता, इससे नेक पेन, हेडेक, शोल्डर स्टिफनेस और कभी कभी फटीग भी हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है पोस्चर सिर्फ बॉडी को ही नहीं कॉन्फिडेंस को भी इफेक्ट करता है। जब हम सीधा खड़े होते हैं ना तो हम सांस बेटर ले पाते हैं, चेस्ट ओपन होती है और बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक फील करती है। गुड पोस्चर का मतलब मिलिट्री स्टाइल स्टिफनेस नहीं होता, गुड पोस्चर का मतलब होता है बॉडी को नेचुरल अलाइनमेंट में रखना, ईयर शोल्डर के ऊपर, शोल्डर हिप्स के ऊपर, और इतना याद रखना काफी होता है। और पोस्चर सुधारना एक दिन का काम नहीं है, ये डेली अवेयरनेस है। हर दिन थोड़ी देर में खुद से पूछो मैं कैसे बैठा हूँ, क्या मैं स्ट्रेट बैठा हूँ। अगर आपको लगता है आप राउंडेड होके बैठे तो सीधे अपनी कमर कर लीजिए। स्मॉल रिमाइंडर्स बहुत हेल्प करते हैं। फोन में अलार्म सेट कर दीजिए कि हर 15 मिनट में वो आपको रिमाइंडर दे कि कैसे बैठे हो। स्टिकी नोट लगा लीजिए हर जगह, ये आप देखते रहेंगे और ये चीज आपकी बॉडी को सिग्नल देती रहेगी। वह स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग पोस्चर के बेस्ट फ्रेंड्स है, स्पेशली कोर और बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं, तो स्पाइन को नेचुरली सपोर्ट मिलता है। और हाँ, पोस्चर का कनेक्शन स्लीप से भी होता है। गलत स्लीपिंग पोस्चर दिन भर के पेन को थोड़ा और बढ़ा सकता है। स्पाइन को रिस्पेक्ट देना फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, तो आज थोड़ा केयर, कल कम पेन। और ये एक सिंपल सा रिमाइंडर याद रखिए कि थोड़ा सीधा हो जाइए, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, नेक को फ्री कीजिए, क्योंकि जब स्पाइन हेल्दी होती है तो बॉडी ज्यादा स्मूथली मूव करती है, एनर्जी बेटर रहती है और दिन थोड़ा ज्यादा लाइट लगता है। इसलिए याद रखिए पोस्चर सिर्फ अपीयरेंस नहीं, हेल्थ का फाउंडेशन है। एंड योर हेल्थ मैटर।
2: FM 107 प्रेजेंट्स योर हेल्थ मैटर विद RJ श्रुति।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

अमीन और आज हम बात करेंगे अर्जुन तेंदुलकर के बारे में। जी हाँ, नाम ही काफी है अर्जुन तेंदुलकर, बिकॉज वो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं और उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, बड़े बाप का कोई बेटा हमेशा देखा गया है कि स्ट्रगल ही करता है। जहां सचिन तेंदुलकर को आज भी लोग रिलेट करते हैं क्रिकेट डिस्कशंस में, वहीं अर्जुन तेंदुलकर आज भी आईपीएल में एक मैच के लिए इंतजार कर रहे हैं। इनफैक्ट प्लेइंग 11 में उनको जगह ही नहीं दी जा रही है, एंड दैट इज व्हाट। और आज सभी लोग यही बात कर रहे हैं, क्या अर्जुन इतना बुरा क्रिकेटर है? नहीं, बुरा क्रिकेटर नहीं हो सकता, लेकिन वो बॉलिंग करता है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, अनलाइक हिज फादर सचिन तेंदुलकर। अर्जुन एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और लोअर ऑर्डर बैट्समैन है जो अपनी स्विंग और पेस की वजह से पहचाने जाते हैं। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में गोवा की तरफ से खेलते हुए कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं, लेकिन अभी भी कंसिस्टेंसी हासिल करना उनके लिए चैलेंज है। अर्जुन को आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने साइन किया था, जो उनके लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी लीग का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें अब तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, और ये बात अक्सर फैंस और एक्सपर्ट्स के दरमियान डिस्कशन का टॉपिक बनी रहती है। लोगों के एक्सपेक्टेशंस उनसे ज्यादा हैं क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, लेकिन अर्जुन अपनी मेहनत से अपना अलग नाम बनाना चाहते हैं। अब देखना यह है कि फ्यूचर में क्या उन्हें आईपीएल में डेब्यू का चांस मिलता है या नहीं, और क्या वो अपनी पोटेंशियल को पूरा कर पाते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स टॉक के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. Dosto, aaj ke segment mein hum baat karenge ki how to control your financial stress. Ye bhi bada zaruri hai. Dekhiye finance kaise manage kare, savings kyun zaruri hai, aur spending aur savings ka good balance. Ye hum sab ke liye, hum sabko janna bada zaruri hai. ठीक है, आज के दौर में फाइनेंशियल स्ट्रेस हर दूसरे इंसान का एक बड़ा मसला बन चुका है। महंगाई है, इन्फ्लेशन है, बिल्स हैं, रेंट है, बच्चों की पढ़ाई है और कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर भी हम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हैं ही, तो उसकी प्लानिंग भी है। ये सब चीजें दिमाग

फाइनेंशियल स्ट्रेस का असर सिर्फ पैसों तक ही नहीं है, इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप इरिटेटेड होते हैं, आपका गुस्सा बढ़ता है, रिश्तों में जो है वो दरार आती है, अननेसेसरी का टेंशन, आपकी भूख मिट जाती है, आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ पूरी तरह से तबाह होती है। पर इस स्ट्रेस को कंट्रोल करना डेफिनेटली मुमकिन है, बस जरूरत है थोड़ी सी समझ, डिसिप्लिन और सही आदतों को अडॉप्ट करने की। देखिए, सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि फाइनेंस कैसे मैनेज करें। फाइनेंस मैनेज करने का पहला कदम है कि अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस का आप क्लियर रिकॉर्ड रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप हर महीने कितने पैसे कमा रहे हैं और कहां कहां खर्च कर रहे हैं। जब एक्सपेंसेस लिखे होते हैं ना, आई रिपीट, लिखे होते हैं, तो पता चलता है कि कौन सी चीज जरूरी रही और कौन सी हमने बस यूं ही दिखावे के लिए की। दूसरा बड़ा कदम, बजट बनाना। इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, बजट बनाना चाहिए। देखिए, बजट का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी को एंजॉय ना करें, मैं बजट बना लूं, मैं स्टिक करूं, फिर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी ना करूं, ब्ला ब्ला। बजट बनाना ये है कि हर चीज की एक लिमिट सेट हो जाए, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट बिल, एजुकेशन, सबके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट हो। जब बजट फ्लो होता है तो पैसों पर कंट्रोल आता है और इससे आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वही तीसरा बड़ा कदम जो है वो है इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना। हम अक्सर इमोशंस में बहकर कुछ चीजें खरीद लेते हैं। इमोशनली अगर हम थोड़ा स्ट्रेस में हैं तो कुछ अननेसेसरी कुछ जाके हमने खरीद लिया, सेल देखी, बिल्कुल बिल्कुल घबरा गए एकदम से, डिस्काउंट्स हैं तो बस एकदम बेचैन हो गए खरीदने के लिए। कई बार हम दूसरे से खुद को कंपेयर करने के चक्कर में भी फालतू के खर्चे करते हैं। तो भैया, बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि कोई चीज लेने से पहले जरा खुद से सवाल कर लो, क्या ये वाकई जरूरी है? आई एम श्योर आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जो इसका जवाब देंगे, नहीं ये जरूरी तो नहीं है। हाँ, 1% होगा कोई जो कह दे कि भाई जरूरी है, वो बड़ा मुश्किल ही होता है। देखिए, सेविंग भी लाइफ में बहुत जरूरी है। सेविंग फ्यूचर की सेफ्टी नेट है। जिंदगी बड़ी अनप्रडिक्टेबल है और अब तो बहुत ही ज्यादा अनप्रडिक्टेबल हो ही चुकी है। कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, जॉब इश्यूज आ सकते हैं, कोई और बड़ी नीड फैमिली की वो सामने आ सकती है। अगर सेविंग्स ना हो तो ऐसे वक्त में स्ट्रेस और डबल हो जाता है और डिसीशंस शायद हम ले ही नहीं पाते।

पैसे आपके पास बैकअप में हैं, तो आप सुकून महसूस करते हैं और शायद कॉन्फिडेंट भी। आप अपनी जिंदगी के गोल्स, घर है, एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, इसकी ठीक तरह से वक्त निकाल के कभी भी प्लानिंग कर लीजिए। और एक अच्छी बात ये कि पहले सेव करें फिर खर्चे करें, जैसे सैलरी आई चाहे थोड़ी सी ही सही सेविंग के लिए अलग कर दें। ये छोटा सा अमाउंट जो देखने में बड़ा छोटा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप कंसिस्टेंट रहे, मतलब हर बार ऐसा हर महीने करते रहे, तो आखिर में ये एक अमाउंट बड़े अमाउंट में तब्दील हो जाता है और शायद ये बड़ा अमाउंट आपका सुकून भी बन जाता है। वैसे तो पैसों से सुकून नहीं मिलेगा कभी भी, लेकिन हाँ कुछ छोटा मोटा कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है कि चलो कुछ ना कुछ मेरे पास है। वहीं पर स्पेंडिंग और सेविंग में गुड बैलेंस क्रिएट करना। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेव करें और कुछ भी स्पेंड ना करें, या सिर्फ स्पेंड ही कर रहे हैं और फ्यूचर को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए दोनों का हेल्दी मिक्स बड़ा जरूरी है। इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जा सकते हैं, जैसे जरूरी खर्च एक तरफ लिखना, सेविंग्स हर महीने लिख देना, वहीं पे कुछ एंजॉयमेंट के लिए अपने लिए आपने कुछ खर्चे करने हैं तो वो भी आप एक तरफ लिख लें। अगर आप अपनी इनकम का एक हिस्सा एंजॉयमेंट के लिए भी रखना चाहते हैं तो फ्रस्ट्रेशन कम होगा, क्योंकि आपने बजटिंग की है ना और फिर आप उसे फॉलो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग होगी और जो गिल्ट आती है ना हम लोग के अंदर वो नहीं होगी और ये आपकी स्पेंडिंग भी कंट्रोल्ड होगी, तो इससे आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएगा। वहीं पर फाइनेंशियल स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए रेगुलर फाइनेंशियल चेक जरूर करें। लोन्स और क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है बड़ा सोच समझ के किया करें। लाइफस्टाइल कंपैरिजन से नहीं क्वालिटी से, कॉन्फिडेंस से बनता है। किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना करो, वहीं अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उन्हें रियलिस्टिक रखिए जी। फिर जरूरत अगर आपको फिर भी पड़ रही है, मतलब इतने

ना कुछ मेरे बोलने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ और मुझे एडवाइस लेना है कहीं से, तो हाँ, यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत ही अच्छे कमाल की एडवाइस दे सकते हैं कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कब आपको जो है सेव करना है, या बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो उनकी भी एडवाइस जरूर ले लीजिए। देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इस पर काबू पाया जा सकता है। जब हम पैसों को समझदारी से हैंडल करते हैं, सेविंग्स को प्रायोरिटी देते हैं और स्पेंडिंग्स में गुड बैलेंस रखते हैं, तो स्ट्रेस नेचुरली कम हो जाता है। पैसा हमारी जिंदगी का मास्टर नहीं है, लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टूल जरूर है। जब कंट्रोल पैसों के हाथ में होता है तो टेंशन ज्यादा होती है, और जब कंट्रोल हमारे हाथों में होता है तो जिंदगी ज्यादा पुरसकून और स्टेबल हो जाती है। तो बस अपनी जिंदगी को ज्यादा पुरसकून स्टेबल बनाइए। फिलहाल मुझे तो इजाजत दीजिए, और इंशाल्लाह आपकी मेरी मुलाकात होगी एक और अमेजिंग से टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू साथियों, इस वक्त एफएम 107 की घड़ी बजा रही है ठीक 1:31, मतलब ये कि 1:31 ऑन द क्लॉक, और टाइम हो चला है द सुपर किड्स शो का विद द सुपर सफा।
2: आप सुन रहे हैं द सुपर किड्स।

बच्चा पार्टी वेलकम आपको ढेर सारा द सुपर किड्स शो में, जहां हमें आपकी मुलाकात होती है हर कब से, हाँ संडे से लेकर थर्सडे तक। कल मैंने आपको बताया था ना, मेरा थोड़ा सा टाइम मिसप्लेसमेंट हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। तो आज मैं यही सोच रही थी आज है क्या, आज मंडे है। तो भाई साथियों, मेरा और आपका साथ रहता है हर संडे से लेकर थर्सडे तक, 1:30 से लेकर 3 o'clock तक आपका और मेरा साथ रहता है, जिसमें हम करते हैं आपकी छोटी सी दुनिया की बड़ी बड़ी बातें। तो भाई बच्चा पार्टी, आप मेरे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रूल बड़ा सिंपल सा है हमारे शो के अंदर पार्टिसिपेशन का, आपको 18 साल से छोटा होना है और आपने क्रिएटिव होना है, आपने थॉटफुल होना है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर, द नंबर फॉर कॉलिंग इज 443-443-77, और चाहें तो हमें मैसेज भी भेज सकते हैं 666-22-107 पर। उफ, कितनी जल्दी जल्दी बोला है मैंने ये सब कुछ, कितनी जल्दी जल्दी बोला है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जल्दी में हम मिस कर जाते हैं। गहरी बात कही है मैंने, मुझे लगता है आज इसी पे बात कर ली जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और जिन्हें हम मिस कर जाते हैं। अच्छा साथियों, उससे पहले मैं शो स्टार्ट करूँ ना, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आज मैं आपको कोई लेक्चर नहीं देने वाली कहीं से, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर वेरी रैंडम। मेरे दिमाग में एक सवाल है आपके लिहाज से, आपने मुझे एक लिस्ट ऑफ थिंग्स देनी है, लेट्स से थ्री थिंग्स विच यू थिंक अ सुपर हीरो हैज। व्हाट इज अ सुपर हीरो फॉर यू? सुपर हीरो हम किसी को कैसे कहते हैं? हाउ डू वी एक्चुअली से दिस कि हाँ भाई दिस इज अ सुपर हीरो? क्लासिफिकेशन कैसे होती है उसकी, क्या चीज होती है उसके अंदर सी जो वो सुपर हीरो बन जाता है, हीरो नहीं सुपर हीरो। तो आपने मुझे कोई तीन चीजें ऐसी बतानी है, ठीक है? और फिर बात का जो मामला है वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे उसकी, क्या कहते हैं? आपने मुझे कॉल करना है 443-443-77 पर। बच्चा पार्टी, एक अंडरस्टैंडिंग कर लो, एक अंडरस्टैंडिंग दिमाग में रख लो, अंडरस्टैंडेशन। मुझे याद है बच्चों की क्लास टीचर थी, एक दफ़ा मैंने उनको बोलते हुए सुना था, वो कह रही थी क्लास डू यू अंडरस्टैंडेशन? मैं चुप करके देखती, मैंने कहा व्हाट अंडरस्टैंडेशन, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज दिस? नए वर्ड बन रहे हैं भाई दुनिया में, नई ग्रामर आ रही है अंडरस्टैंडेशन। तो अगर मैं वैसी वाली टीचर बन के बोलूं तो मैं कहूंगी डू यू

0: understandation? Well, it's not a word. It's not a English ka koi authentic word nahi hai ye. It's just a creation. So, bhai, understand ki aapne karna ye hai ki aapne aaj mujhe koi bhi three qualities batani hai jo ek superhero mein hoti hai. Theek hai? Baat ki baat main aapse baad mein karti hu. कॉल कर सकते हैं 4434377 पर और देखते हैं हमारे पास पहले कॉलर कौन है और कॉल अटेंड करने से पहले आपको बता दूं जो जो कॉल करेगा वी जान ले वी लिसन एंड वी डोंट जज तो अगर आप एक साइलेंट लिसनर हैं इट्स ओके ट्राई तो करो भाई मुझे पता है चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हो दिल कर रहा है बात करने को ट्राई तो करो कॉल करो देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है अस्सलाम वालेकुम जी कौन है हमारे साथ
1: जैनब
0: ऐसा क्यों लग रहा है जैनब से पहले बात हो चुकी है
1: हो तो चुकी है
0: ऐसा यूनिक सा नेम है ना जो जेड वाले नेम है ना ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद रहते हैं दे आर वन ऑफ माय फेवरेट नेम्स विच स्टार्ट फ्रॉम जी द लेटर जी तो ये बताएं कि जैनब कितने साल की हैं
1: सेवन
0: एट डिसाइड कर लो भाई सेवन के एट पक्का
1: हाँ.
0: चले भाई अच्छा जी अच्छा यू नो जैनब द फैक्ट अबाउट द लेटर जी इज कि इस लेटर से ना बहुत कम नेम स्टार्ट होते हैं यू नो दैट इट्स अ यूनिक अल्फाबेट लाइक एक्स जी
1: मेरे क्लास में तीन बच्चे जिसके जिससे जेड से स्टार्ट होते हैं
0: अरे भाई क्या क्या नाम है उनके मुझे तो बताएं जरा
1: जैदा
0: ओके
1: जैना
0: जैदा एंड
1: जैना
0: जैना ओके एंड जैनब अरे भाई ये तो सारे एक जैसे नाम हो गए है ना अच्छा मैंने ऐसा सुना था कि दिस इज अ फैक्ट कि जेड से जो लेटर जेड जो अल्फाबेट है ना जी जैसे हम जी कहते हैं जी जो अल्फाबेट है इससे बहुत कम नेम स्टार्ट होते हैं लेकिन आपकी क्लास तो यूनिक हो गई भाई इधर तो जी अल्फाबेट के तीन तीन नाम निकला है एंड वो भी राइमिंग एक साथ एक दूसरे जैसे तो वो जो तीन तीन गर्ल्स मतलब तीन तो नहीं दो हो गई ना आपके अलावा तो आप लोग फ्रेंड्स हैं आपस में अरे भाई फ्रेंड्स भी हो गए वाह अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं मैं आज सोच रही हूं कि आई नेवर मेड अ फ्रेंड हुज नेम स्टार्टेड विद एस देखा तो अपनी फैमिली में आप यूनिक हो ना तो भाई यूनिक गर्ल ये बताएं 8 इयर्स ओल्ड गर्ल ये बताएं कि आपकी बर्थडे कब आती है
1: July 24th
0: अरे भाई ये तो आने वाली है पास है
1: हाँ
0: तो फिर ये बताओ कौन सा वाला केक खिला रही हो मुझे
1: ब्लैक फॉरेस्ट
0: नहीं मुझे ब्लैक फॉरेस्ट नहीं अच्छा लगता ना उसके अंदर जो चेरीज होती है ना दे वेरी सार तो मुझे नहीं अच्छी लगती वो
1: रेड वेलवेट
0: ओह वाओ अच्छा आपको कौन सा केक पसंद है
1: ब्लैक फॉरेस्ट
0: पसंद है अच्छा चलिए मैं आपके लिए खा ही लूंगी आपको पसंद है ना तो आपकी बर्थडे ना तो मैं खा लूंगी इट्स ओके आप जब मुझे जब इनवाइट करेंगी ना तो फिर मैं खा लूंगी ओके
1: ठीक है
0: अच्छा जैनब हाउ वाज योर डे एट स्कूल डिड यू गो टू स्कूल
1: मैं
0: अभी जा रही हूँ अच्छा इवनिंग में है ठीक है
1: हाँ।
0: तो आज मुझे एक बात बताएं आज क्या प्लान है लंच में खाने लंच तो नहीं मतलब अच्छा देखो अब ये एक सवाल है दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन जो मॉर्निंग वाले बच्चे होते हैं वो लंच लेकर जाते हैं राइट
1: हाँ।
0: तो जो इवनिंग वाले बच्चे होते हैं वो क्या डिनर लेकर जाते हैं तो फिर इवनिंग वाले बच्चे स्नैक्स लेकर जाते हैं ओ Some kind of snack, supper, कुछ brunch, कुछ ऐसा है ना?
1: आपकी friend है यहाँ पे अभी?
0: नहीं ना मेरी कोई friend नहीं है तभी तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि मेरे आप लोग अच्छे अच्छे friend है ना?
1: जो daily आती है।
0: A for Amita। A for Amita आएंगी next week से। A for Amita अभी थोड़ा सा busy है।

0: किसी और प्रोजेक्ट में, तो वो नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करेंगी हमें. आप मिस कर रही थी अमिता को? अच्छा
1: हाँ,
0: तो मैं
1: दोनों को भी
0: चलिए मैं अमिता को मैसेज कर दूंगी. अमिता, ज़ैनब वाज मिसिंग यू, सो कम बैक सून. ओके. अच्छा एक बात तो बताएं, आपने तो मुझे बताया नहीं कि कल का स्कूल का दिन कैसा गुजरा था.
1: अच्छा
0: तो कल क्या क्या किया था आपने?
1: कल आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड था.
0: वाओ, व्हाट डिड यू मेक?
1: मैं एक बड़ी सिस्टर है, उसका नाम हुमैरा है.
0: ओके.
1: उसके लिए बनाई थी.
0: क्या चीज?
1: कुछ ऐसी ड्राइंग.
0: That's so sweet of you. That's so kind of you. You love your sister a lot, है ना? चलें कोई बात नहीं. अच्छा अगर वो यहाँ पर होती तो नहीं बनाती?
1: बनाती.
0: अच्छा अभी भी आप ये कर सकती है ना, आपने जो पिक्चर बनाई है ना उसकी अच्छी सी मोबाइल से आप फोटो लें, ठीक है, एंड यू कैन सेंड इट टू योर सिस्टर.
1: वो आने वाली है.
0: ओ, फिर मैं बताऊँ, एक आइडिया दूँ इसको ना. आप अभी तक दिखाया आपने सिस्टर को अपना ड्राइंग के? नहीं
1: नहीं. हाँ
0: हाँ, एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टेल यू दैट, कि इसको ना एक एनवलप में रखें, किसी फ्रेम में रखें, और फिर जो है ना उनके आने का वेट करें, एंड देन व्हेन शी कम्स सरप्राइज हर विद इट. ओके चलें. अच्छा मैंने आज सवाल किया है ज़ैनब, द क्वेश्चन इज मुझे कोई भी तीन चीजें ऐसी बताएं जो आपको लगता है कि दैट मेक्स समबडी अ सुपर हीरो. एक सुपर हीरो की क्या क्वालिटीज होती हैं? थ्री थिंग्स.
1: स्ट्रॉन्ग होते हैं और लुक सुपर हीरो के कपड़े पहनते हैं और सब लोग को बचाते
0: हैं. ओह दैट्स सो क्यूट. स्ट्रॉन्ग होते हैं, सुपर हीरो के कपड़े पहनते हैं और सब लोगों को बचाते हैं, ठीक. चलें भाई, ये तो तीन चीजें हो गई. अच्छा ये तीन चीजें हो गई, और अगर अगर वो अच्छे अच्छे कपड़े ना पहने तो वो सुपर हीरो नहीं होंगे?
1: होंगे पर लग अच्छे
0: नहीं लगेंगे.
1: सुपर हीरो जैसे नहीं देखे.
0: अच्छी वाली क्वालिटी भाई, क्वालिटी वाला सुपर हीरो चाहिए हमें, तो अच्छी क्वालिटी वाले नहीं होंगे, राइट?
1: हाँ.
0: चलें भाई, अच्छी क्वालिटी वाले सुपर हीरो के लिए सिर्फ ये तीन चीजें चाहिए होती हैं, कि आपको अच्छे कपड़े पहनने, आपने जो है वो मसल शसल होने चाहिए उनके, ठीक है, स्ट्रांग होने चाहिए, और वो लोगों को बचाना चाहिए उन्हें, ठीक है. ठीक.
1: आपका सुपर हीरो कौन है?
0: मेरा फेवरेट सुपर हीरो, मुझे जो है वो कार्टून्स में अगर देखा जाए तो मुझे स्पंजबॉब बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक स्पंजबॉब इज अ सुपर हीरो. और अगर मुझे, वैसे
1: मुझे तो वो गर्ल वाली स्पाइडरमैन पसंद है.
0: ओह नाइस. अच्छा मुझे ऐसे जो ना अगर वो वो वाले प्रॉपर सुपर हीरोज में देखा जाए तो मुझे डेडपूल पसंद है. तो सब मैं भी आपको बताती हूँ आगे चलकर, व्हाई वाज आई आस्किंग दिस क्वेश्चन. ओके. बिकॉज आई विल ट्राई टू डू वन थिंग, कि मैं जो ना सबसे थोड़ा बहुत ओपिनियन लूंगी, सारे बच्चों से पूछूंगी, और एंड में मैं बताऊंगी दैट व्हाई डिड आई आस्क दिस फ्रॉम यू गाइज. आई वॉन्टेड टू नो हाउ डू यू, आप कैसे देखते हैं कि एक सुपर हीरो के अंदर क्या क्वालिटीज ढूंढते हैं आप लोग. अच्छा अभी तो मुझे ये बताएं, मेरे साथ गेम खेलेंगी? ज़ैनब हमारा इस वीक का जो गेम है ना वो है नेम प्लेस एनिमल थिंग. सो होगा ये कि आई विल गिव यू 45 सेकंड्स, ओके? और उन 45 सेकंड्स में आपने कोशिश करनी है, मैं जो आपको अल्फाबेट दूंगी ना उससे आपने मुझे नेम प्लेस एनिमल थिंग बताना है. ओके लेट्स ट्राई. चलें. क्योंकि ज़ैनब 8 इयर्स ओल्ड हैं तो ज़ैनब के लिए थोड़ा सा इजी लेवल कर ले. चलें 1 2 3 योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ए
1: एप्पल.
0: ओके एप्पल इज अ थिंग. ओके नेम
1: ऑस्ट्रेलिया.

0: Okay, place Australia.
1: Annam.
0: Annam, okay. And animal? Animal rahe gaya, animal, animal, animal. Jaldi. Ant. Ant animal, haan, sakta insect mein hi aata hai animal. Okay, bhai, very good ho gaya. कितने 32 सेकंड्स का रिकॉर्ड अभी तक का. तो भाई बच्चा पार्टी के लिए तालियां हो जाएं. तालियां बजाने वाले कहां चले गए. वेरी गुड ज़ैनब. ज़ैनब है हमारी पहली कॉलर. ठीक है ज़ैनब, आज का रिकॉर्ड आपने सेट किया है 32 सेकंड्स का. ठीक है, पता है आपको कल जिन्होंने खेला था सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसने खेला था कितने सेकंड्स में, पता है?
1: नहीं.
0: रोहान ने खेला था कल 22 सेकंड्स में. So, आपने आज का रिकॉर्ड शुरू किया 32 सेकंड्स का. तो चलिए देखते हैं आपका रिकॉर्ड आज कौन ब्रेक करता है. ठीक है
1: ठीक है.
0: अच्छा ये बताएं, नहीं ऐसे अल्लाह हाफिज नहीं हो रहा. ना जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना पड़ता है भाई.
1: ठीक है.
0: हाँ जी, तो बताएं कोई अच्छा सा मैसेज देना.
1: हमेशा स्टडी करो और
0: हेल्दी फूड खाओ. वेरी गुड, स्टडी हार्ड एंड हेल्दी फूड. हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, राइट?
1: हाँ.
0: चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें. दैट वाज अ वेरी माइंडफुल थॉट. अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज.
0: ये थी ज़ैनब, जिन्होंने हमें बहुत टाइम बाद जाके कॉल की थी. चले भाई देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कॉलर कौन है. नेक्स्ट कॉलर कौन है भाई, कौन है? अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. कौन है हमारे साथ?
2: मोहम्मद अदीन.
0: मोहम्मद अदीन, ए डबल डी नहीं, ए डी डबल ई एन.
2: यस,
0: ए डी डबल ई. आई बिलीव अदीन आपसे मेरी बात हो चुकी है पहले, इज इट? है ना
2: जी.
0: हाँ कुछ याद आ रहा है मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के अंदर. कुछ अदीन का नाम सुन के याद आ रहा है मुझे. अदीन याद आ रहा है, लास्ट टाइम कुछ टाइम पहले ही आपने कॉल की थी. 11 इयर्स के आप. कब कॉल की थी आपने?
2: 1 वीक पहले.
0: हाँ 1 वीक, कुछ टाइम पहले. 11 इयर्स के आप
2: जी.
0: हाँ मोहम्मद अदीन याद आ गया मुझे. याद आ गया. देखा मैं अपने दोस्तों को याद रखती हूँ, मेरे दोस्त भूल जाते हैं मुझे. 1 वीक बाद कॉल करते हैं. कहाँ गुम हो गए थे? हेलो, हैं कि चले गए?
2: एग्जाम
0: से. सो हाउ आर योर एग्जाम्स गोइंग?
2: गुड. आज भी एग्जाम था.
0: तो भाई आज किस चीज का एग्जाम था?
2: इंग्लिश
0: का था. आई होप कि अच्छा हुआ होगा. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा एग्जाम तो अच्छा गया, खुद क्यों इतने डल हुए में? गर्मी लग गई है क्या?
2: नहीं.
0: तो ऐसे ऐसे ऐसे ऐसा ला रहे. हाँ जी.
2: I'm tired.
0: You're tired. Oh, I hope you drink a lot of water, eat healthy food and then आप जो ना थोड़ा सा अपना आपको वाइटलाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह. घर पहुँच कर जब खाना पीना खाएंगे तो फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, खा पी कर इंशाल्लाह बैटरी चार्ज हो जाएगी, राइट? अच्छा अदीन, टेल मी समथिंग. व्हेन यू गो बैक होम, व्हेन यू हैव योर फूड एंड स्टफ, लंच जब आप कर लेते हो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह, तो यू टेक सम रेस्ट, यू स्लीप और यू जस्ट यू नो अपना एक होता है ना, कुछ बच्चे सोते हैं कुछ बच्चे नहीं सोते.
2: आई जस्ट ले डाउन ऑन माय सोफा और बेड.
0: यू जस्ट रिलैक्स, यू डोंट टेक अ नैप?
2: नो.
0: क्योंकि दिस यूज टू हैपन टू मी ऑल्सो. माई पेरेंट्स यूज टू फोर्स मी, सो जाओ, रिचार्ज योरसेल्फ, सो जाओ. बट आई कुड नॉट स्लीप. आई लाइक टू जस्ट ले अराउंड लाइक यू, कि भाई अपना रेस्ट रिलैक्स कर जाओ, थोड़ा सा मी टाइम ले लो. बट नींद नहीं आती है ना?
2: नहीं
0: आती. सो दिस इज आई वॉज राइट, आई वॉज नॉट द ऑड वन आउट. अच्छा अदीन ये बताएं कि आपके क्या ख्याल हैं, व्हाट डू यू थिंक? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टुडे, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. गिव मी 3 थिंग्स व्हिच यू कंसिडर अ सुपर हीरो शुड हैव क्वालिटी. एनी 3 क्वालिटीज ऑफ अ सुपर हीरो. व्हाट डू यू थिंक? नहीं मुझे आवाज नहीं आ रही.

0: Turkey?
1: They should respect them and save like people.
0: Okay. They should be respectful. That's what you're saying.
1: Mm-hmm.
0: Okay. They should be. मतलब आप कह रहे हैं कि they should be respectful in a way के अच्छे ethics हों उनके अंदर. ठीक है. Okay.
1: जी.
0: And they could save others. Yeah. Go for a positive thing ना कि जब कोई मुश्किल में हो तो they should save others. Okay.
1: Yes. They should not make a situation worse.
0: They should be thoughtful, right? Ke
1: yes.
0: Kuch bhi karne se pehle, look before you leap, right?
1: Yes.
0: Okay. They should think before they act. Okay. Ye teen cheeze ho gayi. Matlab, Adin keh rahe hain ke thoughtfulness ho gayi ek. Ek, jo hai na, they should save others. And respect ka bhi element unke andar hona chahiye. Aur agar aapka koi superhero hota, favorite, तो आप उसका क्या if you would have created a superhero from your side उसका नाम क्या रखते आप? What would be the name of your superhero? Think about it. सोचो.
1: Life saver. Yes.
0: ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी वो एनर्जी सेविंग मोड पे जा रही हूँ जैसे एलईडी बल्ब नहीं होता वी कॉल इट द लाइट सेवर दिस इज द लाइफ सेवर दिस इज गुड लाइफ सेवर अच्छा एकदम से एक थॉट आता है ना वी गेट अ थॉट अच्छा दिस थिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ठीक है अच्छा ये बताएं कि हमारे साथ गेम खेलेंगे तो भाई हम नेम प्लेस एनिमल थिंग खेल रहे हैं ओके
1: जी
0: तो आपको दिए जाएंगे अच्छा हमारा आज का हाईएस्ट स्कोर शुरू हुआ है 32 सेकंड से वी गिव यू ऑलमोस्ट मैक्सिमम 45 सेकंड का गेम है ओके और देखते हैं कि आज आप कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं इसे ओके चलिए भाई आपका वर्ड है क्या दिया जाए 1 2 9 ओके 1 2 3 गो सी नेम सी से
1: Catley.
0: Okay. Place.
1: California.
0: Okay. Animal.
1: Cat.
0: Okay. Thing.
1: Car.
0: Very good. Oh, 24 seconds, bhai. 24 seconds. Taaliyan bachche ke liye. Taaliyan. नाइस अभी के फॉर नाउ फॉर टुडे यू आर द टॉप स्कोरर येस्टरडे समबडी डिड 22 सेकंड्स बट फॉर टुडे यू आर द टॉप स्कोरर एज ऑफ नाउ सो कांग्रेचुलेशंस जल्दी जल्दी बोलने के लिए और पता है ये गेम खेलने की ट्रिक क्या होती है द ट्रिक इज जस्ट लाइक योर एग्जाम पेपर इफ यू कैन नॉट थिंक अबाउट समथिंग राइट नाउ स्किप इट Think about the second thing. And when you're done with the others, which you already know, come back to the one which you missed. So, usse jana jaldi solve ho jata hai. To bhai, congratulations. Ye batayin, jaane se pehle, aap koi hume achha sa message jo bache sun rahe unko dena chahenge?
1: If you have exam, study well.
0: Very good. Aajkal exam ka season chal raha hai. To bhai, exam jiske ho rahe hain, achhe se padho. देखो छुट्टियां उसके बाद है ना दो 2 months की तो छुट्टियां होती है ना फिर खूब चिल करना अभी खूब पढ़ो हम कहते हैं ना वर्क हार्ड एंड पार्टी इवन मोर हार्डर तो भाई अभी के लिए खूब पढ़ो लिखो और बाद में चिल ऑन मोड करना ठीक है अपना ढेर सारा ख्याल रखें थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अल्लाह हाफिज तो बच्चे पार्टी आज का सवाल आज ना हम एक सुपर हीरो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली में मुझे आपसे पूछना ये है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सी एक तीन क्वालिटीज जो अगर आप सुपर हीरो बिल्ड करते तो उसके अंदर क्या होती एंड में मैं आपको बताऊंगी कि एक मेजर फैक्टर क्या होता है जो आपको खुद को सुपर हीरो बनाता है लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप लोगों के थॉट्स से एक सुपर हीरो बनाने की कोशिश कर रही हूं कि एक सुपर हीरो में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और वो आपने मुझे बतानी है एटलीस्ट

0: थ्री थिंग्स यू शुड टेल मी, कि जो आप कहते हैं कि भाई एक सुपर हीरो में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो भाई आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, एंड वी अ बिट मोर थॉटफुल, और मुझे ये बताएं जरा, अगर सुपर अपना सुपर हीरो हम जब बनाएंगे बच्चा पार्टी, तो उसका नाम क्या रखेंगे हम? भाई एक नाम तो आ गया लाइफ सेवर, डू यू हैव एनी अदर नेम सजेशंस है आपके पास? 4434377 इज द नंबर टू कॉल, एंड 6622107 इज द नंबर टू मैसेज। आप चलते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। कौन है हमारे साथ?
1: उमैमा।
0: उमैमा, ओ उमैमा का नाम आता है यू से?
1: नहीं, ओ
0: ओ से। तो बेबी यू से क्यों नहीं आता?
1: आई डोंट नो।
0: चलें कोई बात नहीं। अच्छा उमैमा कितने साल की हैं?
1: I'm gonna turn 11.
0: 11, माशाल्लाह माशाल्लाह, very good, big girl. अच्छा ये बताएं उमैमा, I believe I have talked to you before also. You're an old friend,
1: yes.
0: Right?
1: Yes.
0: Few days back maybe.
1: Yes.
0: Yeah. हाँ मुझे सर याद पड़ रहा है उमैमा के नाम से। अच्छा उमैमा tell me how was your day today?
1: Nice.
0: बस nice nice. ऐसे nice nice बस ऐसे nice nice. तो इस नाइस में क्या क्या था आज? आज मेन्यू में क्या क्या था? नाइस के मेन्यू में क्या क्या था? हाउ वॉज इट नाइस? रेसिपी क्या थी नाइस की?
1: मेरा
0: साइंस टीचर चली गई तभी इट वॉज नाइस। यू आर सैड बिकॉज योर साइंस टीचर लेफ्ट? ओह, शी वाज योर फेवरेट टीचर?
1: Yeah.
0: So did you get a new teacher? Or you
1: yes.
0: New teacher abhi aayi hai ki nahi aayi?
1: Aayi hai.
0: Aayi hai. So how is the new teacher?
1: I don't know,
0: she is new. Ah, so give her some time. Most probably she yeah. will be as good as, or maybe more good, better than your old teacher. I hope that you do get another teacher which is even more great than the old one. I hope, inshallah. Things take time. We just you know, pata hai life mein kaise cope up karte hain aisi cheezon se. I know the old teacher was your very dear teacher, but the thing is, the fact about life is the only thing that is constant is change. So we have to adopt change. And क्योंकि हमारी पुरानी टीचर अच्छी थी, सो वी विल प्रे कि अल्लाह ताला जो है वो उन्हें और ज़्यादा सक्सेसफुल रखे, कामयाबी दे। मे शी हेल्प अदर किड्स ऑल्सो, जैसे आपको पसंद थी बिकॉज शी वॉज अ गुड टीचर, तो मे शी हेल्प अदर किड्स ऑल्सो। एंड इंशाल्लाह आपको जो टीचर अभी मिली है, इंशाल्लाह शी वुड बी बेटर फॉर यू। ठीक है, हम दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह। अच्छा उमैमा ये बताएं कि और क्या क्या हुआ भाई स्कूल में आज? बस ऐसी स्टडीज चली और बस ऐसी बोरिंग सा दिन गुजर गया, नथिंग स्पेशल। अच्छा एक चीज बताऊं मैमा, टुडे आई एम कलेक्टिंग सम क्वालिटीज, आई हैव टू बिल्ड अप अ सुपर हीरो, वी हैव टू बिल्ड अप अ सुपर, नॉट आई वुड से वी हैव टू बिल्ड अप अ सुपर हीरो, एंड आई नीड फ्यू क्वालिटीज Which you would want to, आप कहेंगी कि भाई अगर मैं सुपर हीरो बनाती ना, तो मेरे सुपर हीरो में ये थ्री क्वालिटीज होती ही होती। वो क्या क्या होंगी बता सकती हैं मुझे, जो आपके फेवरेट सुपर हीरो में हों?
1: सुपर फास्ट
0: ओके। सुपर हीरो इज सपोज टू बी सुपर फास्ट, ओके। और दूसरी क्वालिटी क्या? सेकेंड क्वालिटी कोई?
1: Nice thinking.
0: Okay. Positive thinking हम कह लेंगे. Right?
1: Yeah.
0: चलें जी, या हम कह लें कि भाई उनके पास solution वाला mind हो, the person who can find more solutions of situations, right?
1: Yes.
0: Yeah. Okay, critical thinking वाला दिमाग हो, okay. तो और द लास्ट थिंग,
1: गुड हैबिट्स
0: ओके। गुड हैबिट्स इन द सेंस, थोड़ा सा और हम इसे नैरो करें, अगर गुड हैबिट्स में क्या क्या चीज आ सकती है?

0: एक कोई चीज ऐसी क्वालिटी बता दें जो गुड हैबिट के अंदर.
1: व्हाट
0: स्टॉप टॉकिंग. सॉफ्ट स्पोकन पोलाइट. पोलाइट ओके. सॉफ्ट स्पोकन पोलाइट राइट. चलें भाई बातें मैटर करती हैं और जिस तरह से की जाती हैं बातें वो भी मैटर करती हैं ना. चलें भाई हम अपना सुपर हीरो बिल्ड कर रहे हैं. बाकी और सब ने भी हमें थॉट्स दी हैं क्वालिटीज दी हैं. और अगर आप इसका नाम रखती तो क्या रखती. आपके सुपर हीरो का क्या नाम होता.
1: ओ आई
0: सुपर हीरो. ओ आई एस सुपर हीरो. ओ आई एस.
1: Yes.
0: O-O-I-S. In the sense? Iska reference to the context? What does it mean, O-I-S?
1: Onima
0: Izan Safan. Oh! Are these the name? Mujhe aisa lag raha hai, there are two more people in this superhero contrast. Ye kaun hai?
1: My brothers.
0: Oh! Two brothers?
1: Yeah.
0: अरे माशाल्लाह तो टीम हो गई है तो पूरी. माशाल्लाह माशाल्लाह. ओ आई एस. ओ इट्स लाइक यू नो दैट वो टैग टीम नहीं होती पूरी टीम. इट्स लाइक अ टीम. वाओ नाइस माशाल्लाह थॉटफुल. अच्छा भाई चलें ये तो हो गया हमारे सुपर हीरो का टॉक. अब ये बताएं उमायमा गेम खेलेंगी. नेम प्लेस एनिमल थिंग हम खेल रहे हैं. तो भाई आपको दिए जाएंगे मैक्सिमम 45 seconds. अभी तक का मैं आपको बता दूं कि हमारा जो स्कोर है ना स्कोरबोर्ड आज का जो सबसे फास्टेस्ट किसी ने नेम प्लेस एनिमल थिंग खेला है वो है 24 seconds. लेट्स सी इफ यू कैन बीट दिस रिकॉर्ड. ओके चले भाई आपको देते हैं हम वर्ड. योर अल्फाबेट इज आई एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई
1: आईरीना.
0: ओके आईरीना नेम.
1: ओके आइसक्रीम इगुआना.
0: ओके प्लेस इगुआना. एनिमल
1: एनिमल
0: सोची
1: आइसलैंड.
0: एनिमल आइसलैंड. एनिमल आइसलैंड.
1: नो प्लेस आइसलैंड. ओके एनिमल इगुआना.
0: ओके मैं ये कह रही थी इगुआना तो मुझे लग रहा था कि एनिमल वाला. ओके प्लेस आइसलैंड.
1: यस.
0: ओके भाई एंड द टाइम इज 37 seconds. चलो भाई बच्चा पार्टी के लिए तालियां हो जाएं. तालियां. नॉट बैड वेरी गुड. अच्छा आई विल कंसिडर दिस एज 30 seconds. यू नो वाई. बिकॉज आपने मुझे इगुआना पहले ही बता दिया था तो इगुआना आई विल कंसिडर 30 seconds. आई विल नॉट कंसिडर 37 seconds. तो भाई वो थोड़ा सा मिसप्लेसमेंट बट 30 seconds के अंदर इन्होंने बता दिया था. सो वेरी गुड क्लोज इनफ. वेरी गुड. तालियां. अच्छा पता है वैसे एनिमल्स स्टार्टिंग फ्रॉम आई ना सबसे ईजीएस्ट पता है कौन सा है. इंडियन एलिफेंट. या देयर इज इट इज एक्चुअली नेम्ड एज इंडियन एलिफेंट. एलिफेंट्स की टाइप्स होती है ना डिफरेंट तो वो इंडियन एलिफेंट. इट्स इजी. चले भाई वेरी गुड हो गया. अच्छा ये बताएं आपने कभी इगुआना देखा है. नॉट लाइक इन रियल.
1: मेबी
0: मतलब पिक्चर्स वगैरह में देखा है.
1: No.
0: अरे कैसे नहीं देखा. सुख वाकई में देखा था मैंने.
1: Okay.
0: आपने नहीं देखा. एक टाइम पे मैंने देखा था. अब डू यू गो टू द एनिमल मार्केट इन सुवाकिफ.
1: नो आई डिडंट.
0: ओह यू डिड नॉट गो. इट्स अ वंडरफुल प्लेस. यू नीड टू गो सुवाकिफ जाकर देखना. वहाँ पे जो एनिमल मार्केट है ना वहाँ पे इगुआना पड़ा हुआ है. आई हैव सीन इट एंड इट लुक्स वेरी स्पूकी. चलें जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें. एंड लेट्स सी के हमारे पास आज के टॉप स्कोरर कौन होते हैं. तो भाई जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी. कुछ भी अच्छा सा मैसेज एनीथिंग.

0: ड्रिंक वाटर.
1: हाँ राइट, आई लाइक दिस. देखो वेदर बहुत गर्म हुआ हुआ है तो ड्रिंक ढेर सारा वाटर जी. चलें जी मैम, अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.
0: अल्लाह
1: हाफिज. चलें जी बच्चा पार्टी, एक टाइम चेक कर लें, कॉल पे ही रहना. मुझे पता है मुझे कॉल्स आ रही हैं, कॉल पे ही रहना. बस एक टाइम चेक कर लूँ और फिर वापस आती हूँ, क्या कहते हैं? टाइम चेक करूँ कि ना करूँ? चलो टाइम चेक ऐसे ही बता देती हूँ भाई. देखो इस वक्त जो है ना हमारी घड़ी में कितने बज रहे हैं बच्चा पार्टी, 4:02 हो रहे हैं. तो जिस जिसने कॉल करनी है जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि मैं 2:55 पर कॉलें बंद कर देती हूँ. तो भाई आ जाओ एक और कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. देखें आप जब चांद से बात करते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है, जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ आती है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो कम्युनिकेशन का लेवल थोड़ा सा ग्रेड जो है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है. तो कौन है हमारे साथ? महरीन. चांद से क्यों बात कर रही हो, ज़रा ज़मीन पर आओ ना. वापस आ गई? नहीं मेरीन, देखिए मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है आप चांद पर ही हैं. थोड़ा सा पास आई हैं, थोड़ा सा और पास आ जाए ना, ताकि मुझे क्लियर आवाज़ आए ना, थोड़ा सा और ज़मीन के पास आ जाए.
0: और बस आ गई
1: है. हाँ तो भाई मेरीन ये बताएं, चांद पे जब गई थी तो कितने साल की हैं, जब चांद पे, चांद से जब ज़मीन पे वापस आई तो कितने साल की हो गई? एट मिनट्स के अंदर वापस भी आ गई. आपको पता है मेहरीन, द थिंग इज द फैक्ट इज, अगर स्ट्रेट लिया जाए ना, स्ट्रेट स्ट्रेट, मुझे ज़रा बताएं कि क्या आपको पता है कि अगर स्ट्रेट देखा जाए ज़मीन से लेकर मून तक का कितना गैप है, आपको पता है?
0: कितना
1: बताएं ना, आप चांद पे गई हैं ना.
0: 200 किलोमीटर.
1: आर यू श्योर?
0: हाँ.
1: देखो सोच लो, सब सुन रहे हैं, फिर मैं ना कहूंगी कि मैंने बोला था 200 किलोमीटर. देखिए अगर आप कार से जाएंगी ना तो आपको, अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जाएंगी तो तकरीबन आपको 160 डेज लग जाएंगे पहुंचने में. एंड द किलोमीटर्स फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून इज, बता दूं? पक्का पक्का
0: पक्का.
1: देखिए आप गलत हो जाएंगी फिर. 384,400 किलोमीटर्स. 200 नहीं था, नहीं 200 बोलता, 800 बोला था आपने, कितना बोला था?
0: 200.
1: नहीं भाई इतना छोटा तो नहीं हो रहा, हम कौन सा खोर जा रहे हैं, खोर का 51 किलोमीटर है. चलें कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया 384,400 किलोमीटर्स. अच्छा भाई ये बताएं कि चांद का सफर कैसा रहा आपका?
0: अच्छा था.
1: अच्छा था, तो डेली जमीन पर आती हैं अब स्कूल जाने के लिए या चांद पे स्कूल है?
0: चांद पे स्कूल है.
1: स्कूल चांद पे स्कूल, मतलब चांद पे भी स्कूल ने जान नहीं छोड़ी है हमारी, चांद पे भी पहुंच गए स्कूल वाले. अच्छा तो फिर ये बताएं स्कूल का दिन कैसा गुजरा आपका?
0: अच्छा था.
1: अच्छा था, तो क्या क्या किया आपने? मून पे एक्टिविटी वैसे ही होती है इस दुनिया पे होती है?
0: हाँ,
1: सेम होती है. चलें भाई थोड़ी सी बता दें हमें क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या एक्टिविटी की आपने?
0: साइंस का एग्जाम हुआ था.
1: लो जी चांद पे भी एग्जाम होते हैं मेरीन, है? सच बताओ. हेलो, देखिए थोड़ी सी जब चांद पे जाते हैं ऐसी डिस्टॉर्टमेंट होती है. मेरीन चांद पे एग्जाम होते हैं तो वो कैसे हुए आपके एग्जाम?
0: अच्छा था.
1: अच्छा था, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम था?
0: साइंस.
1: साइंस एग्जाम तो वाकई में चांद पे ही होगा. यस आई डू अंडरस्टैंड. तो भाई ये बताएं कि आज जो है ना हम कलेक्ट कर रहे हैं सुपर हीरोज की क्वालिटीज, एंड आई नीड 3 qualities. वी आर बिल्डिंग अप अ सुपर हीरो. इफ यू बिल्ड अप अ सुपर हीरो, वॉट वुड बी द

0: three qualities of your superhero. What qualities do you want? Any three qualities? सोच कुछ ज्यादा गहरी हो गई महरीन, कहाँ चली जाती हैं?
1: बोलो आप, बोलो
0: महरीन, कोई भी थ्री क्वालिटीज बताएं जो सुपर हीरो में होती हैं, या आप कहती हैं कि अगर आप क्रिएट करेंगी ना सुपर हीरो, तो आप अपने सुपर हीरो में क्या थ्री क्वालिटीज रखेंगी? व्हाट शुड बी देयर इन योर सुपर हीरो? व्हाट मेक्स योर सुपर हीरो अ सुपर हीरो? बता दें जल्दी से बता दें. Anything, it's okay. You can say whatever you like.
1: It should be strong.
0: Okay, strong. And?
1: It should be intelligent.
0: Intelligent, okay. Okay. One last quality. Kaun si?
1: It should be super healthy.
0: सुपर हेल्दी. ओके भाई, सेहत का भी ख्याल रखना है. सुपर हेल्दी. ओके जी, ठीक है भाई. और आपके सुपर हीरो का नाम क्या होगा? क्या नाम सजेस्ट करेंगी आप सुपर हीरो का? द सस्टेनेबल सुपर हीरो. द सस्टेनेबल सुपर हीरो बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी. व्हाट वुड बी द नेम ऑफ योर सुपर हीरो? अरे इतना सोचेंगी तो सुपर हीरो तो भाग जाएगा, नाम से पहले ही चला जाएगा वो तो. व्हाट? बा. बा राइट, बी डबल ए, बी ए बी ए, बाबा इज इट? कहाँ चली गई? एक तो हमारी चांद की डिस्टॉर्मेंट खत्म नहीं हो रही. बाबा राइट? अच्छा भाई, चले भाई, ये सजेशन हमने लिख लिया है. हम ये अपने सुपर हीरो, अभी हम शुगर स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस वी विल मिक्स टुगेदर एंड ऑल दीज क्वालिटीज विल मिक्स टुगेदर एंड वी विल क्रिएट अ सुपर हीरो, ओके, इन द एंड ऑफ द शो. अच्छा ये बताएं मैरीन, हमारे साथ नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलेंगी? ओके जी मैरीन, आपको दिए जाएंगे 45 सेकेंड्स. टुडे द हाईएस्ट स्कोर इज 24 सेकेंड्स. ओके, तो आपने इस स्कोर को बीट करने की कोशिश करनी है. 24 सेकेंड से पहले आपने मुझे नेम प्लेस एनिमल थिंग बताने की कोशिश करनी है. ओके, येस्टरडे योर स्कोर वॉज 3. यू टोल्ड मी 3 थिंग्स, सो यू हैव टू टेल मी मोर देन 3 टुडे. ओके डन. चले भाई, आपको दिया जाएंगे, कहाँ गई मेरी स्टॉप वॉच, कहाँ चली जाती है. ओके सो ओके महरीन को देंगे हम द लेटर, ओके द लेटर बी, बी एज इन बाबा. ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. नेम बेटा, आई कैन नॉट हियर यू. अच्छा एक मिनट, वी स्टॉप द टाइमर, आई नीड टू हैव अ क्लियर वॉइस. आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल भी सही नहीं आ रही. आइदर यू आर ऑन अ ब्लूटूथ और ऑन अ स्पीकर, योर वॉइस इज वेरी डिस्टॉर्टेड. गेम के लिए जरा स्पीकर से हटा लें, क्योंकि गेम ना खेली जाएगी स्पीकर पर.
1: अभी आवाज़ आ रही
0: ये ना, अब आई ना, अब दुनिया पर ग्रेविटेशनल पुल अब आया ना. तो भाई चलें, टाइम फिर से स्टार्ट करते हैं. योर, अच्छा अब हम अल्फाबेट थोड़ा सा चेंज कर लेंगे बिकॉज वी गेव यू अ लॉट ऑफ टाइम. चलें 1 2 3 डी, डी एज इन डेल्टा. ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
1: डी के लिए
0: यस यस डी
1: डैड.
0: ओके डैड, डैड किस चीज में लिखेंगे हम?
1: और
0: एनिमल इजी है. एनिमल, ओके वेरी गुड ओके. एंड प्लेस?
1: दुबई.
0: ओके एंड एनिमल, नहीं सॉरी, थिंग.

0: your time कौन सा क्या
1: डस्टबिन
0: डस्टबिन भाई डस्टबिन कंसीडर हो गया चलिए 45 सेकंड्स में आपने किया है लेकिन आपने एक चीज मुझे नेम नहीं बताया आपने
1: हाँ मैं बोली
0: अच्छा नेम क्या बताया था आपने
1: बॉब नहीं बॉब नहीं बोली मैं डैड
0: नेम ना थोड़ी ना होता है अ पर्टिकुलर नेम A name, name, name. Dad, तो यूँ समझ लें कि it's not a particular thing, ना?
1: Danny.
0: चलें फिर एक काम करते हैं. You need to be very specific about the name. So, like for example, D for Daniel. For example, D for Danish. For example, D for Dania. A particular name.
1: Danish.
0: But अब तो time चला गया ना. We need a proper noun ना. So, what we will do is we will consider it only of three answers, okay? And tomorrow we will try even more. Okay? चलें भी तालियां तो हो जाए बच्चा पार्टी के लिए तालियां तालियां देखिए जब हम नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते हैं ना तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेम वी टॉक अबाउट नाउन्स नाउन्स आर अ प्रॉपर नेम लोगों के जो नेम्स होते हैं ना वी प्ले विद दैट ओके चलिए फिर मेहरीन वी विल प्ले अगेन tomorrow and inshallah tomorrow Marine will do even more better okay chale ab jaane se pehle koi acha sa message de de kuch acha sa message
1: listen to your parents
0: yes listen to your parents advice listen to your parents suggestion and listen to them kyunki as of now they know more better than you to bhai अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड वापस से चांद पे जाएं ठीक है स्कूल नहीं छोड़ना चलें अल्लाह हाफिज
1: हाफिज मैम
0: और मैरीन थोड़ी सी उदास हो गई मुझे सोचते जाते जाते मैरीन उदास हो गई मैरीन डोंट बी अपसेट इट्स ओके वी कीप ऑन देखें गेम का मकसद पता है क्या होता है अंडरस्टैंडिंग होती है एंड फन होता है सो यू डोंट नीड टू बी सैड अबाउट इट वील ट्राई अगेन Because every day there is a new scorer. So, might be next time you're the best scorer. Chale bhai, dekhte hain call pe kaun hai. Assalamu alaikum.
2: Walaikum assalam.
0: Ji, kaun hai hamare saath?
2: Maryam.
0: Maryam, ye kaun si wali Maryam hai? Maryam with an I or Maryam with a Y?
2: Y.
0: Maryam with a Y. Maryam, Maryam, M-A-R-Y-A-M. Aur Maryam kitne saal ki hai?
2: मैं 11 की होंगी
0: जून में 11 की हो जाएंगी अरे माशाल्लाह माशाल्लाह जब किसी बर्थडे पास पास नजर आ रही होती है ना तो पता है मैं उसको कैसे विजुलाइज करती हूँ ऐसा लगता है जैसे जैसे मुझे मुझे ना लोगों के आसपास केक्स नजर आना शुरू हो जाते हैं कैंडीज नजर आना शुरू हो जाती हैं पार्टी पॉपर्स नजर आना शुरू हो जाते हैं तो आप कैसे विजुलाइज करती हैं जब कोई आपको कहता है ओह मेरी बर्थडे नेक्स्ट मंथ आने वाली है मरियम चुप हो गई मरियम
2: जी
0: आपकी बर्थडे नेक्स्ट मंथ आने वाली है ना
2: जी
0: तो अगर आपका कोई फ्रेंड बोले आपसे ओ मरियम मेरी बर्थडे नेक्स्ट मंथ है सो व्हाट कम्स इन योर माइंड
2: गिफ्ट्स
0: हाँ नाइस मेरे दिमाग में क्यों केक आता है मेरे दिमाग में केक आता है मरियम आई फॉरगॉट अबाउट द गिफ्ट्स ओ नो हम तो भूल ही गए मैं तो भूल ही गई कि केक खाना है तो गिफ्ट भी देना पड़ेगा चलें भाई हाँ ये भी एक बात है गिफ्ट्स या मे बी यू नो क्या होता है जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो फोकस गिफ्ट से हटकर खाने की तरफ हो जाता है तो व्हाट डू यू लाइक मोर गिफ्ट्स और केक
2: गिफ्ट
0: ओके ओके ओके चलें भाई ये भी एक अच्छी बात है जब दोस्तों से गिफ्ट मिलते हैं तो खुशी होती है अच्छा which is your most favorite gift which you have received ever in your on your birthday? Do you have a memory of any gift? सोच रही हैं.
2: iPad.
0: Oh, nice. ये आजकल के बच्चे डिजिटल बच्चों को डिजिटल गिफ्ट मिल रहे हैं. और मैं एक थी जो कलर पेंसिल के बॉक्स में भी खुश हो जाया करती थी. हाय, आई वाज सो इनोसेंट. अपनी तारीफ कर रही हूँ मैं. अच्छा ये बताएं कि भाई आज का दिन आपका कैसा गुजर रहा है?
2: जी अच्छा था.
0: अच्छा था तो नहीं, अभी चल रहा है स्कूल का. हाँ, स्कूल के बारे में बात की जाए तो अच्छा था. तो स्कूल में आज क्या क्या किया मरियम ने?
2: आज हमारी पीई थी.
0: अरे भाई, इतनी गर्मी पीई पीरियड अच्छा लगता है इतनी गर्मी में?
2: बस मजा आता है.
0: अच्छा, दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलता है ना पीई पीरियड में, तभी है ना?
2: जी
0: हाँ. तो फिर आज पीई पीरियड में क्या किया, गॉसिप या गेम्स?
2: हमने गेम्स खेली थी.
0: अरे भाई, कौन कौन सी गेम्स?
2: रनिंग.
0: ओके, अच्छा एक बात बताएं. हाँ जी हाँ जी. और फिर
2: हमने चैलेंज, हमारा एक्सरसाइज भी की थी.
0: हाँ अच्छा, आप लोग वो गेम खेलते हैं, मुझे पता है, मैं बोलूंगी तो कहेंगे डायनासोर एरा की जना बंदी बात कर रही है. खोखो खेलते हैं? खोखो
2: नहीं.
0: यू डोंट इवन नो व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ खोखो?
2: नो.
0: ओए होए. अच्छा, मारन पिट्टू खेलते हैं?
2: नहीं.
0: दीज आर एक्चुअल नेम्स ऑफ गेम्स व्हिच यू यूज्ड टू प्ले. So I was just interested कि are they still in the market or they're gone? मुझे ऐसा लगता है अभी भी खेलते होंगे, but they're with a different name. अब चले, मैं कुछ जो है ना देखूंगी, इसके ऊपर रिसर्च करूंगी कि अब ये गेम्स कौन कौन से नाम से आती हैं. लेकिन नहीं खेलती. मरियम की परेशानी मुझे मरियम की आवाज़ में सुनाई दे रही थी. अच्छा मरियम, ये तो बताएं, परेशानी है आज ना हम एक सुपर हीरो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. आई नीड एनी थ्री क्वालिटीज़ फ्रॉम यू विच इज सुपर. इफ़ यू बिल्ड अ सुपर हीरो इंडिविजुअली, वॉट वुड बी द थ्री क्वालिटीज़ दैट यू लुक अप टू के भाई ये क्वालिटी तो मैं अपने सुपर हीरो में डालूंगी.
2: लाइफ सेवर.
0: ओके, लाइफ सेवर. चले मैं कहूंगी हेल्पफुल, राइट?
2: या
0: ओके. लाइफ सेवर जब कोई बोलता है ना तो मुझे एलईडी बल्ब से याद आते हैं. अच्छा
2: इंटेलिजेंट.
0: ओके, इंटेलिजेंट
2: और स्मार्ट.
0: स्मार्ट इन द सेंस व्हाट? हैंडसम लुकिंग, या जो हम कहते हैं ना भाई एथलीट टाइप का कोई सुपर हीरो होगा, या कोई बहुत प्रीटी लिटिल सुपर हीरो होगी. लुक्स में स्मार्ट?
2: जी.
0: अच्छा, लुक्स में भी हमारे सुपर हीरो लुक्स भी मैटर करती हैं भाई. ऐसे कोजे से सुपर हीरो हमें पसंद नहीं है. चलें ठीक है. ओके, ये तीन चीज़ें हो गई. ठीक है, ओके ओके ओके. तो अब ये, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सुपर हीरो जो होंगे वो उनका नाम क्या होगा?
2: लेडीबग.
0: I watch Ladybug. Nice. I watch it. Ladybug की एक मूवी भी निकली थी, देखी आपने?
2: जी.
0: Miraculous Ladybug. My daughter is a very huge fan of Ladybug. जब वो छोटी थी ना तो वो क्या करती थी कि वो बॉल नहीं होता, टेनिस बॉल. She used to attach a string with it and we used to play with it as in the ladybug ka wo charm nahi hota uske saath aise khelte the. So ladybug is good. Yes, I like it. Chale bhai, good. Acha ladybug ka color bhi waisa hi hoga, black and red. Chale bhai, ye to copy ho gaya bhai, ye to original na hua bhai. चले कॉपी को भी कंसिडर कर लेंगे. चले अब आगे बढ़ते हैं, हम अपनी गेम की तरफ चलते हैं. बताएं नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलेंगी?
2: जी.
0: चलें मैं आपको ये बता दूं कि आज का हमारा हाईएस्ट स्कोर है 24 सेकंड्स. विद इन 24 सेकंड्स जो है हमारे साथ आज मोहम्मद अदीन ने जो है वो स्कोर किया है सबसे ज़्यादा. हमें इन्होंने शॉर्ट टाइम में बताया था. तो आपको दिए जाएंगे 45 सेकंड्स. यू हैव टू, आई गिव यू एन अल्फाबेट, विद इन 45 सेकंड्स यू हैव टू सॉल्व इट. ओके
2: ओके.
0: तो भाई आपका अल्फाबेट है एल. एल एज इन लीमा. ओके, एनी टाइम स्टार्ट्स नाउ.
2: नेम होगा लाइवा.
0: ओके,
2: इज लाहौर.
0: ओके.

0: एक टॉप स्कोर पर चलें कि आपने सबसे शॉर्ट टाइम में इसको कवर किया है, दैट मींस 20 सेकंड्स. नाइस नाइस मरियम, एज इंटेलिजेंट एज योर नेम. बहुत इजी था बेटा. आप कल आना, मैं करके देती हूँ फिर. कल आना आप बोल दिया ना इजी था, अब कल आना. ठीक है
1: ओके.
0: चलें जी, जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये सोच रही थी 11 साल की 11 साल की मरियम क्या ही कुछ मुझे बता देंगी, और ये तो 20 सेकंड में सारी गेम उल्टी पुल्टी करके चली गई. तो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. तो भाई मरियम अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. तो भाई बच्चा पार्टी आपने करना ये है कि आपने मुझे कॉल करना है 4434377 पर, और आज हम खेल रहे हैं क्या नेम प्लेस एनिमल थिंग. और उसके साथ साथ मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि आप जरा बताएं आपके सुपर हीरो में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. एनी थ्री क्वालिटीज, आई नीड एनी थ्री क्वालिटीज. वी आर बिल्डिंग अप अ सुपर हीरो एंड वॉट वुड बी द नेम ऑफ योर सुपर हीरो. और एक एंड में क्वालिटी मैं आपको बताऊंगी जो कि मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताई. बी माइंडफुल, बी माइंडफुल एक क्वालिटी ऐसी है जो आप लोग मिस आउट कर रहे हैं, और आज मेरी बात है ही उसी के ऊपर. अगर ये चीज़ सुपर हीरो में नहीं है ना, तो सुपर हीरो बन नहीं सकता. जो क्वालिटी मैं ढूंढ रही हूँ सुपर हीरो की, वो अभी तक मिली ही नहीं है. और अगर वो क्वालिटी नहीं मिलेगी तो सुपर हीरो बनेगा कैसे? चाहे वो लाइफ सेवर हो, चाहे वो लेडी बग हो, चाहे वो OIS सुपर हीरो हो, क्वालिटी ढूंढो ढूंढो. क्या है वो क्वालिटी जो सुपर हीरो में होनी चाहिए? एक मेजर क्वालिटी मिसिंग है हमारे सुपर हीरो में. आए मुझे कांटेक्ट करें 4434377 पर कॉल करके. देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. कौन है हमारे साथ?
2: आवाज पहचानूं?
0: यस. देखें ऐसा लग रहा है या रानिया हैं या शफक तो नहीं है. नहीं, थोड़ा सा सेंटेंस बोलें, थोड़ी सी बात करें.
2: आपने मुझे बोला था कि
0: शफक मेरी आवाज़ बहुत प्यारी है. yes. शफक थोड़ा सा शफक बात करती है ना, तो फिर मुझे पता चलता है हाँ ये शफक है. तो हाँ भाई शफक कैसी हैं?
2: ठीक हूँ.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से खुशो खुरम रखे. ये बताएं कि आज जमीन पे आना कैसे हुआ? कैसे? अच्छा शफक, आज स्कूल का दिन कैसा था?
2: अच्छा.
0: अच्छा था? नहीं, कुछ आवाज में मजा नहीं है आज शफक. आज कुछ गड़बड़ है.
2: टीचर ने आखिरी पीरियड में इतना सारा काम करवाया.
0: हाय अल्लाह, ये सारी एनर्जी टीचर क्यों ले जाती है? फिर हम कैसे बात करेंगे? अब मुझे टीचर से कुछ बात करनी पड़ेगी, मुझे जाना पड़ेगा टीचर्स मीटिंग में. मैं टीचर से बोल कर आऊंगी दिस इज नॉट फेयर. भाई सारी एनर्जी आप ले जाती हैं, फिर शफक की एनर्जी मेरे शो में होती ही नहीं, फिर मैं क्या करूं फिर भाई? है ना शफक?
2: yes.
0: बात करते हैं टीचर को, पकड़ते हैं टीचर को, अभी पकड़ते हैं. लास्ट पीरियड वाली टीचर होती है ना, उनसे तो अलग से जाकर बात करेंगे, है ना?
2: yes.
0: अच्छा ये तो बताएं कि आज जो है हम ढूंढ रहे हैं कुछ, तीन क्वालिटीज़ ढूंढ रहे हैं हम. सुपर हीरो की क्वालिटीज़ ढूंढ रही हूँ मैं, और मुझे बताएं कि आप अगर सुपर हीरो बनाती हैं अपना कोई, तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटी रखती हैं आप सुपर हीरो वाली? तीन कोई ऐसी चीज़ें.
2: मेरी सुपर हीरो जो है वो है सुपर वुमन.
0: अच्छा ठीक है. आप नहीं नहीं नहीं हमें क्वालिटी कोई तीन क्वालिटीज बतानी है.
2: वो फ्लाई करती है,
0: ओके,
2: लोगों की मदद करती है और दीवारों पे चढ़ती
0: है. हेल्पफुल. अच्छा भाई दीवारों पे तो चिपकली भी चढ़ती है. दीवारों पे तो चिपकली भी चढ़ती है, ये कैसे चिपकली टाइप सुपर हीरो बना दिया है? अच्छा अच्छा नहीं ठीक है. मैं अब क्या लिखूँ उसके अंदर? दीवारों में चिपकली चिपकली लिख दें, चिपकली क्वालिटी, चिपकली. ठीक है चलें. क्लाइम ऑन वॉल्स, ओके ठीक है. अच्छा ये बताएं कि सुपर हीरो का नाम क्या होगा? चिपकली.

0: तो फिर क्या होगा आपके सुपर हीरो का नाम?
1: सुपर वुमन.
0: सुपर वुमन. सुपर क्या? क्या सुपर? कहाँ गई सुपर बोलकर? सुपर चिप गली. क्या सुपर? नहीं मैं फिर रह गया. क्या
1: सुपर
0: वुमन? ओके ओके ओके ठीक है. ओके भाई नाम का भी सजेशन आ गया. तो शफक ने बोल दिया है शफक उड़ती भी छिपकली इन्वेंट करेंगी. शफक आपको छिपकली अच्छी लगती है?
1: नो.
0: अच्छा डर लगता है आपको छिपकली से?
1: बहुत ज्यादा
0: 80% लोगों को लगता होगा. मेरे ख्याल से 90% लोगों को लगता होगा. 90% लोगों को लगता होगा छिपकली से डर. आई एम द ऑड वन आउट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अच्छा चलें अब जो है हम गेम खेलते हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग. ओके
1: Okay.
0: देखिए आज का हमारा सबसे शॉर्टेस्ट जो टाइम किया है ना वो किया है मरियम ने. मरियम ने विद इन 20 seconds बताया हमें. तो आपने कोशिश करनी है कि 20 seconds से और ज्यादा लो जाना है. ठीक है
1: okay.
0: आपका वर्ड है क्या कर लें ओके आपका वर्ड है एफ. एफ फॉर फ्लाई. 1 2 3 गो. नेम ओके. प्लेस
1: फजीरा.
0: क्या चीज?
1: फजीरा.
0: ओके फजीरा.
1: एनिमल फ्लेमिंगो.
0: ओके प्ले थिंग थिंग थिंग थिंग थिंग थिंग थिंग थिंग थिंग थिंग जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी 10 9 8 ओके. क्या चीज?
1: फैन.
0: ओके गुड हो गया भाई. कितने टाइम में किया? 42 seconds. 42 seconds. वी नीड मोर प्रैक्टिस गर्ल. वी नीड मोर प्रैक्टिस. गुड गुड गुड गुड एफर्ट. शफक ने आज हमारे साथ ही पहली दफा गेम खेली है. सो गुड एफर्ट. नाइस. नॉट बैड शफक. नॉट बैड. एटलीस्ट यू फिनिश्ड इट. So very good, very good, very good. You did not give up. The score does not matter that much. लेकिन आपने ये एक अच्छी बात की that you did not give up and you did it till, played it till the end. 42 seconds में आपने इसे कवर किया है. इंशाल्लाह कल फिर से वापस से प्ले करेंगे and जैसे जैसे प्ले करते जाएंगे ना तो वैसे वैसे हमारा टाइम मैनेजमेंट होती जाएगी. सही. अच्छा भाई जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी?
1: Respect
0: your parents. Very good. And I like the way you said, and in animals you were mindful, you said flamingo. बहुत कम लोगों को याद रहता है flamingo. So it was good. It was a good thing. चलें जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें शफक. अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज.
0: तो भाई शफक तो जो हमें सुपर हीरो के नाम में छिपकली देकर गई हैं. चलें देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
0: जी कौन है हमारे साथ?
2: अब्दुल सलाम.
0: हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
2: वेरी गुड थैंक यू.
0: और ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अब्दुल सलाम ने पहले ही बात हो चुकी है अब्दुल सलाम से? अब्दुल सलाम 12 साल के 12 इयर्स ओल्ड.
2: यस.
0: हाँ ये वही वाले अब्दुल सलाम है जिन्होंने हमें थोड़ी देरों पहले कॉल की थी है ना?
2: यस.
0: इंग्लिश और उर्दू?
2: इंग्लिश.
0: अच्छा अब्दुल सलाम हाउ आर यू?
2: I'm good.
0: All good? Okay, alhamdulillah, alhamdulillah. Acha, tell me, Abdul Salam, how was your day at school today?
2: Very good.
0: Very good. Oh, now I'm interested. When somebody said very good, then I get interested. So what was very good at school today?
2: We did art and I finished my work before the deadline.
0: Mashallah. So there were two things wonderful. First of all, you had an art period. You did art. And secondly, you submitted your work before time. Yeah. Mashallah. Very good. Time management. Very good. Very good. And ye batayein ki art mein kya kya kiya? What did you do in art?
2: Art mein humne wo grids
0: thi
2: unse copy karke
0: hum
2: anime
0: banana tha. Wow. You actually made it?
2: Yes.
0: Nice. What did you make, Gugu?
2: Vegetable.

0: You can do it, you can do it. Think.
1: Kettle.
0: Kettles?
1: Yes.
0: What?
1: A kettle.
0: K for what?
1: Kettle.
0: Oh, kettle. Okay. तो भाई हमारा टाइम तो अप हो गया है लेकिन आपके लिए क्लैपिंग नॉट बैड तो भाई के से हमारी प्लेस मिसिंग हो गई है कैन यू थिंक ऑफ एनी प्लेस क्या चीज Place. अच्छा, which country do you belong to? Which country are you from?
1: Pakistan.
0: So there is a place in Pakistan. And it used to be the capital of Pakistan. Once upon a time.
1: Oh, Karachi.
0: Yes. Karachi hai, Kashmir hai. अच्छा, ये जो Naruto और ये वो चीजें देखते हो. There is a same name. Kyoto. Kuala Lumpur. So many. भूल गए. It's okay. It's just a game. And there is always a second chance. So what will happen is, we will try to score tomorrow as well. ठीक है. Okay. तो भाई, nice try. Good effort. And kangaroo. Do you, आपको शौक है kangaroo देखने का? Real life में?
1: Yes.
0: And you know where can you find kangaroos? Actually, कहाँ का origin है kangaroo? Which country?
1: Africa.
0: Australia.
1: And Africa.
0: Africa. Sure.
1: Yes.
0: चले भाई, देखते हैं अभी इसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे और kangaroo की जो tail होती है, इसका आपको पता है क्या काम होता है?
1: No.
0: Kangaroo की जो tail होती है वो actually में उसको balance देती है. If there is no this thing, there is no tail of kangaroo. अगर kangaroo की tail ना हो ना, तो kangaroo imbalance हो जाता है. It balances itself according to its tail. उसके alignment tail से होती है. And yes, I was very very very very very right. कैंगरू का जो ओरिजिन है ना, जो असल घर है, इट इज ऑस्ट्रेलिया. यस, इट्स नॉट अफ्रीका, इट इज ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें. जाने से पहले कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे?
1: नेवर गिव अप.
0: वेरी गुड. एंड कीप ऑन लर्निंग एंड नेवर गिव अप. अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज.
0: तो भाई हमारे अब्दुल सलाम अच्छे से दोस्त, और हमें एक और कोई कॉल आ रही है, जल्दी कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. कौन है हमारे साथ?
2: उस्मान.
0: उस्मान है. उस्मान, कैसे हैं आप?
2: अच्छा हूँ.
0: अच्छा, ये कौन से वाले उस्मान है? इर्तगुल वाले? उस्मान कितने साल के हैं?
2: 13
0: years के. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा, ये बताएं, U for उस्मान और O for उस्मान?
2: U.
0: ओके. मैंने भी U से ही लिखा था. अच्छा उस्मान, ये बताएं कि भाई आज का दिन कैसा गुजरा है आपका?
2: मेरा दिन बहुत अच्छा है, गुजरा है.
0: माशाल्लाह, वेरी गुड. मैं अल्लाह ताला ब्लेस यू विद इवन मोर बेटर डेज. ये बताएं कि आज का दिन इतना अच्छा अच्छा कैसे गुजरा? क्या क्या किया? व्हाट वाज द फन थिंग अबाउट इट?
2: आज हम लोग की हो रहा था.
0: तो पी में क्या क्या किया?
2: बास्केटबॉल खेले.
0: नाइस. सो यू डिड यू स्कोर?
2: यस.
0: हाउ मेनी बास्केट्स?
2: वन.
0: देखो, वन भी बड़ी अच्छी बात होती है. अच्छा, एक टाइम मेरा ऐसा था जब बास्केटबॉल में आई वाज सो बैड कि मुझसे एक भी स्कोर नहीं होता था. So I learned it. So I admire it. And mashallah, good. Clapping for you. A

0: good player always.
1: I showed you the exam papers.
0: They showed you the exam papers as well?
1: Exam.
0: Achha, exam tha. Okay. So how was the exam?
1: Easy.
0: To kaun sa exam tha beta? Jo itna easy tha. देखिए फुल फॉर्म बोला करें आप आई एस बोलकर खत्म कर देते हैं मामला.
1: साइंस का एग्जाम.
0: ओके साइंस. अच्छा मुझे आई एस सुनाई दिया. ओके साइंस का था एंड यू आर सेइंग इट्स इजी पीजी. अक्सर औकात बच्चों यू लाइक साइंस. आई बिलीव यू लाइक साइंस दैट्स व्हाई. सही.
1: अच्छा लगता है.
0: अच्छा लगता है. या इट्स अ गुड. जब आपके टीचर्स अच्छे होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली द सब्जेक्ट बिकम्स इंटरेस्टिंग. अच्छा ये बताएं आई होप इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स आल्सो गो वेरी गुड. तो ये बताएं कि भाई आज जो है ना मैंने घड़ी देखी है मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है तो मुझे आज जल्दी से बता दें कि इफ आई आस्क यू गिव मी थ्री क्वालिटीज विच यू वुड हैव इन योर सुपर हीरो. इफ यू बिल्ड अप अ सुपर हीरो तो आप उसके तीन ऐसी कोई क्वालिटीज बताएं जो आप रखेंगे.
1: Flying. Shatter.
0: क्या चीज?
1: Shatter.
0: मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है क्या वर्ड बोल रहे हैं. क्या चीज
1: कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं.
0: टेलीपोर्टेशन. ओके नहीं भाई तीन चीजें थी ना. थ्री थिंग्स. ब्रेवरी. वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके एंड वॉट वुड बी द नेम ऑफ योर सुपर हीरो.
1: उस्मान.
0: आई लाइक द कॉन्फिडेंस. वेरी नाइस. वेरी वेरी नाइस. आई लाइक इट. नाइस. अच्छा भाई दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव. आई रियली लाइक इट. समटाइम्स पता है क्या होता है वी ट्राई टू प्रोजेक्ट अवर सेल्फ इन टू समवन एल्स बट आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस. दिस इज़ वेरी यूनिक थिंग दैट यू चोज योर ओन नेम टू बी इन इट. दिस इज़ वेरी गुड. दिस इज़ अ वेरी हाई फाई क्वालिटी. वेरी वेरी वेरी गुड. अच्छा भाई उस्मान ये बताएं हमारे साथ गेम खेलेंगे.
1: जी.
0: नेम प्लेस एनिमल थिंग. ओके
1: ओके.
0: तो भाई आपको दिए जाएंगे 45 सेकंड्स इन टोटल. हाँ मैं आपको बता दूँ जो सबसे लेस मरियम ने स्कोर किया विद इन 20 सेकंड्स शी डिड द गेम. शी प्लेड इट. सो वैसे तो मैक्सिमम आपको 45 सेकंड्स हैं आपके पास लेकिन ट्राई टू स्कोर मोर मतलब ज़्यादा 20 सेकंड्स के अंदर अंदर गेम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना और लेस देन 20 सेकंड्स. ओके सो आपको क्या वर्ड दिया जाए ओके उस्मान यू से योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
1: उस्मान उज़्बेकिस्तान.
0: ओके एनिमल.
1: प्लीज
0: एनिमल थिंग बता दें. थिंग बता दें जो आ रहा है.
1: अम्ब्रेला.
0: ओके ओके अब रह गया प्लेस. यू से प्लेस बहुत सारी हैं.
1: उज़्बेकिस्तान.
0: ओके प्लेस तो हो गई. सॉरी एनिमल. सोचें. ओ टाइम खत्म हो गया हमारा बट नाइस ट्राई. हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ अम्ब्रेला बर्ड.
1: नो.
0: डू सर्च इट. इट्स अ वेरी फनी बर्ड.
1: ओके
0: अम्ब्रेला. इट्स नोन एज अ umbrella bird and it's known to have a very weird kind of face and it's a very weird kind of bird. It's known as umbrella bird for a reason. So bhai remember this. U for umbrella bird. Theek hai. But nice effort. Very nice effort. Teen cheezon to humne kar li thi. Ek aakhri cheez reh gayi thi. Kal phir se koshish karenge play karne ki. Theek hai.
1: Okay.
0: Jaane se pehle koi achha sa message dena chahenge Usman?
1: नेवर गिव अप.

0: वेरी गुड भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखें. मैं अल्लाह ताला ब्लेस यू विद एवरीथिंग गुड. अल्लाह हाफिज.
1: ओके अल्लाह हाफिज.
0: साथियों आप लोग की कॉल्स जा रही हैं. 4434377 इज़ द नंबर टू कॉल. आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं. एक कॉल लेती हूं मैं और मेरे ख्याल से ये आखिरी कॉल होगी, क्योंकि मैंने ये भी तो बताना है कि जो मैंने सुपर हीरो की क्वालिटी रखी हुई थी जिसके बगैर नथिंग एल्स कम्स टू, मतलब वो कहते हैं ना एक ग्लू की तरह, बाइंडर की तरह एक्ट करती है ये चीज़. अगर ये चीज़ मिसिंग होगी तो सुपर हीरो इनकम्प्लीट हो जाता है. तो भाई देखते हैं कि हमारे साथ कॉल पर कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
2: अस्सलामुअलैकुम आंटी.
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. मैडम कैसी हैं आप? हेलो हेलो हेलो, कोई है क्या? चला गया, म्यूट दब गया, क्या हो गया? चलें जी एक और कॉलर लेते हैं, देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम
0: जी. कौन है हमारे साथ?
3: यूसुफ.
0: हाउ आर यू?
3: गुड.
0: हाँ जी यूसुफ, कितने साल के हैं?
3: मैं 11.
0: 11 ईयर्स के. माशाल्लाह बिग बॉय. अच्छा भाई यूसुफ साहब, ये बताएं आपका आज का दिन कैसा गुजरा है?
3: अच्छा,
0: मतलब क्या क्या अच्छा अच्छा किया, जल्दी से भाई लिस्ट बता दे हमें.
3: आज हम मेरा एग्जाम था तो वो इंग्लिश का था तो बहुत इजी था.
0: हाँ इंग्लिश इज अच्छी. इंग्लिश इजी होती है ना लैंग्वेज में, अगर कोई एक इजी सब्जेक्ट है ना तो वो इंग्लिश है. अच्छा अब मैं टाइम देख रही हूँ, बस टाइम बहुत शॉर्ट रह गया. मुझे जल्दी से कोई तीन क्वालिटीज बता दें जो किसी आप अपना सुपर हीरो बनाएंगे तो उसके अंदर होनी चाहिए.
3: इनविजिबल.
0: ओके इनविजिबल.
3: फ्लाइंग.
0: ओके फ्लाइंग.
3: स्ट्रॉन्ग.
0: स्ट्रॉन्ग. ओके जी ठीक है. और आपके सुपर हीरो का नाम क्या होगा? सोचें सोचें.
3: वाई मैन.
0: वाई मैन? वाई लाइक दिस? वाई? ओके वाई से यूसुफ. ओके आई वाज सेइंग दैट वाई वाई, बट इन्होंने कहा अच्छा. ओके ओके सही है सही सही सही. वाई मैन. चलें जी. अच्छा भाई जल्दी से गेम खेल लेते हैं ठीक है. तो यूसुफ आपको क्या क्या किया जाए? अगर आपके अल्फाबेट से, आपके ही अल्फाबेट से अगर आपके साथ खेला जाए तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें, होंगी
3: जी.
0: चलें कुछ और दे देते हैं. ओ से चलें. आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ. यू हैव टू गिव मी नेम प्लेस एनिमल थिंग फ्रॉम ओ.
3: ओके
0: चलें. नेम?
3: ओसामा.
0: ओके प्लेस?
3: ओमान.
0: ओके एनिमल?
3: ऑक्टोपस.
0: ओके थिंग?
3: क्या अभी थिंग ना? ऑरेंज.
0: ओ भाई बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया है विद इन 19 सेकंड्स में गेम खेला है बच्चे ने. माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड. आई लाइक इट. आज के टॉप स्कोरर आप बन गए हैं भाई. टॉप स्कोरर कैसा फील हो रहा है आपको? वैसे अच्छा. कल से लेकर अभी तक आप टॉप स्कोरर हैं 19 सेकंड्स. तो भाई वेरी गुड वेरी गुड. जल्दी से हमें जाने से पहले कोई मैसेज दे दें.
3: बी स्ट्रांग.
0: चलें जी स्टे स्ट्रांग बी स्ट्रांग और अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.
3: अल्लाह हाफिज.
0: तो भाई बच्चा पार्टी देखो अब जाने का टाइम आ गया. घड़ी देख रही हूँ, जाते जाते अभी भी कॉल्स चल रही हैं. माजरत जिसकी कॉल नहीं रिसीव कर पाई, इंशाल्लाह आप कल फिर से ट्राई करेंगे. अच्छा भाई देखें मैं जो सुपर हीरो की क्वालिटी, अब रैंडमली नेम तो हम सब मिलकर रख सकते हैं किसी भी सुपर हीरो का. दिखने में सुपर हीरो कैसा भी हो सकता है, क्वालिटीज़ अगर उसके अंदर सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ देखी जाएँ तो वो कुछ भी हो सकती हैं. फ्लाइंग हो सकती है, स्टिकिंग हो सकती है, क्लाइंबिंग हो सकती है, जैसा कि आप लोगों ने बोला. हेल्पफुल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए. इन चीज़ों के बगैर सुपर हीरो बनते ही नहीं हैं. लेकिन एक चीज़ याद रखें, एक बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बिहेवियर. अगर किसी का बिहेवियर अच्छा ना होना, जिसे हम कहते हैं इखलाक, अगर किसी का इखलाक अच्छा ना होना, अगर किसी का बिहेवियर अच्छा ना हो, तो चाहे उसके अंदर आप कितनी भी सुपर क्वालिटीज़ दे दें उसे, चाहे आप उसके पास इनविजिबल क्वालिटी दे दें उसको, इनविजिबल होने की, फ्लाइंग की पावर दे दें, चाहे आप उसे क्लाइंबिंग की पावर दे दें, चाहे आप उसे कुछ भी दे दें, लेकिन अगर वो इंसान दूसरों के साथ और अपने साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखता तो तो ये सारी की सारी क्वालिटीज जीरो पर आ जाती हैं। आपने ये बात सुनी होगी कि हम कहते हैं कि अगर कोई अच्छी थिंकिंग नहीं रखता, अच्छा बिहेवियर नहीं रखता, तो चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो, दिखने में अच्छा हो, पहनने में अच्छा हो, आपके सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, द प्रॉब्लम इज इफ दे डू नॉट हैव प्रॉपर बिहेवियर। अगर वो किसी से तमीज से बात नहीं कर सकते, अगर वो पोलाइट नहीं हो सकते, अगर वो जेंटल नहीं हो सकते, ये सब कुछ गुड बिहेवियर्स में आता है। अगर किसी के पास ये पॉजिटिव बिहेवियर नहीं होता तो एवरीथिंग गोज इन वेन, कुछ भी फिर मैटर नहीं करता। तो हमेशा याद रखें बच्चा पार्टी, आज जो है मैंने आपको ये बात बताने की कोशिश की है कि बिहेवियर मैटर्स अलॉट। अच्छे से अच्छा सुपर हीरो बिल्डअप कर लो भाई, लेकिन अगर उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज नहीं होंगी ना, प्यार से बात करना, गुस्सा कंट्रोल करना, शेयरिंग करना, सच बोलना, किसी को तंग ना करना, बड़ों की इज्जत करना, ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी ना, थॉटफुलनेस नहीं होगी इन चीज़ों के बारे में, गुड क्वालिटी गुड बिहेवियर नहीं होगा, तो इट कम्स टू ज़ीरो। तो भाई सुपर हीरो हमारा नाम तो हम लोग मिलकर डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एक मेजर चीज़ है जो हर सुपर हीरो में होनी चाहिए, तो वो भाई आज हमने ढूंढने की कोशिश की। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने इंटरेस्टिंगली मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सबने बताई, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, नाइस बिहेवियर होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। सो आई थिंक यू गाइज विल मेक अ गुड सुपर हीरो, और अगर आपके अंदर भी अच्छा बिहेवियर है तो यू आर ऑलरेडी अ सुपर हीरो। साथियों ये याद रखें कि बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा ख्याल अपना रखें, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो किसी का भी ख्याल नहीं रखता, एंड दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ सुपर हीरो। और अगर आपके अंदर ये सुपर हीरो वाली क्वालिटीज़ हैं तो यू आर ऑलरेडी अ सुपर हीरो। सुनते रहें FM 107 और सफ़ा को आज के शो से दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मैं चलूँ भाई, मैं चलूँ, बाय बाय।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے، یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے، یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: ہلو بچوں، تیار ہو جائیے ایک سپر فن آر کے لیے. ہر منڈے 3 بجے سے لے کر آتے ہیں سانگز، کہانیاں اور سرپرائزز جو آپ کو ہنسائیں گے اور سکھائیں گے. اپنے فیورٹ کریکٹر سے ملیے اور میجیکل ایڈونچرز ڈسکور کیجیے. سب کچھ ایک ہی شو میں، تو اسنیکس لے آئیے، دوستوں کو بلا لیجیے اور ٹیون ان کریے ہر منڈے 3 بجے سے. ود آر جے فضیل، اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. FM 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا. یہ شو کڈز سٹوری، بچوں کی کہانی، جہاں ہر ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، یعنی کہ فضیل. اور ٹاپک کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ کیسے دنیا میں رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو کہانی سے متعارف کرایا جائے، بچوں کو کہانی سے روبرو کرایا جائے، کیونکہ بچے کہانیوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے جو بیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ بچے بانڈنگ بہت اچھا بناتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی کے بارے میں. اور آج کی کہانی ہے علی نام کے لڑکے کی. اور یہ علی کیسے ایک چھوٹی سی چیز کو بڑا نظر انداز کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ سیکھنے لگا. اور کیا کچھ سیکھا FM 107 پہ، آج آپ اس کہانی میں سنیں گے اور جانیں گے. ویل، یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. جب میں یہ کہانی پڑھ رہا تھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ کیسے یہ ہم بڑوں کی زندگی میں بھی بہت زیادہ شامل ہے. تو بچپن میں ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات کو لے کر پھنسے ہیں، چاہے وہ ہمارے دوستوں کے ٹوائز کو لے کر بات ہو، چاہے وہ کھیلنے کو لے کر بات ہو، چاہے وہ کسی سے ایگو میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن جیتنے کے لیے ایک بات ہو. تو آج کی کہانی کچھ ایسی ہے. السلام علیکم ایک بار پھر سے استقبال، اور چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی. اور یہ ہے کہانی علی کی.
4: ہلو بچوں، تیار ہو جائیے ایک سپر فن آر کے لیے.
5: ایک ایسا شہر جو کہ بہت سکون سے بھرا ہوا تھا، ایک گاؤں جہاں دھوپ اور ہنسی خوشی تھی، وہاں ایک خوش مزاج 8 سال کا لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا. علی پورے نیبرہڈ میں سب سے فرینڈلی بچہ تھا. اسے لوگوں کو دیکھ کر اسمائل کرنا، ہاتھ ہلانا اور انجان لوگوں سے باتیں شروع کرنا بہت زیادہ پسند تھا. وہ سب سے بڑے ہنس کر بات کرتا، ان کو عزت دیتا. علی کے لیے ہر نیا چہرہ ایک نیا دوست بننے جیسا تھا. اس کے پیرنٹس اس کی اچھے نیچر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، پر ان کے دل میں تھوڑی سی ٹینشن بھی رہتی تھی. ہر شام کو اسے سمجھاتے اس کے پیرنٹس کہ علی، بھلائی کرنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو کبھی بھی کسی بھی سٹرینجر پر جلدی بھروسہ مت کرو. بڑی ضروری بات کہ بھروسہ کرو، لیکن جلدی بھروسہ مت کرو. علی صرف ہاں میں سر ہلاتا، پر دل سے وہ ان کی چنتا کو سمجھ نہیں پاتا تھا. وہ سوچتا، اگر کوئی مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے تو وہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اس بھولے پن نے اسے خوش تو رکھا، پر اسے خطرے سے انجان بھی بنا دیا. ایک چمکدار دوپہر، یعنی کہ آفٹرنون کا وقت، جیسے قطر میں ہوتی ہے، تیز دھوپ، روشنی جو آنکھوں کو لگتی سی ہے لیکن بڑی بہترین لگتی ہے. جب گلیوں میں سنہری دھوپ تھی تو علی ایک ایسا لیسن سیکھنے والا تھا جو اس کی دنیا دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا. اس دوپہر علی کی ممی نے उसे पार्क ले जाने का फैसला किया। वो उसकी फेवरेट जगह थी, जहां स्विंग्स, स्लाइड्स और बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। जब वो पार्क पहुंचे, उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वहीं रहना जहां से मैं तुम्हें देख सकूं, और वो बात याद रखना जो मैंने तुम्हें बताई। अली ने जल्दी से हाँ कहा, क्योंकि वो खेलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वैसे हम सब अपनी कोई फेवरेट चीज दिख जाए तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। इवन यू नो, हम अगर अपने मुल्क के बारे में सोच लें जाने के लिए तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। वैसे ही बच्चों की एक्साइटमेंट होती है जब वो अपने किसी फेवरेट चीज को देख लें, अपने स्विंग्स को यानी कि झूले को देखें, पार्क को देखें, ग्रीनरी को देखें, अपने दोस्तों को देखें, तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसे ही अली उस दिन एक्साइटेड हो गया। पार्क में रोज से ज्यादा भीड़ थी, कलरफुल बलून्स हवा में उड़ रहे थे और वेंडर्स स्नैक्स बेच रहे थे। मानो यह कतर का एक माहौल ही है। अली स्विंग्स की तरफ भागा और रास्ते में बच्चों को ग्रीट करता हुआ गया। वो अपनी मस्ती की दुनिया में खोया हुआ था। उसकी मम्मी पास के ही एक बेंच पर बैठकर उसे ध्यान से देख रही थी, उसे नोटिस कर रही थी। उन्हें अली पर भरोसा था, पर वो ये भी समझती थी, ये भी जानती थी कि बच्चे खेलते वक्त इम्पॉर्टेंट रूल्स को भूल जाते हैं। इसी बीच अली ने अपने आसपास बहुत सारे नए चेहरे देखे, क्योंकि अली एक्साइटेड था, लेकिन डरने की जगह वो क्यूरियस फील कर रहा था। क्योंकि अली की तो आदत है कि हर शख्स से बात करना, उसको स्माइल देना, उनसे यू नो खेलना, उनके साथ खेलना, बैठना, बातें करना उसको बहुत ज्यादा पसंद था। वो खुशी से सोचने लगा, मिलने के लिए कितने सारे नए लोग हैं यहाँ। ये बात बिना सोचे कि वहां पर हर कोई अच्छे इरादे से नहीं आया था। अली को इस बात का इल्म नहीं था। जब अली खेल रहा था, उसने प्लेग्राउंड के पास एक बेंच पर एक आदमी को अकेला बैठा देखा। वो आदमी शांत था और फ्रेंडली भी लग रहा था और बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी उठा और धीरे धीरे अली की तरफ आया। अली ने कुछ ज्यादा नहीं सोचा, पार्क में लोग घूमते ही रहते हैं और वो स्ट्रेंजर्स को पोलाइटली हेलो बोलने का आदी था। आदमी ने वार्म स्माइल दी और कहा, हेलो बेटे, तुम बहुत एनर्जेटिक हो और खुश लग रहे हो। अली ने वापस स्माइल किया और अली को अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगा। तुम्हारा नाम क्या है, आदमी ने पूछा। अली, उसने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है, आदमी ने कहा। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट और काइंड थी, जिससे वो भरोसेमंद लग रहा था। अली उससे बात करने में कंफर्टेबल फील तो कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी और से करता। पर अली को ये नहीं पता था कि अनसेफ सिचुएशंस अक्सर ऐसे ही शुरू होती हैं, धीरे से, प्यार से और शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं। आदमी ने बातों को जारी रखा और अली से उसकी एज, स्कूल और फेवरेट गेम्स के बारे में भी सवाल पूछे। अली ने खुशी खुशी सबका जवाब दिया बगैर किसी बात के शक के। ना ही यू नो उसने पीछे हटने की कोशिश करी, ना ही अली ने उससे सवाल किया, यानी कि उस आदमी से सवाल किया। उसे अटेंशन मिलना अच्छा लग रहा था, अली खुश था। उसने ध्यान नहीं दिया कि वो आदमी बहुत सारी पर्सनल बातें पूछ रहा था, जो कि पहला रेड फ्लैग है। अली के लिए तो ये एक बस फ्रेंडली चैट थी। आदमी ने सर हिलाया और कहा, तुम बहुत स्मार्ट बच्चे हो, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। अली को प्राउड फील हुआ। और कई बच्चों को बड़ों से तारीफ सुनना पसंद होती है। हमें और आपको बचपन में कोई भी अगर तारीफ कर दे तो कितना अच्छा लगता है। वैसे ही अली को भी उतना ही पसंद था। इधर उसकी मम्मी बैठी थी बेंच पे, जो दूर से देख रही थी। उसकी मम्मी ने दूर से देखा कि वो किसी से बात कर रहा है। उन्हें लगा शायद कोई दूसरा पेरेंट होगा या पड़ोस का कोई बंदा, इसलिए उन्होंने तुरंत इंटरफेयर तो नहीं किया। तभी वो आदमी थोड़ा पास झुका और धीमी आवाज में बोला, जैसे कोई सीक्रेट शेयर कर रहा हो। और उसने अली से कहा, मेरे बैग में एक स्पेशल चीज है। अली की क्यूरियोसिटी फौरन बढ़ गई। उसे सरप्राइजेस भी बहुत ज्यादा पसंद थे, पर ये मोमेंट थोड़ा अलग था। यही वो पल था जहां एक नॉर्मल बात खतरनाक होने वाली थी। हालांकि अली को अभी भी कुछ खास नहीं पता था। आदमी ने अपना बैग थोड़ा सा खोला और अंदर से कलरफुल कैंडी रैपर्स दिखाए। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें एक चाहिए? अली की आंखें चमक उठी। उसे चॉकलेट्स सबसे ज्यादा पसंद थी। एक पल के लिए वो एक्साइटेड भी हुआ, पर तभी उसे अपनी अम्मी की आवाज याद आई, अपने मम्मी की वो बात जो कुछ देर पहले अली से कही गई थी, अनजान लोगों से कभी भी कुछ मत लेना। अली थोड़ा हिचकिचाया। आदमी ने उसकी हिचकिचाहट देखकर तुरंत कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं ये अच्छे बच्चों को ही देता हूं। तुम बहुत अच्छे बच्चे लगते हो, ऐसा उस स्ट्रेंजर ने कहा। अली जगह थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो रूड नहीं बनना चाहता था, पर उसे रूल भी याद था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मैं क्या करूं, क्या मुझे ये लेना चाहिए? क्या मैं कैंडी ले सकता हूं? लेकिन अम्मी ने भी मना किया था। ये सारी बातें उसके जहन में चल रही थी, उसके दिल में चल रही थी। कैंडी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही थी और आदमी बहुत ही ज्यादा भोला, पर अली के अंदर से एक छोटी सी वार्निंग मिल रही थी जो उसका ध्यान खींचना चाह रही थी। अली ने एक पल के लिए नीचे देखा और ध्यान से सोचा। यहीं पर आदमी ने कैंडी और पास लाते हुए कहा, ले लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सुनकर अली और भी अनश्योर हो गया। कोई कुछ नहीं बोलेगा? उसने इस बात को अपने दिमाग में दोहराई। आदमी ने ऐसा क्यों कहा? अचानक अली को अपनी टीचर की याद आई। अगर कोई तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात छुपाने को कहे तो वो सेफ नहीं है। अली धीरे से पीछे हटा और कहा, नहीं थैंक यू, उसने धीमी आवाज में कहा। आदमी की स्माइल थोड़ी सी कम हुई, पर उसने फिर से स्माइल लाते हुए कहा, अरे शर्माओ मत, मैं तुम्हारा दोस्त ही हूं। पर अब अली पहले की तरह कंफर्टेबल नहीं था। वो वार्निंग वाली फीलिंग अब थोड़ी ज्यादा बढ़ रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद हर मुस्कुराने वाला इंसान सेफ नहीं होता। और यहां आदमी ने अब दूसरा तरीका आजमाना शुरू किया, जो कि और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग था अली के लिए। आदमी ने कहा कि ठीक है, कैंडी मत लो, पर मेरे पास एक छोटा सा पपी है, क्या तुम्हें पपीज पसंद है? अली को एनिमल्स भी बहुत ज्यादा पसंद थे। उसका चेहरा खिला पर तुरंत सीरियस भी हो गया और पूछा कि वो कहाँ है? उसने कहा कि पार्क के थोड़ा सा बाहर, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। अब हालात यानी कि सिचुएशन बदल चुके थे। अली का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे साफ याद था स्ट्रेंजर के साथ कहीं नहीं जाना है। आदमी ने हाथ आगे बढ़ाया जैसे कि अली को बुलाना चाह रहा हो, पर अली अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। वो एक कदम और पीछे हटा। मैं नहीं जा सकता, ऐसा अली ने कहा। आदमी का चेहरा बिल्कुल से बदल गया। वो अब पहले जितना फ्रेंडली नहीं लग रहा था। बस एक मिनट लगेगा, उसने जिद की, पर अली ने सर हिला दिया। अब उसकी अनइजीनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो समझ गया था कि ये बिल्कुल सेफ नहीं है। अली यहां पर स्मार्ट हो गया था। बिना कुछ बात किए और बिना कुछ बोले उस आदमी से अली बिल्कुल पलटा और जितनी तेज हो सकता था अपनी मम्मी की तरफ भागा। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो अपनी मम्मी के पास पहुंचा, उसने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। मम्मी, उसने ये बात हांफते हुए कहा, एक आदमी मुझे कैंडी दे रहा था और अपने साथ चलने को कह रहा था। उसकी मम्मी तुरंत खड़ी हो गई। उनका चेहरा सीरियस पर काम था। उन्होंने अली को गले लगाया और कहा, तुमने मेरे पास आकर सबसे सही काम किया बेटा। उन्होंने आसपास देखा पर वो आदमी भीड़ में कहीं गायब हो चुका था। अली को डर और राहत दोनों ही फील हो रही थी, क्योंकि अब वो अपने मम्मी के पास था, वो अब सेफ था। पर उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। मम्मी ने उसके कंधे पकड़े और कहा, इसलिए हम स्ट्रेंजर से सावधान रहने की बात करते हैं। अली ने सर हिलाया। अब वो सही में सब समझ गया था। अली और उसकी मम्मी ने साथ बैठकर बातें की और उन्होंने पेशेंस से समझाया कि स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं और क्यों कुछ लोग अच्छा बनने का नाटक करते हैं। उस शाम उसके पापा ने भी उससे बात की, उसकी बहादुरी की तारीफ की और समझाया कि जब कुछ गलत लगे तो नो कहना हमेशा सही होता है। उस दिन के बाद से अली सबसे तमीज से मिलता पर अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। तो दोस्तों ये थी कहानी अली की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिलहाल और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अली की इस कहानी में हम आगे बात करेंगे कि इस कहानी से हमें मोरल या क्या लेसन मिलता है। हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन अक्सर आती है जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रेंजर्स की बात माने या फिर अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें। क्या पेरेंट्स ने जो सिखाया वो सही है या स्ट्रेंजर जो अभी मुझे कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई सरप्राइज देना चाहता है, अगर उसे एक्सेप्ट कर लूं वो सही है। इस कश्मकश में हम बहुत कुछ सीखते हैं। उसके अलावा आसान एक्सप्लेनेशन में समझेंगे कि कैसे इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें वैल्यू मिलती है और फिर हम बात करेंगे लेसन को अपनी डेली लाइफ से कैसे जोड़ सकते हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमारे जिंदगी में हर रोज रेगुलर बेसिस पे होती है। इन बातों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और फिर हम कुछ की मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब वापस आएंगे तो इस कहानी में हम सीखेंगे कि बच्चे इस स्टोरी से क्या कुछ सीख सकते हैं। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
4: हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए। हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स, कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे। अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए, सब कुछ एक ही शो में। तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से,
3: हर मंडे 3 बजे से
4: विद आरजे फजील, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
5: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये खास शो किड स्टोरी आप सुन रहे हैं फजील के साथ, जहां पर आज हमने एक बड़े प्यारे से बच्चे यानी कि अली के बारे में बात की। अली बड़ा ही शानदार 8 साल का ये लड़का जो कि अपने नेबरहुड में बहुत ज्यादा फेमस था। उसे लोगों को देखकर स्माइल करना, हाथ हिलाना, अनजान लोगों से बातें करना बहुत ज्यादा पसंद था। जब उसे कोई सरप्राइज देता उसे बहुत खुशी होती। उसके पेरेंट्स बड़े अच्छे नेचर के थे लेकिन हमेशा उसको एक बात बताते कि हमेशा लोगों से अच्छे से बात करो लेकिन कभी भी स्ट्रेंजर के साथ कहीं जाना नहीं और ना ही कभी किसी स्ट्रेंजर से कोई खाने की चीज लेना। अली को ये बात समझाई गई उनके पेरेंट्स की तरफ से कि भलाई करना अच्छी बात है पर याद रखो किसी भी स्ट्रेंजर पर जल्दी भरोसा मत करो। ऐसे ही एक दिन जब अली किसी पार्क में खेल रहा था तो वहां पर एक स्ट्रेंजर उससे मिलता है। स्ट्रेंजर उसकी तारीफ करता है, उसे बैग खोलकर कैंडी दिखाता है लेकिन कैंडी को लेने के लिए वो शख्स अली की तरफ जिद करने लगता है कि तुम ये कैंडी ले लो। जब अली उस कैंडी को लेने के लिए मना करता है तो वो स्ट्रेंजर पपी का लालच अली को देता है। अली लेकिन उस जगह और ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है और अली को मम्मी की कही हुई बात याद आती है कि किसी भी स्ट्रेंजर से थोड़ा सा दूर रहना जरूरी है और उन स्ट्रेंजर्स पर भरोसा आंख बंद करके कभी मत करो। ऐसे में जब उस प्लेग्राउंड में वो अली यानी कि वो बच्चा था उसके सामने इस तरह की सिचुएशन आई तो वो वापस दौड़कर अपने मम्मी के पास गया क्योंकि उसे अपने टीचर की कही हुई बात, अपने मम्मी की कही हुई बात स्ट्रेंजर्स के खिलाफ उसे याद थी। और जब वो वापस आया तो उसे फील हुआ कि वो अब सेफ है, अपने मम्मी के हाथ में वो सेफ है और मम्मी ने उसे और भी जरूरी बात बताई कि कैसे अली को किसी भी तरह से ऐसे स्ट्रेंजर पर भरोसा करने की नीड या जरूरत नहीं है जिसे वो नहीं जानता है, जो कोई उसे लोभ यानी कि लालच देता है किसी सामान का। तो दोस्तों अब जरूरी है कि हम इस कहानी से वैल्यू सीखें, इस कहानी से सीखें कि कैसे बच्चों को उनके रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहानी उनकी मदद कर सकती है। लेकिन सबसे पहले कहानी का मॉरल सीख लेते हैं। ये दोस्तों, इस स्टोरी का यानी कि इस कहानी का मेन लेसन ये है कि बच्चों को स्ट्रेंजर से डील करते वक्त हमेशा सावधान यानी कि अलर्ट रहना चाहिए, चाहे वो कितने ही भले या फ्रेंडली क्यों ना लगे। ये कहानी दिखाती है कि हर वो इंसान जो मुस्कुराता है या प्यार से बात करता है, उसकी नीयत यानी कि इंटेंशन अच्छी नहीं होती। कभी कभी लोग बच्चों को गिफ्ट, कैंडी या कोई एक्साइटिंग चीज जैसे कि पेट को दिखाकर फंसाने की कोशिश करते हैं। मोरल ये सिखाता है कि क्यूरियोसिटी से ज्यादा जरूरी सेफ्टी है। अगर बच्चों को अनकंफर्टेबल लगे तो नो कहना और वहां से चले जाना बिल्कुल ठीक है। लेसन का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा वो ये कि पेरेंट्स और टीचर की बात हमें जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि वो रूल्स बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं, उनकी आजादी रोकने के लिए नहीं। स्टोरी ये भी दिखाती है कि अपनी इंस्टिंक्ट्स यानी कि अंदर की आवाज पर भरोसा करना बिल्कुल जरूरी है, और अगर कुछ गलत लग रहा है तो शायद वो गलत ही है। एक सेफ चॉइस लेकर बच्चा खतरे से बच सकता है और एक कीमती लाइफ लेसन सीखता है। ओवरऑल मॉरल, बच्चों को काइंड और फ्रेंडली रहने के साथ साथ स्मार्ट और अलर्ट रहने के लिए इंकरेज करता है। ये सिखाता है कि केयरफुल रहना ताकत और समझदारी की निशानी है, डर की नहीं, और सेफ्टी हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए। दोस्तों, बच्चे इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? जैसे कि हमने शुरुआत में बात भी की थी, बच्चे इस कहानी से कई इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। पहला, वो ये सीखते हैं कि स्ट्रेंजर्स वो लोग हैं जिन्हें वो नहीं जानते और उन पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो फ्रेंडली ही क्यों ना लगे। कहानी सिखाती है कि किसी अनजान से तोहफा यानी कि गिफ्ट्स, खाना या कुछ भी लेना कभी भी सेफ नहीं होता। एक और बड़ी सी वो ये कि बच्चों को कभी किसी स्ट्रेंजर के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे ऑफर कितना ही एक्साइटिंग क्यों ना हो। कहानी पेरेंट्स और टीचर की बात सुनने की इंपॉर्टेंस भी दिखाती है, क्योंकि उनकी एडवाइस बच्चों को खतरे से बचाने के लिए होती है। लेकिन इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग लेसन्स में से एक है अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करना। अगर किसी बच्चे को एहसास हो कि उसके साथ शायद कोई फेक बातें कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो उसे यानी कि बच्चे को उसकी इंस्टिंक्ट पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर कुछ अनकंफर्टेबल या गलत लगे तो बच्चों को उसे सीरियसली लेना चाहिए और वहां से हट जाना चाहिए। स्टोरी बच्चों को यह भी सिखाती

0: क्लियर बाउंड्रीज सेट करना भी सिखाती है। बच्चों को पब्लिक स्पेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में बड़ों के पास रहना और कहीं भी जाने से पहले बताने के लिए एनकरेज किया जाता है। कहानी यानी कि स्टोरी बोलने की आदत को भी प्रमोट जरूर करता है, लेकिन जरूरी लोगों से। अगर कुछ अजीब हो तो चुप मत रहो, तुरंत पेरेंट्स या टीचर को बताओ। इस कहानी में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है पॉजिटिव बिहेवियर। बच्चों को ये जरूरी है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, नो कहने का कॉन्फिडेंस हो, पॉजिटिवली कहने का कॉन्फिडेंस हो। ऐसे सिचुएशन से निकल सकते हैं जो उन्हें अनकंफर्टेबल लगे। कहानी अवेयरनेस को एनकरेज करती है ताकि बच्चे अंधा भरोसा करने की जगह अपने आसपास की सिचुएशन पर ध्यान दें। ये सेफ्टी रूल्स की प्रैक्टिस करने को प्रमोट करती है ताकि बच्चे हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, ये कहानी साफ दिखाती है कि फ्रेंडली और काइंड होना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन सेफ्टी हमेशा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि सब लोग अच्छे हैं, पर कहानी धीरे से समझाती है कि यह हमेशा सच नहीं होता। बच्चे के एक्सपीरियंस के जरिए हम समझते हैं कि कैसे एक सिंपल और फ्रेंडली सिचुएशन अनसेफ हो सकती है अगर सही फैसला ना लिया जाए तो। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि बच्चों को स्ट्रेंजर से ज्यादा बात करनी ही नहीं चाहिए, गिफ्ट नहीं लेना चाहिए और उनके साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। पेरेंट्स टीचर्स की बात को सुनना और अपने अंदर की फीलिंग पर भरोसा करना खतरे से बचा सकता है। ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इस कहानी से हमें यह मिलता है कि काइंड बने रहो, स्मार्ट रहो, अलर्ट रहो और हमेशा सेफ्टी को पहले रखो। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नई कहानी के साथ, एक नए अली के साथ। शायद उस कहानी में भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
3: कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
2: well, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स।

किरदार निभाते हैं जिंदगी में. और ये सारे ही जो मैंने बताए हैं रिलेशंस, ये सारे के सारे कूट कूट के इनमें भरे होते हैं. बट यू नीड टू फाइंड देम. एंड क्या होता है कि दोस्ती में अगर आपने ज्यादा दिमाग लगाया तो भी दिक्कत है, और पूरी तरह से दिल लगा लिया तो भी दिक्कत है. दैट्स व्हाई कहते हैं कि दोस्ती जो होती है ना, आप चूज करते हैं. योर सर्कल मीन्स अ लॉट. आपकी सोहबत जो है वो सबसे जरूरी है. आप किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं वो सारी चीजें डिसाइड करेंगे. तो अभी जो स्कूल में है, जो कॉलेजेस में है, मैं उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि दोस्ती तुम्हारी गलत है, बदल दो. नहीं. और ऐसा भी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे तुम्हारे ग्रुप में ना एकदम शांत बच्चे, बिल्कुल जो शरारत नहीं करते वही होने चाहिए. नहीं नहीं नहीं नहीं, ग्रुप में यू नीड समबडी. थोड़ा क्योटिक होना चाहिए, एक थोड़ा साइलेंट होना चाहिए, एक थोड़ा सा क्रेजी होना चाहिए. हर किस्म की पब्लिक आपकी ग्रुप में होनी चाहिए. अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, आप उन चेहरों को सोचिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि आपके ग्रुप में वो क्रेजी कौन है ना, जो ज़्यादा सोचता नहीं है. वो कौन है जो आपका सबसे साइलेंट दोस्त है, ग्रुप में खड़ा रहता है चुपचाप? और वो कौन है जो बहुत बातों नहीं है? तो कौन है जो बातें बनाना जानता है? एंड यू विल फाइंड दीज फेसेस अराउंड यू. मगर आज इनकी इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है स्कूल में, कॉलेज में, अच्छे दोस्तों की पहचान क्या है, टॉक्सिक जो टॉक्सिक लोग हैं फ्रेंडशिप उनसे बचिए. और हमारे जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं, डिस्कशन कह रहा हूँ डिस्कशन करने के लिए, वो उनमें नंबर वन है कि दोस्ती किस तरीके से इंसान की पर्सनैलिटी बनाती है. जिनके बीच आप उठते बैठते हैं अब वही हो जाते हैं, आप चाहें या ना चाहें. आप ये बोल सकते हैं कि मैं उनके बीच बैठता हूँ पर मैं उनको नहीं, मैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हूँ. बट समवेयर डाउन द लाइन आपका दिमाग वहीं जाएगा जहां आपका ग्रुप आपको ले जाएगा, आप चाहें या ना चाहें. दैट्स अ फैक्ट. एंड स्टूडेंट लाइफ में लोनलीनेस कम होती है भाई. हम उनमें से रहे, बारिश हो रही है लेकिन दोस्त ने कह दिया कि भाई कल मैं स्कूल आ रहा हूँ, बारिश हो तूफान आए तो हम जाएंगे. भले ही पूरे क्लास में तीन बच्चाएं हो और तीन दोस्त हम ही हो, तो वी विल एंजॉय इट टू द फुलेस्ट. मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग बोर हैं जो कहते हैं नहीं नहीं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, स्कूल टाइम वेरी क्रिटिकल. इट इज क्रिटिकल, बट आपके पास क्या रह जाएगा बताने के लिए, सोचने के लिए आगे जाके, जब आप ऐसे दोस्ती नहीं बनाएंगे जो थोड़े से क्रेजी हों. थोड़े से दिमाग के हिले हुए दोस्त भी बहुत जरूरी है जिंदगी में. ग्रुप स्टडीज वाले तो है ही दोस्त आपके, है ना, जिनके साथ आप बैठ के डिस्कशन करते हैं, बताते हैं उनको, उनसे पूछते हैं, टीम वर्क में काम आते हैं. अरे ये दोस्त जो होते हैं मुंह पे नहीं कहते लेकिन ये अंदर से बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं आपसे. एंड आप भी नहीं बोल रहे होते बिकॉज यू नो इसमें कोई वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है. यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस इट एवरी सिंगल डे कि भाई यार तुम मेरा दोस्त है, कितना पक्का दोस्त है. यही तो खास बात है ना दोस्ती की, कोई एक्सप्रेशन नहीं, नथिंग नीडेड. आप बस साथ में चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, यही दोस्ती है. अब आपके हिसाब से अच्छा दोस्त कौन होता है ये आप डिसाइड करके मुझे बता सकते हैं, है ना, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे. पर मैसेजेस करता रहेगा 666-22-107 पर. एंड अब जरा स्कूल में दोस्ती के रोल पे बात करते हैं. कुछ भी हो जाए, आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, जो भी कॉलेजेस में है ना, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो भी स्कूल में, आप जो स्कूल में हैं बेटा, आप उनसे बात करना जो कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं. दे विल रिमेंबर देयर फ्रेंड्स जो उनसे स्कूल में मिले थे. तो आप अगर चाहते हैं कि आपके स्कूल वाले दोस्त वो आपको याद रहे, एंड यू हैव स्ट्रॉन्ग मेमोरीज विद देम, जो आपकी अपनी मेमोरीज है जो शायद दुनिया में कोई समझ भी नहीं पाएगा, जान भी नहीं पाएगा, योर सीक्रेट जोक्स, है ना, योर सीक्रेट थिंग्स, योर नोसेंस जो आपने इधर उधर फैलाई है, जो रायता आप सब मिलके फैलाते हैं, वो बहुत जरूरी है जिंदगी में, है ना. पढ़ाई के अलावा ये सब भी जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं है, वरना आप रोबोट हैं बिना दोस्ती के. सो मेक फ्रेंडशिप एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर. फाइंड पीपल जो आपकी, जिनसे आपकी वाइब मैच होती है. जरूरी नहीं है कि आपकी और उनकी शख्सियत सेम हो, नॉट नेसेसरी. अरे मेरा दोस्त टॉपर था, मैं टॉपर नहीं था भाई, हमारी शख्सियत बिल्कुल ही अलग है. पर मैंने उसको चुना, उसने मुझे चुना, है ना, क्योंकि एक कंफर्ट जोन हो जाता है कि आप अपना भाई पढ़ाई में एक नंबर है, भाई को कोई अगर हाथ लगाएगा तो छोड़ेंगे नहीं. तो उस टाइप की दोस्ती बिल्डअप होती है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. तो ये दोस्ती आपको स्कूल में मिलती है, खजाना है ये, है ना. पढ़ाई में मदद मिलती है, बहुत सारे अच्छे दोस्त होते हैं जो आपके होमवर्क में आपकी मदद करते हैं. हमारे टाइम पे फोटो सेट कराने के लिए दोस्त को ढूंढना नहीं पड़ता था, है ना, यू नो वेयर टू गो. आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं, उनको तो फोटो सेट की जरूरत नहीं पड़ती. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ एंड व्हाई फ्रेंडशिप इज इंपॉर्टेंट. नोट्स शेयर करना, ये भी दोस्ती है. कई दोस्ती बहुत सिंपल सी होती है और वो इतनी खिल के जो है इतनी बड़ी हो जाती है जिंदगी में. एग्जाम्स की प्रिपरेशन, जब आप इतने स्ट्रेस में होते हैं, कॉल आती है, दोस्त बोलता है भाई अभी तो मैंने इतना ही पढ़ा यार, यार तू पहुंच गया पांचवे, या तुम पहुंच गए यार पांचवे.

चैप्टर पे ये कैसी बात हुई, देन यू हैव अ वेरी फन कॉम्पिटिशन एंड यू लाइक ठीक है मेरा दोस्त पांच पर है या तीन पर है, ठीक है वी आर जस्ट डूइंग दिस टूगेदर, देर इज नो कॉम्पिटिशन. कभी कभार इन फैक्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इज किसी और के लिए चेयर करने की जो फीलिंग होती है किसी और के लिए, ये बड़ी खास होती है. ये आपको बड़े हो गया अचानक से नहीं आएगी, आपके अंदर नहीं आएगी, यू विल बी मोर डिप्लोमेटिक. पर जब दोस्ती खास होती है, उस दोस्त के लिए चेयर करना, यू वॉन्ट हिम और हर टू विन, ये जो फीलिंग है ना बॉस, ये आपको स्कूल में मिलेगी. ये छोड़ना नहीं, हर तरीके के दोस्त बनाना है ना, एंड कॉन्फिडेंस यही लोग बिल्ड करेंगे आपका. हो सकता है कि आपके पांच दोस्तों का ग्रुप है, चार उनमें से एकदम शांत है, लेकिन जो पांचवा है ना उसकी बैटरी फुल चार्ज रहती है, डबल ए बैटरी भर है वो, और वो जो है रुकने का नाम नहीं लेगा या नाम नहीं लेगी, है ना. तो वो उन चारों में कॉन्फिडेंस पैदा करती है या करता है जो उसके साथ में. दैट इज वाई यू नीड डिफरेंट फ्रेंडशिप इन अ सर्कल, है ना. कोई एक होना चाहिए एक थोड़ा म्यूजिशियन टाइप का, कोई एक गाने वाला, कोई एक बढ़िया थोड़ा सा लाउड है, कोई बड़ा शांत है. ये वैरायटी जो है ना आपको, क्योंकि आने वाली दुनिया में मिलेगी जब आप स्कूल से निकलेंगे, कॉलेज से निकलेंगे, जॉब्स में जाएंगे, देन यू डोंट हैव अ चॉइस, देन यू हैव टू डील विद एवरी पर्सन. फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई कहने का हक नहीं है. बट अगर आप शुरुआत में ही इन सारे कैरेक्टर से मिल लें, उनसे दोस्ती कर लें, तो दुनिया बहुत आसान लगती है, बहुत आसान लगती है. आपका स्टेज फेयर होगा ना, ये चुटकियों में गायब हो जाएगा, चुटकियों में. आप स्कूल में उनके साथ पार्टिसिपेट करें, गो आउट. आपको कोई दोस्त पार्टिसिपेट कर रहा है, सोचो यार मैं भी पार्टिसिपेट करूं क्या. इवन इफ यू डोंट नो द थिंग, आप पार्टिसिपेशन दिखाएं, स्पोर्ट्स में जाएं, एक्टिविटीज में जाएं, आपको इंकरेजमेंट करने वाला वही दोस्त होगा, है ना. लंच शेयरिंग कितनी खूबसूरत चीज है, आपने अपने घरों से हम लेके आते हैं. ये तो बड़े लोगों ने बना दी जी, पॉटलक करेंगे, पॉटलक. बच्चे बचपन से, और हम लोग सालों से पॉटलक ही तो कर रहे हैं. घर के वो नूडल जो बिल्कुल लंच बॉक्स का शेप ले चुके होते हैं, या वो पराठे जिन्हें गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त खा रहा है, और हमें नहीं जरूरत है किसी अवन ओवन की, क्योंकि वो जो शेयरिंग है दैट इज द बॉन्ड वी शेयर. और ये बॉन्ड जो है ना, ये ही है वो दोस्ती जो आपको स्कूल में, कॉलेज में, आपकी जिंदगी को आसान बनाती है. इनके बिना आप क्या कर लेंगे खाली टाइम, कुछ नहीं. स्कूल में कॉलेज में तो दोस्त चाहिए ही चाहिए, यही तो है जो आपको घर से थोड़ा बाहर निकालते हैं, चलाया थोड़ा सा ट्रिप्स इनके साथ होती है, गेम्स इनके साथ होते हैं, एंड आपकी क्लासरूम के मोमेंट्स जो आगे जाके आप चेरिश करते हैं. अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, एक सिंपल साइकोलॉजी है. आपको अगर लगता है ना कि सिर्फ किस्से सुनाने के लिए मुझे अपने क्लास में कुछ शरारती बच्चों से मेरी दोस्ती हो जाए तो मजा आएगा, नहीं. इट इज नॉट अबाउट गेटिंग फ्रेंडशिप फ्रेंड्स विद पीपल जो थोड़े शरारती हैं सिर्फ इसलिए कि आपको आगे जाके किस्से चाहिए, नहीं. आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, आपका जो फेयर होता है वो दिल में कहीं ना कहीं दुनिया से डील करने का वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है. ऑफकोर्स बुरी संगत से दूर है, लेकिन इतनी जल्दी जज ना करें किसी, क्योंकि हो सकता है आपका एक दोस्त जो है वो अलग भेजेगा है, डजंट मीन ही इज रॉन्ग, है ना. कुछ लोग आपके ग्रुप में होंगे जो अलग सोचते हैं आपसे, अल्टीमेटली देयर थिंकिंग गुड. अगर वो थोड़ा सा अलग सोचते हैं, ओपिनियन रखते हैं, अरे बहुत अच्छी बात है, डिफरेंट ओपिनियन होने चाहिए. आपके फ्रेंड सर्कल में हर कोई आपसे एग्री करे जरूरी नहीं है, और अच्छी बात भी नहीं है, है ना. नो मैटर वॉट, आगे जाके आपको यस मैन तो नहीं चाहिए. तो मॉरल पॉइंट क्या है, मॉरल पॉइंट ये कि स्कूल के दोस्त आपकी जिंदगी की मेमोरीज का बेस बनाते हैं, इनका होना बहुत जरूरी है. बॉटम लाइन खत्म, बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है. अब जरा कॉलेज वालों से बात करूंगा मैं जो कॉलेज में आ चुके हैं. ये मेरी काफी सारी बातें अभी तक समझ गए होंगे जो बहुत गहरी करी है, और बड़े लोग तो मुस्कुरा रहे होंगे जो अभी नौकरियों पर. देखो, कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ से थोड़ी नहीं, बहुत डिफरेंट होती है. यहाँ इंडिपेंडेंस होता है एक किस्म का, साथ में प्रेशर भी होता है, नया एनवायरमेंट होता है. हो सकता है कि आपके जो दो स्कूल में थे वो सेम कॉलेज में ना हो. अगर ऐसा लक बाई चांस हो गया है तो आपकी लॉटरी है भाई साहब, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर वही नई चेहरे, नया एनवायरमेंट. अब इस नए एनवायरमेंट, इस नए चेहरों से डील करने के लिए क्या चाहिए, अरे वही स्कूल वाली दोस्ती, वही लोग तो काम आएंगे अगर वो आपके साथ जुड़े हुए हैं ना. कॉलेज के नए दोस्त, नए एनवायरमेंट, हलवा कुछ नहीं लगेगा. कितना भी नया कल्चर हो, कितने भी एडजस्टमेंट इश्यूज हो, एवरीथिंग विल बी फाइन इन कॉलेजेस अगर आपके स्कूल वाले दोस्त आपसे जुड़े हुए हैं. और अगर इनमें से स्कूल वालों में से किसी भी दोस्त में से एक भी आपकी कॉलेज में आ गया, आहा, फिर तो आपका ये मोहल्ला, यूं समझिए कॉलेज ही आपका है. और इसके फायदे बहुत होते हैं. जब कॉलेज में गहरी दोस्ती होती है, करियर गाइडेंस मिलती है भाई या बहन,
है ना, और स्पेशली

0: जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप मेल फीमेल हूँ, आप डजंट मैटर, ये इसमें जेंडर बायसनेस है ही नहीं. अगर आपकी फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड अच्छे हैं, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. करियर तक, करियर तक. और एंड ऑफ द डे आपको ग्रुप प्रोजेक्ट्स तो मिलेंगे, उसमें क्या बनना चाहते हैं आप? वो बोरिंग बच्चा जिससे कोई बात नहीं करता. आई एम सो सॉरी, ये कड़वे शब्द हैं लेकिन ये सच है, ये सच है. और प्लीज, मैं जो नए नए माँ बाप बने, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको. अपने बच्चों को ना ऐसी बिल्ड कीजिएगा कि वो ना ऐसा ना हो कि गुमसुम सा हो जाए. कई लोग इस बारे में भी तारीफ करते हैं, हमारा बच्चा तो बड़ा चुप रहता है. ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है, ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है. प्लीज मेक हिम और हर टॉक, है ना, ये जरूरी है. पर्सनैलिटी ट्रेड बचपन में अच्छा लगता है कि बच्चा शांत है. बड़े होके शांति बहुत तकलीफ भी दे सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इमोशनल सपोर्ट अगर इन लोगों को कोई देगा बाहर ना, घर वालों के अलावा, और मुझे बताने की जरूरत क्या है? हम सब तो जानते हैं ना, हम लोग स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, एक मोमेंट लाइफ में ऐसा आता है जब हमें जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है वो ना तो घर वाले दे सकते, है ना, वो ना कहीं और से मिलेगा. माँ बाप से अगर आप फ्रेंक हैं, आज के बच्चे होते हैं तो बात दूसरी, वरना दोस्त ही है ना, दोस्त से तो आप शेयर करते हैं ना अपने बहुत सारे प्रेशर्स, वो राज वही लोग तो जानते हैं. और इसमें काफी सारी चीजें पैदा होती हैं कॉलेजेस में स्पेशली, इसमें आपको बच के रहना है. बिकॉज जितनी अच्छी और गहरी दोस्ती कॉलेजेस में हो सकती है आफ्टर स्कूल, ऑफकोर्स आफ्टर बिल्डिंग द बेस, उसमें प्रॉब्लम है कॉम्पिटिशन की. कोई कितना, जैसे हम कहते हैं ना हमारी भाषा में, कौन कितना गुन्ना है, कौन कितना तेज है, कोई जेलस है, कोई फेक है. यहाँ पे जाके आपको फेक फ्रेंडशिप्स नजर आना शुरू हो जाएंगी.
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए.
2: कसके जूता, कसके बेल्ट, खौंस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी.
1: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है. क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड.
0: वो दुनिया का असली चेहरा जिसका सामना आपको जाके करना है वो यहाँ पे नजर आएगा. So now, जो स्कूल में मैंने कहा कि डोंट बी केयरफुल, पर कॉलेजेस में बी रियली रियली केयरफुल हु यू टॉक टू, हु यू मेक फ्रेंड्स विद, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है. मैं आपको सीधा सच बता, सीधा सच विद माय ओन एक्सपीरियंस, कॉलेज में हर दोस्त सच्चा नहीं होगा. इसलिए जरा समझने की जरूरत है, यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन आपको ग्रो करते हुए देखना चाहता है और कौन आप पे एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस छोड़ रहा है. ये समझदारी आप पर है. आप माशाल्लाह मुस्तफा जहीन है, जो भी कॉलेज में सुन रहे हैं, आपका दिमाग मुझसे तेज दौड़ता है और आजकल तो वैसे भी सब आ गए. बट यू नो द डील राइट, देन जस्ट डील विद इट. अब मैं आपको रियलिस्टिक एडवाइस देना चाहता हूँ साथ में. ये तो आपके घर वालों ने बोला होगा, हर किसी पे भरोसा मत करना. चलो इस एडवाइस को हटा दे. एक जो एडवाइस है कॉलेज टाइम के लिए, अपने पर्सनल सीक्रेट्स हर किसी से शेयर मत करना. आपको लगेगा कि कॉलेज का सबसे कूल बच्चा बनना है मुझे, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है. उसमें होगा क्या कि यू विल हैव 10-15 फ्रेंड्स टुगेदर, लेकिन सच सुनोगे, आपको चाहिए सिर्फ 3 या 4. ये जो आपने इतना बड़ा कुनबा बना रखा है ना, वो आपको हाइप जरूर देंगे बट मजा नहीं आएगा. ये हाइप जब डेड होगी ना, मैं आपकी भाषा बात कर रहा हूं, जेंजी भाषा में हाइप, you need hypes, people like that when you're famous in colleges. मगर जब ये hype die होती है ना bro, दिक्कत हो जाती है. तो अपने ना personal secrets कोई गिने चुने 3 या 2 रखना. ये जो 2-3 रहेंगे ना तुम्हारे साथ, ये बहुत काम आने वाले हैं और आप भी इनके काम आइएगा. It goes both ways. तो positive companies जो आपको choose करनी है वो automatically college में आप identify कर लेंगे और आपको मिल जाए. अब जरा पहचान कर लेते, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप मुझे भी क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि इस पे इसने ये वाली बात नहीं. देखो, अच्छा दोस्त और बुरा दोस्त, इन दोनों की बहुत ही डिवाइडेड निशानियां हैं जो आपको समझने की जरूरत है. अच्छा दोस्त कौन है? बहुत ही सिंपल है, वो आपकी इज्जत भी करता है, आपको मोटिवेट भी करता है, सक्सेस के लिए पुश करता है. वो आपसे मोहब्बत में बात नहीं करेगा, स्पेशली लड़कों की बात कर रहा हूँ. ये थोड़ी बोलेगा कि भाई यू नो व्हाट, इफ यू विल डू दिस नाउ यू विल शाइन वन डे. लड़कियों के लिए मोटिवेशन अलग होता है. लड़के क्या बोलते हैं, भाई कर ले यार, फेमस हो जाएगा भाई, हमारा भी कुछ फायदा है प्लीज. मेरे दोस्त ऐसे ही करते हैं. आज भी मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मुझसे कहते भाई कर लो यार, हम भी बोले यार हमारा दोस्त यूट्यूब पर, क्या यार तुम बढ़िया आलसी हो. ये एक मोटिवेशन है ना, ये उनकी मोहब्बत दिखाने का तरीका है. और ये वही बोलेगा जिसको आपकी पड़ी हो, वरना लोग तो खींचने में लगे रहेंगे। कॉलेज से शुरू हो जाएगा मामला ये। तो जो आपकी सक्सेस के लिए आपके जितना तैयार है ना, वो आपका दोस्त है। और जो मुश्किल वक्त में साथ दे देना, आज के टाइम पे क्या कहते हैं उसे, 3 AM कॉल्स, यू नो, इफ यू हैव अ 3 AM फ्रेंड, जीत गए आप, दुनिया जीत गए। सबसे बड़ी जीत ये है कि आप किसी एक, 10 नहीं, सिर्फ एक शख्स के बारे में कह सकते हैं कि मेरा भाई या मेरी बहन है, ये सगी नहीं है, ये सगा भाई नहीं है, लेकिन मैं रात को 3 बजे भी कॉल कर दूं ना, कॉल उठेगा। ऐसा दोस्त आपको बनाना पड़ेगा, ये तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बिकॉज अगर ऐसा कुछ नहीं है, माई फ्रेंड, व्हेन यू मिसिंग आउट ऑन समथिंग, मैं इसमें आपको चाशे लगा के नहीं बताऊंगा, ये फैक्ट है। आजकल की दोस्ती थोड़ी मैकेनिकल हो चुकी है, वैसी रॉ नहीं है, पर बनाइए रॉ। आई थिंक इसमें माँ बाप का रोल बहुत ज्यादा होना चाहिए, टू मेक दीज किड्स अंडरस्टैंड कि परिभाषा क्या है दोस्ती। एग्जाम्पल, अगर आप फेल होते हैं किसी भी चीज में अपनी जिंदगी में, फिर भी कोई आपका दोस्त आपके साथ आपको हिम्मत दे रहा है, वो है पार्टी मेट। आप बुरे दोस्त की निशानियां बताऊं मैं आपको, इट्स गोइंग टू बी हार्ड ऑन अ लॉट ऑफ पीपल, फिर भी सुन लो, नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो आपको खींच के ऐसी आदतों में डाले जो आपका दिल भी कह रहा है कि गलत है, तो ये दोस्त नहीं है। एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्ट कराने वाला दोस्त, इन लोगों से बच के ना भाई। देखो अपने टाइम में मस्ती सब करते हैं, करनी भी चाहिए, है ना, करनी भी चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन जो आपका टाइम बिल्कुल खोटी करा दे, ऐसा भी दोस्त नहीं चाहिए। हाँ, जो ज्यादा जाया करा रहा टाइम को। और तीसरा मेन, द बैक बाइटर्स, ये जरा माँ बाप जरा साइड हो जाए, मैं बच्चों से बात करना चाह रहा हूँ, जस्ट यू एंड मी, वन ऑन वन, जो टीनेजर्स हैं मी, बैक बाइटर्स बहुत मिलेंगे। इसलिए मैंने पहले पॉइंट क्या बोला, अपने जो सीक्रेट चीजें हैं ना, वो हर किसी से मत बांटो। आई नो समटाइम्स हाइप में आके बोल दोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मत बोलो, है ना। 2-3 बनाना कॉलेज में पक्के वाले, एकदम सॉलिड वाली दोस्ती, वही काम आएंगी, वो उतनी चाहिए, बाकी चाहिए ही नहीं, है ना। तो ये बैक बाइटर्स, और जो चौथा पॉइंट है वो है जलने वाले, ये तो आप आंखों से देख सकते हैं। इसमें तो मुझे कोई गाइडेंस देने की जरूरत भी नहीं है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, बिकॉज यू आर, जितने भी टीनेजर सुन रहे हैं, यू आर मच मोर इंटेलिजेंट देन आई एम और प्रॉब्ली लॉट ऑफ पीपल, सो ये आप पे छोड़ता हूँ, फुल कॉन्फिडेंस है मेरा आप पे भरोसा भी कर रहा हूँ कि आप जो है जेलेसी वालों को तो अपने से दूर रखें। बाकी कोई बात करनी हो ना, कर लेना, FM 107 कतर आपका भाई है यार, मैं हूं ना आपका भाई, क्या टेंशन है। एंड बुरे दोस्त से डिस्टेंस बनाना आपकी कमजोरी है, ये भी याद रखिए। समटाइम्स यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग डिफिकल्ट डिसीजंस, वो आपकी कमजोरी नहीं है, आपका विजडम है। जैसे बुरी आदत छोड़ना मुश्किल काम होता है, पर आप छोड़ते हैं, है ना, जल्दी उठते हैं सुबह, आदत नहीं है, दैट इज योर विजडम टेलिंग यू कि भाई उठना है, क्यों नहीं उठना है। वैसी बुरे दोस्तों से दूर हो जाना, ये भी कमजोरी नहीं है, विजडम है, पीस ऑफ माइंड है, एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है, सुकून ना, और क्या चाहिए। देखो मैं अगले पॉइंट पे जो आ रहा हूं ना, वो भी इसी के अराउंड है, और वो इमोशनल सपोर्ट और मोटिवेशन को लेके बात करता है। ये जितना भारी टॉपिक उतना है नहीं, लेट मी मेक इट इजी फॉर यू, इमोशनल सपोर्ट और मोटिवेशन, ये सुनने में भारी लग रहा है, लेकिन मैं, लेट मी ब्रेक इट डाउन, मुझे मौका दो। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, कई मरतबा मस्ती मजाक के बीच में स्ट्रेस हो जाता है ना, आजकल तो लोग लिख भी देते हैं एंग्जाइटी # प्रेशर, एक कॉमन सी बात है, पर ऐसे वक्त में कौन काम आता है। अब कुछ बातें होती नहीं, बोल पाते भाई, माँ बाप से नहीं कह पाते, हम आज तक नहीं कह पाते। तो बात ही नहीं है, माँ बाप बोलेंगे हमारा बच्चा भी हमें सब बताता है, ना जी ऐसा नहीं होता है, कुछ बातें बच्चा सिर्फ अपने दोस्त को ही बताता है, और उसका दोस्त ढंग का निकलना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपका सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो आपका स्ट्रेस भगाएगा। दोस्तों से बात करें ना, दिल हल्का कर लेना, है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन जो है ना, ये एक ऐसी चिड़िया है जो आपको मोमेंटरीली मिलती है, पर अगर दोस्त बढ़िया हो ना तो हर कदम पे मिलती है। एग्जाम्स के बाद आपकी सपोर्ट करना, फेलियर में आपको इंकरेज करना, आपकी किसी से बहस हो जाए तो आपकी साइड में खड़े रहना। दोस्त पता है कौन है, जो आपके नाम को आपके पीछे डिफेंड करता है व्हेन यू आर नॉट देयर, दैट इज योर फ्रेंड। जब आप नहीं है ना उस महफिल में, और आपका दोस्त आपके लिए आवाज उठा सके, बोलेगा भाई उसके बारे में नहीं सुनूंगा, दैट इज अ फ्रेंड, दैट इज अ फ्रेंड यू नीड, यू यू रियली नीड अ फ्रेंड. और ऐसे 10 दोस्त बनाओगे तो नहीं मिलेंगे, वो 2-3 में मिलेंगे, और यही लोग हैं जो आपको इंकरेज करेंगे आगे बढ़ेंगे. एंड यू विल नॉट इवन नो, मैं कहता रहा हूँ लड़कियां में भी, ऑल द फीमेल्स आई नो दे एक्सप्रेस एंड दे आर वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग. हम लड़के नहीं कर पाते एक्सप्रेस, तो हमारा थोड़ा सा अलग एजेंडा है, बट बोथ जेंडर्स यू नो, रिगार्डलेस ऑफ यू बीइंग मेल और फीमेल, फाइंड फ्रेंड्स लाइक दिस जो आपको ना पीछे भी आपके डिफेंड कर, कि इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, साफ सीधी बात. इनसे क्या होता है ना, एक कंपेनियनशिप बनती है फॉर लाइफ टाइम, फॉर लाइफ टाइम. बॉलीवुड क्या बेचना चाह रहा है आपको, यही तो बेचना चाह रहा है, तो जितनी भी दूसरी वाली मूवीज बनी यही तो बेच रहा है. कहां से आ रहा है आइडिया, कोई आराम से, ये कोई क्रिएटिव आइडिया तो नहीं है, तो हो क्या दिखा दिया मुझे, असल जिंदगी से तो आ रहा है. मैं बोलते बोलते मेरी तक आंखें ना बोलेंगी, बिकॉज आई कैन सी माई 3-4 फ्रेंड्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी. हम सब ने एक दूसरे को डिफेंड किया है कुछ भी जरा जरा सी बात पे, कि भाई के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं, भाई ने बोल दिया तो करने का तो करने का. दैट शुड बी देयर. यू नो, हम रिसेंटली एक बारे में बात कर रहे थे, मैंने बोला था एंड आई वॉज आस्किंग FM 107 पर शो के दौरान, कि क्या अगर आपका दोस्त किसी को पसंद नहीं करता है तो क्या आपकी उससे दोस्ती आपको जमेगी. लोगों ने इसमें बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिए. माय आंसर इज कि भाई मेरे दोस्त को अगर कुछ चीज़ नहीं पसंद है ना, साफ सीधी बात, मुझे भी नहीं पसंद है, मैं उसको जाके लड़ नहीं रहा हूँ उस तीसरे बंदे से, नहीं, पर मेरे दोस्त को नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं अच्छा लग रहा, बात खत्म हो गई. मेरी इससे दोस्ती है, भाई कह दिया इसको तो बात खत्म. दैट लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस हर किसी को बिल्ड करना आना चाहिए. That is what friendship is. वो नहीं जो जरूरत के टाइम में बदले. So make your friends without any terms or conditions. जितने भी कॉलेजेस में, प्लीज ये मेरी कोई भी ज्ञान मत लेना, ये वाला ले लेना. तो इसमें क्या होगा, आप टॉक्सिक फ्रेंडशिप से दूर हो जाएंगे, अच्छे दोस्त आपकी सक्सेस के लिए चेयर करेंगे एंड आपका इमोशनल बैलेंस जिंदगी भर बना रहेगा. आप सोचेंगे जिंदगी भर, यस ब्रो, मैं आपको बता रहा हूं दोस्ती अच्छी वाली ना आपको कहीं से भी निकाल सकती है. कितनी भी खतरनाक डिफीट हुई हो आपकी लाइफ में, अगर आपके पास बढ़िया 2 दोस्त है ना, मैं 3 भी नहीं कह रहा, लो 2 कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं. और ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि आपके जितने जो आपका आपकी जो कंपनी है वही डिसाइड करेगी कि आप कैसे हैं ना? तो आप देख लीजिए आपको कैसा बनना है, उस हिसाब से आपकी दोस्ती देख लीजिए. तो उम्मीद है कि आज का भी आपको शो अच्छा लगा होगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि लोग ये बोलें कि भाई तुम तो ध्यान दे रहे हो. देखो मैं ओपिनियन देना चाहता हूँ, ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं भी यहाँ पे आके आपको डिप्लोमेटिक आंसर्स दे दूँ या स्टेटमेंट दे दूँ तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला मेरे ओपिनियन से. हाँ, यू कैन गो अगेंस्ट माई ओपिनियन और फॉर इट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं बीच का रास्ता नहीं निकालूँ. सो जो लोग मेरे आज की पूरी बात के हक में, थैंक यू सो मच. जो नहीं है, प्लीज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते बात. तो सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, FM 107 Qatar इस नाम से हर जगह मौजूद है. एंड सोशल मीडिया के अलावा जो हमारा व्हाट्सएप है 666-22-107, ये भी मौजूद है. एंड हमने स्टूडेंट्स गाइड में फ्रेंडशिप डे बना लिया, पर मनाना पड़ा. मेरे पास बहुत सारे और भी टॉपिक थे, पर मैंने कहा हमने बहुत सारी बात करी है, करियर गाइडेंस, ये गाइडेंस, वो गाइडेंस. एक काम करते हैं कि उस बारे में तो बात कर लें जिससे बुद्धि बिल्कुल सही रास्ते पर है, और वो दोस्ती ही है ना. आई नो दोनों की दोस्ती अलग होती है, लड़कियों की दोस्ती अलग होती है, लड़कों की दोस्ती थोड़ी अलग होती है, बट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दोनों ही दोस्ती को ऐसे ही रखना चाहिए जहाँ पे यू नो यू सी 3 पीपल टुगेदर वॉकिंग और आप बोल सकें बचपन के दोस्त लग रहे हैं. होता ना जब आप 3 बड़ों को भी साथ में देखते हैं, बोलते हैं अरे आप तीनों कब से जानते एक दूसरे को. दैट क्वेश्चन शुड कम अप, लगना चाहिए अरे भाई साहब ये है दोस्ती सालों से. आज अगर मैं फक्र से कह पा रहा हूँ कि मेरे 3-4 दोस्त हैं जिन्हें मैं पूरे 27 सालों से जानता हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे प्राउड बात है. आई नो देम, मतलब अगर मैं उनसे बात भी नहीं कर रहा हूँ, बट वी आर फ्रेंड्स. मैं आज भी एनी टाइम आई कैन गिव देम अ कॉल एंड दे विल बी ऑन कॉल. ऐसा इसलिए क्योंकि हमने स्कूल टाइम पे और कॉलेज टाइम पे वो बॉन्ड बना के रखा, वो बॉन्ड बना के रखी. आप करियर पर फोकस करें, बेशक करें, बेशक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी रिलाई करती है उसको, है ना। आप जो है तमाम चीजें करें, पर प्लीज इतने सीरियस मत हो जाना एक कट ऑफ हो जाओ। दोस्ती जरूर, एक भी चलेगा, वो एक जो है आपके लिए 5-6 दोस्त ढूंढ देगा, कोई टेंशन नहीं है, पर वो एक एंकर चाहिए, है ना। वरना समुद्र में जो जहाज वो खो जाते हैं, वास्ट समुद्र में जिनका पता नहीं लगता कि जहाज कहां तक चला गया। तो मैं कहानी भी सुनाता हूं जो बोलता हूं ना कि उसके बाद वो जहाज समुद्र में था और फिर कोहरे की चादर में खो गया, वो वाला जहाज मत बन। बी ए शिप जिसका एंकर है, इसे रुकना भी आता है, मैन्यूवर करना भी आता है, और अगर आइसबर्ग भी आ जाए तो उससे टेढ़ा होकर निकलना भी आता है। वो है पार्टनरशिप और वो है कंपेनियनशिप जो आपको ढूंढनी है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, लाइफ के सारे खूबसूरत मोमेंट जो सिंगल है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अपने दोस्तों को स्पेशली एट द एज व्हेन आप कॉलेज में हैं, ओवर क्रिटिसाइज मत करना किसी बात को लेके, है ना, और अंडर क्रिटिसाइज भी मत करना किसी बात को लेके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी दोस्ती को चला के रखेगी ना, वो है आपका सच बोलना, है ना। समटाइम्स यू फील कि अपने दोस्त को बता दूं क्या मैं, ये चीज बोलनी चाहिए मुझे नहीं बोलनी, आपको लग रहा है आपका दोस्त फंसा हुआ है कहीं पर, है ना, आप डिप्लोमेट होने के चक्कर में या बुरा लग जाएगा नहीं बता रहे। डोंट डू दैट, उसको बुरा लगेगा कि आपने सच बोला, हो सकता है बिल्कुल बुरा लगेगा, लेकिन आपका सच उसके काम आ जाएगा, बता रहा हूँ, दोस्ती और स्ट्रांग हो जाएगी। तो अपनी फ्रेंडशिप में यस मैन मत रखो। इफ यू हैव यस मैन इन योर लाइफ, टाइम टू डिजॉल्व देम कंप्लीटली, देन ओनली आपका जो दिमाग है वो अपनी जगह पर रहेगा। That's all I wanted to say. और अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं, मान लेना चाहिए अब तक तो इतनी मेहनत करने के बाद, तो मुझे भी बताइएगा। 666-221-07 नंबर, 666-221-07 एंड ऑल्सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर। स्टूडेंट्स गाइडिए के अगले एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर, आपका दोस्त साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा कि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मास्सलाम।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: Assalamualaikum and good evening. आप सुन रहे हैं Dear Family with अर्जुमा विश्राम. वक्त हो गया है 4:02. राइट और मेरा आपका साथ रहना है 5 बजे तक. उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश मजे में होंगे. सब कुछ एकदम से सेट होगा आपकी जिंदगियों में. अच्छा जी, कल मैं आपको टॉपिक बता के गई थी लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ग्रोथ के हवाले से. अब ये पर्सनल ग्रोथ क्या है थोड़ा सा मैं बता दूँ. ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब जो कुछ आपने पाया फाइनेंशियली, जो आप बेहतर हुए, इसके साथ ही साथ आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है ये आपकी मेंटली भी हो सकती है. आपकी मतलब वैसे जो ग्रूमिंग होती है ना उस तरह से भी हो सकती है, कॉग्निटिव वे में भी हो सकती है. तो आप जिस तरह से चाहें अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है उसको आज आपसे शेयर कीजिएगा, ठीक है. और शेयर के लिए नंबर है 4434377 और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे मैसेज करने का नंबर है 6622107. राइट, और पहले कॉलर हमारे साथ आ ही गए हैं तो उनको कॉल पे ले लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम. सबसे पहले मेविन जी आपको सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. क्या हालचाल है भाई आपके?
1: एक नंबर आपकी दुआ है.
0: जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट. और कौन बात कर रहे हैं? आसिफ बात कर रहे हैं?
1: जी जी
0: आसिफ बात कर रहे हैं जी.
1: आज का मेरा टारगेट है.
0: क्या टारगेट है?
1: ग्रो कर रहा हूं मैं अपने आप को.
0: ओए होए, ग्रो कर रहे हैं अपने आप को.
1: वीकेंड टू वीकेंड यानी वेले लोग का काम पूरा कर रहा हूं मैं अपनी तरफ.
0: जरूरी भी भाई, पर्सनल ग्रोथ ना बहुत ज्यादा जरूरी होती है. ये होनी चाहिए, मतलब हर दिन के हिसाब से होनी चाहिए.
1: मैनेजमेंट, इफ यू डोंट माइंड, एक सेकंड के लिए आप फोन नहीं कट करना प्लीज. मेरा एक इमरजेंसी कॉल है, बस फोन नहीं कट करना.
0: नहीं मसला नहीं, मसला नहीं, आप बात कर लें, ठीक है. चले जी, तो हमारे साथ जो हैं वो हैं आसिफ. मैं थोड़ी देर में ट्राई करती हूँ कि अगर इनकी कॉल जो है वो जो कॉल इन्होंने ले ली होगी, बात हो गई होगी, तो थोड़ी देर के बाद हम इनको शामिल करेंगे. आप लोग भी सोच सकते हैं, सोचिए, ज़रा दिमाग पे जोर डालिए कि किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को कि पर्सनल ग्रोथ आपकी हुई है. और जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में लर्न कर रहे होते हैं. कॉल मुझे लगता है फिर आ गई. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम. सॉरी सॉरी,
0: नहीं नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है जी. तो आसिफ
1: कहना वो इमरजेंसी फोन आ गया था.
0: हाँ नहीं मसला नहीं है, समझती हूँ भाई मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप बताएं, घर की बात है. कोई इशू नहीं है.
1: और क्या चल रही
0: है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक.
1: देखो आज मैं तुम्हारा सबसे पहला कॉलर हूँ मैं तुम्हारा.
0: अच्छा,
1: सबसे पहला कॉलर,
0: इसे सेलिब्रेट करना चाहिए.
1: अरे नहीं, क्योंकि मालूम समटाइम क्या होता है, मैं जब भी फोन लगाता हूँ आपके पास होते हैं सिर्फ 5 से 6 मिनट, उतने में आप बोलते ओके अल्लाह हाफिज, आती बहुत टाइम हो गया मैं चलते.
0: बिल्कुल ऐसे ही भाई, शुरू में जो कॉलर्स आ जाते हैं ना उनको जरा ज्यादा टाइम मिल जाता है, बाद में जरा थोड़ी सी दुश्वारी हो जाती है.
1: अपने अपने नसीब नसीब की बात है, दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम.
0: सही बात है, सही है. और बताएं भाई आसिफ, तो क्या कहेंगे पर्सनल ग्रोथ के हवाले से, क्या सोचा आपने?
1: कुछ भी नहीं सोचा अभी तक, ऐसी चल रही जिंदगी में. हाँ भाई, जिंदगी चल रही है, बस क्या जरूरत करने का, ग्रोथ करके फायदा क्या है बताओ. मतलब मैं ये सोचता हूँ ग्रोथ करो इधर खत्म, इधर ये बस जो कुछ है, इंडिया ने ये बस कुछ नहीं आता.
0: अच्छा, मतलब सोचा ही नहीं, करना ही नहीं है.
1: करना है, मतलब करना है, ऐसा नहीं है. ऐसा यहाँ पर रहकर इंशाल्लाह जो भी, मतलब जो भी है थोड़ा बहुत भी है तो इधर ही है. वहाँ जाने के बाद वहाँ की सोचती है बस ग्रोथ क्या, मतलब ऐसा मैं तो मतलब ऐसा अभी तक कुछ प्लान किया नहीं हूँ.
0: सही, तो नहीं लेकिन फिर भी ना सोचना. अच्छा, थोड़ा चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा सोचना चाहिए.
1: एक चीज और, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मतलब ग्रोथ, मतलब लोग किसको मतलब कहते हैं ग्रोथ करना? मतलब
0: देखिए ग्रोथ जो है ना बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है. जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो फाइनेंशियल लेवल पर है कि आप जो है पहले के मुकाबले में अब अपने आप को ये समझो कि मैं पहले से ज़्यादा स्टेबल हो गया हूँ, मेरी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो पूरी हो गई हैं, मुझे लगता है कि मैं अपने पैरों पर किसी हद तक खड़ा हो गया हूँ, ठीक है, मैंने एक तरह की जो ये वाले जो डिसीजन है ना वो किसी हद तक ठीक लिए हैं. फिर दूसरी चीज़ ये कि एक और जो ग्रोथ होती है ना जो मुझे लगता है कि बड़ी ज़रूरी है, अब फाइनेंशियली अब स्ट्रॉन्ग हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो ना, आपको मतलब ज़िंदगी में थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है आपके अंदर, आप चीज़ों को थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा वैसे समझने लगते हो कि अच्छा, मतलब जिन चीज़ों को पहले गुस्सा आ जाता था फ़ौरन से, या फिर जज्बाती हो जाते थे, जो हम लोग हैं ना, मतलब हम लोग बड़े इमोशनल टाइप के लोग हैं, उसमें बड़ा नुकसान करते हैं अपना, थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर कहीं मतलब सेटल हो गया मामला. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो पर्सनल ग्रोथ में आती है.
1: आपकी बात मैं पहले भी मतलब समझा था, मगर मैं ये मैं सुनना चाहता था कि मतलब ग्रोथ पब्लिक कैसे मतलब करती है ग्रोथ का लाइफ में, जिस पॉइंट से आपने मुझे बताया तो मैं उसमें से दो पॉइंट आपको मेरी तरफ से बताता हूँ. मैं जब इधर कतर में आया था फर्स्ट टाइम, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब मैं कर्जा लेके इंडिया से इधर आया. फिर कर्जा चुकाया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतना जमा किया हूँ कि मतलब मैं अपनी शादी भी कर सकता हूँ और ऊपर से मतलब शादी के बाद 6 महीना इंडिया में गुजार सकता हूँ, मगर उसके बाद का ग्रोथ फिर करना है.
0: सही.
1: तो मतलब ये मेरा ग्रोथ, मतलब ये जो मैंने किया हो, जमा कुंजी किया हो मैंने, ये किया हो मैंने.
0: हाँ.
1: मतलब कर्जा भी उतार दिया.
0: हाँ.
1: फैमिली वालों को नीचे भी नहीं गिरने दिया किसी के सामने. और फिर ऊपर से अपना कुछ फाइनेंस जो है जमा भी किया कि मतलब जाके, हाँ इंशाल्लाह अल्लाह ना चाहा तो शादी करके 6 महीना गुजार के वापिस से कुछ अपना कुछ करने के लिए सोचने के लिए अलग वो ग्रोथ करने की सोच रहा हूँ मैं अभी.
0: मतलब रिश्ता अवेलेबल है. रिश्ता अवेलेबल है बिल्कुल.
1: नहीं ना बहन, यही तो नहीं हो रहा ना.
0: यही तो ये तो एक तरह से ऑन ईयर, वो नहीं पहले अखबार में छुपाते थे रिश्ता जो वो वाली चीज हम रेडियो पे हो रही है.
1: नहीं मैं एक बात बोलता हूँ, ये मतलब सीरियल देखते था हम लोग मेरी मम्मी, ये रिश्ता क्या कहलाता है. तो मैं आज वो बोलता हूँ ये जिंदगी क्या कहलाती है हमसे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है. मैं तो लिसनर लोग तो मेरे को सुन रहे रहेंगे और बोल रहे रहेंगे, बोले ये क्या है, बोले सब टाइम, बोले सबके पास फोन करता है. बाकी मेरे को अच्छा लगता है फोन करने के लिए, टाइम पास करने के लिए. मेरे पास बहुत बैलेंस है. मैं इधर अमीर इंसान हूँ.
0: गुड. अच्छी बात है बिल्कुल. मतलब जो ना करने चाहिए कॉल, आपको जरूर करनी चाहिए.
1: ये ना मतलब लोग मतलब फाइनेंस है और मतलब मेंटली हेल्थ कैसे, मतलब बहन मेरी पहले मैं थोड़ा मतलब बहुत गुस्से में रहने का, हर किसी के बीच में घुसने का, मगर अभी कैसे मेंटली हेल्थ हो गया, मैं अभी शांत रहता हूँ और किसी के बीच में नहीं घुसता हूँ. तो इससे क्या मेरा मेंटल हेल्थ थोड़ा ठंडा हो गया, मतलब पहले से बहुत काम शांत इंसान हो गया. अभी कोई दो बात मेरे को बोलेगा ना तो मैं उसको बोलता भाई तीसरी क्यों छोड़ दिया, वो भी बोल दे.
0: अच्छा ओके.
1: वो भी कुछ होगा.
0: सही है.
1: हमारे वहां पर बोलते ना, हमारे मुंबई में एक कहावत है, यानी पब्लिक के ऊपर से ही है. जैसा मुझे कोई इंसान पसंद नहीं आया तो हम लोग को मुंबई में हम लोग उसको बोलते भाई चल चलते रहे पास पास, दिख मत आस पास.
0: अच्छा ओके.
1: ऐसा मतलब
0: सही. तो अब यही बोल देते हैं.
1: हाँ ये मैंने अपनी जिंदगी में कमाया बहन. अब पब्लिक ने क्या कमाया मुझे नहीं मालूम है.
0: चले हम
1: मैं तुम्हें बताता पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक कैसा मतलब और आगे बढ़ती है.
0: हाँ, नहीं,
1: क्या मैं अपनी जगह सही हूँ.
0: आप नहीं, आप सही हैं, आप ट्रैक पे हैं. आप समझे आपकी जर्नी शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे जगह पे. शुरुआत आप कर चुके हैं.
1: तुम यकीन नहीं मानेंगे, कल मेरे मतलब ऐसे ही बैठा था मैं रात के टाइम पे दोस्त के साथ में. तो मतलब बोलते ना दोस्त मिलके क्या बात करेंगे, वही बात करेंगे भाई तेरी शादी कब करेगा, तू ये कब करेगा. और वो बंदा बात करेगा जो शादी शुदा है मेरे से.
0: अच्छा.
1: वही मेरे से बात करेगा ना, तो मैं उसको बोलता भाई कैसे करूँ शादी. तो देखो दोस्त लोग भी कैसे होते ना, मतलब दिमाग वाले लोग है, बोलते भाई काम कर दो ऐप बताता हूँ शादी करने के. बोला कौन से. बोलता है shaadi.com और एक jeevansaathi.com.
0: मतलब
1: ये मैंने कमाया हूँ.
0: इतना चल रहा है,
1: ये ग्रोथ किया मैंने अपने लाइफ में, मतलब ऐसे दोस्त. और उसके बाद में उसने मेरे को डाउनलोड भी किया, उसने मेरी आईडी भी बना दिया और अब लड़की सर्च कर रहा है. बताओ ऐसे दोस्त लोग हैं.
0: चले अच्छी बात है ना भाई, मतलब ये तो होना चाहिए, ये तो मतलब अच्छी चीज है. ये वाली ग्रोथ तो आपकी बिल्कुल सही चल रही है.
1: ये ग्रोथ कोई कर सकता है क्या, मतलब मैं आपके लिसनर लोग से चाहता हूँ कि ये ग्रोथ कोई कर सकता है क्या,
0: मतलब ये पूछना है लोगों से.
1: हाँ ये ग्रोथ कोई कर सकता है क्या, मतलब शादी नहीं हुई तो बंदा बोलेगा चल मैं अपने घर वालों को बोलता हूँ मम्मी लड़की देख, मम्मी पापा लड़की देख, ऐसा वैसा. मगर मैं बोलूंगा मेरे दोस्त लोग जो ना वही मेरी जिंदगी में, मतलब वो लोग डाउनलोड करके सब कुछ बना के मेरे को बोलता आप शादी करो.
0: मतलब दोस्त आपने अच्छे कमा लिए, इसका मतलब ये है ना, दोस्तों को फिक्र पूरी पूरी चल रही है.
1: दोस्त है मतलब उसके आगे कोई और दोस्त लोग नहीं बनाया मैंने.
0: लेकिन चले वो आपके लिए इतनी फिक्र कर रहे हैं और इतना सोच रहे हैं. और मैंने कुछ शादियां देखी हैं आपने जिनका बताया ना, एप्स वगैरह का, तो ये होती हैं, मतलब हो जाती हैं शादी. मैंने कुछ देखी हैं शादियां तो माशाल्लाह उनको काफी अरसा हो चुका है और काफी सेट चल रहा है मामला, तो अच्छी बात है, नॉट बैड.
1: देखो अभी ऐसा है मतलब अल्लाह पाक सबको खुश रहने का क्या बोलते हैं उसको, मौका दे।
0: हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: और हम भी खुश है।
0: हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: एक दोस्त मेरी तरफ से सबको, एक ही दोस्त बनाओ, ज्यादा दोस्त मत बनाओ, ऐसा दोस्त बनाओ जो तुम्हारे लिए रात में एक घंटा निकाल के मैडम को बोले मैडम आना बिजी
0: और आपके लिए रिश्ता तलाश कर सके, है ना।
1: मैं कल में ये बात को मैं सोच सोच के हंस रहा था मैं, वो उसकी मैडम का फोन आया, वो ही निंता और क्या बोलूं मैडम वाला बता मौजूद बईद बईद इमसी बन वो मेरे रूम में बैठा हुआ है, दो कदम दूर मेरा रूम है, वहाँ बैठा हुआ है। बोलता ये कौन सी दोस्ती है भाई, बोलता बोलता क्यों मालूम, बोलता मैं चाहता हूँ कि तेरी जल्दी शादी हो जाए और तू यहाँ से कतर से निकल जाए।
0: सही हो गया आसिफ। चले नहीं, हमारे साथ हैं एक और कॉलर, आपके लिए तो हम इज्तमाई दुआएं करवाते हैं सबसे कि भाई आसिफ की जल्दी शादी हो जाए, ठीक है। चले जी आसिफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दुआएं हैं भाई आप, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, इंशाल्लाह ताला, ठीक है। चले जी, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू जी। अच्छा जी, तो एक और कॉलर हमारे साथ और आसिफ के लिए तो आप सब लोग भी दिल दिल में दुआएं कर दीजिएगा कि आसिफ की जल्द से जल्द शादी हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
0: जी क्या हाल चाल है?
2: मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िलहज का महीना आप सबको
0: शुरू हो गया, बिल्कुल आपको भी मुबारक हो। बिल्कुल
2: आसिफ भाई बेफिक्र रहिए, आपकी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ज़िलहज का मुबारक महीना है इंशाल्लाह, सब सब जो है हज और उमरे के लिए गए हुए हैं और सब लोग रोजे भी रहते हैं, तो इंशाल्लाह दुआ फरमाएंगे आपके लिए। आपके वो जो दोस्त है ना, मुझे लगता है आसिफ भाई कि वो ना शादीशुदा इंसान है, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रही आपकी आजादी, इसीलिए उन्होंने सारी एप्लीकेशन डाल रखी है।
0: अच्छा, मुझे लगा वो कह रहे थे ना ऐप, मुझे लगा वो उसने शादी के ऐप गिनवाना शुरू कर दिए, मुझे लगा नुकसानात बता रहे होंगे लेकिन पता चला नहीं भाई ऐप की बात हो रही है।
2: हाँ, बॉम्बे के स्लैंग में थोड़ा सा वो होता है कि एप्लीकेशन का ऐप, तो हमारे आसिफ जो है बॉम्बे से हैं, तो मैं भी बॉम्बे में 4 साल रहा हूँ, तो लैंग्वेज का मुझे पता है।
0: तो नहीं, मैं मुझे लगा, मैंने कहा शायद
2: आसिफ भाई शायद आप सुन रहे होंगे, तो आपकी शादी हो जाएगी भाई, जान टेंशन ना लें।
0: और अभी जो लग रहा है ना कि बहुत लेट हो गई है, फिर इनको बाद में लगेगा बहुत जल्दी कर ली।
2: नहीं मतलब बाद में ऐसा होगा कि भाई की क्यों, अच्छा था फैसला। शादी वो है ना कि जो खाए वो, शादी का लड्डू वो है जो खाए, जो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए।
0: लेकिन भाई साहब देखिए अच्छी बात है, मतलब शादी खैर अच्छी चीज़ है, अपनी शादी की लगनी भी चाहिए। और उसमें मतलब देखिए पता क्या होता है कि अक्सर जगहों पे ये भी एक वो बना हुआ है कि कोई अपने मुंह से शादी की बात करे तो लोग कहते हैं देखो कितना बेशरम है, लड़कियों के मामले में तो बहुत ही होती है ये बात ना। लेकिन मेरे हिसाब से इतना मेच्योर, इतना अकलमंद आपको होना चाहिए, अपने लिए कोई और नहीं सोच रहा ना, कम से कम अपने लिए खुद तो सोचो ना, अपनी जिंदगी बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है तो आपको सोचना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है।
2: नहीं नहीं इंशाल्लाह अच्छा ही होगा उनके साथ में, और एक अच्छे जो है नेक जो है उनके हिसाब से जो भी अल्लाह उनके साथ नेक नसीबा करे, यही दुआ करते हैं
0: इंशाल्लाह।
2: और रही बात पर्सनल ग्रोथ की, कमिंग टू द टॉपिक, आज का जो टॉपिक था आपका पर्सनल ग्रोथ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पैसे के मामले में तो जो है जैसे तैसे हो ही जाएगा, तो वो जो है ना कि ग्रोथ, मेरा ये मानना नहीं है कि पर्सनल में कि आप पैसे के रिलेटेड, पैसे के उसमें ये तो अल्लाह की तरफ से प्योरली वो है, आप कितनी भी मेहनत कर लो आपके मुकद्दर में जो चीज आनी होती है वो ही आती है, ना वक्त से पहले ना नसीब से ज्यादा, आपको जितना मिलना है उतना मिलना ही मिलना है। आप देखेंगे इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, इतने मतलब होटल्स चलते हैं, सब होता है, लेकिन अभी एक इंसान है जो सुबह 6 बजे से या 4 बजे से अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे से 3 AM से वो अपनी होटल खोलता है, रात में 12 बजे तक होटल पर बैठता है और वो उतना नहीं कमा पा रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो क्या उसकी ग्रोथ नहीं हुई है? और वही एक इंसान जो सुबह में 10 बजे होटल खोलता है और शाम में 10 बजे बंद कर देता है कि वो ग्रो करते जा रहा है। तो ये फिनेंशियल जो थिंग्स होती हैं, आप जितना अपना बेस्ट देना है आप दे दो, बाकी आपके नसीब से आपको जितना मिलना है उतना मिलेगा, ये अल्लाह ने तकसीम कर दिया है।
0: बिल्कुल ऐसे,
2: इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये सब बनावटी बातें हैं कि मेहनत करो, इधर करो, यहाँ नहीं हो रहा है तो वहाँ करो, हाँ ठीक है करना चाहिए, लेकिन इस पे हमको कम्प्लीटली जो है डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए और एक्सपेक्टेशन हमारी एकदम हाई नहीं कर लेनी चाहिए, उससे डिप्रेशन हो जाएगा, उससे टेंशन हो जाएगी, जो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो ना मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और जो भी है अल्लाह का शुक्र है। और रही बात दूसरी, जो अपने पर्सनल लेवल पे हमको ग्रोथ करना है, ऑब्वियसली ये मेंटल हेल्थ, आपने जिस पे कैसे बताया कि अब सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल किया करते थे और मैच्योरिटी लेवल आ गई है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कि मैच्योर आदमी को भी एडवाइसेस की जरूरत पड़ती है. व्हाट आई लर्न फ्रॉम द लाइफ कि एक सर्टेन पॉइंट पर आकर आप जो है स्टक हो जाते हैं, आपका माइंड रुक जाता है कि वहां पर आप कुछ कर नहीं पाते हो. जैसा कि एक कहावत मशहूर है ना कि अक्सर मेरे अपने ही आ जाते हैं मेरी शमशीर के नीचे. तो वहां पर जो है थोड़ा सा हमको हो जाते हैं कि ब्लॉक है. हम बाहर वालों को बड़ी एडवाइस देते फिरते हैं लेकिन जब खुद पे जब बात आती है तो हम खुद परेशान हो जाते हैं. तो ऐसा है. चाहिए कि हम दूसरों की जिंदगियों से सीखें. उसके लिए हमको चाहिए कि हम जो है सबसे पहले हमारा अपना जो दीन है उसको समझें और उसकी किताबें पढ़ें. जिस तरीके से सहाबा इकराम, जिस तरीके से जो है बाकी दीगर अस्हाब जो है अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना करते हुए कैसा उन्होंने सिचुएशंस को टैकल और हैंडल किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और उसके बाद में आते हैं कि भाई बाकी आप जो भी स्कॉलर्स को पढ़ते हैं, जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं, तो वो बहुत आपको एक हेल्प करता है मेंटल हेल्थ स्ट्रांग बनाने में. आपको मेरा ये मानना है कि बुक्स आपके अगर दोस्त होंगे ना तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे.
0: बिल्कुल ऐसे ही. और फिर पता है लोगों से, मतलब जैसे आपने कल जो वो नमाज वाली बात बोली ना, मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने घर जाके भी बताई कि वाकई मतलब हमें नमाज से पहले अगर ये वाली नियत अगर हम कर लें ना, एक नियत कर लें, मतलब ठीक है हम नमाज तो पढ़ ही रहे हैं और किसी हद तक हम कह सकते हैं शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन अगर नियत कर लें कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र अदा करने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला को मुझे लगता है कि हम एक तो कॉन्शियस भी हो जाएंगे ना उस वक्त. मुझे अच्छी लगी, मैंने कोशिश की, जितनी दफ़ा मुझे याद आया मैंने उससे पहले ये नियत की और घर पर भी बताई. तो ये बड़ी जबरदस्त बात है. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आसिफ एक दूसरे, सॉरी आसिफ कह रही हूँ, समझ के, हाँ कि एक दूसरे से जो है ना बात करके मैं हर बंदे से जो मेरे लिस्टर्स कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उनकी हर बात मैं अपने तौर पे बहुत गौर से सुनती हूँ और मुझे लगता है कि वाह यार, मतलब ये जो बात की है इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए. सबसे बड़ी ग्रोथ मुझे ये लगता है कि अगर आपके अंदर ये वाली चीज़ है ना लर्निंग, अगर आपकी मतलब एक जारी है तो आप किसी से भी सीख सकते हो. बाज़ोकत कोई बच्चा आपके सामने कोई बात कर सकता है, बाज़ोकत कोई बहुत कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो बहुत पढ़ा लिखा होगा लेकिन वो इस तरह की बात कर देगा आप कहोगे वाह यार ये तो मेरे दिमाग में आई नहीं थी.
2: हाँ बिल्कुल सही है. मैं भी तो वही बताने की कोशिश कर रहा था. और हाँ आपने कुछ हद तक जो है सही कहा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है हमारी बात को इस काबिल समझा कि आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फायदा हासिल होगा. तो बहुत अच्छी बात है. जज़ाकअल्लाह, सब तारीफ है अल्लाह के लिए. तो बस यही है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, पहले चीज तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब एक इंसान, जब इंसान जब बात होती है ह्यूमन एज एन ह्यूमन, जब हम किसी से भी बात करते हैं तो उसके तीन कैटेगरीज होते हैं. पहली ये कि हम एकदम से जवाब देते हैं, दूसरी ये कि हम रुक कर जवाब देते हैं, और तीसरी ये कि हम सोच कर जवाब देते हैं.
0: बिल्कुल.
2: तो बतौर इंसान हमें चाहिए कि जब हम हमारे अल्फाजों को जब कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो सोच समझ कर उस चीज को बोलना चाहिए कि आगे वाले के जो है इसका इम्पैक्ट कैसा होगा, कितना होगा, उस हिसाब से. क्योंकि वर्ड्स जो है ना बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, बिलीव मी इतना पावरफुल होते हैं

0: वो काम करते हैं आपकी लाइफ में, इम्पैक्ट करते हैं पॉजिटिव, इधर इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे. अगर हम किसी छोटे बच्चे की मिसाल के तौर पे अगर हम परवरिश कर रहे हैं छोटे बच्चे की, अगर हम उनको कोई चीज बोलते हैं, अगर हम उन्हें डांट कर बोलेंगे एक से दो बार, तो वो जो इम्पैक्ट होता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है. वो डर उनके दिल और दिमाग में बैठ जाता है. और अगर हम वही हम उन्हें प्यार से और उसको सही तरीके से समझाएंगे तो वो उसको जो है हमेशा याद रखेंगे. तो इट डिपेंड्स ऑल. तो पर्सनल ग्रोथ में मेरा ये मानना है अपना पर्सनली कि हम हमारे अपने ग्रोथ के लिए ये देखें कि हम अल्लाह की तरफ कितना ग्रो कर रहे हैं. सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव ये होना चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ, गॉड. अब जब अब जितने भी सारे लिसनर्स है, वेदर दे आर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स वॉट एवर इट मे बी, बट यू नीड टू फॉलो द राइट एंड ट्रूथ पाथ. और आप अल्लाह की तरफ में कितना बढ़ रहे हैं वो आपकी ग्रोथ के ऊपर में आप फोकस करेंगे तो सारी ग्रोथ आपकी सब ठीक ठाक हो जाएगी.
1: ग्रेट,
0: सब ठीक ठाक हो जाएगी. जहाँ जहाँ भी एरिया में लूप होल्स हैं वो सब अल्लाह सुबहान व तआला फिक्स कर देंगे. 101% फिक्स करेंगे. थोड़ा डिले होगा या फिर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अल्लाह को भी तो पसंद आता है ना. और कहते हैं ना कि महबूब को रूट कर और उसे मनाने का मजा ही कुछ और है. तो उस तरीके से जो है अल्लाह से मोहब्बत जब जुड़ जाती है, अल्लाह से जब लगाव जुड़ जाता है, तो उसके बाद में जो मजा आता है ना इबादतों में और अल्लाह से जो है हम में और जो है अल्लाह से बातें करने में, तो वो एक अलग ही लुत्फ है. वो किसी को वो मयसर नहीं हो सकता है, उन्हीं को हो सकता है जो पर्सनल ग्रोथ पे अल्लाह से कनेक्शन बनाए.
1: वेरी नाइस.
0: और सबसे इम्पोर्टेंटली कि दुनिया में हर इंसान अच्छाइयों से मोहब्बत करता है, अच्छाइयों की सुनकर. लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप किसी से रिश्ता बनाते हो, खासतौर पर मैं आसिफ भाई से कहना चाहूंगा, आसिफ भाई आप जो है शादी के लिए बहुत डिस्परेटली वेट कर रहे हो तो मैं ये चीज बताऊंगा कि शादी इतनी आसान चीज नहीं है भाईजान, क्योंकि शादी एक ऐसा अमल है जिसमें अल्लाह सुभान व तआला जो है आपको मुकम्मल मुसलमान बना रहे हैं. अभी तो आधा दिन है तो पूरा दिन हो जाएगा. और जब आपके शरीक हयात आएंगे तो भाईजान मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपसे, जो भी शादीशुदा नहीं है या शादी करने वाले हैं, उन सबसे एक ही बात बताना चाहूंगा कि अच्छाइयां तो सब एक दूसरे के साथ में बताएंगे, लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंटली आप लोग आपके पार्टनर की खामियों से मोहब्बत करें, ना कि उसे बदलने की कोशिश करें. तो जब आप मोहब्बत करना कर लेंगे तो लड़ाई झगड़े का तो सवाल ही नहीं होगा. अगर एक पॉइंट पे लड़ाई झगड़ा आ भी जाएगा तो वहाँ का वही उतना ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा ऊपर हाइट पे नहीं जाएगा. मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं.
1: सही बात, बिल्कुल सही. जबरदस्त जबरदस्त. समत मैं आपकी फैन होती जा रही हूँ अब तो. मैं आपकी आहिस्ता आहिस्ता फैन होती जा रही हूँ. नहीं सीरियसली मतलब बहुत जबरदस्त. माशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब लोगों को इसी तरह से सोचने का भी एक तो मतलब जो ना मौका दे, तौफीक दे. मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली.
0: नहीं लेकिन किसी को इम्प्रेस करने के लिए मैं यहाँ पर कॉल नहीं कर रहा हूँ. कोशिश है अगर कुछ अच्छी बातें मैं दुनिया के साथ में शेयर करूँ.
1: नहीं देखिए पता है क्या,
0: अमल करने
1: किसी की कोई बात अच्छी लगे तो हमारा दीन कहता है कि उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए. इसलिए नहीं कि उसको कोई सर पे चढ़ाना है या वो कुछ. मुझे पता है आप नहीं करेंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बाशऊर आप इंसान है. लेकिन ये कि कोई चीज़ अच्छी लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से ही अल्लाह ताला किसी को मतलब जो ना एक वो देता है, सोच देता है. वो कहते हैं ना हम सोच भी नहीं सकते अगर अल्लाह हमारे दिमाग में सोच ना डाले. तो डेफिनेटली अल्लाह ताला की ही सारी तारीफें. लेकिन मुझे पर्सनली आपकी मतलब बातें काफी अच्छी लगती हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे और तरक्की दे इंशाल्लाह ताला आपके इल्म में. बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया. ख्याल रखिएगा, कॉल करते रहें. थैंक यू रही जी. तो हमारे साथ थे भाई समद और जबरदस्त बातें, बहुत ही कमाल मतलब जो जो जो चीजें उन्होंने कही. और मुझे लगता है वाकई मतलब मैं कुछ हमारे लिसनर्स हैं जिनकी कॉल से मैं खुद बड़ी इंप्रेस हो रही होती हूँ. उसमें से समद अभी नए नए शामिल हुए, ज्यादा अरसा नहीं हुआ इनको शो में शामिल हुए हुए, लेकिन कमाल बातें करते हैं. इसी तरीके से सैयद भाई हैं हमारे, वो भी बड़े कमाल बातें कर जाते हैं. करीम भाई हैं, बहुत सारे मतलब हमारे सारे ही कॉलर्स माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं. लेकिन जो न्यू एडिशन है ना मैं उनके नाम ले रही हूँ, पुराने वाले तो काफी हैं लेकिन न्यू एडिशन में जो जो मेरे दिमाग में लोग आ रहे हैं माशाल्लाह से ये इतनी गहरी बातें कर जाते हैं कि आप उस पे सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि वाह यार जबरदस्त कमाल बात की. चलिए जी इसी के साथ एक म्यूजिकल ट्रैक. कॉल्स बहुत आ रही हैं लेकिन पहले एक गाना मैंने इसलिए लेके नहीं रखी है होल्ड पे अभी की कॉल, कि मैं थोड़ी देर बाद गाना चला के फिर वापस आते हैं.

0: आप सुन रहे हैं डियर फैमिली आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: राइट वेलकम बैक आप सुन रहे हैं 107 एफएम और हमारे साथ हैं कौन हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुह कैसी हैं आप
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मिस अली
2: अच्छी
1: जी क्या हाल बड़ी है
2: बस हाल ठीक है शिकायत बहुत ज्यादा है आपसे
1: अल्लाह क्या हो गया मैंने क्या कर दिया
2: अरे भाई बदले बदले हमारे सरकार नजर आते हैं
1: भाई क्यों ऐसा क्यों लगा आपको
2: पिछले हफ्ते आपको यकीन कर रहे हैं कि मैंने इतनी कॉल की है आपको इतनी कॉल की है 10 मिनट मुझे एक रियाल में लेने पड़े हैं और वो मुझे आपने
1: तो होल्ड पे रख के गाली कर दिया करें ना मुझे मैंने आपको हमेशा कहा मुझे मैसेज कर दिया करेंगे कॉल कर लो मैं आपको कॉल कर लूंगी
2: और मैंने किया है
1: आपने मैसेज किया था
2: किया था बिल्कुल पर पढ़ा भी नहीं आपने देखा भी थर्सडे को किया था
1: और फिर कल ऐसा हुआ है तो
2: नहीं माशाल्लाह पता क्या है कुछ होते हैं प्रोग्राम ऐसे जिसमें कॉलर्स को ना बड़ा अपनापन महसूस होता है वहाँ कॉल करते वो अपनी हर बात
1: हाँ ये है मैं पता है खुद भी सोच रही होती है ना मिस अली तो मुझे ना मतलब ये अल्लाह ताला की खास ब्लेसिंग लगती है कि अल्हम्दुलिल्लाह
2: होता है
1: हाँ
2: कुछ लोगों से ना ऐसे वाइब्स ऐसे वेव्स निकलती हैं कि वो बंदा उसके साथ इतना वो अटैच हो जाता है यानी कि मेंटली कि उसके साथ बात करने में अच्छा लगता है कि भाई कर लो शायद कोई मन का बोझ हल्का हो जाए शायद कुछ इस तरह और कल मैंने इतनी कॉल की कल मैंने कहा मेरी तो नहीं मिलनी एक तो मेरे पास बैलेंस भी नहीं फिर मैंने अपनी भाभी साहिबा से कहा कल उन्होंने कॉल की मिसेज अफजल वो मेरी भाभी है
1: अच्छा आपकी भाभी है वो
2: हाँ तो सही। मैंने कहा भी आज टॉपिक आ रहा है नेमतों पे तो क्या है आपके पास नेमतें कहती मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है मैंने कहा नहीं आपके पास एक ऐसी नेमत है जिसका आप जिक्र करेंगी ना तो डेफिनेटली पता नहीं कहाँ से किसकी दुआ लग जाए आपके
1: और
2: बेटे
1: यकीन
2: को?
1: करें कि सबने दुआएं की हैं और इवन मतलब मैं खुद घर जाके भी मतलब जो है ना दिमाग में रहा कि नहीं यार मिसेस अफजल इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है ना
2: इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह ताला जरूर होगा
2: मैं तो उसकी फूफो हूँ ना मैं तो उसको देखती रहती हूँ मैं उसको ज्यादातर सख्त रवैया रखती हूँ उसके साथ क्यों और वो मेरा सख्त रवैया बर्दाश्त भी कर लेता है
1: अच्छा
2: उसको क्योंकि मैं उसको किसी चीज से रोकती हूँ कि वो गलत ना करे माँ बाप है ना वो जरा थोड़ा ना करो ढील दे दो ढील दे दो मैं किसी नहीं ढील ली थोड़ा सा उसको पता चले कि मैं ये गलत और देखिए मैं अगर नॉर्मल बच्चा भी कुछ गलत कर रहा होता है तो हम उसे रोकते हैं ना लेकिन मैं उसको ये नहीं कि मैं उसको डांट डपटू या मारू मैं उसको वैसे सख्त थोड़ा लहजा रखती हूँ तो कल मैं सुन रही थी मैं खुद भी रो रही थी उनकी कॉल सुन के तो जाहिर है मेरा तो भतीजा है ना मेरा तो खून है वो मुझे तो आएगा ही ना तो बस मैंने कहा फिर आप कर लो कॉल तो इंशाल्लाह मैंने कहा देखो कोई दुआ निकले और माशाल्लाह सबका बहुत शुक्रिया बस करते रहे उसके लिए दुआ जितने भी सुनते हैं ना करते रहे हमें तो ये है कि बस माँ बाप है आपने बिल्कुल बात सही की है आज है पता नहीं फिर कौन केयर करने वाला है तो क्यों ना उनकी जिंदगी में
1: अल्लाह ताला ना वही मैं कहती हूँ कि अल्लाह जो रास्ते बना रहा होता है ना मिसली हमें अंदाजा ही नहीं होता कि वो किस तरह से रास्ते बनाता है कहाँ पे जहाँ हमारी कहते हैं ना सोच खत्म होती है अल्लाह ताला उसके बाद दर खोलने वाला है तो बस हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए उम्मीद कभी नहीं खत्म होनी चाहिए
2: भाई बिल्कुल मैं उनको कहती हूँ कि देखो आप लोग ये मत सोचो कि ऐसा क्यों हुआ ये सोचो कि पता नहीं ये कोई जरिया है इंसान है खताकार है कई गलतियां करता है तो कोई भी अगर कहता हो तो मैं कहती हूँ कि तुम इसको अपनी बख्शिश का जरिया
1: एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है आज यकीन करें कि मेरी अपनी बहन से बात चल रही थी और मैं यही

0: कह रही थी, मैंने कहा कि देखो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों के ऊपर उनको सुबह सुबह सुबह सुबह उठाते हैं, उनका दिल नहीं चाह रहा होता स्कूल जाने का, उनको ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं हम, उनको उनकी से कोई गलती होती है हम उनको डांटते हैं, उनको हम शायद जहर लग रहे होते हैं, मतलब कि माँ बाप हर वक्त हमें तकलीफ दे रहे हैं, मुश्किल में डाला हुआ है हमारी ज़िंदगी को, लेकिन माँ बाप की क्या क्या थिंकिंग होती है कि ये सारी जो स्ट्रगल ये कर लेंगे ना उसके बाद इनकी ज़िंदगी किसी ट्रैक पर आ जाएगी, तो अल्लाह ताला बेहतरी के लिए अल्लाह ताला को ये तो अच्छा। फिर भी हमारा ना कहीं मसली लालच होता है, हम सोच रहे होते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है औलाद, आज अगर कुछ नहीं किया तो कल को क्या होगा, कल को मुश्किल, हमारी कहीं ना कहीं गर्ज है। अब सोचें कि वो रब्बुल कायनात जिसको ना हमारी इबादतों से कोई ना करें तो ना करें, हम अपना नुकसान करेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल देता है, वो हमें आजमाइश देता है, इसलिए कि हम ये वाली ज़िंदगी जो हम छोटी सी है, जो हम पहर या कुछ घंटों की ज़िंदगी है और इसके बाद एक तवील ज़िंदगी है, तो वो हमारी आगे की फ़िक्र करता है, हमारे फ्यूचर की फ़िक्र करता है, तो ये कितना बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला चाहे तो हमें छोड़ दे हमारे हाल पे, अल्लाह को तो कोई गर्ज नहीं है।
1: बिल्कुल नहीं, हाँ वो तुम्हारी नीतों को देखता है, तुम्हारी बातों या उससे को कोई गर्ज नहीं, दिल और नीतों से को का। हाँ जी, आज आपके टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आपने एक टॉपिक लिया है पर्सनल ग्रोथ, जिसका मतलब उर्दू में देखा जाए तो एक जाती नशोनुमा। ठीक है, मैं शामिल जिंदगी में यही बात पेरेंट्स से ही स्टार्ट करते हैं कि, और टीचर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो हमारी इसलाह करते हैं, जो हमें समझाते हैं, जो हमारी जो जो एक पर्सनैलिटी है उसको संवारते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी विल पावर के जरिए उसको ख़त्म करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम, हम अल्लाह पर, वो ये एक शौरी तौर पर कि इंसान सोचता है कि कोई ज़ात है जिसकी मुझे इबादत करनी है, ये एक ज़हनी तौर पर इंसान के शऊर में ये बात है कि कोई ज़ात है जिसके आगे हमने झुकना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस अल्लाह के आगे झुकना है, उसी से मुरादें मांगनी है, उसी से दुआएं मांगनी है, उसी से लौ लगानी है, ये एक तो शुरू से है। फिर भी हम लोग इससे इग्नोर कर देते हैं, दूर हो जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक तो ये ज़हनी बेदारी है, शऊर है, इसको बेदार करना है हमें। दूसरा, अगर हम में कोई गलतियां हैं, कुछ कोताहियां हैं, कुछ हमारे इखलाक में कुछ है, तो यानी हम बहुत कुछ कह देते हैं, मेरे जैसा बंदा कुछ भी आके कह देता है, बाद में पछताता है, हाय मैंने क्यों कह दिया, हफ्ते दो हफ्ते हो गए मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि मेरी कोई बात शायद बिजनेस को बुरी लगी हो, मैनेज को लगी हो,
0: किसी को भी कोई बात बुरी नहीं लगी है, बस अब आप कल से कभी भी ऐसा कभी भी होना आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला देखूंगी, बार बार देखूंगी और फिर मैं कॉल करूंगी आपको।
1: बस अब थोड़े से बंदा जरा एज में आ जाता है ना, तो फिर उसका होता है कि थोड़ा सा कुछ कह भी दे लेकिन बड़े तरीके से, फिर भी बच्चे का दिल दुख जाए या किसी का, तो फिर वो फिर हमें ही तकलीफ होती है, क्योंकि हम है जरा सेंसिटिव हसास के समय लोग,
0: हमारे सारे लिस्टनर्स कह देते हैं उसके बाद फिर सोचते रहते हैं ये कुछ गलत कह दिया, गलत हो गया,
1: अच्छा है ना,
0: अच्छी बात।
1: हम क्यों हम एक फैमिली है, क्योंकि हम सब एक ही तरह की सोच रखते हैं, वी आर अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, दूसरा ये हमने अपने अखलाक किरदार को सुधारना है, कि हमें लगे कि हमारी कोई आदत किसी को बुरी लग रही है तो वी हैव टू उसको पहले खुद खत्म करें, बजाय कि कोई हमें पॉइंट आउट करे कि ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। अगर किसी ने कर भी दिया तो बजाय हम उसको दिल पे ले लें, हम अकड़ जाएं, नहीं क्यों मैं, आप बड़े अच्छे हैं, आगे पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, फला को देखा, उसको देखा, बहन को देखा, भाई को देखा, हमारी आते तो हम क्यों ना, हमने दूसरों के ठेके नहीं ले रखे, हम अपने अमाल के जवाब दे हैं, सो हमें अपनी करनी चाहिए। तो दिस इज द वे, छोड़े हर किसी का मामला, अल्लाह पे छोड़े हुए उसका मामला है। तो ये होता है कि इंसान को पर्सनल ग्रोथ यही है कि उसको हर वो चीज छोड़ देनी चाहिए जो दूसरों को तकलीफ दे रही है। इसके साथ साथ हमें, मैं टिल एंड अब अपनी बात करूंगी, एक टिल मेरी जितनी भी जिंदगी है मेरी कोशिश ये होती है मैं कुछ सीखती रहूं, अच्छी चीज सीखूं, कुछ ऐसी टेक्निकल चीज सीखूं जो कि बेनिफिट है, क्योंकि ये दिमाग जो है ना, ये सोच जो है ना, इसको जंग लूद नहीं करना हमने। हमने नहीं कहना आई कैन नॉट डू इट, नो आई हैव टू डू इट, आई हैव टू ट्राई टू डू इट, तो करना चाहिए। तो ये है एक पर्सनल डेवलपमेंट, और जो भी बुरी बातें हैं वो छोड़ देनी चाहिए। किसी को कह भी दो तो गलत कह दो तो माफी मांग लेनी चाहिए, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, या फिर किसी को मेरी किसी बात से प्रॉब्लम हुई है या आपको हुई है,
0: नहीं यार कुछ भी नहीं भाई, किसी को बुरा नहीं लगता है, यहाँ पे सब लोग अपनी फिक्र कर रहे होते हैं लिटरली, मतलब जो है आपको देखें, आपको लग रहा है आपने कोई बात तो नहीं कह दी, दूसरे को लग रहा होता है हमने कोई बात गलत ना कह दी हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी चीज ये है कि हम लोग अपनी खामियों के ऊपर नजर रखें, बजाय इसके कि हम दूसरों की खामियां तलाश करें और दिल पे लगा के
1: रियलाइज होना चाहिए इंसान को।

0: खुद एहसास हो कि शायद मेरी अपनी बात से किसी को, क्योंकि ये भी एक शऊर होता है कि भाई हाँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कुछ हाँ। गलत तो नहीं कह दिया, किसी की दिल आजारी, किसी का देखे ना, एक आपकी मैं बात करूंगी कि ये हाँ। जो FM 107 है ना हाँ। इसको आज कितने साल हो गए हैं। मैंने बहुत साल पहले सर सैफुर रहमान, अल्लाह मैं कहती हूँ, हमने उनसे बहुत सीखा, वो एक इंस्टीट्यूट
1: बिल्कुल
0: ठीक है, वो एक बात कहते थे हमेशा, ये आप लोगों का स्लोगन होना चाहिए, अकूनु लिन्नासि हसना, कि लोगों से अच्छे बात, अच्छे तरीके से बात करो। ये अच्छे तरीके से बात करना भी एक सदका ही है, सदका जारिया ही है, कि अगर हम किसी का दिल खुश, दो बोल से किसी का दिल खुश कर देते हैं तो और क्या चाहिए। तो ये चीजें हम, यही है हमारी पर्सनल ग्रोथ।
1: बिल्कुल,
0: किसी की दिल आजारी नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहना, अच्छा अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी को बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि आप जितना कहते हैं ना, शैतान का काम है आपको बदगुमान करना, वो आप जिस बारे में, जिस बंदे के बारे में सोच रहे हो ना कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा ही हो जाएगा। अगर आप कहोगे ना कि वो बंदा अच्छा है, नहीं नहीं उसमें कुछ अच्छाई हो सकती है,
1: बिल्कुल
0: तो क्या पता है कि चांसेस हो उसके अच्छे हो जाने के।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अगर वो फिर बंदा आगे से क्या सोचेगा, वो जो मैं ऐसा हूँ तो फिर मैं ऐसा, हम पे इल्जाम ऐसे है तो ऐसा ही सही,
1: ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। आप देखें ना, अक्सर लोग जो होते हैं तो वो ज्यादा बुरा मान जाते हैं जिन लोगों को बहुत पॉइंट आउट किया जा रहा होता है कि भाई हम तो है ही बुरे, तो फिर बुरा करके क्यों ना बुरा बने। तो ये सही बात,
0: सही है, बजाय कि वो इस्लाह करें, वो अपने आप को चेंज करें, वो कहते नहीं, वो अकड़ जाते हैं, वो ये अल्लाह माफ करे, इंसान में ये खसूसियत नहीं, ये खसूसियत शैतान की है, इब्लीस की है, हमारी नहीं, हमें बदलना है अपने आप को। सो थैंक यू वेरी मच महविश, आई होप,
1: थैंक यू मिस अली, और आपसे माजरत भी, क्योंकि आपने अगर आपको कहीं से भी लगा कि मैंने कोई आपकी बात बुरी मानी, नहीं तो मैं कभी भी नहीं ऐसा हो सकता।
0: देखो बच्चे मुझे सब पूछते ना कि महविश कौन, जब मैं बात करी तो मैं कहती हूँ अपना बच्चा है, अपना बच्चा है।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और जब भी हुआ करे भाई आप हुक्म किया करें कॉल करने का, मैं आपको
0: नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह बेटा, ना ना ऐसा नहीं कहते, हम कौन होते हैं हुक्म करने वाले, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप हमें सुन लेते हैं, आपके लिसनर हमें सुन लेते हैं, यही हमारे लिए काफी है।
1: चले, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा, और इसी के साथ बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: एक्सक्यूज मी, अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
3: हाँ उसके लिए तो
2: वैसे
3: तुम...
2: कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
3: वैसे वो तो देखो,
2: इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
3: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे। प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी, यह हबले मतीन है, कुराने करीम। आइए तलहा अशरफुल समान के साथ और आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। रोजाना 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
5: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
6: कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
5: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड। द स्टूडेंट्स गाइड तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ द स्टूडेंट्स गाइड, एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स, हमारे साथ दोपहर 3:30 से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: राइट, वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 107 FM। और मेरे पास मैसेज है मोहम्मद यूसुफ खान का, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, होप वेल, वेलकम टू द शो, हैप्पी मंडे इवनिंग। और मावज जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल ग्रोथ हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मेंटली और फाइनेंशली दोनों, और जब से यहाँ आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली ऐसे कि पहले थोड़ा मैं लोगों को रियलिटी में समझना मुश्किल होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लोगों की पहचान होने लगी है, और अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन पहले के मुकाबले में कम है। और पहले मैं बहुत बोलता था, ज़्यादा बात भी करता था सभी से, लेकिन अभी थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई है, कहाँ बोलना है और कहाँ खामोश रहना है अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनेंशली भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कतर में आने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बना ली है अपनी वाइफ और बच्ची के लिए अल्लाह के करम से और सब बड़ों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त अल्लाह का शुक्र। और इसके साथ शहजादा सलीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हम हैं आपके साथ FM 107। और भाई कहते हैं समद भाई, सुपर कॉल, ज़बरदस्त। और इसके साथ ही जसविंदर सिंह है और ये कहते हैं गुड इवनिंग मैडम जी, जसविंदर सिंह काला, दिल से देसी, क्या हाल है जसविंदर भाई आपके, काफ़ी अरसे से आप गायब गायब चल रहे हैं। और एक भाई ने कॉल कर दी थी, हाँ अच्छा करीम भाई थे, चलें जी आप देखते हैं, अभी मैं आपको ट्राई करती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या उम्र है भाई, अल्लाह ताला ने तवील उम्र देनी है आपको इंशाल्लाह। यहाँ

0: मैसेज पढ़ा, मैंने सोचा आपको कॉल करती हूँ और आप होल्ड पर हैं। कैसे?
1: अल्लाह से राजी हैं, जबरदस्त,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक।
1: बहुत बड़ी बात, दो तीन दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती से वो क्या, मैं साथ में काम भी करता रहता हूँ और कॉल लगाने की भी कोशिश जारी रहती है, लेकिन बस नसीब की बात है, नए लोग आते हैं, कोई बाहर जाते हैं, बाहर चलो कहते हैं चलो जी, किसी का कॉल तो लग गया, तो बस कोशिश जारी थी, आज मैंने टाल लिया, मैंने मैंने आज कॉल करना ही करना है जैसा भी हो। तो अच्छे अच्छे बातें हैं माशाल्लाह, आप बहुत प्यारे मौजू लेके आते हैं, बहुत अच्छी मौजू,
0: बहुत शुक्रिया करीम भाई,
1: हम हमें अगर बात करने का मौका नहीं मिले तो दूसरों से सुनते हैं, अच्छा लगता है। असल जो आज का जो मौजू आपने लाया है ना
0: जी, जी
1: ये असल में इंसान कुछ सीख ले, ये जो पैसे के मामलात है ना कि ये मैंने इतने कमाए, ये हाथ का मेल है ना, आज मेरे पास कल उसके पास, जो सबसे बड़ी ग्रोथ है, जो सबसे बड़ी जो इंसान के अंदर जो चेंजिंग आती है, जो कहते हैं कि मैं पहली साल से साल से वो सीखना है, वो इलम है, और इलम के साथ साथ तजर्बा है, ये दो चीजें जब इंसान के पास आ जाते हैं, बाकी रिस्क रोजी का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है और जाहिर है वो हमारे कोशिश के मुताबिक भी उसको करनी चाहिए, जो जितना कोशिश कर सकता है, लेकिन मिलता वही है जो अल्लाह ने डिसाइड किया हुआ है, मिलता वही है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: असल जो चेंजिंग है वो हमारी सोच में है कि हम पिछले साल जो मैंने ये काम किए थे जिन लोगों के साथ, किसी बात पे या बात करना या सुनना, हर चीज के एक अंदाज एक तरीका होता है, तो उस चीज को आगे से बेहतर करने की कोशिश की जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। वो हमारे एक कहते हैं ना, वो एक मिसाल था कि लोग लकड़ी उठाकर बर्तन उसे चीजें बनाते हैं, हम लोगों का अच्छे खासे बंदे को खराब कर देते हैं, तो असल मसला यही होता है कि बेहतरीन चेंजिंग ग्रोथ वही है जो बंदा कुछ सीख ले, कुछ सीख ले, ये सबसे बड़ी बात है।
0: सही,
1: बाकी यहाँ पर कुछ मसला ये कि असल जो सवाल आप लाती है ना उसमें कुछ चीजें और ऐड हो जाते हैं ना
0: जी जी,
1: तो उस चीज को अगर हम समेट सकते हैं 3 मिनट में वो 8 मिनट तक चला जाता है। बस आपकी सवाल का मेरे ख्याल में यही जवाब होगा इंशाल्लाह, आदमी कुछ सीख ले, ऐसी चीजें सीख ले, कहते हैं कि 100 साल इबादत से एक एक इस्लाम की बात अगर किसी को बताई जाए मेरे ख्याल में उसे सवाब ज्यादा है। तो यही वो चीज है, बाकी रही जिंदगी के मामलात, तो अल्लाह ने वाज़ेह कुरान में फरमाया है कि आप इज्तिमाई इस्लाह नहीं ला सकते। एक नबी था, उन्होंने 900 साल में 70 आदमी को जो है ना ला रास्ते पे लाया, 900 साल में 70 आदमी को,
0: बिल्कुल।
1: तो इससे फिर आयात आया है कुरान में कि आप कोशिश करते रहे, आप इज्तिमाई इस्लाह नहीं ला सकते, लेकिन हाँ ये है कि कम से कम बंदा खुद को इस्लाह करे,
0: बिल्कुल।
1: तो हर कोई इस चीज को अपने एंगल से देख रहा है, लेकिन आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे आगे जो इस्लामी निजाम है, जो सिस्टम है, उसमें हमें ये सब कुछ 1400 साल पहले बताया गया है कि एक जमाना आ जाएगा आप किसी को दीन और इस्लाम की बात बताओगे वो लड़ने लगेगा, यानी इस तरह लगेगा जैसे आपने कोई कोयला लगाया उसको। और इस चीजों को मैं इस दौर में आजमा चुका हूँ, तो मैं इन चीजों से पीछे हट चुका हूँ कि भाई नहीं हो सकता। बेहतरीन चीज वही है, बंदा हर कोई खुद को इस्लाह करे तो
0: वाकई सीरियसली हमें ना बहुत मतलब एक अच्छी बात हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम उसके दिल में वो डाल नहीं सकते, तो इसलिए फिक्र हमें अपनी करनी चाहिए, हम अपने आप को बेहतर करें, हर बंदा अपने आप को बेहतर करे।
1: बिल्कुल, बेहतरीन चीज यही है, बेहतरीन चीज यही है कि आप हर शख्स अपने आप को सीधा करे, माशरा खुद ब खुद चेंज हो जाएगा,
0: बिल्कुल
1: बचेगा ही नहीं,
0: बिल्कुल ऐसे ही करें।
1: लेकिन ये है कि ये कोशिश तो हमें अल्लाह के रसूल ने बताया है कि आप इज्तिमाई इस्लाह अल्लाह ने बताया है कि आप इज्तिमाई इस्लाह ला नहीं सकते। एक घर में अगर 5 से 6 बंदे होंगे उनको संभालना, आजकल तो भाई 2 बच्चों को मजबूरत के साथ, अगर किसी के 2-3 बच्चे एक बीवी हो उसको संभालना मेरे ख्याल में हर किसी के वक्त की बात नहीं है, क्योंकि उसका भी एक जहन है, एक सोच है, वो आपको थोड़ी तस्लीम करेगा कि जी जो आप कह रहे हैं वो सही है। तो यही वो चीजें हैं कि बस हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चाहता है कि मैं ग्रोथ करूं, मैं अपने आप को चेंज करूं, मैंने बहुत बड़ी चीजें पाए, तो वो अपने आप को वो चीजें अपने आप के अंदर लाओ कि तुम्हारे जबान से, तुम्हारे हाथ से, आपके हाथों और जबान और पैरों से किसी को नुकसान न पहुंचे।
0: सही हो गया भाई,
1: वो चीज
0: चले जी, गुड, जबरदस्त। थोड़ी एक कॉलर बस हमारे पास और है, उनको भी लेना है, 2 मैसेजेस हैं, ठीक है, चले, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू।

0: रखिएगा।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। रही जी, तो हमारे साथ एक और कॉलर, और तौफीक भाई ने हमें अलवकरा से कहा अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ कौन है? इसके अलावा तौफीक भाई के अलावा हमें मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम बहन, नाइस प्रोग्राम। और ये किसने कहा है, इनका नाम मैं देख लेती हूँ जल्दी से। ये रिफत हुसैन है। रिफत, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही कॉल, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: क्या हाल चाल है सैयद भाई, इतने अरसे के बाद कहाँ गायब थे आप?
2: मैं तो मेरी तारीफ सुन के फोन करा, खुश हो गया अभी आपने मुझे।
1: मैंने कहा भाई आ ही नहीं रहे, कब उसकी तारीफ कर दो, सुनकर आ जाएंगे।
2: अल्लाह का शुक्र है, आप तो आपकी तारीफ आपके लिए भी है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैडम।
1: नहीं नहीं, आप लोगों से मैं सीरियसली मतलब जो है ना, मैं बड़ा शुक्र अदा करती हूँ इस बात पे कि आपको लोग अच्छे, मतलब अल्लाह ताला आपको अच्छे जहन मिलवाता है ना, जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। तो अल्लाह ताला की ये भी एक बड़ी नेमत है जिसके ऊपर हम कल बात कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशाल्लाह से सारे लिसनर्स बहुत मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
2: सही बात। आज मैं एक्चुअली जवाब देने फोन नहीं किया, एक दो मिनट बात करूंगा। वो मिसेस आसिफ बेचारे, उनके लिए बहुत दिल से दुआ किया मैंने, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद है कि उनके बच्चे को बात करना आ जाएगा और वो जो तड़प है उनकी मैडम की वो खत्म हो जाएगी और बहुत खुश हो जाएंगे, अल्लाह से उम्मीद है
1: इंशाल्लाह।
2: जी जी, बहुत बहुत लोगों ने भी दुआ की होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल बहुत अच्छा नहीं दिखा, मैं बहुत सैड हो गए थे बेचारे।
1: जी जी,
2: कल सुन रहा था मैं उनको, कल कोशिश करा मिलाने की, बट वो कौन सब है वो नंबर दिया, जुल्फिकार भाई कौन है?
1: जुल्फिकार नैन
2: साहब। जुल्फिकार नैन साहब की बात याद आ गई, आप 5 मिनट जल्दी पहले एक गाना लगाई गाड़ी में बढ़िया जाके
1: ऐसे ही
2: तो इसीलिए बिल्कुल नहीं गया, बोला हो गया भाई टाइम हो गया, गाना लगा के बैठ गया मैडम जाके।
1: नहीं, वो गाना लगाने की बात नहीं होती, बस आखिर में क्योंकि फजील ने आके संभालना होता है ना, तो इसलिए स्टूडियो मैंने छोड़ना होता है। ये चक्कर होता है।
2: जी जी,
1: और आज भी आपकी बिल्कुल आखिर में कॉल आई, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक।
2: आप
1: किसी दिन जल्दी में कॉल करें और फिर इंशाल्लाह लंबी बात करेंगे।
2: एक मिनट एक मिनट, सरप्राइज ले गया आपके लिए, बात करिए, कोई मेहमान बैठे हैं मेरे साथ।
1: हाँ, कौन? वालेकुम अस्सलाम जी,
3: मैं
1: हमें समझ गई थी, मैंने कहा आप बोले, मैं इससे पहले बोल दूं गलत निकले। कैसी हैं आप, ठीक ठाक है? चले, वेलकम बैक माशाल्लाह से। हम सुन रहे थे कि आपने आना है, तो आप आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जबरदस्त जबरदस्त। तो कब कब आना हुआ वापस?
3: हम लोग
1: अच्छा अच्छा जबरदस्त जबरदस्त, इसीलिए सैयद भाई हमें भूल गए, मतलब इसीलिए कॉल नहीं कर रहे हैं आज। अच्छा, बिल्कुल बता रहे थे बिल्कुल। चले जी भाभी, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह फिर जरूर बात करेंगे, बस बिल्कुल आखिर में जाने जाने का टाइम हो गया, इंशाल्लाह ताला आपसे बात होती है। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना बहुत। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सैयद भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो इसके साथ ही बस मैंने इजाजत लेनी है, लेकिन दो आखिर के मैसेज। सैयद खातिम हुसैन भाई, इनका मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मामिश खान बहन, ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब, शो बेहतरीन लाजवाब है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सलामत रखे, आमीन। और आप सब लोगों के लिए भी यही दुआएं भाई, अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत खुश रखे। और इसके साथ ही हैदराबाद से भाई हैं, थैंक्स भाई आपको, और ये कौन, सैयद भाई को आसिफ के किसी। और इसके साथ ही भाई समद ने भी आपके लिए बड़ी दुआएं की हैं, इंशाल्लाह ताला आसिफ आपका हो जाएगा, इंशाल्लाह ताला मामला सेट होगा। और इसके भाई, इसके साथ ही मैं गाना भी आखिरी लगा देती हूँ, और असमद आफरीदी का मैसेज जल्दी जल्दी से पढ़ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप ही वेरी नाइस टॉपिक, पर्सनल ग्रोथ वैसे तो आखिरी सांस तक होनी चाहिए, और मैंने भी कुछ चीज़ों में ग्रोथ किया है। नंबर वन, बिलावजह जज्बातीपन को जिंदगी से निकाल फेंका है, जो सिर्फ नुकसान का बाइस होता है। सेकेंडली, अब मैं बेवकूफ़ नहीं बनता लोगों के हाथों, और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीडिंग बुक्स ऑफ कोर्स क्या, बिकॉज हाँ, जब हम किताबें पढ़ते हैं तो फिर हमारी शख्सियत और ज़बान खुद ही मतलब जो है ना बदल जाती है, आपको बोलना नहीं पड़ता। मुस्तनसर हुसैन तारड़ कहते हैं, जब तुम किताबें नहीं पढ़ते तो नई चीज़ें, नए ख्याल, ताज़ा सोच नहीं सीख सकते, फिर तुम्हारे पास लोगों को दिखाने के लिए अपने कपड़ों, जूतों, खानों और सैर गाहों के सिवा कुछ नहीं होता। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त, बहुत आला। चले, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे कल, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: गुड इवनिंग। लेकिन ये कहने के बाद मैं गाना नहीं गाऊंगा। हेलो हबीब, अस्सलाम वालेकुम। टाइम फॉर द टाइम चेक एफएम 107 की स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 5:02 और आप सुन रहे हैं शो।

0: FM 107 पे वाइब ट्रू 5:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और आज का दिन मंडे, और यू नो रेगुलर बेसिस पर हम अब ये पूरे हफ्ते जो है बात करेंगे बुक फेयर के बारे में जो कि चल रहा है कतर में। ये 35वां इंटरनेशनल बुक फेयर जो कि DECC में हो रहा है, जहां से लाइव जुड़ेंगी द वन एंड ओनली ए फॉर अमिता। बिल्कुल, उनसे करेंगे बात और जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, उनको कौन सी किताबें पसंद आई, पसंद आ भी रही है कि फिर नहीं आ रही है, है ना। उसके अलावा एक भाई का कल सवाल था कि यार वो उर्दू वाली किताबें उनका सेक्शन कौन सा है, तो आज मैं उनसे इल्तिजा करूंगा कि अगर मिल जाए तो ज़रूर बताएं, उन भाई की रिक्वेस्ट थी, सो उस पर भी ज़रा नज़र डाली जाएगी। और उसके अलावा हम बात करेंगे अमिता से, सारी जानकारी लेते रहेंगे, फिर वेदर अपडेट और ये सारी बातें भी चलती रहेंगी FM 107 पे। माहौल क्या है, क्या हिसाब किताब है, क्या हाल चाल है, आप बताइए। बाकी एक प्रॉब्लम चल रही थी कुछ 3 हफ्ते पहले अगर आपको याद हो, वो ये थे कि मच्छर। यार मैं यू नो यहाँ पर आने से पहले महवेश का जब एकदम शो चल रहा होता है ना, तकरीबन 40-45 हो रहा होता, तो मैं उस स्टूडियो में आकर बैठता हूँ सामने वाले में, और कोई ना कोई आकर प्यार मोहब्बत दिखा जाता है मुझसे, खाना जो है वो ले जाता है, पेट भर जाता है। एक मच्छर तो काट के कहीं ना कहीं से जा रहा है, पता नहीं कहाँ से भाई इन लोगों ने रिप्रोडक्शन कर लिया इधर और वो दूसरे वाले स्टूडियो में ये लगातार चालू है। अच्छा ये भी है ना कि इन लोग की जिंदगी बहुत लंबी थोड़ी होती है, मतलब बहुत ज्यादा होता है कि 10 दिन जी ले यार, पता नहीं कहाँ ये 2-3 महीने से उधर ही लगे पड़े हुए हैं, है ना। 10 दिन भी ये जीते नहीं है, इनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है, मुश्किल से 2-3 दिन। मैं कहता हूँ कि चलो अच्छी वाली प्रजाति होगी इनकी, है ना, अच्छा इनका हिसाब किताब, इनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, ये लंबा जी रहे हैं, लेकिन कितना लंबा जी रहे हो भाई। और हर बार मालूम पैंट तक तो सही है, ये शूज और पैंट के बीच थोड़ा सा गैप होता है टखने के पास ये वहीं से अपना खाना लेके जा रहे हैं यार लेकिन इन मच्छरों का इतना बढ़िया है ना कि कोई भी ओआई बोआई करनी नहीं है, कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट खून पी रहे हैं, वो भी एकदम बढ़िया वाला। और मेरा तो खून है भी अच्छा वाला है, गाढ़ा वाला है, मेरा हीमोग्लोबिन अच्छा है, अच्छे हीमोग्लोबिन का खून पीकर जा रहे हैं हर इंसान मेरा खून पी रहा है, अब तो मच्छर भी यार क्या बात है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये जो प्रजाति है हमारे स्टूडियो में जहाँ से आई है, ये इतनी तगड़ी प्रजाति है भाई कि अभी तक जिंदा है। तो अगर मुझे 3 हफ्ते पहले जिसने काटा था ना, वो परदादा के परदादा ने काटा होगा और अभी जो है ये नई प्रजाति आई है, अभी तक जिंदा भाई। एक काट के जाता है लाल सुझा के, सूजन देकर जाता है, छोड़ दो मेरा भाई, अगर इन लोग कहीं दिख जाए मैं एक ही ताली में काम हो जाता है इन लोगों का। लेकिन बस ये है कि बस यू नो एकदम सटीक ताली होनी चाहिए, वो दाएं बाएं जहां हुई ये फिर देख लेते हैं। उन लोगों का बड़ा अच्छा है जिनके घने बाल हैं हाथों में पैरों में वो बच जाते इनसे वो मच्छरदानी का काम करते हैं ना ये वाली भी एक कहानी है, खैर ये वाली ऐसी कहानी जो बता नहीं पाएंगे। बाकी छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे वेदर का क्या हाल चाल है, कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनको आप इस हफ्ते अटेंड कर सकते हैं, फिर अमिता से डायरेक्ट बुक फेयर में क्या कुछ चल रहा है उस पर हम बात करेंगे, रेसिडेंट्स के लिए MOI का अपडेट और दुनिया भर की जो अपडेट है FM 107 पे आपको पता चलेंगे कुछ ही देर में। सुन रहे FM 107 दिल से देसी।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

दोस्त मैं जिंदगी की उस स्टेज पर आ गया हूँ कि अगर रील चलाते हुए खाने की कोई वीडियो चल जाए तो भूख लगने जाती है यार। मतलब इस कदर मैं भूखा आदमी हो गया हूँ, मतलब ऐसा

0: नहीं कि खाना नहीं खाया हो बहुत देर से, उसके बाद भी यार भूख लगने लग जाती है अगर कोई वीडियो देख ली, रील देख ली, तो पेट कहता है कि गुड़गुड़ गुड़गुड़ कुछ ला रहे हो क्या? उसको क्या बताए, घर में छह ही रोटी बनी थी गिन के। सलाम अलैकुम, कोई लाइन पर है उनसे बात करते हैं। हेलो
1: मैं आपकी बातें सुन रही हूँ फजी। रोटियों की बातें आप कर रहे हैं एंड
0: ये तुम्हारे साथ होता है वैसे कि तुम्हारे रील में अगर कोई वीडियो आ गई और अच्छी डिश है वैसा पेट कहता कुछ तो खिला दो मैडम, ऐसा होता है?
1: हाँ सच में ऐसा ऐसा होता है। और ये जो छह रोटी वाली बात कही ना आपने, ये हमारे घरों हर घर के हाल है।
0: हाँ क्योंकि बीवियां वो वाली होते हैं कि अरे सुनो तुमको कितनी रोटी खानी है, अब वो पूछ लेते। कभी कभार आप खाना अच्छा बना देना तो छह से इंसान सात रोटी हो जाती है। अच्छा छह ऐसा ना समझो भाई लोग कि मैं छह एक बार खा रहा हूँ, मतलब दो दो करके खाता हूँ। और मेरी बेगम वो वाली है ना कि अरे सुनो जो सुबह बना दिए शाम को खा लो, ठीक है?
1: क्या कह रहे
0: हैं, अलग अलग टाइम पे रोटी नहीं बनती भाई साहब, ये रोटी ही का चकल्लस है
1: भाई। देखो आज की जो जनरेशन है ना इंक्लूडिंग मी, रोटियों से बहुत जी चुराते हैं। प्लस हमने अगर जी ना भी चुराए ना तो भी रोटियां, मतलब जैसे मम्मियां लोग नहीं सिर्फ बात करते करते 10-15 रोटी ऐसी
0: बना देती थी,
1: वो वाला सीन यहाँ नहीं है। इसलिए जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट हो जाओ।
0: मतलब ऐसा कोई इन्वेंशन हो सकता है जिसमें रोटी बनाते हुए महिलाओं से या कोई भी रोटी बना रहा हो उनसे कोई बात करने वाला हो? अगर हो गया तो बातों बातों में 15 बन जाएंगी भाई। देखो स्टार्टअप बता दिया तुमको।
1: Yes, exactly, ये होता है। वैसे फजील इस वक्त आई हुई हूँ, 35th हमारा जो दो इंटरनेशनल बुक फेयर है और आज पांचवा दिन है DECC में। माहौल में ये कहूंगी कि आज क्योंकि वीक डे है तो लोग तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़े से हल्का क्राउड है। मतलब अगर किसी को बुक्स वगैरह देखे तो कैन जस्ट वॉक इन, दे कैन जस्ट कम एंड चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ वैरायटी बहुत है।
0: अच्छा मंडे का भी दिन है ना, तो इस वजह से भी थोड़ी सी फिलहाल के लिए भीड़ जो है बहुत ज्यादा नहीं है।
1: एग्जैक्टली। और अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जब मैं गेट नंबर 3 से एंटर हुई, हर बार मैं डिफरेंट गेट से होती हूँ, मतलब पांच ही गेट है यहाँ पर, बट व्हेन आई जस्ट एंटर फ्रॉम द गेट नंबर 3, तो जैसे आप एंटर होते हो ना तो एक छोटा सा स्टेज बना हुआ है जहाँ पर तरह तरह की ना, जैसे हमारे स्कूल के टाइम पे एक बड़ी सी एटलस की बुक नहीं होती थी, रंग बिरंगे मैप्स एंड ऑल इस तरह की चीजें, तो वैसे ही आपको दिखाई देगी एक फोटोग्राफी की बुक्स है। अच्छा। लाइक पूरी मतलब एक सीरीज है जो लगी हुई है एंड मुझे लगा कि क्या खूबसूरत फोटोग्राफी है भाई, ये तो मतलब दो चीजों का वो कहते हैं ना मिक्सचर है। तो पहले आपको जो अरब रीजन के जो बड़े फेमस पोएट्स हैं जिनका शायद हमें जिक्र नहीं उतना पता होगा, लेकिन अरबी के साथ साथ अंग्रेजी में भी उसमें चीजों को ट्रांसलेट किया गया है, उनकी पोएम्स हैं।
0: ओके,
1: तो दैट्स सो ब्यूटिफुल एंड जितना मुझे समझ में आया इट्स ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ कतर की यू नो शुरुआत से लेकर एंड तक, और ये सारी पोएट्स ने ना उसको बहुत खूबसूरती के साथ यू नो अपने अल्फाजों में बयां किया है।
0: एंड
1: ये पता कैसे आप देखो बुक, मतलब ये बेस्ट पार्ट है ना कि वो बुक्स में बहुत खूबसूरत पिक्चर्स हैं।
0: अच्छा।
1: मतलब कतर के अलग अलग जगह के सनराइजेस, सनसेट, बच्चे बस वॉक कर रहे हैं।
0: अच्छा उसमें अगर ऑथर का नाम या फोटोग्राफर का नाम कहीं, क्योंकि अगर इतनी अच्छी खूबसूरत फोटोज है ना कहीं किनारे लिखी होगी। मुझे याद है कि मैं एक जगह गया था, वो लोकेशन थी दरबलसाई, उस वक्त मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, तो वहां पर ना बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें लगी थी, तो एक तस्वीर के सामने मुझे उसकी फोटो क्लिक करनी थी। बगल में एक शख्स खड़ा था, उसका नाम था सुनील, तो फिर वो फोटो मैंने देखी तो काफी देर तक मैंने देखा सुनील उसमें लिखा हुआ था, तो मैंने कहा यार ये फोटो अच्छी लग रही, मेरी फोटो क्लिक कर दोगे? तो बड़ा प्राउड उसको फील हुआ क्योंकि कहता है मेरा नाम भी सुनील है और मैंने ही ये फोटो खींची है। तो उसकी वहां पर फोटो दरबलसाई में लगी हुई थी और काफी फोटो लगी हुई थी बहुत ही इंटरेस्टिंगली, हर जगह उसकी फोटो को मिनिस्ट्री ने भी रखी और अलग अलग वेबसाइट पे या फिर यू नो जगहों पे उस तस्वीर को शो भी किया गया।
1: एग्जैक्टली, आपका कहना बिल्कुल सही है एंड बट यहाँ पर जो भी पिक्चर्स है ना वो सारे अरबिक में लिखा हुआ है और उनके नाम एक्चुअली इंग्लिश या उर्दू इस तरह से ट्रांसलेटेड नहीं है।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो अनफॉर्चुनेटली मैं उसे रीड नहीं कर पा रही हूँ, बट जो मैं देख पा रही तो मैंने कहा कि मैं आपको बताऊँ।
0: अरे वाह, बेहतरीन।
1: अभी फजील एक बड़ी कमाल की चीज मेरी नजर में आई, मैं चल रही थी ऐसे अलग अलग बुक के आउटलेट देखते हुए एंड सडनली जैसे इंडिया साइड में, ठीक है, मुगल एम्परर्स के टाइम पे जो बड़ी खूबसूरत आर्टिस्ट्रीज होती थी और किंग और क्वींस पे जो मतलब यू नो पेंटिंग होती थी वो ऐसे एकदम उससे बनी हुई ना रंग बिरंगी एक बुक मेरे सामने आई एंड आई जस्ट चेक इट, तो उस बुक का नाम था द रमायना ऑफ हमीदा बानो बेगम। एंड फिर मैंने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा तो आई अंडरस्टूड वो तो क्वीन ऑफ मदर ऑफ द मुगल एम्पायर मानी जाती थी. एंड इस बुक को अगर हम खोलें तो इसमें लाइक 400 ईयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट हैं जिसे यू नो कहा जाता है जूल्स ऑफ आर वेरी ओन म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट.
0: ओके नाइस.
1: तो इसकी खास बात है कि लाइक इसे दोहा रामायणा भी कहा जा रहा है जो फीचर कर रही है 56 स्टनिंग लार्ज स्केल पेंटिंग को जो कि ब्लेंड करती है इंडियन स्टोरी टेलिंग को मुगल आर्टिस्ट्री के साथ.
0: क्या बात है.
1: तो ये देखा मैंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है आपको बतानी चाहिए क्योंकि मैंने काफी सर्च किया जैसा कि आपने पूछा था कि मेरा ये बताओ कि हिंदी उर्दू की कुछ बुक्स हैं तो वो बुक्स तो नहीं है बट यस कि इंग्लिश में बुक्स हमें मिल जाएंगी क्योंकि इंग्लिश यू नो इंटरनेशनली हर कोई बोल लेता है पढ़ लेता है तो उसकी बुक्स मिल जाएंगी. एंड आई एम स्टिल सर्चिंग कि इफ आई कैन गेट सम मोर पॉपुलर ऑथर्स बुक जो कि इंडिया से हो तो ये अभी सिलसिला जारी है और मुझे लग रहा है कि ये बहुत स्कैटर्ड है क्योंकि ये अलग अलग पब्लिशर्स के ना पास ये बुक्स मिल सकती हैं. इट्स नॉट जस्ट कि जो इंडियन पवेलियन है वहीं पर ही मिलेंगी जहां मैं कल गई थी.
0: अच्छा मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था अभी क्योंकि इतने दिन से आप वहां पर जा रहे हो तो कुछ नई चीज दिखी आज के दिन यही जो अभी आपने बात बताई.
1: यस जिसका मैंने जिक्र किया ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखी. एंड अभी मैं बस जो चिल्ड्रन जोन है वहां पर अब हम निकल रहे हैं वहां जा रहे हैं क्योंकि मैंने सुना है कि जैसे रेड कार्पेट होता है वैसे यहाँ ब्लू कार्पेट है तो ब्लू कार्पेट लेट मी गो एंड चेक इट. एंड फिर जब अगली बार हम कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली यहाँ पर क्या स्पेशल है.
0: अरे वाह ओके बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जुड़ने के लिए और हम कुछ देर में फिर से फिर कॉल करेंगे और पता चलेगा कि वहाँ का क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नया जो है वो आ रहा है और भी सवाल जो है मेरे होंगे. ठीक है
1: डन डन फजील आई विल वेट फॉर दैट और कनेक्ट करते हैं.
0: ओके श्योर थैंक यू. तो दोस्तों ये थी अमिता हमारे साथ जुड़ी एफएम 107 पे 35वें इंटरनेशनल बुक फेयर से डायरेक्टली डीईसीसी से. फिलहाल 5:15 स्टूडियो की घड़ी में अब आते जल्दी से बात कर लेते हैं क्या है माहौल वेदर अपडेट. सबसे पहले वैसे तो अब आपको बादल के कोई नाम और निशान नहीं दिखेंगे. मौसम जो है बहुत ज्यादा धीरे धीरे तगड़ा होने वाला है. गर्मी बढ़ने वाली है. 36 डिग्री सेल्सियस अभी का टेम्परेचर है और आज 37 का रहा था तो 37-38 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगी और ह्यूमिडिटी अभी फिलहाल बहुत लो है. ड्राई है 3% पे है और हवा की रफ्तार 14-17 मीटर पर आर की है. वेल अगर हम कल के बारे

77 में। तो ये डेट लिख लो, आज 18 तारीख हो गई है, आज से तीसरे दिन आप इस यू नो इवेंट का लुत्फ उठा सकते हैं। फ्लफी फांतासिया शो 21 मई से 30 मई तक मॉल ऑफ कतर में। फिर उसके बाद जिनको कॉमेडी का बहुत ज़्यादा शौक है उनके लिए भी है, अगर आप इनको जानते हैं, मीना नादर इनका नाम है, ये इजिप्शियन कमेडियन है और ये लाइव स्टैंड अप परफॉर्म करेंगे सूक वाकिफ के थिएटर अब्दुल अजीज़ नासिर थिएटर में, और ये 23 मई को परफॉर्म करने वाले हैं सूक वाकिफ के अब्दुल अजीज़ नासिर थिएटर। कहाँ से मिलेगी टिकट वगैरह, ज़्यादा जानकारी के लिए आपको विजिट कतर की वेबसाइट पे जाना होगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा 4th GCC गेम्स चल रहा है और पूरे कतर में माहौल है GCC गेम्स का, इसका भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। विजिट कतर पे जाएंगे आपको मजीद जानकारी मिल जाएगी, जिनको स्विमिंग का शौक है, जिनको अलग अलग खेल का शौक है, सारी जानकारी एक्चुअली वहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे बाबा बहुत टाइम निकल जाएगा फिर तो। उसके अलावा रनिंग वाले, ये तो भाई एक अलग जमावड़ा है, जिनको दौड़ने का शौक है ना भाई, उनको बहुत मजा आता है। एक्चुअली मुझे भी दौड़ने का बहुत ज्यादा शौक है, मैं बहुत भागता हूँ अपनी जिम्मेदारियों से, और अगर ऐसे ही आपको भी मजा आता है भागने में तो आप बिल्कुल भाग सकते हैं। इसके लिए है वन रन फॉर ऑल 2026, ये हो रहा है 24 मई को लुसेल इंटरनेशनल सर्किट में। यहाँ पर मास पार्टिसिपेशन ये रनिंग इवेंट होने वाला है जिसमें 1 किलोमीटर से शुरुआत होगी, यानी कि आप कम से कम अगर भागना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर भाग सकते हैं, और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो हाफ मैराथन है, और हाफ मैराथन 21 किलोमीटर का होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 21 किलोमीटर का भी है और 1 किलोमीटर का भी है, जो जिसमें आपका भागने का हिसाब हो। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा आदमी कितना भाग सकता है, ठीक है। अगर आपका वेट 55 से 60 के दरमियान है तो आप हाफ मैराथन यूँ भाग सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिर अगर आपका वेट 61 से लेकर 65 तक है तो आप हाफ मैराथन का थोड़ा कम कर लें, 18 किलोमीटर के अराउंड 15 से 18 किलोमीटर भाग सकते हैं। लेकिन अगर आपका वेट 80 से 90 के अराउंड है तो मैं कहता हूं अपने साथ एक और बंदा लेकर चलो जो आपको कार में बैठा ले, क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद आपकी आपकी हालत खराब हो सकती है भाई साहब, बस इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा। 70 से 80 वाले पूछना चाह रहे हैं, 70 से 80 वाले भी भाग सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका 10-10 के अराउंड हिसाब हो जाएगा। अगर आप घर पे बैठे रहते हैं और फिर भी आपका 70 के आसपास है तो 5 सोच के चलो, 5 किलोमीटर से ज़्यादा तो नहीं भाग पाओगे। बाकी 80-90 वाले तो सोचें, और 90 से 100 वाले मैं इनको सबसे अच्छी एडवाइस दूंगा, भाई सोते रहो सुबह, क्यों इतना यार है, कोई फ़ायदा है, मतलब मैं कहता हूँ कोई भी फायदा है, अगर कोई फायदा हो तो समझ में भी आए। उसके अलावा ईद उल अदा के इवेंट्स भी आ रहे हैं और ये इवेंट्स का भी लुत्फ आप उठा सकते हैं। एक तो है लकी अली लाइव इन दोहा, जिनको म्यूज़िक का शौक है वो इस खास इवेंट में जा सकते हैं, और ये अल मैयासा थिएटर में होगा QNCC में जो मौजूद है, 29 मई 29th of May लकी अली लाइव इन दोहा। मुझे कुछ दिन पहले तो नहीं कहूँगा, कुछ सालों पहले ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, मुझे याद आ रहा है शायद 2020 के अराउंड ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे सनम गाने के लिए, तब से लेकर अभी तक मैं इनको जान गया हूँ और इनके गाने मुझे पसंद आते हैं, तो आप भी इनका लुत्फ उठा सकते हैं, आई मीन इनके गानों का। ये गलत हो गया है ये लाइन, इनका नहीं, इनके गानों का लुत्फ उठा सकते हैं। अब समय आ गया सवाल करने का।

दोस्त देखो, पेरेंट्स की बात तो बिल्कुल माननी चाहिए और आज के दिन हम अपने माँ बाप की उन बातों को याद करेंगे जो हमारे साथ उन्होंने कही हमको या कही। तो अक्सर ऐसा होता है कि अम्मी अब्बू कभी अभी ऐसे हवा में एक लाइन मार जाते हैं और वो लाइन एकदम से आपको हिट कर जाती है, ठीक है। सो आज का सवाल है, एक बेस्ट लाइन आपने अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप से सुनी जो कि हिट कर गई सीरियसली, और मतलब हिट इन अ सेंस के शुरुआत में तो आपको लगा अरे यार क्या आप बोलते हैं अब्बा, क्या आपने अम्मी बोल दी बात, आपने बहुत ज्यादा यू नो उसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन फिर बाद में आपको लगा ओए होए। अगर आप किसी शेर व शायरी वाले सभा में होते या यू नो शेर व शायरी वाली जगह पे होते जहां पर ऑडिटोरियम है और कोई ऐसी लाइन बोल जाता जैसे आपकी अम्मी या अब्बू ने बोली है तो सब

0: तालियों से उनका स्वागत करते हैं, है ना। तो वो वाली लाइन क्या है जो आपने अपने अम्मी अब्बू से सुनी है वो बताओ। हमारा व्हाट्सएप नंबर 666-22-107। मुझे याद है यार कि मेरे अब्बा ने एक बार ऐसी लाइन बोली थी, तब तो मैं हल्के में लेता था कि अरे इन्होंने कहीं सुनी होगी, उठा के हमी को नाप दिया। वैसे हो सकता है सुनी हो, बट मैंने पहली बार सुनी थी और अब्बा ने वो लाइन मारी थी कि जब जब जो चप्पल होती है ना, अगर वैसे उन्होंने तो चप्पल बोली थी लेकिन चलो मैं और थोड़ा सा अपग्रेड कर देता हूँ। उनके लफ्ज ऐसे थे कि अगर बाप के जूते में लड़की का पैर आने लग जाए तो समझ लो लड़का बड़ा हो गया है, अब उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, अब उसको अपने बराबर का मानना चाहिए। मैंने कहा होए होए होए अब्बा जान, कहाँ है वो अवार्ड, कहाँ है पद्मश्री दो बार इनको बहुत कर्रा बोल दिया इन्होंने। हालांकि पीस अवार्ड तो इनको नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे घर पीस था नहीं कभी, मुझे पीस पीस जरूर किया है अब्बा ने तो ये जो चीज है ना कि अब्बा ने ये लाइन मारी थी कि जब बाप के जूते में लड़के का पैर आने लग जाए तो लड़का बराबर का हो गया। मैंने कहा पापा जी, फिर उस दिन के बाद ही उन्होंने दो चार बार सूता होगा वो अलग बात है लेकिन ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो ऐसी ऐसी यू नो सिंपल लाइन कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी या फिर अपने अम्मी से सुनी होगी, अपनी बहन से। वैसे मैं मेनली पेरेंट्स पर ही रुकना चाहता हूँ, या फिर हो सकता है चलो अगर आपको पेरेंट्स ने नहीं बोली, आपके अपने पप्पा पुप्पी ने बोली हो, मामा मामी ने बोली हो, चाचा चाची ने बोली हो, जिसने भी कहा है तो वो बताओ। नंबर है हमारा व्हाट्सअप का 666-22-107-6-6-6-2-2-1-0-7। मैसेज की तरफ जल्दी से बढ़ लेते हैं और फिर एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। यूसुफ भाई का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मंडे इवनिंग। हैप्पी मंडे इवनिंग आपको भी। फिर एक भाई ने मैसेज किया है, हिशाम इनका नाम है, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम। 97 वजन है बाबा, दो कदम भी मुश्किल हो जाता है नहीं मेरा क्या हुआ ना, अभी मैंने एक साल पहले कुछ 8-9 किलो कम कर लिया था, अब वापस मेरा बढ़ गया है। मैंने खूब नए कुलचे, धै नान, धै निहारी, धै बिरयानी, मीठा ईठा सब दबा के ठूस ठूस के खाया है। अब कहीं जाता हूँ, अरे तुमने वजन बढ़ा लिया है। बढ़ाया नहीं भाई साहब, बढ़ गया है ठूस ठूस के। तो अभी तो फिलहाल वापस से मैं तकरीबन 80-81 पे आ गया हूँ, लेकिन फिर कम हो जाएगा। अभी खेल कूद नहीं चल रहा ना, वापस से कम हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर खेल लो तो भाई पैर जो है वो दर्द करने लगते हैं। लेकिन अगर किसी का 97 है, हिशाम भाई आपका तो हिसाब ही खत्म हो जाता होगा। मतलब ऐसे थोड़ा बहुत ज़्यादा चल लिया अगर लेकिन ये भी है, 97 अगर आपका वजन है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे चलते हैं ना तो मसला नहीं होता है, लेकिन अगर 97 पे अगर ज़्यादा बैठे रहें तो मसला होता है। ओके, एक और ये मैसेज है, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फजील? मैं एकदम चकाचक, आवाज़ से लग रहा होगा, रबिया का मैसेज। आगे एक और ये मैसेज है, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल मेरा भाई? लिखा है, अच्छा अमिता आपको मिल जाएंगी भाई। अमिता कहाँ मिलेंगे? अरे बुक फेयर में, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको घूमती फिरती हुई किसी कैमरामैन के पास अमिता मिल जाएंगी। ए फॉर अमिता, अगर आप कस के हॉल में चिल्ला दें तो पहले तो 6 लोग आपको देखेंगे, फिर 2 सिक्योरिटी आपको पकड़ेगी फिर अमिता मुड़ के चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मत करना ये मत करना ढूंढ लेना भाई। बाकी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बाकी हम मैसेज लेंगे। और सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सवाल ये है कि आपने अपने पेरेंट्स से कोई ऐसी वन लाइनर बताना है आपको, जो सुनी हो, जिसको सुनने के बाद आपकी जबान से निकलो ओफो क्या बात है, जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया हो या अपने आपकी लाइफ में कोई एकदम ही बड़ी चीज़ हो गई हो कि वाह यार क्या लाइन बोल दी अम्मी ने, क्या लाइन बोल दी अब्बू ने, यार मज़ा आ गया हो। तो ऐसी कोई लाइन वन लाइनर आपको बतानी है, नंबर 666-22-107-6-6-6-2-2-107। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
4: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے
5: انسانوں کے مسئلے مسائل اور روزمرہ کی معاملات پر روشنی کے لیے سنتے رہیے نور اسلام
6: ہر جمعہ شام 4 بجے اونلی آن FM 107 دل سے دیسی
7: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ
5: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 پی ایم لائیو اونلی آن FM 107 Dil se desi.
8: You are

वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल, 5:38 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और आज का सवाल बड़ा ही हल्का फुल्का है। कभी ना कभी आपने ये लाइन सुनी होगी अब्बू से या अम्मी से, जिसमें आपकी दुनिया, जिसने आपकी दुनिया को चेंज कर दिया हो, जिसमें कोई बड़ी बात हुई हो। हो सकता है शुरुआत में आपने उस बात को इतना भारी तरीके से ना लिया हो, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप ग्रो करते हैं, आपका दिमाग तेज़ होता है, आप लोगों के बीच आते हैं, तब आपको ऐसा होता है कि यार अब्बू या अम्मी ने वो जो बात या वो जो लाइन कही थी कितनी परफेक्ट है यार इस दुनिया के हिसाब से। शुरू के जो 10 साल होते हैं, हम तो उस वक्त माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन फिर जब 11 से 18 का ये जो उम्र आती है, 11 से 18 की, तो हम ये सोचते हैं यार इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। 18 से 30 हम ये सोचते हैं यार हमें भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। फिर जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, जब हम 35 या 40 की उम्र में होते हैं, तब एहसास होता है यार हमारे माँ बाप को कितना पता था दुनिया के बारे में, कितना पता था उनके हिसाब से जो दुनिया थी उस दुनिया के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ हमें बताया, लेकिन हम इतने नादान थे कि हम समझ नहीं पाए, है ना। तो ये आपको बताना है कि आपने कोई ऐसी अनोखी लाइन, कोई एकदम से वाव लाइन अपने पेरेंट्स से सुनी हो तो बताओ। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 666-22107, 666-22107। ये मैसेज है ओएस अहमद का, कहते हैं अपनी इज्जत अपने हाथ, काम नहीं रुकते माँ जी। माँ जी ये कहती थी बेटा काम नहीं रुकते। ओएस अहमद ये बिल्कुल सही है। और पहली जो लाइन उन्होंने कही ना, अपनी इज्जत अपने हाथ, इतनी बोगस लगती थी, किसी के भी मुंह से ये वाली लाइन निकलती थी ना उस वक्त, कि कोई भी कहता था अरे बेटा अपनी इज्जत अपने हाथ है। और खैर ये वाली लाइन तो मेरी अम्मी ने भी बहुत दागी है, और ये अप्पी को लेकर दागी है, मतलब मेरे को लेकर नहीं, कि अरे बेटा अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, क्योंकि मेरे से अप्पी की लड़ाई होती थी, मैं बदतमीज आदमी था, मेरी लड़ाई हो जाती तो मैं, वो बड़ी बहन थी फिर भी हाथ उठा देता था मैं, तो बचपन में होता ही है। खैर गलत बात, किसी को मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि उठाओ, लेकिन हो जाता था मेरे साथ। तो ऐसे में अम्मी कहती थी बेटा इससे मत भिड़ा करो, ये तो बेकार आदमी है, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, मत बात किया करो इससे। तो ये बातें कई बार बोली, तो मैंने कहा अरे कौन सी बड़ी लाइन बोल दी, बट अब एहसास होता है कि यार ये बात कितनी परफेक्ट है। ये हमारे अम्मा और अब्बा की जो लाइन है, अपनी इज्जत अपने हाथ, कितनी परफेक्ट। आप आज की दुनिया में जाएं, आप किसी से बात करें, कुछ लोग तो बदतमीज़ आपसे यूं ही मिल जाते हैं, आप उनसे किसी भी तरह से बुरे अंदाज में ना बात करें, लेकिन फिर भी वो टॉन्ट मारना और थोड़ा उखड़ेपन से बात करना, रूडली बात करना, है ना, फिर भी क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो हमें बात करनी पड़ती है, लेकिन वो इज्जत ही नहीं करते। तो कितनी सही लाइन है, जो इज्जत नहीं करता उससे थोड़ी दूरी बना कर रखो, थोड़ी दूरी, है ना, सलाम दुआ अपनी जगह, लेकिन ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, अपनी इज्जत अपने हाथ। उसके अलावा काम नहीं रुकते बेटा कुछ भी हो जाए, ये लाइन मुझे मतलब बहुत देर हो गई पता होते होते, 25 साल के बाद मुझे पता चला, पिछली जॉब में जब मैं था वहां पर मुझे एहसास हुआ, मैं हर एक काम के लिए बड़ा घबराता था, बहुत ज्यादा टेंशन है ये कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझसे गड़बड़ी ना हो जाए, पता नहीं ये काम कैसे होगा, ये प्रोजेक्ट है, ये चीज है, ये यहाँ आज इवेंट है, यहाँ भेज रहे हैं, कैसे होगा, लेकिन वो होते होते हो जाता था और काम नहीं रुकते थे। तो किसी के आने से, किसी के जाने से, कुछ सोच लेने से, टेंशन लेने से कोई परेशानी नहीं होती थी, काम नहीं रुकता, ठीक है। उसके अलावा एक और ये मैसेज है विमलेश भाई का, और विमलेश भाई क्या लिखते हैं, बिरयानी भूल गए, ये वाली लाइन थोड़ी अधूरी हो गई, मैं समझ नहीं पाया यार किस कॉन्टेक्स्ट में है। एक तो ये भी होता है बात करते करते कॉन्टेक्स्ट निकल जाता आगे, हम 120 की स्पीड में, पीछे एक ऑटो वाला चल रहा है, साहब रुको, साहब सुनो तो, तुम्हारी टायर पंचर है तो पता नहीं चल पाता भाई, दो रोटी कमा के दिखाओ फिर जाने, हाँ ये वाला तो सवाल के अकॉर्डिंग, इसमें ना मैं कह नहीं सकता, इसमें वो बात है, इसमें एक तरह से गाली है कि करके दिखा तो मैं मानूं तुझे, ठीक है आता तो जाता कुछ नहीं है। और ये सच में बहुत लेट में एहसास होता है कि कितनी सच बात बोल दी है, दिल को दुख हो जाता है भाई। अब आप कमाने के लिए, आपके बच्चे हो गए, आप बड़े हो गए, अब दो रोटी कमा तो रहे हैं घर में एक ही रोटी बना रही बीवी लेकिन ये बहुत सही बात है कि जब तक आप कमाते नहीं, आप छोटे रहते हैं, आपको लगता है यार माँ बाप इस तरह से क्यों खर्च कर रहे हैं, उन्होंने उस तरह से मुझे नहीं पाला और मेरे लिए करना चाहिए था, लेकिन आप दुनिया भर के सवाल
उन पर तोहमत जो है वो लाते हैं, लेकिन जब आप बड़े होते हैं, आप जब माँ बाप बनते हैं, तब आपको एहसास होता है कि उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया है। ओके, आगे बढ़ते हुए एक और ये मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम, मजी यानी पास्ट से सीखते रहें मेरे बाबा जान। माजी यानी कि पास्ट से सीखता, ओके ठीक है, ये बहुत सही चीज़ है। माजी एक्चुअली जिसको कहते हैं पुराने वक्त से, पास्ट से। तो ये भाई का नाम क्या है, माजिद हुसैन। माजिद भाई ने कहा है कि इनके बाबा जान कहते थे अपने गलतियों से, अपने पास्ट से सीखते रहो। क्या बात है, पुरानी बातों से सीखते रहना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं पुरानी बातों से क्या सीखा, पुरानी बातों से मैं कुछ नहीं सीख पाया यार। पुरानी बातों से ऐसा क्या है जो पुरानी बातों से, पुरानी गलतियों से सीखा है? हाँ, ये थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। पुरानी गलतियों से मैं बहुत सीखा हूँ, और मेरा वो वाला हिसाब है कि दुनिया अगर बता दे आप नहीं सीखेंगे, जब तक मेरे साथ कोई हादसा ना हो तब तक मैं नहीं सीखता। एक कहीं लाइन सुनी थी मैंने, वो ये लाइन थी कि हादसा आपकी जिंदगी को सुधार दे। मेरी जिंदगी में इतने हादसे हुए हैं कि अब जिंदगी के पास कोई चारा नहीं है सुधरने के अलावा। बहुत हादसे हुए मेरे साथ, तो मेरे साथ भी भैया जब तक हादसा नहीं होएगा तब तक नहीं सुधरेगा इंसान। फिर विमलेश भाई कहते हैं, जो तुमने वजन बढ़ाया उसके पीछे बिरयानी का भी हाथ है। अच्छा, ये वाली लाइन है, बिरयानी का भी हाथ है। ये लाइन मुझे अच्छी लगी कि भी आपने रख दिया है कि सिर्फ बिरयानी का हाथ नहीं है। निहारी, कुलचे, बिरयानी, कौरमा, जो चीज़ खाई जा सकती है भाई वो मैं खाता हूँ। आजकल मैं एक रेस्टोरेंट जा रहा हूँ जहाँ बारबेक्यू होता है, वहाँ पत्ते मिल रहे हैं, और ये वाले पत्ते बहुत अच्छे होते हैं। मैं बकरों की तरह खा रहा हूँ यार वो पत्ते। शौक, अपना अपना शौक है, क्या कर सकते हैं। आगे ये मैसेज, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आप बताएं कैसे हैं। फिर ये है अबू उस्मान साहब का मैसेज, और अबू उस्मान ने ऑडियो भेजी, मैंने ऑडियो सुन लिया था। उन्होंने कहा है कि ज़बान, किसी ने कहा है, अब किसने कहा है मैं वो नहीं सुन पाया, शायद मेरे ख्याल से फैमिली मेम्बर नहीं कहा होगा क्योंकि ऑडियो जल्दी जल्दी मैं सुन रहा था। तो उन्होंने कहा है कि शायद उनके अब्बा ही कहते थे कि ज़बान का इस्तेमाल बहुत सलीके से करो, बहुत सही तरीके से करो, ये ज़बान बड़ी उस्ताद है। सही इस्तेमाल करोगे तो घोड़े पर बैठा देगी, गलत इस्तेमाल करोगे तो गधे पर बैठा देगी। क्या बात है, देखिए अलग अलग लाइनें हो सकती थी। और ये ज़बान की जो बात है, गधे और घोड़े की बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये लाइन भी बड़ी तगड़ी है। और आप ये पेरेंट्स से बिल्कुल सही सुनते हैं कि ये ज़बान बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल, इससे अगर आप करेंगे तो आप किसी पराए को, मेरी अम्मी हाँ ये लाइन भी बोलती थी कि किसी, अगर ज़बान का सही इस्तेमाल हो तो पराए को आप अपना और अपने को आप पराया बना सकते हैं। इस ज़बान से ही फजील, इस ज़बान से ही सब कुछ होता है, दांत दबा के बोलती थी अम्मी। कि आप सलीके से बात करें, मोहब्बत से बात करेंगे तो जो आपका अपना नहीं है वो भी आपका अपना हो जाएगा। लेकिन आप अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से या किसी दूर किसी शख्स से सही से बात नहीं करेंगे, वो अपना भी होगा तो पराया हो जाएगा। क्या बात भाई यार, इन लोगों की बात अलग थी, हम लोगों के पास ये डायलॉग नहीं है। बताओ वो डायलॉग अब कोई बना सकता है इस तरह का कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है? ये वाले डायलॉग नहीं आ रहे यार, बहुत हल्के डायलॉग आ रहे हैं आजकल। पुराने जमाने वाले सही बोल लेते। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसान उबैद कुरैशी का ये मैसेज। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। अच्छा, जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है उनके लिए एक बार सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ कि आज का सवाल क्या है।

0: पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाँ जी, टाइम टू टाइम चेक एफएम 107 की स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 6:00 हो रहे हैं एग्जैक्ट 2 मिनट, और इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पर कोई है, चलिए उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम फजील,
3: क्या हालचाल, क्या है माहौल?
4: माहौल बड़ा कमाल का है। अभी मैं गई हुई थी चिल्ड्रन जोन में, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि मैं जाने वाली हूँ ब्लू कार्पेट इवेंट में। एंड लेट मी टेल यू, ब्लू कार्पेट इसको क्यों बोल रहे थे लोग, बिकॉज जैसे ही आप हॉल नंबर 1 में आते हो, यू जस्ट आस्क फॉर चिल्ड्रन जोन एंड आप जाते हो, तो वो जो पूरा एरिया है ना, वो पूरा जो वॉकिंग स्पेस है, दैट्स इन द ब्लू लाइट एंड बड़े बड़े कूलर्स एसी लगे हुए हैं, और यार बड़ा अच्छा फील आता है। तो मैंने कहा देखो, एक हमें अक्सर हमने रेड कार्पेट जोन सुना है, अब ये ब्लू कार्पेट है और सारे के सारे बच्चा पार्टी के लिए। तो या व्हेन आई जस्ट वेंट देयर एंड ऐसा लगा जैसे कि हम किसी स्कूल में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। एंड व्हेन आई वेंट देयर तो बहुत सारे जैसे 5 साल के बच्चों से शुरुआत है, मतलब छोटे बच्चे जा सकते हैं, जस्ट लोग जो समझ में आए, बट 5 साल के बच्चों के लिए एक्टिविटी है।

0: कुछ बना रहे हैं अपना क्रिएटिव माइंड इस्तेमाल करके. एंड आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फजील, वहां पर एक पूरा सेक्शन है यंग राइटर्स का. ओके, आई मीन 9-10 साल के बच्चे वो थॉट कि वो अपनी क्रिएटिव राइटिंग करके बुक्स बना सकते हैं. दे एक्चुअली मेड देम. एंड मेड देम क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लिख ही नहीं रहे थे, दे ऑल्सो डिड ड्रॉइंग्स कि उनकी बुक में कैसे ड्रॉइंग्स होनी चाहिए. एंड आई बॉट वन बुक.
1: अच्छा, तुमने खरीद ली?
0: Yes, I bought one book. It's a Khor Al-Adai Tamim and the Ikab. Okay.
1: So, क्या है, किस बारे में है? अब तो ये बात लंबी चलेगी. अब हाँ बताओ.
0: यार मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अभी बुक मैंने जस्ट राइटर से मेरी मुलाकात हुई जो कि 10 साल की थे, और उनका नाम है तमीम बिन मुबारक अल्थानी. ठीक है, बड़े ही प्यारे, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बच्चा एंड वेरी कॉन्फिडेंट. तो मैंने बोला कि ये किताब, मतलब ये सेक्शन किस बारे में, तो उसने बोला यंग राइटर्स के बारे में. और मैंने बस ऐसी बैठे बैठे सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए बिकॉज मुझे स्टोरीज बहुत पसंद है.
1: अच्छा,
0: सो ही बोलता मैंने फिर ये बुक बनाई एंड उन्होंने ऑटोग्राफ साइन किया इंग्लिश में, अमिता लिखा इतना क्यूट एंड अरबी में.
1: इस उम्र में मेरी राइटिंग इतनी खराब थी कि मैं अपना होमवर्क नहीं लिखता था भाई.
0: I swear. और खास तौर से एक मैसेज भी लिखा है. ओके, दिस इज समथिंग वेरी अडोरेबल.
1: क्या बात है
0: कि एंजॉय दिस अमेजिंग बुक, ऐसा लिखा है. और जैसे हम नहीं कभी कुछ लिख रहे होते हैं और अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उस अल्फाबेट के ऊपर लिख देते हैं कुछ. सेम थिंग सो ब्यूटिफुली. But you know the best part was his confidence.
1: हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इतना स्मार्ट बंदा है ये. और मैं अपने आप को सोच रहा हूँ, मैं 10 साल की उम्र में गया था, मैं चोरी छुपे भागा करता था. अब्बा कहते थे कि ये कोई पढ़ाई नहीं कर पाएगा, ये जूते सिलेगा. सबके अम्मा अब्बा ने यही कहा है, जूते सिलेगा ये. यार ये कौन सा तरीका है यार, बेइज्जती करने का अलग तरीका था मेरे माँ बाप का.
0: Oh my dear. And I tell you कि जैसे मैं ये बुक खोलती हूँ ना, मैं आपको दिखाऊंगी फिर. इट्स सच अ अडोरेबल बुक. की मतलब एक प्यारा, उसने अपनी स्टोरी सुनाई है कि मैं प्यार तमीम जब अपने फादर के साथ खेलता हूँ खोर में, टेंट्स के अंदर टेंट्स के बाहर, तो कैसा फील होता है. समुन्द्र की हवा कैसी होती है, वो मतलब सोच रहा होता है अगर आसमान को देख के तो हाउ ही लुक्स. You know, everything is like he wrote. And do I have to read the book? कुछ 5-10 पन्नों की बुक है.
1: नहीं, कोई एक लाइन तो, कोई अगर तुम्हें अगर दिख रही हो कोई बढ़िया सी लाइन, या फिर यू नो ऐसी पन्ने पलटते हुए कुछ लगे, या कोई रैंडम भी पढ़ दो, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छी कोई बात लिखी हो तो ही हम सुनेंगे. हम सुनने वाले हैं वो 10 साल के बच्चे ने वो क्या बात लिखी है जो यू नो किताब उसकी छप रही है. यहाँ तो हमारे कारनामे छपा करते थे अखबार में कि आज एक लड़के ने ऐसी हरकत करी, अब्बा से पिटा, घर में टूटे बर्तन, अब्बा से सुताई में लड़के का पैर टूटा. लेकिन माशाल्लाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो उसने लिखी है. तो मैं वही चाह रहा था कि कोई भी बात पढ़ो जो यू नो इंटरेस्टिंग है अगर.
0: यस एक्चुअली एक ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में स्टोरी है. ठीक है, तो तमीम मतलब अपनी लाइफ में क्या करता है. तो तमीम इसमें अंग्रेजी में लिखा है जिसको मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, हिंदी उर्दू में, कि तमीम बेसिकली जब छुट्टियां होती हैं तो अपने फादर के साथ खोर जाता है और टेंट के बाहर बैठकर उनके साथ बातें करता है, ठंडी ठंडी समुद्री हवा को एंजॉय करता है, सोने जैसी जो रेत है उसके साथ खेलता है. तो ये उसका पहला पन्ना है.
1: सोने जैसी रेत है जिससे वो खेलता. आप देख रहे हैं उसकी इमेजिनेशन दोस्तों कितनी अच्छी है.
0: Absolutely.
1: हमारी एक हमारी अम्मी थी, हम जब सोने से खेलते थे अम्मी कहती थी अरे गंदा होकर आ गया. हम सोने वाली लाइन ही अपने दिमाग में नहीं रख पाए, अम्मी कूट देती थी. हम जब भी सोने से लथपथ होकर आते थे तो अम्मी इतना मारती थी और फिर कहती थी तू ही कपड़ा धोगा ले, अब तो तू ही कपड़े धो. तो हम सोने से खेल नहीं पाए दोस्त. लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है. और जिस तरीके से उसने यू नो डिस्क्राइब किया है कि यू नो सोने की मिट्टी से या रेत से, अरे क्या बात है यार, इंटरेस्टिंग.
0: एंड वन मोर वेरी ब्यूटीफुल थिंग फजील, कि उसने मतलब अपने नाम का जिक्र बार बार यूज किया है कि तमीम एक दिन बोर हो रहा था और वो खुद से कह रहा था कि लाइक उसका कोई दोस्त होना चाहिए. एंड आसमान की तरफ देख कर बस वो देख ही रहा था कंटिन्यूअसली. एंड देन ही थॉट एंड ही विश एंड दिस इज हाउ उसकी मुलाकात हुई इकब से, जो कि बहुत बड़ा पक्षी होता है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं ना कि अपने अपनी भाषा में तो इट्स लाइक अ चील. बट यस, इकब से मुलाकात हुई एंड देन यू नो दे बिकेम
1: फ्रेंड्स
0: एंड दिस इज हाउ द स्टोरी गोज ऑन. सो बहुत मोहब्बत से इस बच्चे ने यू नो लिखा. और मैंने जब बोला कि मुझे बुक

0: खरीदनी है, एक पर्टिकुलर प्राइस है, तो मुझे कहता है कि नहीं नहीं मैं आपको ना डिस्काउंट दे दूंगा।
1: अरे वाह क्या बात है।
0: मैंने कहा नहीं नहीं मुझे आपकी मेहनत बहुत पसंद आई, मैं डिस्काउंट नहीं चाहिए मुझे, मैं इसके फुल प्राइस में लूंगी। तो फिर उसकी मम्मा ने कहा कि अरे तमीम ऐसे नहीं करते, आपको तोहफा देना चाहिए। मतलब मैं एक चीज देखना ये देख रही थी कि पहली चीज कि बच्चा है उसे पता है कि उसे क्या चाहिए, हिज इमेजिनेशन आर सो ब्यूटीफुल। एंड जो हम कहते हैं ना कि कतर की हॉस्पिटैलिटी, जहाँ पर अरब रीजन में ऐसा होता है कि जब पहली बार आपने किसी के लिए कुछ किया, कॉम्प्लीमेंट दिया, तो वो आपको तोहफा देते
1: हैं।
0: फिर बच्चा मुझे ना तोहफा दे रहा था अपनी किताब का बिना चार्ज किए, बट देन आई सिंपली सेड कि नो ही मेड सो मच एफर्ट, तो इतना तो बनता है यार, थोड़ा तो शेयर हम भी कर सकते हैं।
1: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्या बात है।
0: यस आई बॉट दिस बुक, आई रियली बॉट दिस बुक फजील, एंड इट्स वेरी क्यूट। लाइक ऐसा लगता है जो हमारे स्कूल के दिनों में नहीं कुछ ऐसी बच्चों की बुक्स लाइब्रेरी में मिलती थी, इट्स जस्ट लाइक दैट।
1: इंटरेस्टिंग, बहुत ही आला, बहुत ही आला। अच्छा ये तो मुझे बहुत सही बात लगी कि तुमने यू नो वहाँ पर इतनी बातें भी करी, क्योंकि मैं तो ऐसा डरता भी हूँ कि एक तो किताब ले रहा हूँ कुछ बारे में इसके पता नहीं है ना, आप डिटेल में जब बैठते हो आपको पता चलता है कि ये बच्चे कितना जानते हैं, कितना बेहतरीन लिखते हैं और कितने समझदार हैं, कितने सेंसिबल हैं। एक हमारी हमारा बचपना था तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, और बिल्कुल ऐसे बच्चों के साथ भी आप जब बैठते तो आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलता है।
0: हाँ बिल्कुल मिलता है, इनफैक्ट अभी मैं जब और मतलब अंदर एक एक जगह पे जाते जाती थी, एक्चुअली बच्चों का ना पूरा खतरनाक वो कहते हैं ना जमावड़ा हो रखा है हर एक कोने से आवाज आ रही है। एक एक मुझे वर्कशॉप का बड़ा प्यारा आउटलेट लगा उनका कि कतर के जिसको कहते हैं ना कि लोकल हीरोज, ठीक है, फिर चाहे वो आर्मी में हो, पुलिस में हो, डॉक्टर्स हो, लाइक उसके ना उन्होंने सिर्फ तस्वीरें बना रखी हैं, मतलब एनिमेटेड कैरेक्टर्स तस्वीरें, और उसके सामने उन्होंने अलग अलग कलर्स के लेसेस रखी है।
1: अच्छा।
0: तो अगर बच्चे को उनमें से कोई भी हीरो को अपने हाथों से बनाना है, लाइक ड्राइंग करनी है, तो सीधा आएगा, उसका लेस उठाएगा एंड डिफरेंट कलर्स लेसेस लाइक ब्लू, पिंक, व्हाइट, ब्लैक, इस तरह से, एंड देन यू हैव टू टाई इट समवेयर, मतलब एक पूरा वॉल है जहाँ पर अलग अलग रंग के ना लेसेस टंगे हुए हैं।
1: थोड़ा और आसान भाषा में कहते हैं दोस्तों, वो धागा है अलग अलग कलर का, और उस धागे को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना है, और उसमें ही आपकी ड्राइंग बन जाएगी, है ना, ऐसा ही कुछ है ना?
0: नहीं नहीं, अच्छा, उनको धागे चूज करने हैं, हाँ धागे चूज करके बांधने हैं एक वॉल में, कि कम से कम ये काउंटिंग पता चलेगी कितने लोग, मतलब कितने बच्चों ने किस जो नेशनल हीरो की तस्वीर
1: बनाई, ओके, हाँ मैं समझ गया।
0: तो ये कॉन्सेप्ट है, एंड मतलब अलग अलग जगह पर ऑब्वियसली पेंटिंग्स का मैंने बहुत जगह देखा, स्केचेस का मैंने बहुत जगह देखा, इवन फुटबॉल से रिलेटेड, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप वाज हिस्ट्री इन कतर्स, मतलब कतर की अगर हम बात करें तो उसके भी बारे में यू नो बड़े क्राफ्ट एंड आर्ट की चीजें हो रही थी, एंड पपेट शो हो रहा था जो हमने चलते फिरते देखा, हालांकि मुझे लैंग्वेज तो नहीं समझ आई लेकिन आया देखकर।
1: क्या बात है, तो ऐसी ऐसी कहानी जो है वो हमें बताते रहो घूम घूम के, बड़ा ही मजा आया ये वाली बात सुन के, यू नो छोटा सा बच्चा इतनी प्यारी लाइनें लिखता है अपनी किताब में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
0: मैं बिल्कुल बिल्कुल, और फजील अभी मैं नेक्स्ट जो है मैं जाने वाली हूँ एक सेल्फ हेल्प बुक के स्टॉल में, मैं काफी देर से देख रही थी, दैट वाज फ्रॉम यूएई, जो कि मैंने कल देखा था, एंड आई थॉट कि मैं यहाँ से कोई ना कोई किताब जरूर देखूंगी, इफ आई लाइक एनीथिंग मे बी आई विल बाय लेटर, और या तो फिर मैं थोड़ा वक्त यहाँ जरूर बिताऊंगी,
1: सो आई
0: विल बी गोइंग देयर, एंड फिर मैं आपको बताऊंगी अगले कॉल पे कि यू नो
1: क्या कुछ चल रहा है,
0: मैंने देखा।
1: सही, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अमिता, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपको भी जाना चाहिए, ये चल रहा है 35वां इंटरनेशनल बुक फेयर जो कि हो रहा है DECC में, चले जाओ, अमिता से भी मुलाकात हो जाएगी, और इतनी बेहतरीन किताबें खरीदने का भी मौका है आपके पास, यू नो हर जगह नहीं मिलती है, उसके अलावा पढ़ने का भी मौका है आपके पास, खड़े खड़े पढ़ लिया है। अब मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और एक बड़ा ही प्यारा मैसेज है, ये है नजरत भाई का बांग्लादेश से, कहते हैं कि आज का टॉपिक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, टुडेज टॉपिक इज रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, पीपल लाइक मी हु नेवर लिसन टू देयर फादर ओनली कैन रिलेट टू व्हाट इट feels when suddenly you don't get any call from your father, and for me it's more painful that I couldn't go home to bury my father, now every step of my life I feel it, I have written a lot, texted and deleted again. Acha matlab is waqt inhone kai baar text likha aur fir delete kiya, I don't know how it will express this pain to them, my father was an imam of a masjid in Jeddah, he always used to say not No relationship is permanent in dunya, so make the strongest

0: bonding to Allah, cause only this relationship can protect you from every other harmful relationship and harmful people. भाई बहुत ही अच्छी लाइन और बहुत ही है ना संजीदगी से कही हुई लाइन, लिखी हुई लाइन. और मुझे लगता है कि हर एक माँ बाप जो है वो अपने बच्चे के लिए बेहतर चाहता है. कोशिश तो यही रहती है कि बेहतर से बेहतर कर पाएं, लेकिन हम औलादे भी बहुत ही नाशुक्रपना कर देते हैं कई बार. लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हमें रियलाइज़ हो रहा होता है कि हमारे माँ बाप ने कितना सेक्रीफाइस किया है, क्या कुछ सहा है, अपनी नींद, अपने सपने, अपने ख्यालात, अपना घूमना फिरना, क्या कुछ छोड़ा है. जब हम छोटे बच्चे के बगल में बैठते हैं, जब उसको पाल रहे होते हैं, तो कितना कुछ हम सेक्रीफाइस करते हैं, तब हमें रियलाइज़ हो रहा होता है कि हाँ उन्होंने क्या कितना कुछ किया होगा. नज़त भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को लिखने के लिए. मैं देखिए इस दर्द को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह आपके यू नो अब्बा की मगफ़रत अता फरमाए और जन्नत में आला मकाम दे. उम्मीद है कि यू नो दिल जो है आपका खुश रहेगा, या खुश अब्बा ने वो जो काम किया होगा आपके लिए, जो कुछ किया होगा वो बेहतर किया होगा, और आप इस बात से खुश होंगे. उसके अलावा आगे ये मैसेज पढ़ते हैं, और ये मैसेज है राबिया का. मेरी अम्मी कहती थी कि बेटा भाते भाते मिल जाता है ना, बैठे बैठे मिल जाता है सब कुछ, खुद करके खाना पड़ेगा तो पता चलेगा. क्या लाइन है. अच्छा ये वाली उन्होंने लाइन थोड़ी सी डार्क बता दी. सही में ये वाली लाइन ना बहुत डार्क है. इसमें बहुत कुछ होता है, बस जज्बात थोड़े से कम से होते हैं. कहना बहुत चाहती हैं मम्मी, लेकिन छोटी लाइनों में जो होता है ना कि ले तलाक, तो ये छोटी लाइन में ही हो जाता है कि बैठे बैठे तो सब मिल जाता है, कोई काम तो कुछ करना नहीं होता है. तो ये दुख वाली बात है. फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं. अजान का वक्त है FM 107 पे. अजान के बाद वापस आएंगे तो मजीद आपके मैसेज लेंगे. दिल से देसी
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है.

बस आखिर यही लाइन समझ नहीं आई भाई, बचपन में जब इसे सुना था 10 साल पहले, बचपन ही था ये लाइन समझ ही नहीं आती थी। शाइनिंग इन द सेंसेस आ गया, फील मी ये करता था मैं, हर आदमी यही करता था। हाला हबीबी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ऐसे कई गाने हैं जो हमें आज तक समझ में नहीं आए, और आपको भी मतलब किसी को भी वो है क्या पता नहीं। जैसे एक सेनोरिटा का गाना है, शुरुआत की लाइन अमेजिंग है, तुमने अभी जो जो कहा है मुझे अच्छा लगा है सुन के, बड़ा अच्छा। तो वैसे बात फरहान ने गई थी तो यही होता है भाई, आपको पता नहीं चलता लेकिन मजा आता सुनने में।

स्टूडियो की घड़ी में व्हाट इफ के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेज ले लेते हैं। यूसुफ भाई ने कहा है उस लाइन वाली बात पे कि आपके अम्मी अबू ने कुछ ऐसी बात जेनरिक कह दी हो जब बाद में आपको रियलाइज हुआ हो कि ये सोसाइटी में हल्की हल्की बात होती है, लेकिन असल में इन बातों का, इन लाइन का बड़ा महत्व होता है कुछ वक्त गुजरने के बाद या फिर जब आप बड़े होते हैं तब। मेरी अम्मी कहती थी जब मेरे बड़े भैया जॉब सर्च कर रहे थे, बाप की कमाई पे राज करते हैं आप, अपनी कमाई पे में तो सिर्फ जरूरत पूरी होगी। ओए ओए ओए ओए, ये रियलिटी चेक देने का भाई, इतनी भी गाड़ी लाइन नहीं सुननी थी मुझे यार। ये वाली लाइन तो मेरे अब्बा ने भी मारी थी, नहीं अब्बा ने नहीं मारी थी, शायद अम्मा थी मेरी। अब्बा की कमाई पे राज करते हैं, अपनी कमाई में तो सिर्फ जरूरत पूरी होंगी, भाई रियलिटी चेक है ये आज के जीवन का, आज की जिंदगी का, कि इस वक्त जो कमाई कर रहे हैं उससे तो मेरी औलाद भी राज कर रही है ना फिर तो। तो ये इसका मतलब यह है कि हमारे अब्बा जब छोटे थे तो उनने अपने अब्बा के कमाई पे राज किया, तो इवन हो गया ना फिर तो। कि आपने करी हमने कर ली बात बराबर है ना, लेकिन ये तो ऐसे ही चलता भाई, क्या कर सकते। लेकिन कितनी रियली मतलब सच्ची बात है, कितनी रियल बात है कि आज भी आप जो है सिर्फ अपने काम की चीज खरीद पा रहे। देखो कोई सोच रहा था कि यहाँ घूमने जाएंगे, हैं यूएस निकल जाएंगे, कनाडा में मजा आएगा भाई, स्विट्जरलैंड का एक तो यार राउंड लगता है यार इतने पैसों में, लेकिन फिर शादी हो गई। अब सिर्फ जो है ये ग्रोसरी स्टोर वो ग्रोसरी स्टोर, यहाँ अच्छा मिल रहा है, यहाँ सस्ता मिल रहा है, इधर डिस्काउंट है उधर, इसके अलावा जिंदगी कुछ है ही नहीं भाई। मोटे आंसू आ जाते हैं अपने आप। तौफीक भाई का मैसेज है, अलवकरा से सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, कैसे हैं, उम्मीद है अच्छे होंगे। उसके अलावा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इकबाल नेपाली कहते हैं मेरे अब्बू हमेशा बोलते थे बेटा झूठ मत बोलना और नमाज मत छोड़ना, जब कतर में अजान होती है अब्बू की ये बात याद आती है। इकबाल नेपाली, क्या बात है, बिल्कुल अजान जो है वो रूह को सुकून देती है, आपको आसानी से यू नो किसी भी तरह की टेंशन हो तो आपको सुकून मिल जाता है अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो। जारिया आसिफ कहते हैं, अच्छा इन्होंने लिखी दिया, शाइनिंग इन द सेटिंग सन लाइक पल ऑफ अपॉन द ओशन, कैन आई फील मी, आई थिंक ऐसा है। भाई आपका थिंक गलत है। वैसे अगर गौर से इस लाइन को सुना जाए ना तो वो समझ में आ जाती है, लेकिन वो जिस तरीके से गाता है ना वो लाइन समझ में नहीं आती है, तो मैं अभी इस पर रिसर्च करूंगा सही लाइन क्या है वो बता ही दूंगा। वैसे तो मैंने सुनी है शाइनिंग इन द सन लाइक मतलब

0: ऐसा है ये हिंदी में कि सूरज की रोशनी जब समंदर पे पड़ती है तो पर्ल जैसी चमकती है, वो समंदर पर्ल जैसा चमकता है, इसी को अंग्रेजी में कहा है। अब मेरे को पूरी एग्जैक्ट तो पता नहीं है, ठीक है, बाकी तो रिसर्च करना पड़ेगा कि पूरी लाइन क्या है गाने की, तो फिर समझ में आएगा। बाकी तो ऐसे ही उसको रिदम रिदम में निकाल दिया। फिलहाल 6:32 मैंने पहले ही कहा है, अगर मैं किसी दिन 6 की बजाय 8 बोल दूं तो एक्सेप्ट कर लेना, देख लेना अपने हिसाब से टाइम क्या हो रहा है क्योंकि मेरे मुंह से निकल जाता है। यहाँ पर 18:32 दिखा रहा है, कभी फ्लो में एक याद नहीं रहा तो है ना, तो इतने सारे सिस्टम में सब कुछ संभालते हुए एक गड़बड़ी तो यार देखो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी मेरा भाई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जबरदस्त व्हाट इफ के बारे में, कि आज व्हाट इफ में हम क्या बात करने वाले, कुछ ही देर में आपको पता चलेगा व्हाट इफ में आज हम किस बारे में बात करने वाले। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। You are

107.2 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और आज हम बात करेंगे व्हाट इफ में के, सोचो अगर हमारी एज ही ना बढ़े तो कितना अच्छा होगा। मतलब पैदा होने के बाद कुछ साल तक एज बढ़ी, फिर उसके बाद एज एकदम रुक जाए तो यार जमाने में क्या होगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मैंने बहुत लाइट रखा। मंडे का दिन है, क्यों मंडे को इतना बोझ डालूं, तो मैंने सोचा है हल्की फुल्की बात करेंगे। और आज हम व्हाट इफ में बात करने वाले हैं इसी बेहतरीन बात पे, या फिर एक अलग ये क्रिएटिव थॉट है कि अगर एज ही ना बढ़े, कुछ साल तक तो हो गया ठीक है, लेकिन उसके बाद उम्र बढ़ नहीं रही है, लड़का वहीं का वहीं है। शुरुआत में तो बड़ा मजा आएगा, पहले 5 साल लो ना लोग सेलिब्रेट करते रहेंगे, दुनिया पूरी खुश होगी, कभी बुढ़े नहीं होंगे लोग, फॉरएवर यंग जवान, लाइफ जो है अनलिमिटेड लगने लगेगी, ब्यूटी इंडस्ट्री एकदम एक्सप्लोड हो जाएगी, अमीर और भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि फिर ट्रीटमेंट के लिए तो पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो पैसे खर्च करते हैं अपनी स्किन पर, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। हॉस्पिटल्स में एंटी एजिंग डिमांड जो है वो क्रेजी लेवल पर चली जाएगी, उनको ये होगा कि भाई मुझे और जवान दिखना है, और जवान दिखना है, और जवान दिखना है। लेकिन फैमिली सिस्टम जो है वो धीरे धीरे चेंज होगा। नॉर्मली पेरेंट्स जो हैं वो बूढ़े होते हैं, चिल्ड्रंस ग्रो अप होते हैं, फिर जनरेशंस रिप्लेस होती हैं। लेकिन अब क्या होगा, जब लोगों की एज बढ़ेगी नहीं, सब सेम एज के लगेंगे। ग्रैंडफादर 120 साल के, लेकिन 30 के लगेंगे। ओहो नाना क्या लग रहे हो, नाना नाना भी एकदम बाल उनके एकदम भरे भरे बाल हैं जो आंखों के नीचे तक आ रहे हैं। नाना अपने ने ना राइट साइड सर झुका के एक झटका दिया, नाना के बाल ऊपर गए। ओहो नाना क्या बात है, नाना भी एकदम जानदार लग रहे होंगे 30 की उम्र के। फादर साहब जो है 90 के पहुंच गए लेकिन वो 28 के लग रहे हैं। लड़का 60 पे पहुंच गया है लेकिन 25 का लग रहा है। सोसाइटी थोड़ी कंफ्यूज हो जाएगी, फैमिली की जो आइडेंटिटी है वो स्ट्रेंज लगने लगेगी। लेकिन ओवर पॉपुलेशन का क्राइसिस एक बार आएगा, सबसे बड़ा कैटास्ट्रोफी यहाँ स्टार्ट होगी कि अगर लोग बूढ़े नहीं होंगे, मरेंगे ही नहीं, तो दुनिया में अर्थ पर जो ह्यूमंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होंगे। इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोड होगी, फूड शॉर्टेज होंगी, वाटर शॉर्टेज, हाउस कोलैप्स होंगे और मैसिव पॉल्यूशन होगा। सिटीज जो है ना वो ओवर क्राउडेड हो जाएंगी, नाइटमेयर बन जाएंगे एक तरह से। जॉब्स लोगों की कभी ख़त्म ही नहीं होगी। आज जैसे बूढ़े लोग रिटायर होते हैं, फिर नई जनरेशन आती है हमारी जैसी, फिर हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन हम तो डाई करके थोड़े जवान दिख जाते हैं। लेकिन अगर कोई बुढ़ा ही नहीं होगा तो CEO जो हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, बॉस हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो दो दो साल तक काम करते रहेंगे, और फिर लोग जो हैं फॉर एवर पावर में रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पावर जो है वो ख़त्म होती है। अगर ऐसा होता कि कभी भी लोगों की एज ना बढ़ रही होती, अकबर आज भी होते शायद, फिर है ना हुमायूं आज भी होते अलग अलग जगहों पे शायद, या फिर लड़ाई झगड़ा हो ही रही होती तख्त के लिए, जो जीता वही सिकंदर। यंग जनरेशंस तो ये कहेंगी कि यार अगर ये बूढ़े नहीं हो रहे तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है। अनएम्प्लॉयमेंट स्काई रॉकेट कर जाता, एकदम से बढ़ जाता। जो पैसे वाले होते वो इमोर्टल ही हो जाते, है ना, उनके पास तो पैसे ही पैसे होते। ह्यूमंस जो हैं उनके माइंड पर इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन ब्रेन नेचुरली लिमिटेड है। अगर आप इमेजिन करें 300 साल की कोई मेमोरीज जो हैं किसी शख्स के दिमाग में है, लोग जो हैं मेंटली एग्जॉस्टेड होने लगेंगे, क्योंकि लोग मर नहीं रहे और इतनी सारी टेंशन है कि आज से 100 साल पहले तुम्हारे चाचा ने मेरे साथ जो किया है, और चाचा भी कह रहे हैं कि आज से 200 साल पहले तुम्हें पता है बड़े पापा ने क्या किया मेरे साथ, पूरी जमीन हड़प ली है मेरी, आज महंगे महंगे कार से घूम रहे, चार पहिया से मेरे पास सिर्फ दो पहिया है। ये टेंशनें बढ़ जाएंगी, इमोशनल बर्नआउट होगा, एंडलेस ट्रॉमा होगा, लोगों की मेमोरीज बड़ी खतरनाक होंगी, डिप्रेशन में लोग चले जाएंगे। और कुछ लोग तो ये कहेंगे हम मरना चाहते हैं, अब हम मर नहीं रहे वो अलग बात है कि अब हम मरना चाहते हैं, हमें जीना ही नहीं है, क्योंकि जो जिंदगी है वो एंडलेस हो जाएगी और मेंटली बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। मोहब्बत और रिलेशनशिप इसमें भी चेंजेस आएंगे। आज मैरिज 40 से 50 साल की होती है, डिफिकल्ट होती है, इमेजिन 300 साल की मैरिज। इंसान मरे ना मरे, लेकिन देखो एक होता है नेचुरली मरना, एक होता है कि रस्सी दिख रही है लटक जाऊं क्या, वो वाला हिसाब हो जाएगा भाई। मैरिजेस में तो वही वाला हिसाब हो जाएगा कि बस हो गया अपना, चल ले भैया अल्लाह हाफिज़, हाँ बस बहुत हो गया भैया, आप नहीं झेल पाएंगे तो

0: ये सिचुएशन आ जाएगी 500 साल की फ्रेंडशिप है ना, ये रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट होगा वो उस वक्त पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। उसके अलावा क्राइम और वॉर जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डेंजरस क्रिमिनल्स डिकेड तक सर्वाइव करेंगे, डिक्टेटर्स जो होंगे सेंचुरीज तक पार में रहेंगे, और फिर परेशानी जो है वो लोगों की बढ़ती रहेगी। इन्वायरमेंटल डिजास्टर होगा, जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जो अर्थ है वो पूरी तरह से ख़त्म होने लगेगी, मैसिव पॉपुलेशन हो जाएगी, पॉल्यूशन होगा, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होगा, उसके अलावा जो हमारा समंदर है वो ख़त्म होने लगेगा, एनिमल एक्सटिंक्ट होने लगेंगे, गवर्नमेंट के एक्सट्रीम रूल्स हो जाएंगे, क्योंकि फिर जब इतनी आबादी बढ़ रही है तो रूल्स तो बनाना पड़ेगा। और फिर कुछ रूल्स बनेंगे जिसमें बर्थ लिमिट्स होंगी, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बातें होंगी, एज लाइसेंसेस होंगे, लाइफ के कोटा होंगे, है ना, कि जैसे आज तो चलो आप 60 साल में रिटायर हो रहे हैं, जब कोई इंसान निपटेगा ही नहीं दुनिया से फिर तो ये हो जाएगा कि भाई 100 साल में आपको रिटायर होना है, नहीं इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते भाई साहब, अब आप रिटायरमेंट ले लो, रिटायरमेंट के बाद भी 600 साल हो गए जिंदा पड़े हुए। ये भी इंटरेस्टिंग बात होगी, नहीं अगर ऐसा हो तो ह्यूमन का एवोल्यूशन जो है वो एकदम से रुक जाएगा। एजिंग और डेथ एवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बगैर एजिंग के, यानी कि बगैर धीरे धीरे हमारे बढ़ने के बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, एवोल्यूशन जो है वो स्लो हो जाएगा, जेनेटिक प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो सकती हैं, ह्यूमन स्पेशीज बायोलॉजिकली अनस्टेबल हो सकती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इमोशनल साइड भी लोगों का आएगा, आज ह्यूमन्स लाइफ को वैल्यूएबल हम समझते हैं क्योंकि टाइम लिमिटेड है, लेकिन जब जिंदगी बहुत लंबी चलेगी, एंडलेस होगी, तो अर्जेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मोटिवेशन कम हो जाएगा, ड्रीम्स जो हैं वो पोस्टपोन होते रहेंगे, अरे कल कर लेंगे, अरे वो कौन सा जा रहे हैं अभी, कौन सा जा रहे हैं, डॉक्टर्स का काम ही ख़त्म हो जाएगा भाई, डॉक्टर्स क्या करेंगे, डॉक्टर्स को अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। बस बीमारियों के लिए, अब बीमारी में भी है, अरे आज बीमार हुआ कोई बात नहीं, 10 दिन बाद सही हो जाएगा, कौन सा मरे जा रहा, यही लाइन होगी ना लोगों की, तो और क्या होगी भाई। ह्यूमन के जो एम्बिशन है वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। लेकिन ह्यूमंस क्या फिर भी मरेंगे? बिल्कुल मरेंगे, क्योंकि एजिंग जो है स्टॉप होने का मतलब इमोर्टल होना नहीं है। ह्यूमंस फिर भी मर सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट से, डिजीज से, नेचुरल डिजास्टर अगर आ गया, ओल्ड एज डेथ बस अगर डिसपेयर हो जाए, तो ये सारी चीज़ें होंगी जो अभी तक मैंने आपको बताया। सो ये सारे सीन होंगे। वेल ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं रहा दोस्त, यहाँ तो और कम हो गया हिसाब, पहले दादा नाना 120-100 चल जाते थे भाई साहब, अब तो हमारा हिसाब ही ऐसा, अब हम लोग हरकतें भी तो ऐसी कर रहे हैं कि पहले निपट जा रहे हैं। अब दादा नाना के समय में कहाँ इतनी कार और ये सब थी, आज कार 120 पे चलाएगा तुम्हारा भाई। भाई आज आगे वाला पहिया उठा के दिखाएं बाइक का, हाँ मैं उठा लेता हूँ, हैं तुम भी उठा लेते हो, अच्छा ड्रिफ्ट मार के दिखाऊंगा चार पहिया से। वो सब चल रहा है। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि हम 100-150 साल जिए, हाँ ये हो सकता है कि हमारी एजिंग थोड़ी धीमी हो सकती है, हम 60-70 साल आज की अगर एज है किसी कंट्री में, किसी मुल्क में लोगों की, तो उसे बढ़ाया जा सकता है टेक्नोलॉजी से, अच्छा खाना खा के, अच्छा लाइफस्टाइल जो अगर इंसान फॉलो कर रहा है, तो इन सब चीज़ों से काम तो हो सकता है, वो 60 या 70 की बजाय 120 या 100 तक चले जाएंगे, मैक्सिमम 130 मान लो, और हम कहते हैं फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज को लेकर 150 मान लो, लेकिन कभी ना कभी कुछ तो हरकतें करते, मर्द जो है ना वो सुकून से बैठता नहीं है, उसको जिंदगी में चाहिए कुछ तगड़ा, कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे थोड़ा डर वर लगे, इंसान का इंतकाल वगैरह क्यों नहीं हो रहा है। ये ऐसा सोचने लगते तो मर्द जो है वो चुपचाप बैठता तो नहीं है। फिलहाल 6:46 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, एक कॉल करते हैं अमिता को, लेट्स सी के क्या कुछ चल रहा है हमारे लोकेशन पे, हमारी जगह पे, जो कि है बुक फेयर, यह है 35वां इंटरनेशनल बुक फेयर जो कि डायरेक्टली DECC में हो रहा है, और फिलहाल हमारे साथ अमिता जुड़ चुकी है। हेलो अमिता, क्या हाल चाल, क्या है माहौल?
1: हेलो फजील, माहौल किताबों वाला है, मैं ये कहूंगी अभी हर कोई किताबों की खुशबू में खोया हुआ है, एंड इनफैक्ट मैंने ब्रेक पे पहले जाने से पहले मैंने कहा था आपसे कि मैं एक सेल्फ हेल्प और पॉजिटिविटी वाली बुक के स्टॉल में जाने वाली हूँ, क्योंकि UAE से था, एंड आई वाज देयर एंड ऑब्वियसली जो कहते हैं ना कि पावर से रिलेटेड बहुत सारी किताबें थी कि लाइक द आर्ट ऑफ पावर देन पावरफुल सेइंग्स फिर 13 थिंग्स यू शुड डू यू शुड नॉट डू ऐसी मतलब पूरी लिस्ट थी जिसको देखकर बहुत आया.
0: ये 13 things you should do or you should not do, इसमें तुमने पढ़ाई करी, मतलब क्या चीजें हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में है ये?
1: It's about the lifestyle, because वो कहते हैं ना कि जितने पॉपुलर लोग हैं या जो सक्सेसफुल लोग हैं, आई शुड से, वो कौन सी चीजें करते हैं, कौन सी चीजों को अवॉइड करते हैं, उसकी लिस्टिंग है. और मेरे ख्याल से ये हम और आप अपनी डेली जिंदगी से सीख सकते हैं, ठीक है, अपनी बेसिकली गलतियों से सीखना. इनफैक्ट मेरे सामने एक किताब आई फजील, दैट वॉज लाइक द पावर इज नाउ, ठीक है, और उसमें बड़ा प्यारा कोट, या द पावर इज नाउ, और उसका एक बड़ा प्यारा कोट था जिसमें लिखा था कि द पावर इज नाउ टू चेंज योर लाइफ एंड यू डोंट नीड परमिशन टू बी ग्रेट. ओके, सो आई विल रिपीट अगेन, द पावर इज नाउ टू चेंज योर लाइफ एंड यू डोंट नीड परमिशन टू बी ग्रेट.
0: ओके, ग्रेट, हाँ ओके, मैं कुछ और समझा ग्रेट वाली लाइन, लेकिन ये कितनी करी लाइन है ना, कि आपको बड़ा बनने की जरूरत नहीं है. और देखो, हर इंसान अपनी अपनी फील्ड में अगर छोटे छोटे जगहों पे अपना अपना काम कर दे तो आप ग्रेट बन जाते हैं.
1: राइट. और ये चीज ये भी कह रही थी कि भाई देखो, अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है ना, तो किसी की परमिशन नहीं लेनी है. आपने अगर लगना है कि कुछ करना है तो इट्स नाउ, नाउ यू जस्ट गो अहेड एंड डू इट.
0: आईवा,
1: तो ये एक चीज है, मुझे बहुत पसंद आई. मैंने कहा आज तो बिल्कुल बताना बनता है. जो हमारा स्पेशल रहता है हर दिन का, कि भाई स्पेशल कोट क्या है आज तो हाइड्रेशन बुक फेयर में. और साथ ही मैं एक ये यूएस एम्बेसी के भी आउटलेट में गई थी, तो बड़ा खूबसूरत बनाया, मुझे एकदम से लगा जैसे कि कोई नासा या उस तरह का, यू नो, उस तरह का आउटलेट है. पूरा ब्लू में है, ब्लू लाइट्स एंड ऑल, और बाहर बिल्कुल नासा का सिंबल बना हुआ है. सो आई वेंट देयर एंड दे सेड कि दे आर सेलिब्रेटिंग द थीम स्पेस.
0: क्या बात.
1: तो उससे रिलेटेड उनके पास बुक्स हैं, पॉजिटिव कोट्स वाली चीजें हैं, या जो सेलिब्रिटीज जो अक्सर स्पेस से रिलेटेड बातें करना पसंद करते हैं, उन्होंने मूवीज करी है, उस तरफ की बहुत प्यारी प्यारी बुक्स हैं.
0: अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाह रहा था, वो ये कि क्योंकि आप जब पहुंची थी उस वक्त मेरे ख्याल में 4:30 या 5 का अराउंड टाइम था जब आप पहुंची, फिर हमने 5 बजे के बाद बात करी, तब आपने कहा था कि यू नो भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है, तो अभी क्या भीड़ बढ़ी या फिर उतनी है अभी?
1: माहौल नहीं, भीड़ बढ़ गई है एंड डेफिनेटली पार्किंग, गर्मी हो रही है, तो धीरे धीरे जैसे वेदर थोड़ा सा कूल होता है तो लोग बाग आना शुरू कर रहे हैं. मेरे ख्याल से ऑफिसर्स भी रहते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके एवरीबॉडी कम. तो आई रियली फील नाउ यू कैन सी सो मेनी पीपल अराउंड, और मतलब बुक लवर्स की तादाद ना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. और अभी जस्ट मेरे सामने ना एकदम से मेरी नजर गई फजी, एक मीडिया हाउस है, उसके सामने कोई आर्टिस्ट है. आई मीन दे आर जस्ट ड्राइंग द पिक्चर्स ऑफ समबडी, किसी की पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते. तो उनके सामने कोई शख्सियत बैठी है एंड इट्स लाइक रैंडम, जैसे नहीं कि हम जाते हैं और हमारी पोर्ट्रेट बना दो. दिस आर्टिस्ट इज एक्चुअली मेकिंग द स्केच
0: लाइव पोर्ट्रेट. ओके,
1: स्केच बना रहे हैं. तो ये भी मतलब अभी सामने नजर आया कि ये भी एक चीज है. अच्छा, हमें देखने मिल सकती है.
0: एक और चीज ये कि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं और वो बहुत ज्यादा यू नो किताबों में अभी नहीं है, बट पेरेंट्स को बहुत ज्यादा किताबों का शौक है, तो क्या बच्चों को कहीं किनारे छोड़ दें, वो खेलें और फिर यू नो पेरेंट्स वहां पर घूम फिर सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ है?
1: या आई टेल यू कि जो पहली चीज तो जो बुक फेयर है ना, वहां पर आप बच्चों को उनके जो प्रैम और स्ट्रॉलर्स है वो लेकर जा सकते हैं.
0: अच्छा, ठीक है,
1: तो इसमें कोई रोकने की चीज नहीं है. प्लस देयर इज लाइक चिल्ड्रन जोन जहां से मैं होके आई थी, दैट वाज मैसिव, तो वहां पर बच्चों के लिए एक्टिविटीज और मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, बट आई पर्सनली फील वो केयर टेकर वाली चीज नहीं है कि आप मतलब उनको छोड़ के कहीं चले जाओ. जो चिल्ड्रन जोन है देयर हैव लॉट ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज ये पूरा इंटरैक्टिव जोन है, तो बच्चे अपना फन ले सकते हैं. प्लस तुमने बहुत अच्छी चीज बोली, जो बच्चे जो छोटे हैं ना, उनके लिए भी यहाँ पर बुक्स है एंड दोज आर सेंसरी बुक्स. मतलब मैं लिटरली देखकर मुझे कल ऐसा लगा कि काश ये बुक हमारे टाइम पर भी होती. तो जैसे बुक अगर आप खोलोगे ना फजील, तो एप्पल अगर है तो एप्पल का जो स्किन होती है, एप्पल की जो स्किन, वो एप्पल के कलरफुल पिक्चर पे लगा हुआ है. अगर आपने फेदर बोला है तो हाँ। या बेर बोला है तो वो बेर का जो पफ है जो उसका उसकी जो स्किन होती है ना रोए वो भी आपको ना उस बेर के फोटो में मिलेगी। सो लाइक सेंसरी कि छोटा बच्चा है तो अगर वो टच करेगा ना
0: तो उसे फील
1: होगा, समझ में आएगा यस कि ये एप्पल है, ये बेर है, ऑल दीस थिंग।
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है दोस्तों, मैं इस बुक फेयर में तो जरूर जाऊंगा क्योंकि ये जगह ही बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने किताबें तो हर जगह पढ़ी होंगी लेकिन इस तरह की किताबें, इस तरह की बुक्स कहाँ देखने को मिलती हैं आमतौर पे जब आप कहीं पर जाते हैं ना? तो ये वो जगह है जहां पर बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अमिता, आपने इतनी जानकारी इतने दिनों में दी है, बहुत मेहनत लगती है आई नो, और मुझे लगता है कि जितने भी लोग बाहर सुन रहे हैं प्लीज अप्रिशिएट अमिता, ए फॉर अमिता।
1: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड आज के लिए तो मैं यही कहूंगी कि फजील यही तक चीजों के बारे में हमने जाना है, कल फिर कोई नया सेक्शन हम कवर करेंगे एंड वी विल फिगर आउट कि और क्या स्पेशल है जो हमारे एंटायर कतर के बुक लवर्स को पता चलना चाहिए। फॉर नाउ आई विल ओनली गिव अ मैसेज कि अगर आपको किताबें पसंद हैं तो बस आ जाइए, और किताबें नहीं भी पसंद है तो भी आ जाइए, बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ डिफरेंट फीलिंग, और स्पेशली कतर और जो डिफरेंट रीजन्स हैं प्लस जो 30 से भी ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके कल्चर को भी देखने का मौका मिलेगा। तो डू नॉट मिस दिस आउट बिकॉज इट्स वंस अ ईयर एंड ये अभी भी कहा जा रहा है कि रीजन का वन ऑफ द बिगेस्ट है, लार्जेस्ट है, और ये अपने आप में एक हिस्ट्री बना रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो यस Do not forget.
0: तो दोस्तों बिल्कुल जाइए, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। थैंक यू सो मच अमिता, हम कल इंशाल्लाह फिर जुड़ेंगे और फिर हम दुनिया की जानकारी जो बुक फेयर से ले सकते हैं वो लेंगे। थैंक यू सो मच,
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों ये थी अमिता जो बुक फेयर से जुड़ी थी हमारे साथ FM 107 पे। फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:53, फजील को दीजिए इजाजत और अमिता को भी दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, और अभी बेहतरीन से गाने के साथ छोड़े जा रहा हूँ, और ये गाना है दिल ये डांस मार रहे, मैं नहीं गा पाऊंगा यार फिर कभी, उदित नारायण और सुखविंदर सिंह की आवाज में दिल डांस मार रहे, डांस मार रहे। थोड़ी मेहनत करते ना म्यूजिशियन बन जाते हैं, कोई गवाता नहीं वो अलग बात थी। FM 107 दिल से देसी।

FM 107 पर बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

तायिदो हिमायत का इरादा किया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि तमाम फरीकों को इन कोशिशों का मुस्बत जवाब देना चाहिए ताकि खित्ते में पायदार अमन और मतलूबा इस्तेहकाम को फ़रोग देने में मदद मिल सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहरी जहाज़ रानी की आज़ादी एक बुनियादी उसूल है जिसकी सौदेबाजी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और अब नया हुरमुज़ को बंद करना या उसे दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल करना बहरान को मज़ीद गहरा करने और ख़त्ते के अहम मफादात को ख़तरे में डालने का बाइस बन सकता है। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि बैन अल-अक़वामी क़ानून के उसूलों, हुस्न हमसायगी और ख़त्ते और उसकी अक़वाम के मफाद को मुकद्दम रखना ज़रूरी है ताकि इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी सलामती को फ़रोग़ दिया जा सके और शिद्दत को कम करने की कोशिशों को तक़वियत मिल सके। क़तर न्यूज़ एजेंसी के डायरेक्टर जनरल जनाब अहमद बिन सईद अर-रुमैही से आज रवांडा के सफ़ीर इगोर मारारा कायनामूरा ने मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिया के शोबे में मुश्तरिका तआवुन के पहलुओं पर गुफ्तगू की गई। वजारत खारजा में वज़ीर ममलकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन सालेह अल खुलैफ़ी ने इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तरफ से एक टेलीफोन कॉल वसूल की। इस रबते में ख़त्ते के ताज़ा तरीन हालात वाक़ियात, ख़ास तौर पर रियासत है मुत्तहिदा अमरीका और इस्लामी जमहूरी ईरान के दरमियान फायरबंदी और शिद्दत में कमी लाने के लिए की जाने वाली कोशिशों से मुतालिक बातचीत की गई ताकि इलाके में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देने में मदद मिल सके। वज़ीर ममलकत ने इस गुफ्तगू में रियासत क़तर की तरफ से पुरअमन ज़राए से बहरान को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल तायिद व हिमायत का इरादा किया और तमाम अतराफ़ से इन कोशिशों को कबूल करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया ताकि मुज़ाकरात में पेशकदमी के लिए साजगार माहौल तैयार हो सके जिससे इलाके में पायदार अमन व सलामती की बहाली के लिए एक जामे मुआहदे तक पहुँचा जा सके। शूरा कौंसिल ने आज अपने मामूल के हफ्तावार इजलास को कौंसिल के हेडक्वार्टर तमीम बिन हमद ईवान में मुनाकिद किया जिसकी सदारत कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अलगानिम ने की। इजलास के आगाज़ में शूरा कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जनाब नाइफ बिन मोहम्मद अल महमूद ने एजेंडे को पढ़कर सुनाया और कौंसिल ने अपने गुज़िश्ता इजलास की कार्रवाई को मंजूरी दी। इजलास के दौरान शूरा कौंसिल ने कानून साजी के उमूर की कमेटी की सिफारिश पर अमल करते हुए कौंसिल के मुतअद्दिद मुअज्जज़ अराकीन की जानिब से पेश करदा बच्चों के डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ के मुसव्वदा कानून पर गौर करने की मंजूरी दी। ये इकदाम कौंसिल के स्पीकर की जानिब से मुसव्वदा कानून को मुताले के लिए कमेटी के सपुर्द करने के बाद हुआ जिसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कौंसिल को पेश की। मुकालमे के बाद कौंसिल ने मुत्तफ़िका तौर पर इस मुसव्वदा कानून को सेहत अवामी खिदमात और माहौलियात की कमेटी के सपुर्द करने पर इत्तेफ़ाक़ किया ताकि वो इसे मुख्तलिफ जामियों से मुताला करे और अपनी रिपोर्ट कौंसिल को पेश करे। ये मुसव्वदा कानून दुनिया भर में बच्चों के डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल में तेज़ रफ्तार तोसी और इसके साथ ही डेटा और प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़, नुकसानदेह मवाद तक रसाई, साइबर क्राइम्स और डिजिटल इस्तेहसाल से मुतालिक चैलेंजों और ख़तरात के पेश नज़र पेश किया गया जो डिजिटल माहौल में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी के फ्रेमवर्क की तैयारी को ज़रूरी बनाता है और तकनीकी तब्दीलियों के साथ हम आहंगी को यकीनी बनाता है। इस दौरान शूरा कौंसिल ने कौंसिल की नायब स्पीकर डॉक्टर हमदा बिन हसन सुलैती की जानिब से पेश करदा एक रिपोर्ट का जायज़ा लिया जो दोहा में शूरा कौंसिल के ज़रिए इंटर पार्लिमानी यूनियन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 298वें इजलास की मेज़बानी के बारे में थी जो गुज़िश्ता जनवरी में मुनाकिद हुआ था। रियासत क़तर आलमी इदारे सेहत की जनरल असम्बली के 69वें इजलास में शरीक है जो स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में 18

करते हैं। ये प्रोग्राम हाईलाइट करता है कतर के स्टार्टअप्स, नेशनल इनिशिएटिव्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को, जो मिलकर एक ऐसी इकोनॉमी बना रहे हैं जो सिर्फ ऑयल और गैस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि नॉलेज, क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर खड़ी हुई है। ये कहानी है उन लोगों की जो रिस्क लेते हैं, नए रास्ते बनाते हैं और मुस्तकबिल को आज में तब्दील कर देते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आप रोज यूज करते हैं लेकिन कभी उसकी गहराई में नहीं गए। मैं बात कर रही हूँ फिनटेक इनोवेशन इन कतर की। जरा सोचिए, जब आप किसी स्टोर पर जाकर अपना फोन निकालते हैं, ठीक है, एक टैप करते हैं और पेमेंट हो जाती है, या जब आप अपनी सैलरी, बिल्स और ट्रांसफर्स सब कुछ एक मोबाइल ऐप से मैनेज कर लेते हैं, ये सब किसका कमाल है, आपने कभी सोचा है? ये है फिनटेक, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फिनटेक असल में आप कह लें कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये हमें ट्रेडिशनल बैंकिंग के पुराने तरीकों से निकालकर एक ऐसी दुनिया में ले आता है जहां सब कुछ फास्ट, सिक्योर और एक्सेसिबल होता है। और कतर में ये रेवोल्यूशन सिर्फ शुरू नहीं हुआ बल्कि तेजी से ग्रो कर रहा है भाई। देखिए, इस एपिसोड में हम तीन इम्पोर्टेंट पिलर्स पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, डिजिटल पेमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल इंक्लूजन। तीन ऐसे पहलू जो मिलकर एक स्मार्ट और इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल पेमेंट की। देखिए, आज के दौर में कैश आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गया है। कतर में कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स और QR कोड पेमेंट्स ने शॉपिंग और ट्रांजैक्शंस को बहुत आसान बना दिया है। अब आपको ना चेंज की फिक्र होती है, ना लंबी लाइंस की टेंशन होती है, सिर्फ एक टैप किया और काम हो गया। ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है बल्कि स्पीड और सेफ्टी का एक नया स्टैंडर्ड है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। अब आते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ जो दुनिया भर में बज क्रिएट कर रही है, ब्लॉकचेन। देखिए, नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है आपको लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, पहले मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की तो मैंने कहा वाओ, इट इज समथिंग गुड, हमें पता होना चाहिए ये चीजें। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो देखिए, ब्लॉकचेन एक डिजिटल सिस्टम है जहां हर ट्रांजैक्शन सिक्योरली रिकॉर्ड होती है और उसे चेंज करना आप कह लें कि लगभग नामुमकिन होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और सिक्योरिटी है। सबसे बड़ी चीज सिक्योरिटी है। तीन चीजें जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो यही है, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और सिक्योरिटी। देखिए, कतर भी ब्लॉकचेन की पोटेंशियल को समझ रहा है। बैंकिंग सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट इनिशिएटिव तक इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया जा रहा है ताकि सिस्टम्स को और ज्यादा एफिशिएंट और फ्रॉड फ्री बनाया जा सके। ये सिर्फ आज का सलूशन नहीं बल्कि कल की फाउंडेशन रखी जा रही है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे मीनिंगफुल एस्पेक्ट पर, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। साथियों, दुनिया में अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट्स हैं ही नहीं। जी हाँ, हैं ऐसे लोग, या जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज तक नहीं पहुंच पाते। अब फिनटेक उनके लिए एक नई उम्मीद है। देखिए, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अब हर शख्स को अपने फाइनेंसेस मैनेज करने का मौका मिल रहा है, चाहे वो कहीं भी हो, उनको मिल रहा है ये मौका। एज लॉन्ग एज यू हैव इंटरनेट, यू कैन यूटिलाइज इट। कतर में भी इस डायरेक्शन में काफी एफर्ट्स हो रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनाया जा सके। ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है बल्कि सोशल एम्पावरमेंट भी है। कतर इनोवेट्स के इस एपिसोड में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे साथियों, बल्कि आपको हम जान पहचान करवाएंगे उन स्टार्टअप से जो फिनटेक स्पेस में नए आइडियाज ला रहे हैं, उन इनोवेटर्स से जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल रहे हैं, और उन इनिशिएटिव्स से जो कतर को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम बात करेंगे उन स्ट्रगल्स की जो हर नई सोच के साथ आते हैं, उन लेसन्स की जो फेलियर से सीखे जाते हैं, और उस मोटिवेशन की जो लोगों को आगे बढ़ने पर मजबूर करती है।
क्योंकि हर सक्सेस स्टोरी के पीछे

एक कहानी होती है मेहनत की, हिम्मत की और बिलीव की। लेकिन साथियों, हर इनोवेशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी और डिजिटल अवेयरनेस, ये सब चीजें उतनी ही जरूरी हैं जितना कि टेक्नोलॉजी खुद। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ यूजर्स ना बने बल्कि इन्फॉर्म्ड यूजर्स बने। समझ रहे हैं ना बात? तो क्या आप तैयार हैं भाई एक ऐसे सफर पर जाने के लिए जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कतर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को रीडिफाइन कर रहा है, कैसे एक छोटा सा मोबाइल एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल बन गया है और कैसे आज के आइडियाज कल की दुनिया को शेप दे रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है या आप कुछ अपनी सोच शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें। हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर, और अगर चाहें तो हमें हमारे सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं @FM107 Qatar। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM107। ये है कतर इनोवेट्स, जहां हर आइडिया एक कहानी है और हर कहानी एक नई दुनिया की तरफ कदम।

0: Qatar Innovates, RJ Safa ke saath, sirf FM 107 par. Dil se desi.
1: साथियों कतर इनोवेट्स में आज हम एक बहुत ही खास सफर पर हैं, जहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एक सिंपल से आइडिया को कैसे एक पावरफुल इंपैक्ट में तब्दील किया जा सकता है। साथियों जरा सोचिए, एक आइडिया जो शायद किसी ने चाय की चुस्की लेते हुए सोचा हो या किसी लेट नाइट डिस्कशन में किसी के जहन में आया हो। अब आप सोचिए कि ऐसे आइडिया कैसे ही दुनिया को बदल सकते हैं, कैसे एक छोटी सी सोच एक मुल्क की इकोनॉमी को रीशेप कर सकती है, कैसे एक इनोवेशन लोगों की जिंदगियां आसान बना सकता है। तो साथियों, इनोवेशन कभी भी सीधा इम्पैक्ट नहीं देती, ये एक जर्नी है और ये जर्नी शुरू होती है एक आइडिया से। तो भाई अगर आइडिया के बारे में बात करें तो आइडिया जो होता है ना, वो स्पार्क होता है इनोवेशन का। हर इनोवेशन का आगाज एक आइडिया से होता है। ये आइडिया अक्सर किसी प्रॉब्लम से पैदा होता है। जब लोग किसी मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं तो उनके जहन में ना तरह तरह के सवाल आ रहे होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है कि इसे और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। भाई कतर में भी फिनटेक इनोवेशन का सफर इसी तरह शुरू हुआ। लोगों ने देखा कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस हैं, लेंथी प्रोसेसेस हैं, लिमिटेड एक्सेस है, और कभी कभी बहुत ही स्लो सर्विसेज हैं भाई। और फिर यहीं से एक आइडिया पैदा हुआ, और वो क्या था? वो ये था, क्यों ना टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज को फास्ट, सिंपल और एक्सेसिबल बनाया जाए। ये आइडिया शुरू में बड़ा छोटा सा लग रहा था। कभी आप कह लें कि एक नोटबुक के कॉर्नर पर लिख दिया जाता है ना, इसे किसी चीज को रिमाइंडर के तौर पे वैसे लिख दिया गया। कभी एक टीम के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में ये डिस्कस कर लिया गया। लेकिन अगर इस आइडिया में पोटेंशियल हो और उसे सही डायरेक्शन मिल जाए तो ये कुछ बड़ा बन सकता है। तो भाई फिर बारी आई टर्निंग आइडिया इनटू कॉन्सेप्ट की। देखें, आइडिया के बाद आता है एक्सप्लोरेशन का फेज। यहाँ पर इनोवेटर्स अपने आइडियाज को टेस्ट करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये आइडिया वाकई में इतना प्रैक्टिकल है कि ये बार बार हमारे जहन में उभर कर तो आ रहा है, लेकिन क्या ये मार्केट में चलेगा भी? कतर में फिनटेक स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स हब्स इस फेज में बहुत एक्टिव है। वो नए डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करते हैं, ब्लॉकचेन के एप्लीकेशंस टेस्ट करते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए नए मॉडल्स डिजाइन करते रहते हैं। इस स्टेज पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है क्यूरियोसिटी। भाई ये तो हर चीज को ड्राइव करती है। इनोवेटर्स पूछते हैं, सवाल करते हैं भाई एक दूसरे से, क्या हम इस प्रोसेस को और सिंपल बना सकते हैं, क्या हम इस सिस्टम को और सिक्योर बना सकते हैं, क्या हम उन लोगों तक भी पहुंच सकते हैं जो अभी तक इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बने। ये क्वेश्चंस इनोवेशन को शेप देते हैं। लेकिन साथियों, आइडिया से इम्पैक्ट तक का सफर हमेशा स्मूथ नहीं होता। हर इनोवेशन को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। देखिए फिनटेक के केस में भी ऐसा ही होता है। साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है, सिर्फ कतर के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। जब आप डिजिटल पेमेंट्स या ऑनलाइन बैंकिंग की बात करते हैं ना, तो डाटा प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इनोवेटर्स को एंश्योर करना होता है कि यूजर का डाटा सेफ रहे। और एक और चैलेंज इसके साथ साथ आता है, वो होता है रेगुलेशंस का। हर कंट्री में फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रिक्ट रूल्स के अंडर ऑपरेट।

लोगों को एजुकेट भी करना होता है. जब आइडिया टेस्ट हो जाता है और चैलेंजेस को समझ लिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है सोल्यूशन बिल्ड करना. यहाँ पर डेवलपर्स, डिजाइनर्स और इंजीनियर्स मिलकर काम करते हैं. वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो यूजर फ्रेंडली हो, एफिशिएंट हो और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. देखें, कतर में फिनटेक कंपनीज और स्टार्टअप्स इस फेज में बहुत एडवांस टूल्स यूज करते हैं. मोबाइल एप्स बनाई जाती हैं जो रियल टाइम पेमेंट्स अलाउ करती हैं. ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम्स डेवलप किए जाते हैं जो ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं. ये सिर्फ कोडिंग या डिजाइनिंग का काम नहीं होता, ये एक विजन को रियलिटी में बदलने का प्रोसेस है. एंड प्रोसेसेस टेक टाइम. सॉल्यूशन बनने के बाद उसे टेस्ट किया जाता है, रियल यूजर्स के साथ उसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है. यहाँ पर फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट होता है भाई. लोग बताते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं. शायद आप थोड़े स्लो हो, शायद इंटरफेस और सिंपल हो सकता है, शायद कोई फीचर मिसिंग हो. ये फीडबैक इनोवेटर्स के लिए गोल्ड की तरह होते हैं क्योंकि यही फीडबैक उनके प्रोडक्ट को और बेहतर से बेहतरीन बनाते चले जाते हैं. साथियों, कतर में भी टेस्टिंग और प्लॉट प्रोग्राम्स के जरिए फिनटेक सॉल्यूशंस को रिफाइन किया जाता है. इससे इंश्योर होता है कि जब प्रोडक्ट लॉन्च हो तो वो मैक्सिमम यूजर्स के लिए बेनिफिशियल हो. अच्छा भाई, जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है ना, तब आता है लॉन्च का मोमेंट. ये एक एक्साइटिंग फेज होता है साथियों, लेकिन ये सिर्फ स्टार्ट होता है. देखिए, मार्केट में एंट्री के बाद ना प्रोडक्ट को कंपटीशन का सामना करना पड़ता है. इनोवेटर्स को मार्केटिंग, अवेयरनेस कैंपेन्स और पार्टनरशिप के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है. और कतर में डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल बैंकिंग एप्स और फिनटेक सॉल्यूशंस को ग्रेजुअली अडॉप्ट किया जा रहा है. लोगों को उनके बेनिफिट्स समझाए जा रहे हैं, उनकी ईज और कन्वीनियंस को हाईलाइट किया जा रहा है, कैंपेन्स चल रही हैं. और भाई, फिर बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट फेज की. सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है एडेप्टेशन का. जब लोग किसी इनोवेशन को यूज करना शुरू करते हैं तभी उसका रियल इम्पैक्ट नजर आता है. तो भाई, आज कतर में आप देखेंगे कि लोग कैश के बजाय कार्ड या आप कह लें कि मोबाइल पेमेंट्स यूज करते हैं. बिजनेसेस डिजिटल ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट कर रहे हैं. ऑनलाइन बैंकिंग एक नॉर्म बन चुकी है. ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट भी है. और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि इम्पैक्ट. देखिए, जब इनोवेशन सक्सेसफुली अडॉप्ट हो जाती है ना, तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहती, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है. डिजिटल पेमेंट्स ने कतर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को फास्ट और एफिशिएंट बना दिया है. ब्लॉकचेन ने ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है. और फाइनेंशियल इंक्लूजन ने उन लोगों को भी सिस्टम का हिस्सा बना दिया है जो पहले से दूर थे, इसे जानते भी नहीं थे. देखिए, इम्पैक्ट सिर्फ नंबर्स में नहीं होता, ये लोगों की जिंदगियों में होता है. एक स्मॉल बिजनेस ओनर जो अब डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करके अपने बिजनेसेस को ग्रो कर रहा है, एक स्टूडेंट जो मोबाइल ऐप से अपने फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है, एक इंडिविजुअल जो बैंकिंग सर्विस तक एक्सेस पा रहा है जो पहले उसके लिए अवेलेबल नहीं थी, ये होता है रियल इम्पैक्ट. अच्छा, कतर का विजन बहुत क्लियर है इस मामले में, एक ऐसी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना जहाँ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी मेन ड्राइवर्स हों. फिनटेक इस विजन का एक इम्पोर्टेंट पिलर है. ये सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर को ट्रांसफॉर्म नहीं करता बल्कि एक स्मार्टर, मोर इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट करता है. स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और प्राइवेट सेक्टर्स मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां आइडियाज को सपोर्ट मिलता है और इनोवेशन को ग्रोथ करने का मौका मिलता है. लेकिन साथियों, हर इनोवेशन के पीछे इंसान होते हैं, ठीक है, वो लोग जो लेट नाइट्स काम करते हैं, जो फेलियर्स फेस करते हैं, जो हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करते हैं, इन लोगों के बारे में भी हम बात करेंगे. लेकिन इससे पहले कि उनके बारे में बात की जाए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि why it really matters, ये क्यों जरूरी है. अब सवाल ये है कि ये इनोवेशन इतनी इम्पोर्टेंट आखिर है क्यों. तो साथियों, लोगों के पास टाइम बहुत कम है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है. ऐसे में अगर फाइनेंशियल सिस्टम स्लो हो, कॉम्प्लिकेटेड हो या लिमिटेड हो, तो वो लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है, हैसल बन जाता है.
फिनटेक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है।

0: ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टाइम बचाता है, ये एरर्स और मिस्टेक्स को कम करता है, ये लोगों को ज्यादा कंट्रोल देता है अपने पैसों पर, ये फाइनेंशियल सर्विसेज को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये फ्यूचर है। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रही है और फिनटेक इस फ्यूचर का बेस बन रहा है। देखिए अब बात करते हैं कि ये इनोवेशन कतर और यहाँ की सोसाइटी को कैसे बेनिफिट कर रही है। देखिए कतर एक रैपिडली डेवलपिंग कंट्री है जहाँ विजन 2030 के तहत एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्स और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाई जा रही है। फिनटेक इस विजन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब अगर देखा जाए तो कतर को फायदा इससे क्या है, डिजिटल इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, बिजनेसेस को ग्रोथ करने में आसानी होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, बैंकिंग सिस्टम मॉडर्न और एफिशिएंट बनता है। ये तो कतर की बात हो गई। अब हम सोसाइटी के बारे में अगर बोलें तो सोसाइटी को इससे फायदा ये मिल रहा है कि लोगों को इजी और फास्ट फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं, स्मॉल बिजनेसेस को ग्रोथ के लिए नए मौके मिलते हैं, लोग अपनी सेविंग्स और ट्रांजैक्शंस को बेहतर मैनेज कर सकते हैं, हर शख्स को फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी उन लोगों को भी सिस्टम का हिस्सा बनाना जो पहले बैंकिंग सर्विसेज से बहुत दूर थे, उनको समझ ही नहीं थी। मतलब ये इनोवेशन सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है बल्कि हर इंसान के लिए है। तो साथियों चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सोचिए आप एक बच्चे हैं अब जो कि अपनी पॉकेट मनी को मैनेज कर रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, आपके पास कैश होता था जो आप किसी पर्स में रखते थे, अगर खर्च हो जाए तो बस हो गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास एक मोबाइल ऐप है जहां आप देख सकते हैं कि आपके पैसे कितने हैं, कहां खर्च हुए हैं, आपने कितने खर्च किए और कितने बच गए, और जब आप किसी दोस्त को पैसे भेजना चाहते हैं बस आप एक बटन दबाते हैं और पैसे ट्रांसफर। ये है फिनटेक, पैसे को मैनेज करने का एक स्मार्ट तरीका। ब्लॉकचेन को भी सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए एक डायरी है जिसमें हर ट्रांजैक्शन लिखी जा रही है और ये डायरी सबके पास कॉपी हो रही है, कोई भी इस डायरी में चीटिंग नहीं कर सकता क्योंकि सब लोग उसे चेक कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट ही ब्लॉकचेन का बेसिक आइडिया है। तो साथियों फिनटेक इनोवेशन कोई दूर की या कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। हर बार जब आप मोबाइल से पेमेंट करते हैं या आपसे पैसे आप अपने ऐप से सॉरी पैसे चेक करते हैं ना, आप इस इनोवेशन का यूज कर रहे होते हैं जो फिनटेक ने आपको दी है। और कतर में ये इनोवेशन सिर्फ कन्वीनियंस नहीं दे रहा बल्कि एक नई सोच, एक नया सिस्टम और एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बना रहा है। तो याद रखें इनोवेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होता बल्कि जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना होता है।
1: कतर इनोवेट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी देसी।
0: साथियों जब हम कोई नई टेक्नोलॉजी देखते हैं ना, चाहे वो मोबाइल से पेमेंट हो, एक क्लिक पर ट्रांसफर हो या फिर ब्लॉकचेन के जरिए सिक्योर सिस्टम हो, तो हम अक्सर सिर्फ उसके रिजल्ट्स देखते हैं। हमें वो स्मूथ एक्सपीरियंस नजर आता है, वो कन्वीनियंस नजर आता है, वो स्पीड नजर आती है, लेकिन उसके पीछे जो सफर होता है ना वो काफी लंबा, चैलेंजिंग और इंस्पायरिंग होता है। आज हम इसी सफर के पीछे झांकने की कोशिश करेंगे कि कैसे फिनटेक इनोवेशन कतर में सिर्फ एक आइडिया से शुरू होकर एक पावरफुल रियलिटी बन रहा है। देखिए हर इनोवेशन एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक इंसान, एक टीम, एक विजन। ये लोग अक्सर एक सिंपल सवाल से अपना काम शुरू करते हैं कि क्या हम इसे बेहतर बना सकते हैं। कतर में फिनटेक इनोवेशन भी इसी सवाल से ग्रो हुआ था। यहाँ के फाउंडर्स, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स ने ये देखा कि फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग फास्ट, सिक्योर और एक्सेसिबल फाइनेंशियल सर्विसेज चाहते हैं, और यहाँ से आइडिया पैदा हुआ। कुछ फाउंडर्स अपने घर के कॉर्नर में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहे, कुछ रिसर्चर्स डाटा एनालिसिस करते रहे, और कुछ इनोवेटर्स ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम को समझने के लिए बिजनेसेस और यूजर्स से डायरेक्टली बातचीत करते रहे। ये इनिशियल स्टेज अक्सर इनविजिबल होता है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से इनोवेशन का सीड प्लांट होता है। देखिए हर सक्सेसफुल इनोवेशन के पीछे फाउंडर्स का विजन होता है, ये वो लोग होते हैं जो रिस्क लेने से नहीं डरते। जब दूसरे लोग कहते हैं कि भाई ये पॉसिबल नहीं होगा, तो भाई ये लोग कहते हैं कि ट्राई करने में क्या ही जाता है। कतर में फिनटेक स्टार्टअप्स के फाउंडर्स ने एक क्लियर विजन लिया, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज को सिंपल, सिक्योर और इंक्लूसिव बनाना। उनका सफर इजी नहीं होता, मैं आपको ये बता दूं। उन्हें फंडिंग्स के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उन्हें मार्केट में ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें अपनी टीम को इंस्पायर रखना होता है। एक फाउंडर के लिए सिर्फ बिजनेस नहीं होता, ये मिशन होता है। और ये फाउंडर्स सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते भाई, बल्कि इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं। उनका गोल होता है लोगों की जिंदगी आसान बनाना। अगर फाउंडर्स विजन देते हैं ना, तो रिसर्चर्स उन विजन्स को टेक्निकली पॉसिबल बनाते हैं। तो भाई रिसर्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखें, रिसर्च एक ऐसा स्टेज है जहां इनोवेशन का लॉजिक डेवलप होता है। यहां पर एक्सपर्ट्स डाटा एनालिसिस करते हैं, एल्गोरिथम्स डिजाइन करते हैं और नए सिस्टम्स टेस्ट करते हैं। कतर में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और टेक लैब्स फिनटेक के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये लोग इंश्योर करते हैं कि जो भी सिस्टम बन रहा है ना, वो सिक्योर हो, स्केलेबल हो और फ्यूचर रेडी हो। ब्लॉकचेन जैसे कॉन्सेप्ट को समझने और इम्प्लीमेंट करने में रिसर्चर्स का रोल बहुत क्रिटिकल होता है। ये लोग नए नए केसेस डेवलप करते हैं, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, सिक्योर ट्रांजेक्शंस और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग। ये लोग आम लोगों को नजर नहीं आते, लेकिन इन्हीं की वजह से इनोवेशन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है। साथियों, इनोवेटर्स वो लोग होते हैं जो आइडियाज को रियलिटी में बदलते हैं। ये डेवलपर्स, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं जो मिलकर एक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं जो लोग यूज कर सकें। सोचिए, एक मोबाइल ऐप का डिजाइन, बड़ी सिंपल सी बात है ना, उसका इंटरफेस, उसकी स्पीड, उसकी सिक्योरिटी, ये सब इनोवेटर्स की मेहनत का रिजल्ट होता है। ये देखने में हमें तो बड़ी सिंपल सी चीज लग रही होती है कि मोबाइल ऐप है, क्या ही है ना, लेकिन इसके अंदर बहुत मेहनत होती है। कतर में फिनटेक इनोवेटर यूजर एक्सपीरियंस बहुत फोकस किया जाता है, क्योंकि अगर सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो तो लोग यूज नहीं करेंगे। इसीलिए हर इनोवेशन का गोल होता है सिंप्लिसिटी प्लस सिक्योरिटी प्लस स्पीड। तो भाई, इनोवेटर्स को हर दिन नए चैलेंजेस का सामना होता है। बग फिक्सिंग करनी पड़ती है, सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना, सिक्योरिटी लूप होल्स को बंद करना और यूजर फीडबैक के मुताबिक इम्प्रूवमेंट्स करना। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो इनोवेशन को इवॉल्व करता रहता है। इनोवेशन सिर्फ इंडिविजुअल से नहीं होती साथियों, बल्कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से होती है। प्रोग्राम लीडर्स यानी वो लोग जो इनोवेशन प्रोग्राम्स, इंक्यूबेटर्स और नेशनल इनिशिएटिव को लीड कर रहे होते हैं ना, वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जहां आइडियाज ग्रो कर सकें। देखिए, कतर में कई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, यानी कि फंडिंग, मेंटोरशिप और टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। देखिए, प्रोग्राम लीडर्स इंश्योर करते हैं कि टैलेंटेड लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले, स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिले और इनोवेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में ग्रो किया जाए। ये लीडर्स एक ब्रिज का काम करते हैं, यानी कि आइडियाज और एग्जीक्यूशन के दरमियान। साथियों, इनोवेशन का सफर आसान नहीं होता। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे चैलेंजेस की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है। अगर आप ले लें तो टेक्निकल चैलेंजेस पहले नंबर पर आते हैं। सिस्टम को सिक्योर और एफिशिएंट बनाना इजी नहीं होता। हर नए फ्यूचर के साथ नए रिस्क भी आते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं भाई ट्रस्ट इश्यूज। लोग अपना पैसा और डाटा किसी भी सिस्टम पर फौरन ट्रस्ट करके नहीं दे देते। ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे मुश्किल काम होता है। फिर तीसरे नंबर पर आती है रेगुलेटरी चैलेंजेस। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर हाईली रेगुलेटेड होता है। हर इनोवेशन को लॉ और गाइडलाइंस के मुताबिक चलना होता है। और फिर चौथे नंबर पर आ जाता है कंपटीशन। दुनिया भर में फिनटेक कंपनीज काफी अग्रेसिव हैं। कतर के इनोवेटर्स को ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करना होता है। और पांचवें नंबर पर आता है यूजर एडेप्टेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ ना तो सब का सब गया। कुछ लोग टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने से हेजिटेट करते हैं, उन्हें एजुकेट करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। साथियों, हर चैलेंज के बाद एक लेसन होता है। इनोवेशन हमें ये सिखाती है कि फेलियर एक एंड नहीं है, बल्कि एक लर्निंग है। पेशेंस एक की फैक्टर है। टीम वर्क से बिग गोल्स अचीव होते हैं और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की चाबी होती है। देखिए कतर के इनोवेटर्स ने ये समझा है कि लॉन्ग टर्म विजन शॉर्ट टर्म चैलेंजेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सवाल ये है कि ये लोग इतनी मेहनत करते क्यों हैं? मोटिवेशन का सोर्स इनका होता क्या है? कुछ लोग इनोवेशन को अपना पैशन बनाते हैं, कुछ लोग अपने मुल्क को आगे लेकर जाते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं और कुछ लोग सिंपली एक बेटर फ्यूचर बनाना चाहते हैं। कतर में इनोवेशन का मोटिवेशन एक स्ट्रॉन्ग नेशनल विजन से आता है, जो कि है एक ऐसी इकोनॉमी जो नॉलेज, क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, जो कि है इम्पैक्ट। देखें, इनोवेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक वो लोगों की जिंदगियों को चेंज ना करे। डिजिटल पेमेंट्स ने शॉपिंग को इजी बना दिया, ब्लॉकचेन ने ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन ने उन लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनाया जो पहले इससे बाहर थे। एक छोटा बिजनेस अब ग्लोबली ग्रो कर सकता है, एक स्टूडेंट अपने मोबाइल से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है, एक फैमिली अपने एक्सपेंसेस को बेटर मैनेज कर सकती है, और ये है रियल इम्पैक्ट। तो साथियों, अब वक्त आ गया है कि हम आज के सफर को यहीं पर खत्म करें, लेकिन एक गहरी सोच के साथ। आज के इस एपिसोड में हमने फिनटेक इनोवेशन को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के तौर पर नहीं देखा, बल्कि उसे एक जिंदा सफर के रूप में समझने की कोशिश की है। हमने ये जाना कि कैसे सिंपल से आइडिया एक पावरफुल इम्पैक्ट में तब्दील हो सकता है। तो भाई, अगर आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया हो, या अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हो, अपने आइडियाज शेयर करना चाहते हैं, अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं, तो जरूर हमारे साथ करें हमें मैसेज भेजकर 666-222-107 पर। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे FM 107 पर कतर इनोवेट्स। अपना ख्याल रखें, सेफ रहें और अपने आइडियाज पर यकीन रखें, क्योंकि हो सकता है आपका आइडिया ही कल की दुनिया को बदल दे। अल्लाह हाफिज, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप इनोवेटिंग।
1: कतर इनोवेट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। देसी FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है।
3: अल्लाहु अकबर।

0: तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी फर्स्ट लेफ्टिनेंट के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: दोस्तों, सड़कों पर मुकर्रर की गई या डेजिग्नेटेड लेन्स में चलना, खास तौर पर चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक की रवानी में मदद फराहम करता है और सड़क हादसात को कम करता है। जब हर शख्स अपनी डेजिग्नेटेड लेन में चलने का एहतमाम करता है तो ना सिर्फ सफर ज्यादा आसान हो जाता है बल्कि सबको अपने रास्ते में चलने की सहूलत मिलती है। इससे ना सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि हादसे और रुकावटों का खतरा भी कम हो जाता है। जब हर शख्स लेन का ख्याल रखता है तो ना सिर्फ सफर में बेहतरी आती है बल्कि सबके लिए सेव एनवायरनमेंट भी बन जाता है। चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर लेन में चलना रोड रेज को भी कम करता है और सबको अपनी मंजिल तक जल्दी और अहम वक्त में पहुंचने में मदद मिलती है। अगर हम सब अपनी अपनी लेन में चलें तो हम ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे लोगों की भी जान को महफूज रख सकते हैं। रोड सेफ्टी को अपना कर हम अपने सफर को बेहतर और सिक्योर बना सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है जो सबके अमन और सेफ्टी के लिए जरूरी है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: वेलकम एक सामने एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस और आवाम में। और जैसे कि आप सब सुन रहे थे कि इस प्रोग्राम में हम ट्रैफिक सेफ्टी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और दरमियान में जो ब्रेक गुजरा है इसमें भी काफ़ी जो है ना ट्रैफिक के हवाले से ही हमारी जो बातें हो रही थी सुन रहे थे हम, तो इत्तेफाकन ये हम आज हमारे प्रोग्राम के साथ भी पूरा इसका इसके मुताबिकत हो गई है। तो इसी हम आहंगी में हम आगे बढ़ते हैं और ट्रैफिक कानून के हवाले से जो हमने ब्रेक से पहले गुफ्तगू की है सिलसिले में कि बुनियादी कानून है भाई ट्रैफिक सिग्नल्स की पाबंदी, सुर्ख इशारा और लाल बत्ती और ये रेड लाइट्स, ये दरअसल हमारे इंसानी जानों की हिफाजत की अलामत है। तो आपने ये इशारे नहीं तोड़ने कभी भी और इसका ख़ास ख्याल रखना है। चौराहे के हवाले से भी हमने काफ़ी गुफ्तगू उसकी अहमियत के हवाले से कि भाई इस सिलसिले में भी आप आगाह रहें और इस आगाही को आम करें। और मज़ीद हम अगले निकात की तरफ आगे बढ़ेंगे और रफ्तार के हवाले से हम अपने मेहमान से वजाहत तलब करेंगे कि भाई रफ्तार के हवाले से आप हमें क्या कहना चाहते हैं, इसको हम कैसे यानी काबू में रखें या फिर काबू में नहीं रखेंगे, अगर हद से तजावुज़ कर जाए तो इस सिलसिले में क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो चले रुख करते हैं हमारे मेहमान का। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट सुल्तान अहमद अस्वेदी, जिनका ताल्लुक ट्रैफिक अवेयरनेस डिपार्टमेंट से है। سيادة الملازم أول نجد ترحيب بكم في منتصف البرنامج، يا أهل وسهلا وحياكم الله معنا.
1: الله
0: سامعين الكرام، نعم سيادة الملازم، بخصوص السرعة يعني هناك سرعة محددة في كل شوارع، فماذا ترون بخصوص تجاوز السرعة المحددة على الطرق؟
1: نعم صحيح، تعتبر تجاوز السرعة المحددة على الطريق هو تجاوز لقانون المرور في حد ذاته. إذا لكل طريق وسرعته المحددة وعلى كل قائد مركبة تقيد بهذه السرعات من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال عدم الامتثال

0: You are listening to
1: AI Unlocked.
2: AI Unlocked.
1: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में. AI Unlocked with RJ Vaid.
0: Only on FM 107, दिल से देसी.
3: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त, आपका होस्ट वेद, और आपका स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल शो पे जिसका नाम है AI Unlocked. 2025 का साल AI के लिए रोलर कोस्टर था. कभी एक्साइटिंग, कभी शॉकिंग, कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग, बिल्कुल मेरी जिम मेंबरशिप की तरह. लेकिन आज हम 2025 का एक AI रैपअप देखेंगे और क्या नए ब्रेक थ्रू आए हैं, कौन से टूल्स ट्रेंड में रहे और 2026 में हमारे लिए क्या खास है. तो भाई सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि AI का फ्यूचर शुरू हुआ है. AI पे रिसर्च और AI पे काम काफी सालों से चल रहा है, लेकिन साल 2025 AI इंडस्ट्री का टर्बो चार्ज्ड साल था. जनरेटिव AI 3.2, ChatGPT 5.1 आया जिसमें मल्टी मॉडल स्पीड और एक्यूरेसी ने सबको शॉक दे दिया. पीपल स्टार्टेड डूइंग फुल वीडियो एडिटिंग वाया AI. नो टाइमलाइन, नो लेयर, सिर्फ प्रॉम्प्ट दो और आपका वीडियो हाजिर. सोरा 2 लॉन्च हुआ, अब हाइपर रियलिस्टिक 5-मिनट सीन्स अब बना सकते हैं सोरा 2 से ब्रांड फिल्म लेवल, और ऐसा आउटपुट कि आप बोलेंगे सर जेम्स कैमरून साहब आप बैठिए, अभी हम बनाते हैं अवतार का अगला वर्जन. AI ने हेल्थ केयर में भी काफी बूम किया. ब्लड स्कैन AI से अर्ली डिसीज डिटेक्शन शुरू हो गया. हार्ट रिस्क प्रेडिक्शन AI टूल्स तो मेन स्ट्रीम में आ गए. कतर ने AI ड्रिवन पेशेंट ट्राइज सिस्टम हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस किया जो फास्ट और एकदम एक्यूरेट. AI ने एजुकेशन इंडस्ट्री में भी कमाल कर दिया. पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट बुक्स डिमांड में रही. टीचर ने AI का क्लासरूम में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. कतर यूनिवर्सिटी ने AI बेस्ड डाउट सॉल्विंग 24/7 ट्यूटर लॉन्च किया. साइबर सिक्योरिटी गॉट स्मार्टर. AI शील्ड्स बिकम स्मार्ट इनफ टू डिटेक्ट फ्रॉड वॉइस क्लोन्स विद इन 1.5 सेकंड. डीपफेक डिटेक्शन टूल्स मैंडेटरी हो गए गवर्नमेंट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में. AI रेगुलेशंस पे काफी काम किया गया पिछले साल. GCC इंट्रोड्यूस्ड सेफ AI फ्रेमवर्क, एथिकल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिबल AI गाइडलाइंस. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी AI जनरेटेड कंटेंट की वाटरमार्किंग ग्लोबली इंट्रोड्यूस की. इसके अलावा आप सब ने कहीं ना कहीं AI का इस्तेमाल किया, स्पेशली ChatGPT और Gemini तो लोगों की लाइफ का हिस्सा बन गए. अब लोग गूगल नहीं करते, GPT या फिर Gemini करते हैं. तो 2026 में क्या है? 2026 में AI स्मार्ट होम्स 2.2, घर का पूरा इकोसिस्टम सेल्फ एडजस्टिंग हो जाएगा. रूम टेम्परेचर बेस्ड ऑन मूड, लाइट बेस्ड ऑन स्ट्रेस लेवल्स, किचन ऑटो ऑर्डर्स, ग्रोसरीज. AI फॉर ट्रेवल, पर्सनल ट्रेवल एजेंट्स. आपके मूड और बजट के हिसाब से ये AI ट्रेवल एजेंट्स आपको पूरी आइटनरी निकाल के देते हैं. लैंग्वेज फ्री ट्रेवल ट्रांसलेटर्स. अब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द लैंग्वेज बिकॉज यू हैव गॉट AI विद यू एनी टाइम. एंड नॉट ओनली आप सिर्फ सर्च कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप AI से सीधा बात करके सारी चीजें पूछ सकते हैं. वर्चुअल ट्रायल ऑफ होटल्स बिफोर बुकिंग. जी हाँ, फिर AI का स्पोर्ट्स में भी काफी इस्तेमाल हुआ. रियल टाइम प्लेयर परफॉर्मेंस प्रेडिक्टर. इंजरी प्रिवेंशन AI फॉर फुटबॉलर्स. स्टेडियम क्राउड मैनेजमेंट यूजिंग AI स्वार्म सिस्टम्स. इतना कुछ AI करते जा रहा है. कतर ने AI बेस्ड रडार लगा दिए जो सीट बेल्ट और मोबाइल इस्तेमाल करते हुए ड्राइवर्स को कैच करते हैं. AI एंड क्रिएटिव कोलैबोरेशन. मूवी, सॉन्ग्स, एड कैंपेन्स सब में AI का इस्तेमाल होना शुरू हो गया. गाना बनाना तो अब AI की मदद से बाएं हाथ का खेल है. और ऐसे ही कितने गाने हमने AI की मदद से बनाए और आप तक लेकर आए, उनमें से एक गाना ये भी है. आपको सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. वापस आके दुनिया भर के AI अपडेट्स आपको बताता हूँ.

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं AI Unlocked, मेरा नाम है वेद।
1: You are listening to AI Unlocked.
2: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में, AI Unlocked with RJ Ved,
1: only on FM 107, दिल से देसी।
0: और अब चलते हैं AI Around the World की तरफ।
3: AI Around the World।
0: Brookfield launches a huge AI cloud businesses to lease chips directly to AI developers. और आजकल दोस्तों AI सिर्फ आंसर नहीं दे रहा है, डिसीजन भी खुद ले रहा है। इसको बोलते हैं

AI, मतलब एक AI जो टास्क समझता है, प्लान बनाता है और काम कंप्लीट करता है। आप बोलते हैं मेरे मीटिंग्स अरेंज कर दे और AI कैलेंडर, ईमेल्स, रिमाइंडर सब हैंडल कर लेता है। मतलब ऑफिस लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है बॉस। दुनिया भर में AI का सबसे बड़ा फोकस अब कंप्यूटर पावर और क्लाउड इंफ्रा पर है। बिग कंपनीज बिलियंस इन्वेस्ट कर रही है AI डेटा सेंटर्स में ताकि फ्यूचर के AI मॉडल्स ज्यादा फास्ट और पावरफुल बन सके। सिंपल वर्ड्स में AI का पेट्रोल क्या होता है? डेटा और पावर। कंट्रीज अब ये समझ रही है कि AI सिर्फ कुछ नेशंस तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर AI गवर्नेंस, एथिक्स और शेयर्ड इनोवेशंस पर बात की जा रही है ताकि AI रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल किया जा सके और सबको उसका फायदा हो। वर्ल्ड वाइड कोर्ट्स और गवर्नमेंट्स AI के इस्तेमाल पर क्लियर रूल्स बना रहे हैं, स्पेशली लीगल फिलिंग्स, डेटा एक्यूरेसी और एथिकल इस्तेमाल को लेके। मतलब AI मदद करेगा, डिसीजन ह्यूमन का ही रहेगा। जितनी भी ग्लोबल AI समिट्स हो रही हैं, उनका फोकस है AI फॉर गुड, AI इन हेल्थ केयर, AI इन गवर्नेंस, AI प्लस सस्टेनेबिलिटी। AI अब सिर्फ टेक नहीं, पॉलिसी और सोसाइटी का कोर पार्ट बन रहा है। कतर की जानिब से कुछ AI अपडेट्स। कतर अपनी AI इकोसिस्टम को एग्रेसिवली डेवलप कर रहा है। गोल है गल्फ रीजन के टॉप AI हब्स में शामिल हो। चीप एनर्जी प्लस स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है AI ग्रोथ का एक सॉलिड कॉम्बिनेशन। कतर ने अपनी नेशनल AI कंपनी स्टार्ट की है जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग और एडवांस्ड AI सॉल्यूशंस पर काम करेगी। सिर्फ कतर के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी ये अवेलेबल रहेगी। कतर में हाई परफॉर्मेंस AI डेटा सेंटर्स बन रहे हैं जो फ्यूचर के स्मार्ट सिटीज, AI गवर्नेंस और इंटरप्राइज सॉल्यूशंस को पावर देंगे। ये लॉन्ग टर्म डिजिटल बैकबोन क्रिएट करेगा। वर्ल्ड समिट AI जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर कतर ने अपनी रियल वर्ल्ड AI प्रोजेक्ट्स शोकेस किए। स्मार्ट HR सिस्टम, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, लीगल टेक और गवर्नेंस AI सॉल्यूशंस। वहीं NVIDIA ने फिजिकल AI मॉडल्स और रोबोटिक्स फ्रेमवर्क्स लॉन्च किए हैं जिससे रोबोट्स और मशीन्स इंडस्ट्री वाइड ज्यादा इंटेलिजेंट और कैपेबल होंगे। स्मार्ट फैक्ट्रीज, डिलीवरी बॉट्स, सर्विस रोबोट्स सब एक्सेलरेट होंगे। परफॉर्मेंस और एजिलिटी दोनों इंप्रूव हो रही है। जेन सोन होंग, NVIDIA CEO ने CES 2026 में बताया कि AI कंप्यूटिंग पूरी तरह री आर्किटेक्ट हो रही है। GPUs डोमिनेंट रोल में, नए वेरा रूबिन चिप्स और फिजिकल AI इनोवेशंस पर फोकस है। यह हमारे कंप्यूट और AI फ्यूचर को रीडिफाइन करेगा। कॉर्नेल टेक रिसर्चर्स को माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड एजेंटिक AI रिसर्च प्रोग्राम में सेलेक्ट किया गया है। इसका मतलब है AI जो टास्क खुद प्लान, डिसाइड और एक्ट करेगा, नॉट जस्ट रिस्पॉन्ड करेगा। ये लॉन्ग टर्म AI ऑटोनोमी के बिग स्टेप्स हैं। मेटा ने मानस AI स्टार्टअप को $2 बिलियन में एक्वायर किया है ताकि AI एजेंट्स डेवलप कर सके। ये डायरेक्टली गूगल एंड OpenAI जैसी फर्म्स के साथ कंपटीशन को हीट अप करता है। AI स्टार्टअप लिंकर विजन ने $35 मिलियन सीरीज ए राउंड रेज किया है। फोकस है फिजिकल AI और रीजनिंग इंटेलिजेंस पर जो फ्यूचर मशीन्स को ज्यादा ऑटोनोमस बनाएगा। अब चलते हैं AI मिथ बस्टिंग की तरफ। मिथ ये है कि AI सबकी जॉब ले लेगा। इस पे हर दिन कोई ना कोई बात होती है, लेकिन रियलिटी ये है AI रिपीटेटिव जॉब्स ले सकता है, क्रिएटिव और सोशल जॉब्स बढ़ा देता है। अपने कई सारे 2025 में नए रोल देखे होंगे जैसे AI कंटेंट डायरेक्टर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डिजिटल ट्विन डिजाइनर, AI कंप्लायंस एक्सपर्ट। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि AI इमोशंस समझता है। रियलिटी ये है कि इट कैन सिमुलेट इमोशंस। समझना तो अभी दूर की बात है। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे AI टूल ऑफ द वीक की। सुन रही है AI अनलॉक्ड विद के साथ।

0: You are listening to AI Unlocked.
1: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में AI Unlocked with RJ Ved.
0: Only on FM 107 दिल से देसी.

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं AI Unlocked, मेरे यानी वेद के साथ में।
1: सुनिए AI की दुनिया की सारी हलचल, सारी अपडेट्स, कौन सी ऐप कर रही है सोशल मीडिया में ट्रेंड, सारी मालूमात एक ही शो में। AI Unlocked with RJ Ved,
2: only on FM 107, दिल से देसी।
0: और आज का AI वर्ड ऑफ द वीक है अपस्किलिंग।
3: AI वर्ड ऑफ द वीक।
0: अपस्किलिंग का मतलब है अपने स्किल्स को नए जमाने के हिसाब से अपग्रेड करना। जैसे एक अकाउंटेंट अब सिर्फ टैली पे काम नहीं करेगा, वो AI बेस्ड फाइनेंस टूल्स सीखेगा। एक जर्नलिस्ट अब सिर्फ पेन पेपर पे नहीं बल्कि AI फैक्ट चेक टूल्स इस्तेमाल करेगा और अपनी स्क्रिप्ट को सही करेगा। आज के जमाने में आपकी स्किल्स आपके अस्त्र हैं, आपके टूल्स हैं, और जितना ज्यादा आप अपने आप को अपस्किलिंग करते जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। और अब चलते हैं हमारे शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ जो है टूल ऑफ द वीक। मैं AI टूल ऑफ द वीक में लेकर आया हूँ वो टूल्स जिसने पिछले साल को काफी हैपनिंग बना दिया। और ये टूल्स वो टूल्स हैं जिन्होंने क्रिएटर्स की काफी मदद की। इन टूल्स में सबसे पहले है रनवे जेन 3 अल्फा। भाई अगर आप मूवी बनाने के शौकीन हैं तो रनवे जेन 3 अल्फा आपके लिए बिल्कुल मददगार साबित हो सकता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है, अपनी इमेजिनेशन को लिख देना है और आपकी मूवी बन के तैयार। सुनो तो भाई काफी पॉपुलर हो गया, स्पेशली अगर सुनो की बात करें। गाने बनाने के मामले में सुनो का कोई जवाब नहीं है। अभी उसने कई सारे वर्जन लॉन्च कर दिए हैं, ह्यूमन लेवल सिंगिंग, अरबिक, हिंदी सपोर्ट, जो भी लैंग्वेज में आप चाहें गाना बना सकते हैं। लिरिक्स लिखिए किसी चैटबॉट में और बस यहाँ डालिए किस तरह का गाना चाहते हैं वो लिखिए और बस सुनो का मैजिक देखिए, विद इन अ मिनट आपका गाना बनके तैयार। 11 लैब्स स्टूडियो। भाई अगर आप वॉइस के साथ खेलना चाहते हैं, आपके पास वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ लिखिए टेक्स्ट टू वॉइस करने में ये माहिर, आप बस अपनी कहानी लिख दीजिए, वॉइसिंग ये करके देगा। सो वॉइस एक्टिंग, इमोशनल टोन कंट्रोल, अभी 11 लैब्स में भी काफी सारे अपग्रेड आ चुके हैं। गामा AI, बॉस ने कहा प्रेजेंटेशन बनानी है, टाइम नहीं है, क्या करोगे। वन क्लिक प्रेजेंटेशंस के लिए गामा AI एकदम मददगार साबित हो रहा है। पूरे डिजाइनर्स का दर्द खत्म कर दिया इसने। सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखिए, गामा AI आपकी पूरी PPT विद ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग बना के देगा आपको और आप बोलेंगे OMG ये क्या हो गया भाई, मैं तो सपने में भी ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता था जैसे इसने बना के दे दी। ट्राई करके देखिए गामा AI, इसकी स्पेलिंग है GAMMA गामा, आप लिखेंगे मिल जाएगा आपको। एंड एट द लास्ट परप्लेक्सिटी प्रो, ये एक तरह का चैटबॉट है, ये स्मार्ट रिसर्च असिस्टेंट है, ये आपके द्वारा पूछे गए सवालों का प्रूफ के साथ जवाब देता है। तो अगर आपको लंबी कोई रिसर्च करनी है, कुछ डेटा एनालाइज करना है, देन परप्लेक्सिटी प्रो कैन वर्क फॉर यू। इसके अलावा तो बहुत सारी AI एप्लीकेशंस अभी मौजूद हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। स्पेशली सोशल मीडिया में हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे डांस, नाउडेज देयर लॉट ऑफ स्टोरीज, कोई हल्क बना दे रहा है, हल्क को चला रहा है, हल्क बातें कर रहा है, कोई किसी कार्टून कैरेक्टर में कोई गाना डाल के उससे डांस करा रहा है। सो मच मोर इज हैपनिंग एंड इट्स बिकम वेरी वेरी इजी फॉर एवरीवन। वैसे AI के आने से मजा तो आने लगा है। तो दोस्तों ये था AI Unlocked का एक और एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस शो से काफी जानकारी मिली होगी। सुनते रहिए, हर एपिसोड में आपको मिलेगी नई नई जानकारी। सुनना मत भूलिएगा AI Unlocked वेद के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या एआई एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कैंपस सीजन टू जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो यह रस्सी यह हबले मतीन है कुरान करीम आइए आज महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और शो है ये पर्ल्स ऑफ कुरान उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खैर खैरियत से होंगे आज पर्ल्स ऑफ कुरान में जो आयत मैं आपके लिए लेकर आई हूं ये है सूरह अल मारिज की आयत नंबर 5 और इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं बस आप सब्र करें खूबसूरत सब्र हम इस आयत को डिटेल के साथ समझेंगे हम ये समझेंगे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की गई और उसकी अहमियत क्या है फिर ऐसे कि सब्र जमील का मफहूम होता क्या है फिर साथ में जानेंगे कि मुश्किलात और आजमाइश का जो बैकग्राउंड होता है पस मंजर मतलब क्या था उस वक्त क्या हो रहा था जिसकी वजह से ये हुक्म दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से तसल्ली दी गई और दावत दीन में सब्र की क्या जरूरत है साथ ही जानेंगे कि सब्र और ईमान का ताल्लुक क्या है और अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत सब्र

ना हूं तो वो सबर नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर चीज का नतीजा फौरी देखना चाहता है। वो अपनी नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन जब इंसान को यकीन हो कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है और बेहतरीन फैसला करेगा, तो उसके लिए सबर करना आसान हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबर की रोशन मिसालों से भरी हुई है। अगर आप ताइफ का वाकया देखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए तो लोगों ने आपको पत्थर मारे, आप जख्मी हो गए। हज़रत जिब्राइल सलाम आए और कहा कि अगर आप चाहें तो उन लोगों को तबाह कर दिया जाएगा अभी के अभी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, शायद उनकी आने वाली नस्लें ईमान ले आए। ये सबर की आला तरीन मिसाल है। 13 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में जुल्म बर्दाश्त किया, मगर सबर के साथ दावत देते रहे। जब आपके पास ताकत आई तो आप बदला ले सकते थे, लेकिन आपने माफ कर दिया। ये सब सबर के हुक्म पर मुकम्मल अमल की मिसालें हैं। ये आयत सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, बल्कि हर मुसलमान के लिए है। आज हम अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ मसाइल का सामना करते हैं। तालीम में इम्तिहानात का दबाव है, नाकामी का खौफ है। घर में वालदेन या बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात, सोशल लाइफ में दोस्तों का रवैया, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? इसी आयत का जवाब है सब्र। लेकिन सब्र का मतलब ये नहीं कि हम कुछ करें ही ना या हिम्मत हार जाएं, बल्कि हम कोशिश जारी रखें, मुस्बत सोच रखें और अल्लाह पर भरोसा करें। सब्र अख्तियार करने से इंसान को कई फायदे हासिल होते हैं। दिल का सुकून, बेहतर फैसला करने की सलाहियत, लोगों की इज्जत, अल्लाह की रजा, और सबसे बड़ी बात, सब्र करने वाला इंसान कभी अंदर से नहीं टूटता। फासबिर एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसके अंदर एक मुकम्मल फलसफाए जिंदगी मौजूद है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, लोग आपको नहीं समझेंगे, कामयाबी फौरन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप सब्र के साथ अपने रास्ते पर कायम रहें तो बिलाखिर कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। ये हुक्म हमें ये भी याद दिलाता है कि असल ताकत जल्दी रद्द अमल देने में नहीं, बल्कि खुद को रोकने और सही वक्त का इंतजार करने में है। सूरह अल-मारिज की आयत फाज़बिर सबरन जबीला में सिर्फ सबर का हुक्म ही नहीं है, बल्कि इसमें सबर की खास किस्म भी बयान की गई है, यानी सब्र जमील। यही वो नुक्ता है जिस आयत को आम सबर से बुलंद करके एक आला इखलाकी मयार बना देता है। सबर जमील का लफ्जी मतलब है ऐसा सबर जो खूबसूरत हो, लेकिन यहाँ खूबसूरत से मुराद जाहिरी खूबसूरती नहीं, बल्कि रवैये की खूबसूरती, इखलाक की खूबसूरती, दिल की कैफियत की खूबसूरती, यानी ऐसा सब्र जिसमें शिकवा ना हो, बेसब्री ना हो, लोगों के सामने फरियाद ना हो, बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा हो। ये सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं, बल्कि एक पुरसुकून, बावकार और बा ईमान बर्दाश्त है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। आम सब्र क्या होता है? इंसान बर्दाश्त तो करता है, लेकिन दिल में शिकायत होती है, जबान से बार बार अपनी तकलीफ बयान करता है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। सब्र जमील क्या है? इंसान तकलीफ में भी अल्लाह से राजी रहता है, लोगों से शिकायत नहीं करता,

बरकरार रखना है और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना है। यही वो सब्र है जो इंसान को आम से खास बना देता है। सूरह अल-मारिज की आयत फाज़बिर सब्रन जमीला को अगर सही तौर पर समझना है तो हमें इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। यह आयत किसी आम हालत में नाजिल नहीं हुई थी बल्कि एक ऐसे माहौल में नाजिल हुई जहां हक और बातिल के दरमियान शदीद कश्मकश जारी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरफ से मुखालफत, तकलीफ और आजमाइशों का सामना था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत शुरू की तो इब्तिदा में ये पैगाम आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंचाया गया, लेकिन जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया वैसे वैसे मुखालफत भी बढ़ती गई। मक्का के लोग बुतों की पूजा करते थे, अपने आबाओ अजदाद के तरीकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अपनी माशरती और माशी ताकत को खोना नहीं चाहते थे। इस्लाम का पैगाम इन सब चीजों के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने इसे कबूल करने के बजाय उसकी मुखालफत शुरू कर दी। कुफारे मक्का का रवैया सिर्फ इनकार तक महदूद नहीं था बल्कि वो नाऊज़ बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहते थे, आपको शायर, जादूगर या दीवाना करार देते थे, आपकी बातों का मजाक उड़ाते थे। ये सब सिर्फ इसलिए था ताकि लोग इस्लाम से दूर रहें। सबसे अहम बात यह है कि वो सिर्फ मुखालफत ही नहीं करते थे बल्कि अजाब का मजाक भी बनाते थे। सूरह अल-मारिज की इब्तदाई आयात में जिक्र है कि एक शख्स ने अजाब के बारे में सवाल किया और उसे जल्दी लाने का मुतालबा किया। कुफार कहते थे, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। ये बात वो संजीदगी से नहीं बल्कि चैलेंज और मजाक के तौर पे कहते थे। ये रवैया जाहिर करता है उनका तकब्बुर, उनका इनकार और आखिरत पर उनका यकीन ना होना। वो समझते थे कि चूंकि अजाब फौरन नहीं आ रहा इसलिए ये बातें झूठी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंतहाई नरम दिल और रहम दिल इंसान थे। आप लोगों के लिए हिदायत चाहते थे, उनकी भलाई चाहते थे। जब लोग आपकी बात ना मानते, आपको झुठलाते और आपका मजाक उड़ाते तो ये सब चीजें आपके दिल पर असरअंदाज होती थी। ये बिल्कुल फितरी बात है। अगर कोई इंसान सच्चाई के साथ किसी को समझाने की कोशिश करे और सामने वाला मुसलसल इनकार करे तो उसे दुख होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये ज़ाती मसला नहीं था बल्कि आप अपनी कौम की हिदायत चाहते थे, आप उनके अंजाम के बारे में फिक्रमंद थे, इसलिए उनका इनकार आपके लिए एक बड़ी आजमाइश बन गया। ये समझना जरूरी है कि आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आती हैं। ये सिर्फ एक सजा नहीं होती बल्कि इंसान की तरबियत के लिए होती हैं। इसलिए ईमान को मजबूत करने के लिए ये आती हैं, इसके दर्जे को बुलंद करने के लिए होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आजमाइशों से गुजारा गया, हालांकि आप सबसे ज्यादा नेक और अफजल थे। इसका मतलब यह है कि आजमाइश नेक होने की निशानी भी हो सकती है। ऐसे मुश्किल हालात में अल्लाह ताला ने फरमाया, फसबिर सब्रन जमीला। यह हुक्म कई वजूहात की बिना पर दिया गया। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी रद्द अमल देते या बद्दुआ करते तो हालात बिगड़ सकते थे। सब्र के साथ बात करने से दिलों पर असर ज्यादा होता है।

0: अरे ये तो बहुत कम है, यानी अलैहि कसम ये सबसे कम कीमत है। यानी बस अगर तुम सीरियस हो, इनको तजाद जाद कहते हैं सीरियस को, अगर तुम सीरियस हो खरीदने में, लेकिन यानी वाकई आप खरीदना चाहते हैं, आती ना कि या बे 35, मैं आपको 35 में दे दूंगा। आते कि या बे 35, लेकिन यहाँ पर भी बा बे 35 कहते हैं 35 को, तो बा के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये इस तरह जो है ना इसे रवाबित कहते हैं, यानी आप जोड़ने वाले राब्ताकार हरूफ कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि बाजार में यानी ये जो सीरियस वाला लफ्ज इसने यूज किया दुकानदार ने, कुछ अगर तुम सीरियस हो तो 35 में ले लो, ये आखिरी कीमत है। अकल सैर यानी लास्ट प्राइस है, ये सबसे कम प्राइस है। तो बात तो ये है कि दरअसल बाजार में कोई आखिरी कीमत नहीं होती। तो अब कस्टमर कहता है हाँ जी 30 पर राजी हो जाओ, 30 कर दें और मैं अभी ले लेता हूँ। सलासीन आला तूल बाखुद, या फिर आप कह सकते हैं फौरन, फौरन या आला तूल। तो ये फौरन यानी साथ साथ, तो इसके लिए आला तूल भी यूज करते हैं बोलचाल की जबान में। अब दुकानदार कहते हैं खलास यल्ला मिशेना, यानी ठीक है हमने मान लिया, बस चलते हैं, यानी इत्तेफाक कर लिया, इत्तेफकना खलास इत्तेफकना। तो सामने कराम अरब जो माहौल है इसमें आपको दुआएं मोहब्बत और एहतराम इस तरह के काफ़ी जुमले मिलते हैं। तो आप जब भी कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसमें आपने साथ साथ या बातों बात में शुक्रन अल्लाह यरज़क़क अल्लाह यसल्लिमक इस तरह के जो है ना दुआया जो जुमले हैं ये कसरत लोग यूज़ करते हैं, अगर आप भी यूज़ करेंगे तो इस तरह आप दूसरों के दिल भी जीत सकते हैं। और ये महज दिल जीतना नहीं बल्कि ये तो एक अपनी जो है ना अखलाकी पहलुओं को उजागर करना है, और फिर एक एक दूसरे के लिए सलाम पीस वगैरह मांगने की जो बात होती है ना, इससे एक पॉजिटिव वाइब हम दूसरों पर इम्पैक्ट रखते हैं, असर छोड़ते हैं। इसी वजह से कहा गया है हमारे इस्लाम में कि आपस में एक दूसरे को सलाम दो, इससे क्या होता है मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत की फिजा कायम होता है। तो इसी के साथ सामने कराम यानी आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि भाई ख़रीदारी की जो दुनिया या शॉपिंग मॉल की जो दुनिया है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी स्ट्रेटजीज होती हैं, फिर स्ट्रेटजी पॉलिसी से लेकर फिर हमने बताया कि भाई मज्जर दुकान में आप दाखिल होते हैं किस तरह के सवाल आपने करने पड़ते हैं, फिर बार्गेनिंग कैसे शुरू होती है भी बताई, और फिर आपने फिर अपने जो है ना आपको भी चीज़ जो आप ख़रीदनी है तो कौन किस बात पर जो है ना आप बस इत्तेफाक करेंगे, फिर चीज़ें लेकर निकलेंगे और इससे सलाम दुआ के साथ अपनी बातों का जो है ना इख्तिताम करेंगे। तो ये तमाम बातें हम हमने कही आज के इस हलके में। तो अगली बार जब आप बाज़ार जाएं तो कोशिश करें कम से कम ये तीन लफ्ज़ यूज़ करें, जैसे कि काफ़ी सारे अल्फाज हमने कहे लेकिन शायद आपको कुछ भी याद नहीं है लेकिन आखिर में एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ, बिकम हादा यानी कितने में दोगे, बिकम हादा, और एक हलियुज तकफील क्या कोई डिस्काउंट है, या फिर आप इस तरह एक बार्गेनिंग के हवाले से एक लफ्ज़ जो मशहूर लफ्ज़ है हादा गालीन, ये बहुत ज़्यादा महंगा है हादा गालीन कसीर बहुत ज़्यादा है। तो हाँ जी जबान सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है लोगों से बात करना, या अपने आप में भी जब आप बात कर रहे हैं तो अरबी में कुछ ऐसा कुछ ना कुछ अल्फाज आप यूज़ करते रहें, इंशाल्लाह जो है ना वो फिर आप बाद में दूसरों जो नेटिव स्पीकर से उनके साथ भी बात करने का हौसला आपको मिलेगा। हाँ जी आज के इस शॉपिंग एपिसोड यहीं ख़त्म होती है, अगले कस्ट में इंशाल्लाह एक नया मौजू और नए जुमले और नए प्रैक्टिकल अरबी जो है ना टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए साउंड डिज़ाइन नदीम अंसारी और साथ तलहा को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होती है आइंदा हल्के में, मासलामा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: जोर होता है। मोमिन को तो दोनों चाहिए, नेक नीयत भी, नेक अमल भी। और इस वजह से मोमिन हर वक्त इस बात पर परेशान रहता है कि कहीं शो ऑफ और दिखावा का काम तो मुझसे सादर नहीं हो रहा। नऊज़ु बिका मिन मज़ाहिरिर रिया वस्सुमअ, दिखावे और लोगों में नाम कमाने की ख्वाहिश से पनाह चाहते हैं। रिया यानी इबादत लोगों को दिखाने के लिए करना, और सुमा इसका मतलब है अच्छे काम इसलिए करना कि लोग सुने और तारीफ करें, और ये दिल की खतरनाक बीमारियां हैं। फिर रिया और सुमा से पनाह मांगते हुए बंदा मजीद आगे बढ़ता है, कहता है, ए अल्लाह तेरी इबादत मेरे लिए मजा और खुशी का सबब बना दे, यानी नमाज बोझ न लगे, कुरान भारी न लगे, दुआ मुश्किल न हो, बल्कि ये सब आमाल दिल को राहत देने वाले बने। वल उन्स वर्रदा बिमर्दातिक, अपने रजा वाले कामों में दिल का सुकून और खुशी अता फरमा, यानी जो अल्लाह को पसंद है वही हमें भी महबूब हो जाए। सामने किराम, आज की इस दुआ में हमारे लिए कई सारे पैगामात हैं। बस आज की दुआ दिल की इस्लाह, नफ्स की तरबियत, आजिज़ी, इखलास और इबादत की लज्जत मांगने वाली दुआ है। ये दुआ गोया हमें ये नसीहत कर रही है कि तकब्बुर छोड़ो, नरम मिजाज बनो, नफ्स की इस्लाह करो, नीयत साफ रखो, दिखावे से बचो, इबादत में लज्जत मांगो और अल्लाह की रजा में सुकून ढूंढो। फिर बंदा ये भी जानता है कि अल्लाह की रहमत के सिवा ये सब कुछ नामुमकिन है, तो फिर वो कहने लगता है, अंजिल अलैना मिन औसा रहमातिका या रहीम, निहायत रहम करने वाले रब हम पर अपनी वसी रहमत नाजिल फरमा, ऐसी रहमत अता फरमा जिससे हमारा दीन भी संवर जाए और दुनिया भी। रहमतन तुस्लिह बिही दीनना व दुनियाना व अहलना व औलादना, हमारे घर वालों और औलाद को भी अपनी रहमत में ले ले। ارزقنا صون رحمتك بصيانة التقوى والورع, हमें तौफीक दे कि तेरी रहमत को तकवा और परहेजगारी के जरिए महफूज रखें। واستدامتها بخشيتك في السر والعلن, हमें ऐसा खौफ खुदा दे जो तन्हाई और लोगों के सामने दोनों हालतों में रहे, क्योंकि असल इखलास तो ये है कि इंसान अकेले में भी वही हो जो लोगों के सामने है। फिर मजीद ये कहता है, वज़ियादती है बिशुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अपनी नेमतों में इजाफा फरमा हमारे शुक्र और अच्छी इबादत के जरिए, क्योंकि कुरान का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और बढ़ा दूंगा। इजअलना मिन अहबाबिक والصالحين من عبادك, अल्लाह हमें अपना महबूब बंदा बना ले और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। सबने करम, हमें चाहिए कि हमारे वक्त अल्लाह की रहमत मांगे, क्योंकि ये रहमत दीन दुनिया की इस्लाह के लिए बेहद ज़रूरी है, साथ साथ तक्वा भी इख्तियार करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तन्हाई में भी अल्लाह से डरें। अल्लाह ताला हम और आप सब की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर, दिल से देसी।
2: हे बच्चों, आर यू रेडी गेम्स, मस्ती, स्टोरीज और सुपर फन के लिए?
3: FM 107 पर आता है एक ऐसा शो जहां बोर होने का कोई चांस नहीं।
4: ये शो कौन सा है?
2: द सुपर किड शो।
3: Sunday to Thursday, 1:30 PM से 3 PM तक, only on FM 107, दिल से देसी।
4: I love the Super Kid Show, super fun.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, घर में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना एक अहम सेफ्टी रिक्वायरमेंट है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना भी बेहद जरूरी है। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी सेफ्टी को बढ़ाती है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप समझना जरूरी है। हर फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप्स की आग के लिए डिजाइन होते हैं, जैसे कि ड्राई केमिकल, फोम, वाटर बेस्ड या CO2 एक्सटिंग्विशर। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एक्सटिंग्विशर आपके पास है वो आपके घर की सेफ्टी नीड्स को पूरा करता हो। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते वक्त एक सिंपल

0: एक्रोनिम पास का ध्यान रखें, PASS, जिसका मतलब होता है पी फॉर पुल यानी सेफ्टी पिन को खींच कर निकालें। दूसरा है ए यानी एम, नोजल को आग के बेस की तरफ फोकस करें, ना कि आग के ऊपर। नंबर तीन है एस, जो के है स्क्वीज, हैंडल को धीरे से स्क्वीज करें ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रिलीज हो। और चौथा है दोबारा से एस यानी स्वीप, नोजल को साइड टू साइड घुमाते हुए आग पर स्प्रे करें जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना जाए। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले ये भी जरूरी है कि आप इमरजेंसी नंबर या लोकल फायर डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हाथ में रखें, और किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए आप सभी को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दें। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
2: आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर पे। कई बार आपने नोटिस किया होगा, जब हम खुद की केयर करने लग जाते हैं तो लोग हमें एक टैग देते हैं, बीइंग सेल्फिश। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस इसी थॉट को दिमाग में रख के आप अपनी सेल्फ केयर करते रहिए, क्योंकि सेल्फ केयर करना सेल्फिश नहीं होता, बल्कि ये एक प्रायोरिटी है, एक जरूरत है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अगर हम खुद से प्यार नहीं कर सकते तो हम किसी से प्यार नहीं कर सकते। तो पहले खुद पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे बात सिर्फ खुद की बॉडी हेल्थ नहीं है, बल्कि खुद की मेंटल हेल्थ भी है। क्योंकि जब हम खुद पे ध्यान नहीं देते तो हमारी बॉडी और हमारा माइंड दोनों थकने लग जाता है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो ये सोचते हैं कि सेल्फ केयर का मतलब होता है स्पा चले जाओ या किसी वेकेशन पे चले जाओ, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ वंस इन अ व्हाइल नहीं होना चाहिए। हर दिन के आपके रूटीन में एक वक्त ऐसा जरूर होना चाहिए जब आप खुद से कनेक्ट करें। और सेल्फ केयर में कुछ भी आ सकता है। मे बी किसी दिन आपने हल्दी चंदन का चेहरे पे उपटन लगा लिया या एक किताब पढ़ ली। अगर किसी चीज का टाइम नहीं मिल रहा है अपने बिजी स्केड्यूल में, तो हल्के से गुनगुने पानी में लेमन स्क्वीज करके भी आप सिप कर सकते हैं। ये भी सेल्फ केयर का एक पार्ट है। वेल, रिसर्च कहती है कि रेगुलर सेल्फ केयर स्ट्रेस को कम और इमोशनल बैलेंस को बेटर करता है। और ये चीज आप जरूर ट्राई कीजिए। कभी अगर आपको लगता है कि इमोशनली आप अनबैलेंस्ड है, तो आपके आसपास जो भी चीज दिखती है उसे साफ करने लग जाइए। अगर आपको लगता है आपके हेयर मेस्ड अप है, तो हेयर वॉश ब्लो ड्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके कपड़े खराब है, तो कोई भी अच्छा कपड़ा निकाल के उसे इस्त्री करके आयरन करके पहन के बाहर निकलिए थोड़ी ताजी हवा लेने के लिए। और जब आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका इमोशनल बैलेंस कितना बेटर हो रहा है। चलो सेल्फ केयर का मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा एटीट्यूड कितना ज्यादा पब्लिक प्लीजिंग हो जाता है? तो जब आप अपने लिमिट्स समझना स्टार्ट करते हैं, वो भी आपके सेल्फ केयर का एक हिस्सा बनता है। हर चीज में आपको सबको हाँ कहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी खुद के सेल्फ केयर के लिए लोगों को नहीं भी कहना सीखे। वेल, मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि सेल्फ केयर से एनर्जी, फोकस और इत्मीनान आता है। और आज का छोटा सा मशवरा ये है कि रोज थोड़ा सा वक्त अपने लिए रखिए बिना गिल्ट के। याद रखिए, जब आप खुद का ख्याल रखते हैं तब आप दूसरों का भी बेहतर ख्याल रख पाते हैं।
0: योर हेल्थ मैटर, योर हेल्थ मैटर, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। आप सुन रहे हैं FM 107,
3: FM 107 दिल से देसी।

आप सभी का इस्तकबाल है, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे जर्मनी के एक मशहूर फुटबॉलर जिनका नाम है रूडी वॉयलर। यहाँ दोस्तों रूडी वॉयलर जर्मनी के फुटबॉल की तारीख के सबसे मशहूर खिलाड़ियों और कोचेस में से एक हैं। उन्होंने अपनी शानदार स्ट्राइक स्किल्स की वजह से दुनिया भर में शोहरत हासिल की। रूडी वॉयलर ने जर्मन नेशनल टीम के लिए बहुत अहम गोल स्कोर किए हैं और 1990 फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी की कामयाबी में बड़ा किरदार अदा किया। इटली में हुए उस वर्ल्ड कप में जर्मनी ने फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर ट्रॉफी जीती थी और वॉयलर टीम के सबसे भरोसेमंद फॉरवर्ड्स में से शामिल थे। उनकी स्पीड, फिनिशिंग और फील्ड पर लीडरशिप की वजह से फैंस उनको बहुत पसंद करते थे। दोस्तों प्लेयर के तौर पर रिटायरमेंट के बाद भी उनका फुटबॉल से रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। वो जर्मनी के हेड कोच बने और 2002 फीफा वर्ल्ड कप में जर्मन टीम को फाइनल तक पहुंचाया, जहां ब्राजील के हाथों उनको शिकस्त मिली, यानी जर्मन टीम को शिकस्त मिली। बहुत कम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जर्मनी इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन वॉयलर की कोचिंग और टीम मैनेजमेंट ने सबको मुतासिर किया। रूडी वॉयलर को जर्मन फुटबॉल का एक लेजेंड माना जाता है। उनके कंट्रीब्यूशन सिर्फ गोल्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि उन्होंने जर्मनी के फुटबॉल कल्चर को भी मजबूत बनाया। उम्मीद है आपको आज का यह स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस.
3: गाड़ी चला रहे हैं आप, एकदम से कॉल आती है आपके ब्लूटूथ पे.
4: अस्सलाम वालेकुम, अन कलम साइबर क्राइम डिपार्टमेंट. आपके QID में इलीगल एक्टिविटी है, आप डिजिटल अरेस्ट में हो. जिधर भी हो जल्दी से एक छोटा सा काम करो.
3: ऐसे कॉल्स आपको डरा देते हैं, थोड़ा धमका देते हैं. इनका मॉड्यूलेशन भी ऐसा रहता है जैसे मानो सही में किसी ऑफिसर या CID ने ही कॉल किया. ये लोग अलग अलग जबानों में भी बात कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वेद और आप सुन रहे हैं फ्रॉड अवेयरनेस. फेक पुलिस, फेक CBI, फेक CID, फेक कोर्ट नोटिसेस लोगों को डरा के पैसे वसूलते हैं. लोगों को डरा देते हैं, फिर बोलते हैं जल्दी से देखो तुम्हें एक OTP आएगा, अगर अपना केस यहाँ से रद्द करना है तो OTP बताओ, हम रद्द करेंगे. आपने OTP बताया और गेम खत्म हो गया. ऐसी कॉल्स कई दफा आपको ऑनलाइन एप्स में आती हैं जैसे WhatsApp एंड IMO, उनकी DP भी ऑफिशियल दिखेगी. बट याद रखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता. पुलिस WhatsApp कॉल पे फाइन नहीं लेती. ऐसे सिचुएशन में आप काफी डर जाते हैं और डिसीजन ले लेते हैं और उसी का ये फायदा उठाते हैं. ऑफिशियल नोटिसेस हमेशा रिटर्न होता है. डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है आपने कुछ गलत नहीं किया, तो डरने की क्या बात है. और अगर पेमेंट की डिमांड आ रही है तो समझ जाओ भाई, ये तो स्कैम ही है. डराना स्कैमर का सबसे बड़ा वेपन है और ना डरना आपका.
2: सतर्क रहे, सावधान रहे. फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
5: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट.

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
4: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. Bada hi kamal ka segment hai jahan hum baat karte hain kisi na kisi important topic pe. To aaj bhi hum baat karne wale bahut hi important topic pe aur wo hai how to build an emergency savings fund. Kitna kamal ka topic hai agar ispe baat ki jaye to mujhe lagta hai main ghanton bata sakti hu. Gyan baantna bada aasan lagta hai lekin ha uspe amal karna थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है बट इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं. तो चलिए आज मिलकर इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम और आप मिलकर एक दूसरे को सिखाएं कि किस तरह से हमें इमरजेंसी सेविंग्स फंड जो है उन्हें बिल्ड करना है. देखिए वैसे अगर देखा जाए तो भाई इमरजेंसी सेविंग्स फंड ऐसा कोई फंड हम जो है ना अपनी लाइफ में क्रिएट करते ही नहीं है ना, बिल्ड करते हैं ना यकीन करते हैं, अल्लाह ना करे किसी को किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो. बट ये वर्ड अपने आप में ना इतना भारी भरकम है, द मोमेंट यू लिसन इमरजेंसी अरे लगता है क्या हॉस्पिटल कोई गया है, ये वाली फीलिंग आ जाती है. और शायद कोई भी नहीं चाहता इस तरह की सिचुएशन के लिए पहले से हम तैयार रखें खुद को, लेकिन हाँ जिंदगी जो है ना वो अनप्रडिक्टेबल है. जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती. कभी अचानक नौकरी का मसला आएगा, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ ही सकती है, या फिर घर का कोई ऐसा जरूरी खर्चा जो निगलेक्ट ही ना किया जाए. ऐसे हालात में सबसे ज्यादा जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है इमरजेंसी सेविंग्स फंड. देखिए इमरजेंसी सेविंग्स फंड वो पैसे होते हैं जो हम सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए साइड पर रखते हैं. पहले तो ये सवाल उठेगा कि क्या आप ऐसा कोई पैसा साइड पर रखते हैं कि नहीं रखते हैं. अगर नहीं रखते हैं तो आज से अभी से इस आदत को अपना लीजिए. ये फंड जो है वो आपके आपके जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसे तो कम करते ही करता है और हमें बड़े फैसले बड़ी घबराहट से भी बचा लेता है.

जी अब बात करती हैं कि इमरजेंसी सेविंग्स फंड क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी होते हैं। पहले तो इसे समझते हैं कि है क्या। तो इमरजेंसी सेविंग फंड्स जो है एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। इसका मतलब ये है कि अगर कल को इनकम रुक जाए, अल्लाह ना करे कोई अचानक ऐसा खर्चा बढ़ा जाए जो आपको पुश करे लोन लेने के लिए या क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए या हो सकता है लोगों से पैसे बोरो करने के लिए, मदद मांगने के लिए, तो ऐसे में अगर आप गिल्टी महसूस करते हैं तो ये फंड आपको कॉन्फिडेंस देगा। बहुत से लोग इसलिए टेंशन में रहते हैं क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं होता। थोड़ा सा पैसा भी अगर इमरजेंसी के लिए अलग रख लिया जाए तो प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आसान हो जाता है। ये फंड सिर्फ पैसे नहीं है, मैं कहती हूँ ये पीस ऑफ माइंड है। इमरजेंसी फंड बनाने का पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, इमरजेंसी फंड बनाने का जो कदम है वो आपका पहला माइंडसेट है। नेगेटिव माइंडसेट के साथ इस फंड को ना बनाइए, एक पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़िए। इमरजेंसी फंड बनाने का पहला और सबसे बड़ा कदम है आपकी नियत और आपका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। ये सोच लेना कि कल से सेविंग शुरू करनी है काफी नहीं होगा दोस्तों। आपको क्लियर डिसीजन लेना होता है कि ये अमाउंट चाहे छोटा ही क्यों ना हो लेकिन सेविंग मैं जरूर करूंगा या करूंगी। इसके बाद आप अपने मंथली एक्सपेंसेस का अंदाजा लगाइए। आपको पता होना चाहिए कि एक महीने में रेंट, खाना, बिल, ट्रांसपोर्ट और जरूरी चीजों पर कितना खर्चा होता है। जनरली सजेशन ये होते हैं कि इमरजेंसी फंड कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, इसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी रकम भी सेव नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, छोटी सी शुरुआत लेकिन होनी तो चाहिए। बहुत से लोग जो है वो छोटी सेविंग को सेविंग ही नहीं मानते। बहुत से लोग सेविंग इसलिए शुरू नहीं करते कि उन्हें लगता है इतनी छोटी सी रकम का क्या होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि सेविंग का मतलब कंसिस्टेंसी है, अमाउंट नहीं, क्वांटिटी नहीं। आप 50 रियाल से 100 रियाल से भी शुरुआत कर सकते हैं और जैसे ही सैलरी आए पहले इमरजेंसी फंड के लिए उसे अलग कर दें बिना कुछ खर्च किए। अगर पॉसिबल हो तो इमरजेंसी फंड के लिए अलग बैंक अकाउंट ही खोल लीजिए जहां आसानी से पैसे आप डालें और आप उसको टच भी ना करें। इससे होगा ये कि टेम्पटेशन आपकी कम हो जाएगी और शायद सेविंग डिसिप्लिन डेवलप होगा। इमरजेंसी फंड को सेफ जगह रखना भी जरूरी है। इमरजेंसी सेविंग्स को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां पैसा सेफ हो, जरूरत पर फौरन आपको मिल जाए और किसी तरह का कोई रिस्क ना हो। इसीलिए इमरजेंसी फंड्स को स्टॉक, क्रिप्टो या कई बार रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में भी लगाना ठीक नहीं होता। सिंपल सेविंग्स अकाउंट या फिर इजली एक्सेसिबल ऑप्शन बेहतर रहते हैं। हर कुछ महीने में अपने इमरजेंसी फंड्स को रिव्यू करें। रेगुलर रिव्यू डिसिप्लिन लेकर आता है। अगर आप अपने एक्सपेंसेस पर ध्यान रखते हैं कि जी ये बढ़ गए हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस तो बढ़ते घटते रहते हैं और मैं घटना क्यों कहती हूँ, बढ़ ही रहे हैं, तो ऐसे में आपको भी हो सकता है कभी दिक्कत आए, 50 रियाल भी सेव करना मुश्किल हो जाए। तो कोशिश ये करिए कि अगर आपने लिख रखा है ना तो आप कहीं ना कहीं उस गिल्ट का शिकार होंगे और जैसे जहां आपको मौका मिलेगा आप वो 50 रियाल खड़ाक से बचा लोगे और फिर आप उसको इमरजेंसी फंड में डाल ही दें। ये आदत बड़ी कमाल की है और इससे आपका जो है वो ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। ये भी जरूरी है कि इमरजेंसी फंड को सिर्फ वाकई इमरजेंसी के लिए ही यूज ना किया जाए, इसको लाइफस्टाइल के लिए यूज ना किया जाए, ये फंड ही आपके लिए बना रहे। देखिए, इमरजेंसी फंड बनाना एक बहुत ही अच्छी आदत है जो इंसान के लिए जरूरी भी है, चाहे इनकम ज्यादा हो या कम। ये फंड आपको मुश्किल वक्त में सहारा देता है। इसकी शुरुआत आज से कीजिए। याद रखिए कि इमरजेंसी फंड ये लग्जरी नहीं है, ये आपकी जरूरत है और इसकी शुरुआत आज से ही हो सकती है। फिलहाल मुझे तो इजाजत दीजिए और इंशाल्लाह आपकी मेरी मुलाकात होगी एक और अमेजिंग से टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश

अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। निहायत मुतबर्रिक है वो जिसने ये फुरकान अपने बंदे पर नाजिल किया ताकि सारे जहान वालों के लिए खबरदार कर देने वाला हो। वो जो जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया है, जिसके साथ बादशाही में कोई शरीक नहीं है, जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर की। लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो खुद अपने लिए भी किसी नफा या नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, जो न मार सकते हैं न जिला सकते हैं न मरे हुए को फिर उठा सकते हैं। जिन लोगों ने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया है वो कहते हैं कि ये फुरकान एक मनघड़त चीज है जिसे इस शख्स ने आप ही घड़ लिया है और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में उसकी मदद की है। बड़ा जुल्म और सख्त झूठ है जिस पर ये लोग उतर आए हैं। कहते हैं ये पुराने लोगों की लिखी हुई चीजें हैं जिन्हें ये शख्स नकल कराता है और वो उसे सुबह शाम सुनाई जाती हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि इसे नाजिल किया है उसने जो जमीन और आसमानों का भेद जानता है। हकीकत यह है कि वो बड़ा गफूर और रहीम है। कहते हैं ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, क्यों ना इसके पास कोई फरिश्ता भेजा गया जो इसके साथ रहता और न मानने वालों को धमकाता, या और कुछ नहीं तो इसके लिए कोई खजाना ही उतार दिया जाता, या इसके पास कोई बाग ही होता जिससे ये इत्मीनान की रोजी हासिल करता। और ये जालिम कहते हैं तुम लोग तो एक सहरज़दा आदमी के पीछे लग गए हो, देखो कैसी कैसी हुज्जतें ये लोग तुम्हारे आगे पेश कर रहे हैं, ऐसे बहके हैं कि कोई ठिकाने की बात इनको नहीं सूझती। बड़ा बाबरकत है वो जो अगर चाहे तो इनकी तजवीज करदा चीजों से भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर तुमको दे सकता है। एक नहीं बहुत से बाग जिनके नीचे नहरें बहती हों और बड़े बड़े महल। असल बात यह है कि ये लोग उस घड़ी को झुटला चुके हैं और जो उस घड़ी को झुटलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। वो जब दूर से इनको देखेगी तो ये उसके गजब और जोश की आवाजें सुन लेंगे, और जब ये दस्तो पाबस्ता उसमें एक तंग जगह ठोंसे जाएंगे तो अपनी मौत को पुकारने लगेंगे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा आज एक मौत को नहीं बहुत सी मौतों को पुकारो।

इनसे पूछो ये अंजाम अच्छा है या वो अबदी जन्नत जिसका वादा खुदा तरस परहेजगारों से किया गया है जो उनके अमल की जजा और उनके सफर की आखिरी मंजिल होगी जिसमें उनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे और जिसका अदा करना तुम्हारे रब के जिम्मे एक वाजिबुल अदा वादा है और वही दिन होगा जबकि तुम्हारा रब इन लोगों को भी घेर लाएगा और इनके उन माबूदों को भी बुला लेगा जिन्हें आज ये अल्लाह को छोड़कर पूज रहे हैं। फिर वो उनसे पूछेगा क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद राह रास्त से भटक गए थे। वो अर्ज करेंगे पाक है आपकी जात, हमारी तो ये भी मजाल न थी कि आपके सिवा किसी को अपना मौला बना ले, मगर आपने इनको और इनके बाप दादा को खूब सामान्य जिंदगी

और वही है जिसने दो समंदरों को मिला रखा है, एक लजीज और शीरी और दूसरा तल्ख और शोर, और दोनों के दरमियान एक पर्दा हायल है, एक रुकावट है जो उन्हें गडमड होने से रोके हुए है। और वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर उससे नसब और ससुराल के दो अलग सिलसिले चलाए। तेरा रब बड़ा ही कुदरत वाला है। उस खुदा को छोड़कर लोग उनको पूज रहे हैं जो न इनको नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, और ऊपर से मजीद ये कि काफिर अपने रब के मुकाबले में हर बागी का मददगार बना हुआ है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको तो हमने बस एक बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है। इनसे कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत बस यही है कि जिसका जी चाहे वो अपने रब का रास्ता इख्तियार कर ले। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस खुदा पर भरोसा रखो जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं। उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। अपने बंदों के गुनाहों से बस उसी का बाखबर होना काफी है। वो जिसने 6 दिनों में जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को बनाकर रख दिया जो आसमानों और जमीन के दरमियान है, फिर आप ही अर्श पर जलवा फरमा हुआ रहमान, उसकी शान बस किसी जानने वाले से पूछो। इन लोगों से जब कहा जाता है कि इस रहमान को सजदा करो तो कहते हैं रहमान क्या होता है, क्या बस जिसे तू कह दे उसी को हम सजदा करते फिरे। ये दावत इनकी नफरत में उल्टा और इजाफा कर देती है। बड़ा मुतबर्रिक है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें एक चराग और एक चमकता चांद रोशन किया। वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे का जानशीन बनाया, हर उस शख्स के लिए जो सबक लेना चाहे या शुक्रगुजार होना चाहे।